अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी कस्मों की पाबंदी से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही आलीम और हकीम है। और ये मामला भी कायचो है कि नबी ने एक बात अपनी एक बीवी से राज में कही थी, फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज जाहिर कर दिया और अल्लाह ने नबी को इस इफ्शाए राज की इत्तला दे दी, तो नबी ने उस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक उससे दरगुजर किया। फिर जब नबी ने उसे इफ्शाए राज की ये बात बताई तो उसने पूछा, आपको इसकी किसने खबर दी? नबी ने कहा, मुझे उसने खबर दी जो सब कुछ जानता है और खूब बाखबर है। अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। और अगर नबी के मुकाबले में तुमने जत्थाबंदी की तो जान रखो कि अल्लाह उसका मौला है और उसके बाद जिब्रील और तमाम सालेह अहले ईमान और सब मलाइका उसके साथ ही और मददगार हैं। बाइद नहीं कि अगर नबी तुम सब बीवियों को तलाक दे दे तो अल्लाह उसे ऐसी बीवियां तुम्हारे बदले में अता फरमा दे जो तुमसे बेहतर हों, सच्ची मुसलमान, बा ईमान, इताद गुजार, तौबा गुजार, इबादत गुजार और रोजेदार, खा शौहर दीदा हूं या बाकिरा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो आयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर निहायत तुंद खू और सख्त गीर फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म भी उन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं। उस वक्त कहा जाएगा कि ऐ काफिरों, आज माजरतें पेश न करो, तुम्हें तो वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल कर रहे थे।

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك يا

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل و

0: अल्लाह अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, अल्लाह ताला आसानी करे, हम कहते तो हैं कि मैं बिजनेस लीड करूंगा लेकिन बेसिक रूटीन मैनेज नहीं हो पाता। लीडरशिप स्टार्ट्स विद सेल्फ लीडरशिप, ये हमेशा याद रखें भाई। जो अपनी डिजायर को नो NO नो नहीं कह सकता, वो प्रेशर के वक्त टीम को कैसे गाइड करेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आगे जाके यानी कुरान हमें बताता है किस्से के हवाले से, फशरिबु मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम, उनमें से थोड़ों की सिवा अक्सर ने पानी पी लिया, यानी एक बार फिर तादाद कम हो गई। यानी पहले एक मरतबा उन्होंने कुछ छानबीन हुई, फिर दोबारा दूसरी मरतबा है, पहले वो लोग अलग हुए जो खिताल का हुक्म आने पर वापस हट गए, अब वो भी अलग हो गए जो दरिया के इम्तिहान में साबित कदम न रह सके। और रिवायात में मशहूर ये है कि बिलाखिर तालुत के साथ रह जाने वालों की तादाद तकरीबन यानी वो 300 के आसपास, तो यानी बाज़ सहाबा ने उसे अहले बदर की तादाद के करीब बताया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है कि क्वांटिटी अहम नहीं होती, क्वालिटी अहम होती है ना।
0: वाह वाह। और कभी आपको लगता है कि मेरी टीम छोटी हो गई अब क्या होगा? भाई हर रिडक्शन लॉस नहीं होता, कभी फिटरिंग होती है जो बहुत जरूरी है, है ना। 10 भाई दसियों अनरिलायबल लोगों से 3 कमिटेड लोग या दोस्त बेहतर होते हैं हमेशा। तो लाइफ में भीड़ जो है वो ज्यादा कमिटमेंट मैटर नहीं करती, बस अच्छे लोग और समझदार लोग साथ होने चाहिए।
2: आप सुन रहे हैं कससुल कुरान
3: आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
1: फिर सामने किराम बनी इसराइल वो जो तालूत के साथ आगे बढ़ रहे थे वो दरिया पार करके जालूत और उसके लश्कर के सामने पहुंचे, और अब बाज़ लोगों ने मंजर देखकर कहा ला ताकत लना लियौम बिजालूत व जुनूदी, आज हमारे अंदर जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं। तो यानी कैलकुलेट अगर करें, यानी एनिमी की तादाद को जरा अगर सोचें, वो कितने हम कितने, वो कितने ताकतवर हम कितने कमजोर, तो इस वक्त वो यानी बाज तो मायूस हो गए थे, लेकिन कुरान कहता है कि बाज ऐसे थे उनमें قَالَّذِي نَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, वो लोग जिन्हें यकीन था कि उन्हें अल्लाह से मिलना है, कहने लगे कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ चुकी हैं और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चलो भाई, यहाँ पूरे वाकया एक जुमले में बदल जाता है, यानी कम होना, तादाद में कमी, ये हार की जमानत नहीं, ज्यादा होना भी जीत की जमानत नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्या जबरदस्त। कभी आपके पास रिसोर्सेस कम हो तो आप अपने आप को सिफर जीरो मत समझिए, आपका एम्बिशन जो है वो ए से लेकर जेड तक का हो सकता है, एक एग्जांपल दूंगा तला भाई, लेकिन जो कुवत है वो अभी ए से सी तक की ही है ना। तो आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है कि मैं ए से सी तक ऑनेस्टली चलूं, बाकी अल्लाह सुभान व तआला के हवाले कर दिया जाए। परफेक्ट रिसोर्सेस का वेट करते करते बहुत लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्ट विद व्हाट यू हैव।
1: बिल्कुल। और फिर सामने किराम जालूत के लश्कर के सामने वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, कुरान उनकी दुआ महफूज करता है, रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना व अंसुरना अला अल-क़ौमिल काफिरीन, ए हमारे रब हम पर सब्र अंडेल दे, हमारे कदम साबित रख और हमें मुखालिफ कौम के मुकाबले मदद अता फरमा। तरतीब देखिए समझने किराम, पहले सब्र है, फिर साबित कदम, फिर फतह। हम अक्सर सीधा तीसरा मांगते हैं, या अल्लाह मुझे जिता दे, कुरान से कहता है या अल्लाह मुझे ऐसा इंसान बना जो मैदान में टिक भी सके। यानी ये दुआ काफ़ी अहम है, हम इसका इहतमाम कर सकते हैं, रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन।
0: जी, तो ये दुआ हर मुश्किल वक्त में रिलेवेंट होती है हमारे लिए, है ना। एग्जाम हो, फैमिली क्राइसिस हो, ग्रीफ हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, कुछ भी हो, पहले अल्लाह सुभान व तआला से सब्र मांगिए, क्योंकि कभी प्रॉब्लम जो है वो फौरन सॉल्व नहीं होती, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला आपको प्रॉब्लम हैंडल करने के काबिल बना देते हैं। ये क्या कम है। और कभी वो सब्र पहली ही जीत जो है वो बन के सामने आता है।
1: और समझ कर हम, अब किस्सा एक नहायत हैरत अंगेज मोड़ लेता है। जालूत सामने है, एक बड़ा ताकतवर तजुर्बाकार जंगजो। कदीम जंगी रिवायत के मुताबिक एक फर्द दूसरे लश्कर को मुबारजत के लिए ललकारता है। अब सवाल हुआ, जालूत के मुकाबले कौन निकले? लश्कर में लोग मौजूद थे मगर ये कोई आम हरीफ नहीं था, वो बड़ा ताकतवर और मैदान जंग का तजुर्बा रखने वाला हरीफ और शख्स था। तो फिर तालूत ने ऐलान किया कि जो उसके मुकाबले आएगा उससे बड़ा इनाम दिया जाएगा। और बाज़ रिवायती बयानात में उसने अपनी बेटी

0: स्पेशली। तो इसमें पता ये तो जरूर मालूम होता है कि उनकी इबादत का एक बड़ा एक पहलू था, नुमाया पहलू जिसे हम कह सकते हैं, उसकी अपनी एक अहमियत थी, उसका अपना एक तरीका था। आगे इंशाल्लाह हम और भी बाज पहलू पर यानी फोकस करेंगे कि जो खास तौर पर जहां दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है।
1: और ये बहुत इम्पोर्टेंट बैलेंस है। देखिए, आज कभी हम सक्सेसफुल इंसान को सिर्फ उसके करियर से डिफाइन करते हैं, भाई सीईओ है, लीडर है, स्कॉलर है ना, पब्लिक फिगर है। लेकिन पौराणिक मॉडल में सक्सेस का एक प्राइवेट साइड भी होता है, और वो वक्त जो इंसान अल्लाह सुभान व तआला के साथ गुजारता है। भाई पब्लिक स्ट्रेंथ के पीछे प्राइवेट वर्शिप हो तो पर्सनैलिटी बैलेंस रहती है।
0: यानी बिल्कुल यही वो बात है कि आपके पास अगर इख्तदार हो, इस्तेहकाम हो, लेकिन आप ये आपको आपके रब की इबादत ना भुला दें। आपके रब के लिए भी आपका एक टाइम रहना चाहिए, खास टाइम जो आप रब के साथ गुजारें। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से सियाम दाऊद की बात भी आपने सुनी होगी। दाऊद अलैहिस्सलाम वाला रोजा, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के सजदे की हवाले से भी हमने सुन लिया। फिर अब दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ आ रहे हैं, इसका जिक्र भी है। यानी कई सारे अंबिया हैं, लेकिन खास तौर पर इनकी इबादत की बात कई जाविये से हमें सुनाया गया है, हमें इसकी तरफ रहनुमाई की गई है। तो यानी एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अस रज़ियल्लाहु अन्हुमा के वाक़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में इत्तेदाल सिखाया था कि वो कसरत से रोजे रखते और रातों को क़याम करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया कि जिस्म का भी हक है, आराम का भी हक है, घर वालों का भी हक है, और आखिर में उन्हें बेहतरीन नफली रोजे के तौर पर सौम दाऊद की तरफ रहनुमाई दी। एक दिन रोजा, एक दिन इफ्तार, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत में कसरत भी थी और तवाज़ुन भी।
1: भाई ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है। दिन में कंसिस्टेंसी बर्नआउट से बेहतर है। देखिए, है ना, आप दो हफ्ते एक्सट्रीम रूटीन बनाकर फिर छोड़ दें, इससे बेहतर है कि आप सस्टेनेबल रूटीन अख्तियार करें। भाई इबादत हो, स्टडी हो, फिटनेस हो, वर्कआउट हो, डिसिप्लिन का मतलब अपने आप को तोड़ देना नहीं है, बैलेंस भी सुन्ना का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है।
0: बिल्कुल, दाऊद अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ एक और चीज बार बार आ जाती है, हुस्न सौत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की खूबसूरत क़िराअत सुनी तो फरमाया कि उन्हें आले दाऊद के मज़ामीर में से एक मिज़मार अता किया है। यानी उनकी आवाज की खूबसूरती को दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने से तशबीह दी गई। और कुरान हमें एक अजीब मंजर भी दिखाता है कि हमने दाऊद के साथ पहाड़ों और परिंदों को मुसख़्क़र कर दिया कि वो तस्बीह करें। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह कहते थे, पहाड़ों में उसकी सदा सुनाई देती थी, और दाऊद अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह कहीं पर जिक्र के लिए बैठते तो वहां परिंदे जमा हो जाते थे। तो वो क्या कैफियत होगी,
1: क्या आवाज अल्लाह ताला ने।
0: इन सखरन الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له ابواب। तो सामने किराम, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को खास वस्फ के साथ भी याद किया है, वस्कुर अब्दना दाऊद अल ईद इन्हु अवाब। हमारे बंदे दाऊद को याद कीजिए जो बड़ी कुव्वत वाले और बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। यहाँ ज़लाइद का मतलब हाथों की, यानी वो नहीं कि हाथों की कुव्वत नहीं, यानी इबादत में कुव्वत, क़याम में कुव्वत, रोज़े में कुव्वत, जिक्र में कुव्वत, यानी हर तरफ उनमें एक कुव्वत थी, और एक जैसे वो मैदान जंग में भी आगे बढ़ गए किस कुव्वत के बिना पर। यानी उनके वो तरीका जानते थे, दिल की कुव्वत सबसे बड़ी कुव्वत होती कहते हैं ना, तो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, इन्नहु अवाब। तो रिवायत में दाऊद अलैहिस्सलाम की चंद सिफात खास तौर पर बयान हुई हैं कि वो दुश्मन के मुकाबले में साबित कदम और बहादुर थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे, और एक बहुत खूबसूरत वस्फ है कि वो अपने हाथ की कमाई खाते थे। यानी नबी भी, बादशाह भी, मगर मेहनत से बेनियाज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वो अपने हाथ की कमाई से खाते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है कि नबूवत इंसान को दुनियावी मेहनत से नहीं काटती। अंबिया सिर्फ इबादत गाहों के लोग नहीं थे, वो अमल, ताबीर, हुनर और जिम्मेदारी के लोग भी थे। तो इससे वरसतुल अंबिया की जिम्मेदारी भी हमें समझ में आती है। जो वरसतुल अंबिया हैं, जो उलमा हैं, जो अंबिया की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनके लिए इसमें एक सबक है कि अपने हाथ की कमाई भी एक अहम पहलू है जिस पर हम तवज्जो दे सकते हैं।
1: तो दोस्तों, इसीलिए दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी सिर्फ बैटलफील्ड की स्टोरी नहीं, ये एक कंप्लीट लाइफ मॉडल है। भाई स्ट्रांग रहिए लेकिन हम्बल रहिए, प्रोडक्टिव रहिए लेकिन स्पिरिचुअल रहिए, सक्सेसफुल रहिए लेकिन अल्लाह से डरिए जरूर, और अल्लाह सुभान व तआला नवाजे तो अल्हम्दुलिल्लाह ही सिर्फ मत कहिए, उस नेमत को सही जगह यूज भी कीजिए।
0: बिल्कुल, बहुत ही इस इम्पॉर्टेंट पैगाम के साथ आज हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आपके साथ यानी मेज़बानी में मेज़बान के तौर पर सरवर मिर्ज़ा और तलहा अशरफ़ ज़मान थे, और उम्मीद है कि आपने इस किस्से से काफ़ी सारे असबाक सीखे होंगे और इस तरह जो है ना नई दास्तान के साथ दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मा सलामा।

0: और UI ऐप गैलरी से डाउनलोड किया जा सकता है। वजारत दाखिला आपकी खिदमत करने के लिए हमेशा हाजिर है। समीन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से मिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वीकली बुलेटिन का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचता है। प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हमें से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामीन किराम, इस्लाम ने अमानत और सिला रहमी को इतनी अहमियत दी है कि ये दोनों क़यामत के दिन भी नुमाया होकर इंसान के आमाल का गवाह बनेंगे। इस सुन्नत में हमारे लिए सबसे अहम सबक यह है कि ईमानदार वही है जो अमानत अदा करे और रिश्तेदारों को जोड़ने वाला हो, न कि काटने वाला। जैसे कि हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत के वाक़ियात बयान करते हुए फरमाया, وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِيمُ فَتَقُومَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا। अमानत और रिश्तेदारी यानी रहम को भेजा जाएगा, वो बिलसरात के दोनों किनारों पर खड़ी होंगी। जरा ये बात तसव्वुर कीजिए कि जब क़यामत के दिन लोग बिलसरात से गुजर रहे होंगे तो अमानत और रिश्तेदारी खड़ी होंगी। वो अमानतदार के लिए खुशी और रोशनी होंगी और ख़यानत करने वाले के लिए रुसवाई और अंधेरा। आइए हम भी अपनी ज़िंदगियों में अमानत और सिला रहमी की सुन्नत को ज़िंदा करें ताकि कल क़यामत के दिन पुलसरात पर ये दोनों सुन्नतें हमारे लिए रोशनी और आसानी का सबब बने। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आंखें बड़ी नेमत हैं। आज हम बात करेंगे आंखों की सेहत के बारे में। आंखें हमारी दुनिया की रोशनी हैं और उनकी हिफाजत करना हर उम्र के लिए बेहद जरूरी है। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आप या हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर के सामने वक्त गुजारने के बाद अपनी आंखों की वर्जिश करते हैं या नहीं। मगर सबसे पहले ये कि आंखों के लिए कौन सी ऐसी गिजाएं हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, जो बेहतरीन है, जैसे कि उसमें कैरेट्स हैं, पालक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसमें विटामिन ए होता है और जो कि हमारी आंखों के लिए बेहद ज़रूरी है। ओमेगा 3, उसमें हम मछली इस्तेमाल करेंगे और अंडे, वो अगर आप लेते हैं तो आप ओमेगा 3 ले रहे होते हैं जो कि आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह नट्स हैं या सीड्स हैं, वो आप लीजिए, उसमें विटामिन ई है जो आंखों के लिए एक बेहतरीन गिज़ा है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी के सामने ज़्यादा वक्त आप ना गुजारिए, मुनासिब रोशनी में अपना काम कीजिए। कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आप दूर देखिए। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट जो कि हर रोज़ 5 से 6 घंटे कंप्यूटर इस्तेमाल किया करता था, आंखों की एक्सरसाइज नहीं की तो उस स्टूडेंट की आंखें बहुत थक गई, फिर धुंधलापन महसूस होना शुरू हो गया। मगर जब उसने वक्फे से और अपनी गजाइत का ख्याल रखा, यानी अपने खाने पीने का ख्याल रखा, आंखों की एक्सरसाइज की, तो फिर उसकी जो बिनाई है वो बेहतर होती चली गई। हमें करना ये है, कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद हर 20 मिनट पर आप थोड़ा सा वक्फा लीजिए। सब्जियां और फल जो हैं वो ज़्यादा कर दीजिए। आंखों को पानी और आराम दीजिए। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना करें या कोई भी डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। और अगर आपकी नज़र है, आई साइट है, वो ख़राब है, तो फौरन आप जो माहिर डॉक्टर हैं उनसे रुजू कीजिए और आप उन्हें दिखाइए कि क्या मसला है। क्योंकि आंखें अगर आपकी महफूज हैं तो जिंदगी रोशन है, तो अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा।
4: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे @3 PM, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

अब इनको लोगों ने बताया, अरे नौजवान लोग आ रहे हैं दूर दराज से यहाँ पे रेस करने के लिए, 875 किलोमीटर सिडनी से मेलबर्न जाना है, क्या बात है यार। अब इनकी सिंपल जिंदगी, सिंपल फैमिली, बेचारे खेतों से यारी, जानवरों का ख्याल रखना, भेड़ों के पीछे भागते रहना। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए इजी पीजी यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं भी भाग लूंगा। तो लोग हंसने लगे घर वाले, उम्र देखिए अपनी 61 साल के आप। तो बोले क्या हो गया भाई, मैं भी तो फील्ड में जाता हूं, मैं भी तो भागता हूं भेड़ों के पीछे, ये क्या चीज है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और पड़ोसी तो थे, वो बड़े मजे लेते थे, पड़ोसी देखते थे क्लिफ यंग को 61 ईयर ओल्ड, उन्हें भागते हुए देखते थे भेड़ों के पीछे। जब भी वो भेड़ों के पीछे खेतों में भागते थे तो पड़ोसी आते थे और अपने वालों को बुलाते, इधर उधर उधर खिड़की आओ खिड़की आओ, वो देखो फिर से भाग रहा है, वो देखो भेड़ के पीछे भाग रहा है। कैसा लग रहा है, क्योंकि बड़ा मजेदार था ये टॉपिक उनके लिए। वो भेड़ के पीछे जब भागता था ना क्लिफ यंग, इवन एट द एज ऑफ 61, वो बड़े छोटे छोटे कदमों से भागते थे, बड़ा तेज तेज तेज तेज भेड़ के पीछे, और भागते रहते थे भागते रहते थे भागते रहते थे। और लोग इसे देख के कहते थे तुम भागोगे मैराथन में, कुछ भी भाई, भेड़ के पीछे भागना और 875 किलोमीटर भागना बहुत फर्क है। अब क्लिफ की जो फैमिली थी वो बेचारे घोड़े अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, काफी सालों से गरीबी चल रही थी, हालांकि सुकून था, हर रोज लंबा लंबा रास्ता ऑन फुट कदमों से चल चल के नापना पड़ता था, बड़े बड़े डिस्टेंसेस, क्या करें, आराम ही नहीं है, बिना आराम लिए जाना भी है, काम खत्म भी करना है। तो क्लिफ ये सोचते थे कि यार ये 875 किलोमीटर कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मैं तो वैसे ही चलता रहता हूं पूरे दिन, ये क्या ही कर लेंगे मेरे, बस भेड़ की जगह ये मान लूंगा कि भेड़ को मैं भाग रहा हूं, मतलब भेड़ जो है सिडनी से मेलबर्न भाग रही, मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूं, मैं भी यही मान लेता हूं, हो जाएगी रेस। अब एक पड़ोसी तो छा, जब वो सुन रहा था कि 61 ईयर ओल्ड क्लिफ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उसने समझाने की कोशिश करी कि भाई थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा अभी, बाकी सबको देखो नौजवान है यार, तुम ठीक है, अपनी उम्र का ख्याल रखो, दिल विल रुक गया तुम्हारा, क्या करोगे तुम। पर ये लोगों के बताने से क्लिफ यंग का जो ईगो था वो हर्ट हो रहा था और उनकी जिद बढ़ती चली जा रही थी। अब धीरे धीरे पूरे टाउन में ये गॉसिप फैल गई थी और लोग हंसी मजाक कर रहे थे, मगर क्लिफ तैयारी कर रहे थे। वो सिडनी पहुंचे, रजिस्टर करो मुझे रेस के लिए। अब लोग हंसने लगे, हैं अंकल रेस करने के लिए आप आए? तो उन्होंने देखा सब एकदम सीरियस वाले रनर्स आसपास, एकदम एथलेटिक बॉडी, लेम शेम, सारे महंगे महंगे गियर लेके खड़े हुए, ट्रेनिंग करके आए हुए, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रेसेस करी है सबने। और फिर एक तरफ खड़े थे हमारे क्लिफ यंग और वो देख रहे थे ये सबको, अरे भाई ये थोड़े डेंजर रेसर है, कोई बड़े खास कुछ मिला के पानी में पी रहा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट फैंसी फैंसी सप्लीमेंट खा रहा है, अब बड़े डेडिकेटेड क्रूज के साथ आए लोग, लोग एकदम ट्रीटमेंट वाले परफेक्ट एकदम जूते वूते पहन के आए। और फिर क्लिफ ने खुद को देखा, क्लिफ के पास तो ये सब कुछ भी नहीं था। इन सब रनर्स के बीच में क्लिफ जो थे वो लग रहे थे जैसे किसी और गोले से ही आदमी आया हो, किसी और प्लैनेट से आया हो। उनकी टीम में उनके एक भाई थे सिड, जो उन्हें रास्ते पर कहते हुए थे कि भाई मत करो मत करो, लगातार मना कर रहे थे। बाकी उनके दोस्त से एक दो जो हंसने के लिए आए थे, वो साथ देने के लिए नहीं आए थे। और घर से लेकर क्या लेके आए थे क्लिफ, घर से लेकर आए थे वो एक सब्जी, आलू की सब्जी लेके आए थे वो घर से, अपने बढ़िया खेतों से निकाल के आलू, शानदार पानी लेके आए थे और लेके आए थे चाय। अब आप सोचिए, आप कहीं भी मैराथन, अब कतर में कहीं मैराथन होता है, उनके बीच में कहीं पहुंच जाइएगा और सब्जी पूड़ी खाना शुरू कर देना और चाय लेके बैठ जाना, लोग हंसेंगे आप पे कि ये देखो ये भागेंगे, तो बिल्कुल वही हालत है। और अगर मैं गियर की बात करूं कि क्या क्या पहनने के लिए था, तो क्लिफ जो थे उनके पास एक पैंट थी जो पहन के आए थे फटी हुई, वेंटिलेशन के लिए। जब उन लोगों ने पूछा भाई ये फटी पैंट क्यों, अरे वेंटिलेशन के लिए भाई। नीचे खराब से पुराने स्नीकर्स उन्होंने पहने हुए थे। और एक रनर जो था उसने बोला भी कि भाई आप मजाक करें ना सर, आप मैस्कॉट हो मुझे लग रहा है, आपको ना बीच में ये हंसी मजाक के लिए बुलाया होगा, सच सच बताओ मुझे। मैं क्लिफ ने इग्नोर किया और वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके खड़े हो गए। अब रेस शुरू होने वाली है 870 किलोमीटर सिडनी से मेलबर्न। अब रनर्स जो है स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल रनर्स जो है बड़े शानदार तरीके से। इसमें एक बंदा था जो
रिकॉर्ड नाम का, जो भाई साहब एक प्रोफेशनल रनर थे। और इत्तफाकन क्या हुआ कि रेसिंग लाइन पर ये क्लिफ यंग के बिल्कुल साइड में खड़े थे। अब इन्होंने देखा कि यार ये बुजुर्ग आदमी मेरे साइड में खड़े, इनसे बात तो करें। तो मुड़े जो उन्होंने बोला, क्लिफ आपका नाम क्लिफ है ना, राइट ओके, क्या करोगे अगर आप जीत गए तो, इतनी बड़ी रकम है, क्या करोगे प्राइज मनी का? तो 61 ईयर ओल्ड क्लिफ जो थे वो बोले, है प्राइज मनी? तो बोले हाँ हाँ, $10,000 है ना इनाम। अब क्लिफ जो थे वो बोले, है मजाक कर रहे हैं ना आप, 10,000 मिल रहे हैं यहां पे जीतने पे, मुझे नहीं पता था, तो ये तो बहुत सारे आलू ले लूंगा मैं इससे, मुझे तो बहुत फायदा है, बड़ी सादगी के साथ, बिकॉज ही डिडंट नो कि ये रकम भी मिल रही है यहां पे जीतने के लिए। वो तो अपने ईगो के चक्कर में आए थे, उन्हें नहीं पता कि कुछ इनाम भी मिल रहा है। जो ने खैर हंस के उनसे हाथ मिलाया, बोले हम में से जो भी जीता ना डील करते हैं, आधे आधे कर लेंगे $10,000 में, ठीक है, मैं जीता तो आपको $5,000, आप जीते तो $5,000 मेरे, ठीक है, मे द बेस्ट मैन। और क्लिफ ने कहा ठीक है, डन है डील। अब क्लिफ जो थे वो तैयार हुए, गन उभर की गई, रेस हुई शुरू, प्रोफेशनल रनर्स भाग रहे हैं, उन्होंने भागना शुरू किया, क्लिफ पीछे पीछे छोटे छोटे कदमों के साथ भाग रहे हैं, उनके लटकते ढीले से हाथ, और भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, लग ही नहीं रहा था कि क्लिफ भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था ये कर क्या रहे हैं, होता ना छोटे छोटे कदमों से भागना, बिल्कुल वैसे कर रहे थे वो। तो क्लिफ जो थे वो बहुत पीछे चल रहे थे, बाकी सबके सब रनर्स जैसी गोली शूट हुई गोली की तरह आगे हो गए। शाम तक तो लोग पहुंच चुके थे मिटागोंग, एक नाम एक नाम है, वो क्रॉस कर चुके थे, और क्लिफ यंग सबसे पीछे चल रहे हैं। कितना दूर थे पता है, क्लिफ यंग उस टाइम पे 130 किलोमीटर दूर थे लोगों से, 130 किलोमीटर दूर, इतना दूर वो हो चुके थे रेस में, यानी कई घंटों का सफर उन्हें तय करना है अभी। और लोग जो पहुंचे थे वहां पर रेस को देखने के लिए, वो तो हंसने के लिए पहुंचे थे क्लिफ पे, कि एक बुजुर्ग आदमी भी दौड़ रहा है इसमें, जरा उसको भी देखते हैं। पर हैरानी लोगों को ये थी कि आदमी भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तो रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को ये था कि बुजुर्ग आदमी है, अभी हड्डियां जवाब दे जाएंगी, कहीं ना कहीं गिर जाएगा, पर ये तो भागे जा रहा है। अब क्या हुआ कि रात हो गई, रात हो गई तो एक बड़ी कमाल की चीज हुई, लोग एग्जॉस्ट हो गए, जो रनर्स थे उनको भी आराम करना है ना, तो मेटागोंग जो टाउन है वहां पे वो रुके थोड़ा सा आराम करने के लिए, चेक पॉइंट्स पे सबके सब आराम से रेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अगले दिन की तैयारी के लिए, मसल्स वगैरह खींच रहे हैं अपने, थक चुके हैं। दूसरी तरफ क्लिफ यंग जो थे उन्हें बीच में बस भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा चलो सूप वूप पी लेते, तो उन्होंने सूप पिया मस्त एकदम। उन्हें पता ये चला कि बाकी सारे जो आगे रनर्स हैं वो तो अपना सामान पैक करके सो गए, अब वो बड़े कंफ्यूज हो गए। अब आप इस आदमी की सादगी को समझिएगा, वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि रात में सोने को मिलेगा, उन्हें ये पता ही नहीं है कि 18 घंटे भागना है, यही सिस्टम है अल्ट्रा मैराथन का, और बाकी 6 घंटे की नींद पूरी करनी है, ये उनके माइंड को पता ही नहीं, वो तो ये मान के चल रहे हैं लगातार भागना है 870 किलोमीटर और वो यही सोच के चल रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया चलो फिर एक काम करता हूं, मैं भी सो जाता हूं, तो उन्होंने 5 घंटे के हिसाब से सोचा मैं भी अलार्म लगा लेता हूं, उठ जाऊंगा। अब बेचारे ने अलार्म लगाया 5:30 बजे का सुबह का, कि उठूंगा और फिर भागूंगा, और क्लिफ आराम से सो गए। अलार्म बजा, क्लिफ उठे और फिर भागने लगे, जो आंखें मलते हुए भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और क्लिफ जो थे जब उन्होंने भागना शुरू किया तो उन्हें यह पता था कुछ देर में अभी सूरज उग जाएगा, पर वो भागते रहे, सूरज उग ही नहीं रहा, भागते जा रहे हैं, सूरज उग ही नहीं रहा, कह रहे ये क्या बात हो गई। फिर उन्होंने रुक के देखा तो बड़ी कमाल की चीज हुई, उन्होंने बेचारों ने, क्योंकि उनको दिखता ठीक से नहीं था, आंखें थोड़ी कमजोर हो गई थी उम्र की वजह से, उन्होंने अलार्म 5:30 बजे की जगह सुबह के रात के 2:30 बजे का अलार्म लगा लिया था गलती से, बड़ी ऑनेस्ट मिस्टेक। और बेचारे जब उठे तो उन्हें लगा सुबह के 5:30 हो रहे होंगे, और बेचारों ने ना घड़ी देखी ना कुछ, भागना शुरू कर दिया और भागते रहे। बहुत देर बाद उन्हें समझ में आया अरे रे रे ये मैंने क्या किया, पर भागते रहे। अब उन्होंने सोचा अब नींद तो खुली गई है, अब क्यों

घूमे, अब तो भागूंगा मैं। सामने जैसे भेड़ भाग रही है उसे पकड़ना है, वैसे ये बिना रुके चलते चले जा रहे थे। बाकी सब सो रहे थे अभी, क्योंकि सबको 6 घंटे की नींद चाहिए, और क्लिफ भाग रहे थे। फिर बाकी सब जो थे एक र्यूमर भी फैला रहे थे, एक अफवाह फैला रहे थे। लोग कह रहे थे भाई ये जो है ना वो बुजुर्ग फार्मर किसान वो सबसे आगे, सबसे आगे, और ये खबर फैलती चली गई। बाकी जो जो रनर्स थे, जो धीरे धीरे इनकी आंखें खुल रही थी, वो कह रहे थे अरे मजाक कर रहे हैं, रूमर है, ऐसी अफवाह है, ऐसे थोड़ी होता है, वो बुजुर्ग आते इतना थोड़ी भाग लेगा, पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है ऐसा। फिर कुछ देर बाद सूरज चढ़ा, किलोमीटर्स गिने जा रहे थे, हिसाब किताब हो रहा था, बाकी सब सो रहे थे, क्लिफ आ गए, जा चुके थे। मीडिया को पता लगा और मीडिया तो मतलब दीवाने हो गए, वो सबके सब देखने पहुंचे, भाई कौन है कौन है कौन है, और क्लिफ यंग की रिपोर्टिंग पूरी जगह होने लगी। 61 साल का एक हीरो भागता देखिए आज टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह उनकी बातें चल रही है और सबके सब तैयार हैं। भागते भागते रिपोर्टर ने पूछा क्लिफ क्लिफ टेल अस ये आपकी जो पैंट है ये फटी हुई क्यों है। क्लिफ ने बोला एयर कंडीशन। और भागे जा रहे। अब बाकी जो सब थे वो बेचारे जोर लगा रहे थे, क्योंकि जिनकी आंखें खुली थी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 61 साल का एक बंदा, एक किसान इतना आगे निकल चुका है। उन्हें तो ये लगा था कभी ना कभी तो ये बुजुर्ग आदमी है, एक टाइम आएगा इसकी हड्डियां जवाब दे देंगी, गिरगिरा जाएगा कहीं पे, एग्जॉस्ट तो हो गई, लेकिन हो ही नहीं रहा। ये तो अगला दिन आ गया, लोकल्स भी पहुंच गए। अब ये खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी, जिसको इंटरेस्ट भी नहीं था वो भी आ रहा था। एक ऐसे शख्स को देखने के लिए लोग पहुंच रहे थे जिसको खुद ही की लिमिट पता नहीं है, बस भागे जा रहा, भागते रहे जोश और खरोश के साथ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें शोहर रही है, मीडिया में नाम मिल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भागने से मतलब है। उन्हें सब बड़े एक्साइटेड थे, लोग अब सपोर्ट करने लगे थे उन्हें। एक लेडी रिपोर्टर ने अचानक से भाग के उनसे पूछने शुरू किया, हेलो मिस्टर यंग, और भाग रहे हैं, वो ही भाग रहे हैं, रुक नहीं रहे, आप एंड तक पहुंच जाएंगे क्या? तो क्लिफ यंग बोले यस ऑफ कोर्स, मैं मैडम पहुंच जाऊंगा, पक्की बात है, मैं यही मान रहा हूं कि आगे मेरे भीड़ है और मैं बस उसे पकड़ लूंगा, हे। और वो रिपोर्टर भी साइड हो गए, कन्फ्यूज हो गए कि यार ये कैसा आदमी है, अलग ही है ये, और वो आगे बढ़ते चले गए। मगर कुछ देर के बाद हुआ ये कि सच में बॉडी तो बॉडी होती है ना, चाहे वो किसी नौजवान की हो या किसी की भी हो, और वो बॉडी पे दिखने लगा थकावट, वो लिमिट अभी क्रॉस हो रही थी, वो एक पत्थर से टकरा के ट्रिप भी हुए, उन्हें बहुत गंदी चोट लगी, खरोंच आ गई, उठे क्लिफ और उन्हें अंदाजा हुआ शायद उनका शोल्डर जो है डिसलोकेट हो गया है, मगर फिर भी वो कंटिन्यू उन्होंने रखा, रुके नहीं, रेस्ट नहीं, हल्का सा बस रेस्ट किया और थोड़ी सी नींद ली, और बाकी सब बड़े खुश थे, रेसर जो पीछे थे उन्हें लगा अरे बाप रे सो गए ना वो, चलो अच्छी बात है, बाप रे बाप, चलो फाइनली अभी उम्र का असर दिख रहा है, ये आदमी बस होता रहे, अभी उठे ना जब तक हम ना जीत जाए। अब जो बंदा था ना साथ में, जो जिसने कहा था कि अगर मैं जीत आधे आधे करेंगे इनाम का पैसा, वो तो प्रोफेशनल है, वो पीछे था, वो उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ, और वो भागना शुरू कर रहा था, वो भी टेंशन में आ गया कि यार जिस बुजुर्ग को मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था वो वहां तक पहुंच गया। बोले रिपोर्टर ने पूछा जो आप क्या कहना चाहिए क्लिफ यंग के बारे में, तो बोले वो तो मेरे साइड में थे, वो आदमी दुनिया को धोखा दे रहा है, वो तो लिटरली घोड़े की तरह भाग, मुझे लगा ये बेचारा है तो, और सब मुंह देख रहे थे कि एक प्रोफेशनल रनर जो है वो इतना बेचारा साउंड कर रहा है। और फिर जो ने एक बात बोली, बोले बहुत जोर लगा चुके वो थक जाएंगे बेचारे, उनका ख्याल रखिए, ये सब चीजों में ट्रेनिंग लगती है। दूसरी तरफ क्लिफ यंग जो थे उन्होंने सुना कि जो है वो आ रहा है उनके पीछे पीछे, वही उनका साथी जिसके सामने प्राइज मनी शेयर करना है। क्लिफ की बॉडी एग्जॉस्ट हो रही थी, सच में वो थक रहे थे, उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी थी अपनी बॉडी की, जॉइंट्स में दर्द हो रहा था, गम्स दर्द कर रहे थे। एक पॉइंट पे आके पता क्लिफ ने क्या किया, उनके दांत असली नहीं थे तो उन्होंने दांतों को निकाल के फेंक दिया ऐसे सड़क पे,

0: वाले मुझे नहीं चाहिए, वो जो दांत आपस में टकराते हैं कट कट कट कट कट कट, तो वो दिक्कत हो रही है मुझे, तो उन्होंने नकली दांत ही निकाल दिए अपने, बोले ये नहीं चाहिए मुझे। अब वो जानते थे कि लोग अभी करीब आ रहे हैं पीछे से भागते हुए और वो हारने वाले हैं। फिर क्लिफ ने आगे की तरफ देखा और उन्होंने कहा ये तो कुछ फिनिश लाइन जैसी लग रही है, क्या फिनिश लाइन आ गई है? और उन्हें अंदाजे नहीं हो कब से भाग रहे हैं, कब से भाग रहे हैं। He pushed himself, और जोर लगाके भाग रहे थे, जबकि हड्डियां जवाब दे चुके हैं। हमने देखा काफी, अगर आप चलेंगे तो आपको महसूस नहीं होता कि पैर कुछ कई जगह सुन पड़ जाते हैं, वो वाला हाल हो रहा था। लोग तालियां बजा रहे हैं, क्लिफ ये क्लिफ गो क्लिफ गो, एंड वो ने लग रहा है पीछे से जो भी आ रहा है, वो जिसके साइड वो खड़े हुए थे रेसिंग लाइन पे, वो बड़े टेंशन में आ गए, लेकिन भागते रहे भागते रहे भागते रहे, एंड ही डिड इट, फाइनली ही एक्चुअली वन, वो जीत गए। लोगों के लिए क्लिफ यंग की जीत ऐसी थी कि जैसे क्लिफ नहीं जीते हैं हम जीते हैं, ह्यूज विन। उन्होंने पीछे देखा भी नहीं, पर जब मुड़ के देखा तो कोई पीछे नहीं आ रहा था, उनका दिमाग इतना ज्यादा थक चुका था कि ही स्टार्टेड हलूसिनेटिंग फिनिश लाइन के पास कि कोई ना कोई तो पीछे है। तो क्लिफ यंग ने और जोर लगाया भागने का, और जानते हैं क्लिफ यंग ने तो ये रेस खत्म करी, वो जीत गए। सेकंड आने वाला कितना दूर था इनसे, जिनको लोग बुजुर्ग कह रहे थे, सेकंड आने वाला बंदा था जॉर्ज पेरदोन नाम का, ये आदमी 10 घंटे पीछे था, 10 घंटे बाद आया वो। उसके बाद जो बंदा था जिगी वो थर्ड आया, और फिर जो का नंबर आया जो साथ में था क्लिफ यंग के, शुरुआत जिसने करी थी। क्लिफ यंग ने जीत हासिल करी जानते हैं कितने टाइम में, 5 दिन 15 घंटे 4 मिनट, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2 दिन से हराया उन्होंने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को, तोड़ा 2 दिन से तोड़ा ये, थिंकेबल। उन्होंने सबको हरा दिया जो अपने आप को मास्टर समझ रहे थे, सबको हरा दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हाँ भाई वो $10,000 क्या हुए जो शेयर करने थे, ये भी सुन लीजिए। $10,000 जो है जीतने के बाद क्लिफ यंग को मिले, और उन्होंने उस कैश का वही किया जो सिर्फ और सिर्फ क्लिफ यंग जैसा बंदा ही कर सकता है। उन्होंने जो चेक मिला था उसे कैश आउट कराया, और उसके बाद हर एक भागने वाले को कैश देना शुरू किया, बांट दिया सब कुछ, $2,000 सबके हिस्से में आए। और जब जो पहुंचा जो ने बोला भाई हमारा वादा था कि आधा आधा होगा, ये क्या बात हुई? तो क्लिफ ने बोला हाँ मुझे याद है, सॉरी मैंने ज्यादा उड़ा दिए, मेरे पास $3,000 बचे तू रख ले। और वो जो बचे कुचे $3,000 थे वो भी जो को उन्होंने दे दिए। ही गेव अवे एवरीथिंग, क्योंकि उन्हें पहली बात तो पता ही नहीं था कि प्राइज मनी मिल, वो तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने निकले थे कि दुनिया कह रही है तुम तो बुजुर्गों को कुछ कर नहीं सकते, तो लोगों को गलत साबित करने के लिए ही डिड इट, नॉट फॉर द प्राइज मनी। और कहानियां खत्म नहीं होती, उनके जो भागने का तरीका था ना 1983 में जिस तरीके से वो भागे और फेमस हुए, तो उनकी टेक्निक भी फेमस हुई, और टेक्निक का नाम है यंग शफल, उनके लास्ट नेम पे, क्योंकि क्लिफ यंग उनका नाम है, यंग शफल के नाम से शफलिंग टेक्निक अल्ट्रा मैराथन में अब फेमस है, दुनिया भर में ये फॉलो किया जाता है, दुनिया भर में माइंड यू। लूज शफल उनके भागने का तरीका, और ये बहुत शानदार टेक्निक है भाई, तो रनिंग में मदद मिलती है, मैराथन में रेसिंग में। बट क्लिफ यंग, क्लिफ यंग मैं फैन हो गया इस बंदे का भाई, लिटरली पढ़ने के बाद मैं फैन बॉय हो गया। सो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एज यू आर, यू डोंट नो, आपके अगर दिमाग को लिमिट नहीं पता ना, अगर दिमाग में मीटर नहीं लगा हुआ ना कि यहां तक ही जा सकूं मैं, तो आपका माइंड यहीं तक भी ले जाएगा आपको। तो अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं ना, इफ योर माइंड इज लिमिटेड टू समथिंग, देन यू विल स्टॉप एट इट, या उससे कम में। जैसे हम जब बार्गेनिंग करने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई कम से कम जो है 200 तो बोलो, तब जाके तो वो रेट का जो हम लिमिट देते हैं ना, वैसे ही क्लिफ यंग ने कोई दिमाग को लिमिट ही नहीं दी, उन्होंने कहा मैं तो जीत के आऊंगा, बात खत्म हो गई। और क्लिफ यंग ने ये करके दिखाया। अब ये स्टोरी आपके वाले, 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। आई होप यू लाइक इट, बिकॉज आई पर्सनली लव द स्टोरी, एंड बताइएगा आपको कैसी लगी, प्लीज 666-22-107 पर स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज हाइलाइट्स।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, वजारत दाखला ने अवाम को तंबीह की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए तैयार की गई गलत या गुमराह कुन मालूमात से बचने के लिए डिजिटल हिफाजत के उसूलों पर अमल करना नहायत जरूरी है। इदारे के मुताबिक इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें, वीडियोस और पैगामात सामने आ सकते हैं जो देखने में बिल्कुल हकीकी लगते हैं, लेकिन असल में AI की मदद से तैयार किए गए होते हैं। इसलिए किसी भी मालूमात को शेयर करने से पहले उसके ज़राए और असलियत की तस्दीक करनी चाहिए। इस हवाले से एक मिसाल जा सकती है। फर्ज करें कि किसी शख्स को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिलती है जिसमें किसी मशहूर शख्सियत से मंसूब एक अहम बयान नजर आता है। वीडियो देखकर वो फौरन इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर देता है। बाद में मालूम होता है कि ये वीडियो AI के जरिए तैयार की गई थी और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इस तरह गलत मालूमात चंद मिनटों में ही हजारों अफराद तक पहुंच जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जोर देकर कहा है कि आवाम हमेशा मुअतबर और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही मालूमात हासिल करें और किसी भी कंटेंट पर अंधा एतमाद ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज ऑन उर्दू रेडियो FM 107। दिल से देसी।
4: चलो जरा कहानी की तरफ बढ़ जाते हैं। आज की कहानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड हो सकता है कि आप इस कहानी को सुन के बोलें कि मैं समझ नहीं पाया। मैं ऑलरेडी अज्यूम कर रहा हूँ ये, तो मैं तैयार हूँ आज के ऐसे फीडबैक्स के लिए जहाँ पे लोग मुझसे बोलेंगे समझ नहीं आई कमीर भाई, तो मैं रेडी हूँ। बट फिर भी अगर आप कोशिश करके सुने और आपको अच्छी लगे तो मुझे बता दीजिएगा हाँ समझ में आई, मज़ा भी आया। ओके, तो मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ता हूँ। इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किसी एजेंडे प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हूँ ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है और आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इट इज़ गोइंग टू बी अ मिस्टीरियस स्टोरी। तो साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाइएगा, देखते हैं कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। रेडी, वॉल्यूम बढ़ा ली जाए। तो मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं साल 2000 में। अक्टूबर 27th दोपहर का वक्त था, 27 अक्टूबर 2000, और इस वक्त एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एक सेक्रेटरी अपने डेस्क पर बैठी हुई थी और काम कर रही थी। ये जगह थी ताइवान, ताइवान। और करते करते अचानक से उनके डेस्क का जो फोन था वो बजा, और काम करते करते मतलब ध्यान भी नहीं दिया, रिसीवर पे हाथ गया, उन्होंने रिसीवर उठाया और कान पे लगाया, और जैसे ही उन्होंने रिसीवर कान पे लगाया एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पता नहीं ऐसे क्या हुआ, वो सेक्रेटरी एकदम से फ्रीज हो गई कि अरे ये क्या है। होता ना कई मरतबा आप फोन उठाते हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है और आपको उम्मीद होती है सामने वाला बोलेगा हेलो आप बात कर लेंगे, मगर यहां पे क्या हुआ, सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाया, कानों पे लगाया और सीधे चीखने चिल्लाने की आवाज है। सेक्रेटरी ने अपने काम को छोड़ा और फिर एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई कि हो क्या रहा है। उससे पहले लगा हो सकता है कोई प्रैंक कर रहा हो, कंपनी में लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक करते हैं, या हो सकता है रॉन्ग नंबर हो। फिर उधर से चीखना चिल्लाना बंद होने के बाद एक औरत की आवाज आई और उसकी आवाज से पता लग रहा था कि ये कोई बुजुर्ग हैं और उन्हें शायद किसी किस्म की हेल्प चाहिए। और फिर जब उन्होंने बात करना शुरू करी तो पहले तो मफल्ड आवाज थी, समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी ने फिर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करी और उसने बोला कि मैम ठीक से बताइए, शुरू से बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं। और फिर उस बुजुर्ग औरत ने जब बताना शुरू किया और जो बताया ये सेक्रेटरी अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो गई। क्योंकि उस लेडी ने फोन पर सेक्रेटरी से कहा कि मेरा बेटा तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता है और ध्यान से सुनो, उसका तुम्हारी ही कंपनी के एक दूसरे एम्प्लॉय से झगड़ा हो गया था, वो इतना बढ़ गया ना कि मेरे पोते ने डिसाइड किया कि वो उसे किडनैप कर लेगा, लेकिन गलती से उसने किसी और को किडनैप कर लिया है, कन्फ्यूजन में किसी और को उठा लिया है उसने। एंड ये जब सेक्रेटरी ने सुना तो बहुत बिजार लगा। यू नो, आप खुद सोच के देखिए, आप कोई बोले कि भाई तुम्हारी कंपनी में ऐसा ऐसा है और गलती से कोई किडनैप करे, वो उसके होश उड़ गए, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि ये आंटी जी क्या कह रही हैं। और इस बुजुर्ग औरत ने जो जो बताया बड़ा अजीब था। मतलब वो कहना चाह रही कि उनका पोता भी इसी कंपनी में काम करता है जिसमें सेक्रेटरी काम करती है, उसने किसी से झगड़ा मोल ले लिया कंपनी के अंदर ही और फिर प्लानिंग की इसको छोड़ूंगा नहीं और गलत किडनैपिंग हो गई, गलती से कंपनी के किसी और इंसान को उसने उठवा लिया गलती से, और बोला कि मेरे पोते ने उसको जिसको गलती से उठवा लिया है उसे पौंड के एरिया में लेके गया, हॉस्टेज बना रखा है। एंड दिस वाज इनसेन, आउट ऑफ द बॉक्स। ये उस सेक्रेटरी की दूसरी या तीसरी कॉल थी एंड वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या समझूं मैं इसे। पहले उसे लगा कि शायद ये जो औरत फोन पर है किसी मेंटल इलनेस की शिकार है, शायद बीमार है बेचारी। और फिर स्प्लिट सेकंड में उसे कुछ ख्याल आया, सेक्रेटरी को कुछ चीज ध्यान में आई, वो ये कि फोन आने से पहले कंपनी के जो डिप्यूटी मैनेजर साहब हैं वो आज काम पे आए नहीं है। ये बड़ा ऑड था क्योंकि वो हमेशा काम पे आते थे और दोपहर तक ना आना बहुत लेट है उनके लिए। और सेक्रेटरी को ये भी याद आया कि डेप्यूटी मैनेजर के जो बॉस हैं उन्होंने भी कॉल करने की कोशिश करी थी उन्हें,

अब जाहिर सी बात है सेक्रेटरी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे किसको बताए, बट देन शी डिसाइडेड यू नो व्हाट मुझे कॉल करनी नहीं चाहिए, और उन्होंने जो पुलिस डिपार्टमेंट था ताइवान का उस पॉइंट पे उनको बता दिया। फिर एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम था जॉन ग्यू वो उसी एरिया में पहुंचे, उस पॉन्ड एरिया में जिसके बारे में उस बुजुर्ग लेडी ने बताया था। अब वहां पहुंचे और ये था बिल्कुल आउटस्कर्ट्स एरिया, मतलब मेन शहर से दूर। वहां पे पहुंच के उसने अपनी टीम को भी बुलाया, फॉरेंसिक टीम वाले थे, सर्च ऑपरेशन करने वाले लोग थे, सबके सब सुराग ढूंढ रहे थे, कहीं से कोई तो दिखेगा, क्योंकि बताया गया है कि भाई यहीं पर किसी को बंदी बनाया गया है, हॉस्टल बनाया गया है, किधर है, कोई नहीं दिख रहा। क्योंकि ऑफिसर को जो टिप मिली है चंद घंटों पहले वो तो ये मिली है कि कुछ किडनैपर थे, उन्होंने गलती से किसी को उठा लिया और यहां ले आए, अब तो अभी यहां कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मगर फिर सर्च करते करते करते करते पॉन्ड का जो एरिया था वहां पे पानी में फ्लोट होता हुआ एक बड़ा सा कैनवस बैग नजर आया जो फ्लोट हो रहा था, और सारे के सारे उस तरफ भागे, पूरी फोरेंसिक टीम वाले और ऑफिसर जॉन ग्यू वो उस तरफ भागे, उन्होंने उस बैग को निकाला पानी से, बहुत भारी था, उसे अनजिप किया, और जैसे ही अनजिप किया उन्होंने अंदर थी बॉडी चन रंग चुंग की। चन रंग डेप्यूटी मैनेजर जिनको लेके सेक्रेटरी को डाउट था शायद इन्हीं को गलती से उठा लिया गया है। जो ऑफिसर इस केस को हैंडल कर रहे थे उन्होंने इस बॉडी को देखा और वो इसको देख के ये नहीं सोच रहे थे कि ओ मैंने सॉल्व कर दिया केस, ये बॉडी मिलने से ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। क्योंकि पहली बात, शुरुआत में जो कॉल आई उन आंटी की वो कॉल ही अपने आप में अजीब है, वो तो कह रही है कि गलती से किसी को उठवा लिया गया है, और उस दादी के हिसाब से उनके पोते ने गलत आदमी को उठा लिया, फिर रिलीज ना करके मार क्यों दिया, इसका कोई तुक नहीं बनता, सेंस नहीं बन रहा, क्यों ऐसा किसी ने किया। और ऑफिसर जो थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे, वो सोच रहे थे कि यार कोई सनकी होगा, हो सकता है कि पैनिक में आके जब डेप्यूटी मैनेजर को किसी ने उठवा लिया तो पैनिक में ही आके उसने अपनी दादी को बता दिया, और पैनिक में ही आकर उसने गलत बंदा उठा लिया है इस बात के एहसास से उसको मार दिया, शायद पैनिक में सब कुछ हो गया, या फिर ये पूरी की पूरी कहानी एक कवर स्टोरी तो नहीं है, कहीं वो दादी का कॉल आना वो महज एक कहानी तो नहीं है, कहीं सच में डिप्टी मैनेजर चंग रंग यही टारगेट तो नहीं थे, और उसके पीछे ये दादी की इलेबोरेटेड कहानी बनाई गई हो। तो ऑफिसर की नजर में या तो ये कोई नौसिखिया है जिसने इस डेप्यूटी मैनेजर की जान ली है, या कोई बेहद शातिर इंसान है। जब वो सोच ही रहे थे और पॉन्ड के पास सब थे तो उन्होंने देखा कि एक खातून थी वो भागती हुई आई पॉन्ड की तरफ और रो रही थी पूरी तरीके से, और वो जब भागती हुई रही थी पूरी फ्लड लाइट्स उन पर पड़ रही थी, वो आई और इस बॉडी के पास आई और बहुत बुरी तरह रो रही थी, और इनफैक्ट शी कोलैप्स्ड, वहाँ पे बेहोश हो गई, उनके वाइटल्स चेक किए गए और उन्हें जो होश में आए उनको इलाज पानी पिलाया गया, और उनसे पूछा गया कि मैडम आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं जोंग इओन हूँ, और वो फियांसी थी डिप्टी मैनेजर की, उन्होंने बताया कि ऑफिसर हमारी 10 दिन बाद शादी होने वाली थी, एंड ऑफिसर साहब जो है वो पूछ रहे थे, इनफैक्ट समझने की कोशिश कर रहे थे सबसे पहले तो कि क्या हो क्या रहा है, और उस औरत ने पूछा ऑफिसर प्लीज बताइए, वो बैक टू बैक सवाल पूछने, ऑफिसर प्लीज किसने किया बताइए, बोलते क्यों नहीं, और फिर ऑफिसर क्या बताए उसको, एक अजीब सी कहानी बताई गई और उसने वही कहानी वो दादी वाली कहानी बता दी, और वो औरत बोल रही ऑफिसर कैसी बातें कर रही हैं अभी, ये आपको अजीब बात नहीं लग रही। फिर ऑफिसर ने बोला कि आपको कोई कॉल वॉल आई रैंसम के लिए, ऐसे केसेस में होता है ना कि फिरौती मांगते हैं या रैंसम मांगते हैं, पर वो बोली नहीं हमें तो कोई कॉल नहीं आई, और मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये गलती से किसी अब इनको उठाया गया था। फिर ऑफिसर ने इस औरत से पूछा जिनसे 10 दिन बाद डेप्यूटी मैनेजर की शादी होने वाली थी, पूछा कि

आप पिछली मरतबा उन्हें कब देखा था? तो उन्होंने बताया कि दो दिन पहले देखा था, एक होटल सूट हमने बुक किया था शादी की तैयारी के लिए। फिर ऑफिसर साहब ने पूछा क्या कोई दुश्मनी ऐसा लगता है किसी से थी, तो उन्होंने बोला नहीं, आई डोंट थिंक सो, काफ़ी काफ़ी शांत रहते थे चंगरंग, तो बहुत ज़्यादा शांत रहते थे, बस काम पे ध्यान देते थे, पहले किया करते थे, पैसे वैसे लगाया करते थे, गैम्बलिंग करते थे, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया था उन्होंने, अभी इन पर कोई कर्जा नहीं है। अब ऑफिसर सोच रहे थे ओके, यानी ये पैसे लगाता था, उड़ाता भी था, तो कहीं ना कहीं इसने शायद गैम्बल किया और इस पर कर्जा चढ़ गया, और शायद इसने जिससे शादी कर रहा है उसे बताया नहीं, एंड ही मूव्ड ऑन। ये पॉइंटर्स बनाने के बाद अगले दिन ऑफिसर साहब जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जहां पे ये सब कुछ हो रहा था वहां पर पहुंचे, और डिप्यूटी मैनेजर चन उनके डेस्क के पास पहुंचे और ढूंढ रहे थे हो सकता है कुछ मिल जाए। उन्होंने ऊपर की जो ड्रॉर थी वो खोली और पेपरों को खंगालने लगे, काश कुछ मिल जाए, इसमें कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। और ऑफिसर सोच रहे थे कि यार ये किडनैपिंग तो नहीं, ये कुछ और ही बात है, कुछ तो अलग है। और वो जो ओल्ड लेडी जिसने कॉल करी थी, वो दादी, उसकी कॉल भी ट्रेस नहीं कर पाए पुलिस वाले, एंड दे हैड नो आइडिया कि वो कौन थी, किधर से थी, नो आइडिया, क्योंकि उन्होंने तो पूरी बात बताई भी नहीं। अब ऑफिसर सोच रहे थे ये कहानी का सेंस बन नहीं रहा, क्या कैसे सॉल्व किया जाए इसको। कंपनी में सबकी तफ्तीश, सबके बारे में एक एक जानकारी ली गई, जो लोग ऑफिस उस दिन आए थे, जो नहीं आए थे, सबके सब निर्दोष पाए गए, जो नहीं आए थे वो कहां पर थे वो भी वेरीफाई कर लिया गया, तो सबके सब क्लीन निकले। अब ऑफिसर श्योर था कि दादी ने बोला था मेरा पोता कंपनी में है और उसने गलती से किसी को उठवा लिया है, तो डेफिनेटली कोई पोता तो कहानी में नहीं है, एटलीस्ट कंपनी के अंदर तो कोई भी नहीं है। अब तो पक्का उन्हें लग रहा था ये कॉल स्टेज्ड है, ये कोई दादी वादी नहीं थी। फिर ऑफिसर साहब वो अटके इसी बात पे कि पक्का ये डेप्यूटी मैनेजर चन, इसने पैसे लगाए होंगे और ये हार गया होगा, बस सबूत मिल जाए बस। और ये सोचते सोचते जो है उन्होंने जो नीचे की ड्रॉर थी वो खोली, और अब कहानी और कॉम्प्लेक्स होगी, अगर अभी तक यहां पे लग रहा है कॉम्प्लेक्स नहीं हुई तो और कॉम्प्लेक्स होने वाली है। उन्होंने नीचे की ड्रॉर खोली और वहां पे एक कागज मिला, हैंड रिटन था, प्रिंटेड नहीं था, हैंड रिटन था, और उसे निकाला, उस कागज को जो मुड़ा हुआ था उसे खोला, डेस्क पे रखा, और क्लियरली दिख रहा था कि डिप्टी मैनेजर ने ये अपने लिए ही एक रिमाइंडर के तौर पे कागज पे लिखा था, अपने आप को याद दिलाने के लिए कि कितना हिसाब देना है, कितना अमाउंट जो है, कितना कर्जा है और किसको देना है। तो किसको देना है वहां पे एक नाम लिखा हुआ था, शीर नॉन फोंग, लेट्स कॉल हिम शीर। तो शीर नाम के बंदे पे डिप्टी मैनेजर का कर्जा है, ये कागज पे लिखा हुआ था। ऑफिसर ने बोला यस, अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया किसने क्या किया। और ऑफिसर ने ढूंढ निकाला शिर नॉन फोंग नाम के बंदे को, शिर को ढूंढ निकाला और इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठा दिया, लग रहा था केस हो गया सॉल्व। और साथ साथ ऑफिसर्स ने बैकग्राउंड में जो कह रही थी कि 10 दिन बाद शादी होने वाली है, उनसे भी बातचीत कर ली थी चीजें वेरीफाई करके, वो फिर बैठे हुए थे। अब उन्होंने सामने शिर बैठा हुआ है, इन्होंने वो कागज निकाला और बोले हाँ भाई खुद बताओगे सब, या फिर हम सब कुछ निकालें तुम्हारे अंदर से। तो बोला ऑफिसर किस बारे में बात कर रहे हो? तो बोला अरे तुम नहीं जानते चंद्रन को, डिप्यूटी मैनेजर को, हाँ इतना कर्जा था उसका तुम्हारे ऊपर उसका। बोला क्या बातें कर रहे हो? उसने फिर वो नोट निकाला, वो कागज जो थोड़ा पुराना हो चुका था, और सामने रख दिया। और वो देखने लगा कागज को शेर, तो बोला हाँ ऑफिसर क्या करना है इसका? तो बोला क्या करना है मतलब? और ऑफिसर लगातार उसकी नजरों को देख रहे थे कि आप शायद ही नर्वस होगा, मैं इसे पकड़ लूंगा, पर वो तो कंफ्यूज था। और उसने बोला इवेंचुअली मैं किसी चंद्रंग को नहीं जानता, कौन डिप्टी मैनेजर, ऑफिसर किसकी बातें कर रहे हैं आप, मुझे नहीं पता कौन है ये। तो ऑफिसर ने बोला है क्या कह रहा है ये, यार तुम झूठ बोल रहे हो ना? बोला ऑफिसर मैं नहीं जानता। और फिर उसके फोन रिकॉर्ड्स देखे, सारे बैंक स्टेटमेंट्स देखे, और सच में वो नहीं जानता था, नहीं जानता वो डिप्टी मैनेजर को।
ऑफिसर को लगा हो सकता है हमने गलत शीर नॉन फोंग को पकड़ लिया, कोई और होगा। ऑफिसर रात में अपना सर पकड़े बैठे हुए थे अपने डेस्क पे, घर भी नहीं जा रहे थे, और जो वो कागज़ था उसे लेके हाथ में घुमा रहे थे, सोच रहे थे यार इसकी फियांसे कह रही है कि ये पहले की बात है, कागज़ जो है वो नया सा लग रहा है, कौन क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी पजलिंग सिचुएशन थी, कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं बन रहा था। और फिर ये ऑफिसर देर रात इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में गए और उन्होंने बाकी तफ्तीश बाकी तलाशबीन शुरू कर दी, और उन्होंने कहा मैं और कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूं, सारे कागज ढूंढे, वापस ढूंढे। फिर उनकी नजर एक कागज पे जाके रुकी और उन्होंने अपनी जेब से ये वाला नोट जिसपे शेर का नाम था और एक और नोट निकाला और दोनों को सामने रखा। राइटिंग दोनों अलग अलग थी। वो भागे हॉल में अपने सुपरवाइजर के पास, बोले मुझे अभी के अभी सबकी हैंडराइटिंग चाहिए, जो जो डिप्टी मैनेजर के ऑफिस में एंटर कर सकता है सबकी हैंडराइटिंग मुझे चाहिए। और कुछ दिन बाद ऑफिसर जॉन को पता चल गया कि वो राइटिंग किसकी है, किसने वो नोट जो है वो धोखा देने के लिए हो सकता है डिप्टी मैनेजर के ऑफिस में रखा था। मगर फिर केस सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि जिसकी वो राइटिंग थी वो जो महिला थी उनका नाम था लाओ, लाओ नाम था उनका, और जीरो सेंस बनता है कि उनका कोई भी कनेक्शन हो इससे। एक रैंडम औरत, वो औरत जिसकी शादी हो चुकी है, उसका पति पुलिस ऑफिसर है, उसका क्या लेना देना इस केस से, वो रहती भी तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है, उसकी राइटिंग डिप्टी मैनेजर के ऑफिस में क्या कर रही है, इट्स नॉट एडिंग अप। अब ऑफिसर साहब थोड़ा पास्ट में जाने लगे, खंगालने लगे, कुछ तो मिलेगा। उन्होंने ये जो लेडी लो थी इसको लाओ, इसको बुलाया कि भाई तुम आओ। और जब वो ऑफिस में बैठी और उसने जो कहानी बताई वो सुनने के बाद ऑफिसर ने अपना सर पकड़ लिया, बिकॉज ही कुड नॉट बिलीव। तो ये औरत लाओ इसे ऑफिस में बुलाया गया पुलिस स्टेशन, और फिर इसने बताया कि उसका डिप्टी मैनेजर से 8 साल पुराना रिश्ता था, वो लोग एक यूथ कॉर्प्स नाम की कंपनी में मिले थे, और उसने बताया कि 8 साल पहले से उनकी मोहब्बत जारी है। और ऑफिसर कह रहे थे हाँ और बताइए मैडम आगे। तो ऑफिसर सोच रहा था कि ये तो डिप्टी मैनेजर डबल लाइफ जी रहा है, लेकिन यहां तो ये औरत डबल लाइफ जी रही है। और फिर इस औरत ने बताया कि लाओ जो बंदी है उसकी शादी हो चुकी थी और उसे ये राह रखना था, तो इसलिए उसने एक नकली नाम यूज करके बात करना शुरू कर दी डिप्टी मैनेजर से। यहां तक क्लियर है? और वो चंद से दूर भागना चाहती थी डिप्टी मैनेजर से, लेकिन दूर नहीं भाग पा रही थी। उसे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ बोला, मैं बाहर पढ़ने के लिए जा रही हूं, लेकिन चंद नहीं माना। फिर इन्होंने एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला, ये लाओ नाम की बंदी, इसने बोला कि मैं इंटरनेशनल स्पाई हूं, और ये बिल्कुल अजीब सी बात पे डिप्टी मैनेजर ने भरोसा कर लिया क्योंकि वो प्यार में थे अंधे। और अब झूठों का क्योंकि पूरा पहाड़ पूरा टीला खड़ा हो चुका था, तो क्या करें इससे बचने के लिए, इसको और बड़ा कर दिया। लाओ ने वादा कर लिया डिप्टी मैनेजर से कि मैं तुमसे शादी करूंगी। वो बड़ा खुश था, शादी होने वाली थी, लेकिन 8 साल से अपना सच्चा नाम बताया ही नहीं था, क्योंकि जो नाम डिप्टी मैनेजर को पता था वो था जोंग येन, वही औरत जो भागती हुई आई थी पॉन्ड के पास, जो कह रही थी मेरी 10 दिन बाद शादी होने जा रही है, वो एक्चुअली में डबल लाइफ जी रही थी, यही आई थी बताने के लिए भागकर। और क्योंकि अब 10 दिन बचे थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो शादी करती तो उसे अपना लीगल नाम देना पड़ता तो सारा राज खुल जाता, 8 साल का इतना बड़ा राज धरा का धरा रह जाता। तो उसने कहा भाई अब तो इसको खत्म ही करना पड़ेगा। कवर करने के लिए उसने सबसे पहले तो इस दुनिया से डिलीट किया डिप्टी मैनेजर साहब को, फिर खुद ही बुजुर्ग की आवाज निकाली और एक और झूठ, एक और आइडेंटिटी क्रिएट करी, और फिर कहानी बनाई कि मेरा जो पोता है उसने गलती से किसी को किडनैप कर लिया है,
और फिर इस झूठ को और मल्टीप्लाई करने के लिए एक नोट जो था वो नोट छुपाया ड्रॉर में खुद ही की राइटिंग में, और इतना सब कुछ करने के बाद वो चली गई वापस 60-70 किलोमीटर दूर सुकून से रहने के लिए। मगर फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद भी वो पकड़ी गई एंड लिटरली सजा हुई। मिसेस लाओ या फिर जोंग ग्यू, दो तीन नाम है इनके, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एंड दिस स्टोरी मैन, क्या बताऊं, ये कहानी इट जस्ट टेल्स यू कि कुछ लोग बहुत अकलमंद होते हैं बट जस्ट इन द रॉन्ग वे। अब आप सोच रहे इन्होंने इस औरत ने कितना दिमाग लगाया हो, कितना दिमाग लगाया अपना, क्या क्या नहीं किया। यू कांट से कि इंटेलिजेंट नहीं है, शी इज जस्ट इंटेलिजेंट इन अ रॉन्ग वे। एंड अपेरेंटली इस पे एक सीरीज तैयार की जा रही है, उस शायद बाइलिंगुअल में है, वो दो लैंग्वेजेस में लॉन्च होगी। तो जब वो लॉन्च होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट फिलहाल ये किस्सा अगर आपको समझ में आ गया तो मजा आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिएगा। आई कैन अंडरस्टैंड शायद पहली बार में ना समझ में आया हो, बट इफ यू गॉट दिस स्टोरी एंड यू गॉट एवरीथिंग इन इट तो मुझे जरूर बताइएगा। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। मुझे सच में इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का, बिकॉज ये कहानी ऐसी है ना, मेरा सर घूम गया भाई, मैं सही बता रहा हूँ। इट इज सो कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये क्रिस्टोफर नोलन टाइप की कहानी है, ये कहाँ से कौन किधर आ रहा है भाई। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो इवन इफ यू डिडंट गॉट इट इन द फर्स्ट गो, इसे इस कहानी को मौका दीजिएगा, मैं खुद कह रहा हूँ इस कहानी को एक मौका जरूर दीजिएगा, एंड फिर यू विल बी लाइक हाँ यार कबीर सही कह रहा था, ठीक है ये। तो ओके, और कुछ नहीं बोलूंगा भाई। ठीक है, इस गाने के बाद मिलते हैं भाई, मेरा तो सर घुमा दिया इस कहानी ने। God damn man, कहानी

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज का मौजू ऐसा है जिस पर लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन ये मसला बहुत आम है और वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज. कॉन्स्टिपेशन को अक्सर अफराद सिर्फ ये समझते हैं कि कई दिन तक टॉयलेट ना जाने को ही हम कब्ज कहते हैं, लेकिन हकीकत में बॉयल हैबिट्स जो हैं वो हर शख्स की मुख्तलिफ हो सकती हैं. उसमें पाखाना सख्त हो जाना, टॉयलेट जाने में मुश्किल होना, कुछ जोर लगाना या महसूस होना कि जो आपके बाउल है वो मुकम्मल तौर पर एम्प्टी नहीं हुई, खाली नहीं हुई, ये तमाम जो मसले हैं वो शामिल हो सकते हैं. इसी तरह जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, मसलन हमारी खुराक में फाइबर का कम होना, पानी कम पीना, फिजिकल एक्टिविटी कम करना, टॉयलेट की हाजत को बार बार रोक देना, रूटीन में तब्दीली होना जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या स्ट्रेस है, और बास मेडिसिंस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. अब सवाल ये है कि कब्ज से या कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हमें अपनी खुराक को देखना है. हमारी ग़िज़ा में फाइबर की मुनासिब मकदार ज़रूरी है. उसमें फल, सब्जियाँ, दालें, होल ग्रेन्स, बीन्स और दूसरे हाई फाइबर फूड्स हैं वो इस सिलसिले में मददगार साबित हो सकते हैं. लेकिन अगर कोई शख्स अचानक बहुत ज़्यादा फाइबर खाना शुरू कर दे और उसके साथ वो जो पानी है कम पिए या जो फ्लूड्स हैं वो मुनासिब ना ले, तो बाज़ औक़ात ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट हो सकती है. इसलिए फाइबर को आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादा

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। काश मैं ऐसे अनाउंस कर पाता ऐसे कुछ, बट एनीवे यू गेट द पॉइंट। जब भी मैं आऊंगा तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे बता के जाऊंगा जो आप या तो सोचने में मजबूर हो जाएंगे या फिर अभी टाइप करके देख लेंगे ये क्या कह रहा है। तो आज भी मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, कुछ AI की वेबसाइट्स होंगी, कुछ नॉर्मल होंगी, मगर ये आपके काम जरूर आएंगे। और आपके काम को चीज आ रही है तो नॉलेज तो भाई साहब बांटने से बढ़ती है। आप भेजिए मारे धुरे। ये जो सोशल मीडिया हमने किस लिए बनाया, आप आइए बात कीजिए FM 107 Qatar। अब जब ये बढ़ते हैं पहली वेबसाइट की तरफ, ये जो वेबसाइट है ये बहुतों के काम आने वाली है। इसका नाम है scholarships.com, scholarships, scholarships, scholarships.com। इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम नजर आएंगे। आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, आप वेबसाइट के नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। तो दुनिया जा के इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग पढ़ाई के लिए आपको दे रहे हैं स्कॉलरशिप, उन सबके नाम आपको नजर आ जाएंगे। तो आप लिटरली डिग्री वाइज, जगह वाइज हर तरीके से ढूंढ सकते हैं और किसी की मदद कर सकते हैं। लिटरली बहुत सारे लोग हैं जो तलाश करते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से जो है मेरे को पता लग जाए कि भाई ये स्कॉलरशिप किधर चल रही है। तो ये जो फायदा है आप इससे उठा सकते हैं। और आपके घर में अगर कोई टीनेजर है और आप सोच रहे हैं भाई स्कॉलरशिप की तरह देखा जाए, कहीं बाहर विदेश में पढ़ाई कराई जाए, तो इसका भी एक तरीका है। ये वेबसाइट बहुतों के काम आएगी। स्प्रेड इट एज मच एज यू कैन, scholarships.com। इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस की, सो यू कैन जस्ट गिव देम अ कॉल एंड आस्क मी सर आपका ये वेबसाइट में देखा है ये सही है, तो आपको बता दे क्यों, बिकॉज ये बहुत ही लेजिट वेबसाइट है। ठीक है, आगे बढ़े। ऑलराइट, अगली जो वेबसाइट है इसका नाम है swishy.ai। मैं पहले बताऊं, swishy.ai, swishy.ai। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली नाम क्या है, AI लगा हुआ है, तो इसमें AI मोशन डिजाइन्स आपको मिलेंगे। इसमें 100 से ज्यादा टेम्पलेट्स हैं, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए यूज करना चाहते हैं या यू जस्ट वांट टू यूज इट, एवं खामखा यूज करना पड़ेगा तो कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इन तमाम चीजों को ऐसे का ऐसे ही यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसमें अगर अपने जुगाड़ से अपने दिमाग से कुछ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये AI बहुत बढ़िया काम करता है। एंड आई एम टेलिंग यू, जो मोशन डिजाइन है ये सस्ते वाले डिजाइन नहीं लगते, लिटरली लगते हैं कि भाई इसमें मेहनत की गई है। एंड ये आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे यूज करें, आप इसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं या एनीथिंग दैट यू आर यूजिंग टू प्रेजेंट विद, या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन हो फिजिकली प्रेजेंट करना चाह रहे हैं देखो जी स्क्रीन की तरफ, या फिर आप किसी को भेज रहे हैं, सब तरीके के लिए ये काम करेगा, बहुत क्रिएटिव भी लगता है। ओके, तो ये जरूर देखिएगा swishy.ai। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। अगली वेबसाइट भाई साहब टाइम पास के लिए, बिल्कुल टाइम पास के लिए, तो आपका टाइम पास हो जाएगा, जबान भी स्लिप हो गई मेरी एक्साइटमेंट में। तो अगली वेबसाइट का नाम है eve.io। बहुत ही छोटा सा नाम है लेकिन काम बहुत बड़ा है। ये वेबसाइट उनके लिए जो कि दोस्त आपस में कुछ गेम खेलना चाहते, तो आप इसमें 8-player शूटर गेम खेल सकते हैं, बहुत मजेदार है भाई। इसके लिए कोई डाउनलोड वाउनलोड कुछ नहीं चाहिए, मजे से खेलो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ट्राई दिस वन आउट, आई एम प्रीटी श्योर आपको ये अच्छी भी लगेगी वेबसाइट एंड काम की भी है उन लोगों के लिए जो थोड़ा मस्ती मजाक करने जाते हैं, ये भी तो बड़ा जरूरी है ना। चलिए जरा खबर की तरफ बढ़ते तो जल्दी से खबर बता दूं, एक जो खबर आई है इंटेक न्यूज वो है मार्क जकरबर्ग साहब की। मेटा के सीईओ हैं आप जानते हैं, बहुत मशहूर आदमी है, इन्होंने मेटावर्स में बहुत सारी चीजें चेंज करने का फैसला कर ही लिया है, लेकिन रिसेंटली एक वर्चुअल रियलिटी को बहुत ही शोकेस कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हम अपने AI एजेंट्स को तैयार कर रहे हैं, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि मेरा चश्मा देख रहे हो भाई साहब $1,299 मजाक है क्या, इतना महंगा मेटा वीआर ग्लासेस पहन के ये घूम रहे थे और साथ में इनके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस थी जिसका नाम था म्यूज चार्म जो काम करती है कंपनी की रिसेंटली जितने भी नए नए एआई पर्सनल एजेंट है उन्हें लॉन्च करने के लिए। ये आदमी कुछ आगे का कर रहा है बता रहा हूँ, खिचड़ी पक रही है, अगले 2-3 सालों में वो खिचड़ी जो है दिख जाएगी या तो जल जाएगी। ये थी टेक अपडेट, मिलते हैं अगली वाली में। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ एंड से देसी टेक अपडेट। टेक अपडेट
4: Number one hits music station.
5: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
5: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
6: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें।
7: आज ही राबता करें
6: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
8: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 26 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
9: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल आपको, आपके घर वालों को और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। अपने मोबाइल को हमेशा साइड पर रखें ताकि अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। आपकी ये आदत और एहतियात किसी की जान बचा सकती है। महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि पूरी तवज्जो सिर्फ रोड पर हो और हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और किसी की जिंदगी को रिस्क में ना डालें। ड्राइव करते वक्त पूरी तवज्जो रोड पर रखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। ये भी याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत भी है। वजारत दाखला का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती हैं। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
8: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

0: रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप 10 में और कौन सा गाना हुआ इस हफ्ते लीग से बाहर। सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में पता चलता है। और जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि आपको इसी वक्त पे फेस्टिवल स्कैम के बारे में बताऊंगा, और वो वक्त आ गया, आपने इंतजार सही कर लिया है। वेल, ये स्कैम क्या है, कैसे काम करता है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, फेस्टिवल स्कैम एक ऐसा धोखा है जहां फ्रॉड करने वाले लोग आवाम के लाइव एंटरटेनमेंट और मजा करने के शौक का गलत फायदा उठाते हैं। ये स्कैमर्स आने वाले म्यूजिक, फूड या कल्चरल फेस्टिवल का एक झूठा और फेक प्लान तैयार करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। ये बिल्कुल असली और प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर एड कैंपेन्स चलाते हैं, जिनमें फेक आर्टिस्ट का लाइनअप दिखाते हैं, झूठे वेन्यू दिखाते हैं, पार्टनरशिप दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कितने स्पॉन्सर इनके पास हैं। जो फैंस फेस्टिवल में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं उन्हें सस्ते अर्ली बर्ड पासेस, ग्लैम्पिंग यानी कि लग्जरी कैंपिंग वगैरह, रिजर्वेशंस और एक्सक्लूसिव वीआईपी एक्सपीरियंस का लालच दिया जाता है। टिकट्स बेची जाती हैं और ये टिकट्स आपको कई बार क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या फिर आपको डिजिटल पेमेंट के थ्रू या फिर कोई अनऑफिशियल ऐप के थ्रू पेमेंट करने को कहते हैं। इस फ्रॉड की असली हकीकत तब सामने आती है जब लोग टिकट्स खरीद कर उस जगह पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक खाली मैदान या पब्लिक पार्क मिलता है जहां कुछ भी नहीं होता। ऑर्गेनाइजर सारी टिकट का पैसा लेकर गायब हो जाते हैं और अपना कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ते। ये एक ऐसा अजीब और यूनिक तरीका है स्कैम करने का जिसमें आप बहुत आसानी से फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐड चला और ये ऐड बड़े ही ब्लडली चल रहा है और हर तरफ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और आपने टिकट भी खरीद ली, आपने दिखाया कि बाकायदा आपके पास डिजिटल टिकट है, लेकिन जब आप उस लोकेशन पे पहुंचे, अरे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको पता चलेगा कि आपके पास से आपके साथ स्कैम हो चुका है, पैसे जा चुके हैं, अब वो पैसे वापस मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब आप उसे कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे तो कोई आप कॉन्टेक्ट मिलेगा ही नहीं, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन इन स्कैम से बचने का तरीका भी है। क्या तरीका है इन स्कैम से बचने का? सबसे पहला तरीका है ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करना। मिसाल के तौर पे अगर कोई एड रन किया भी गया है सोशल मीडिया पे, तो आप प्रोफाइल पर जाकर चेक करें। अगर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको किसी नंबर पे ले जा रहा है, आपको किसी वेबसाइट पर ले जा रहा है, वेबसाइट बहुत अपडेटेड नहीं है, वेबसाइट सिक्योर नहीं है, वेबसाइट पर जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो जब आपके अंदर थोड़ा सा भी शक आए तो प्रॉपर चेक करना। वेल, दोस्तों, ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करने के बाद दूसरा स्टेप जो होना चाहिए आपका वो होता है वेन्यू को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने कोई ऐड आया है तो हो सकता है उसमें वेन्यू भी आए आमतौर पे, लेकिन जिस होटल का नाम उसमें पड़ा है, उस फ्लायर पे पड़ा है, पार्क या स्टेडियम का नाम पड़ा है, फेस्टिवल होने का दावा किया जा रहा है, तो उस वेन्यू की मैनेजमेंट को डायरेक्ट कॉल करें। मिसाल के तौर पे ABC कोई ग्राउंड है जहां पर बहुत बड़ा इवेंट

0: पहुंचें। कई बार ऐसा भी होता है कि यू नो आपसे कहा जाता है कि आप फला लोकेशन पे पहुंचे, वहां पर हमारा वो शख्स मिलेगा, उसको आप पेमेंट कर दें, वो आपको एक फिजिकल टिकट जो है वो प्रोवाइड करा देगा। तो फिजिकल टिकट भी आजकल बनाने लग गए हैं, आप सही में किसी के पास जाएंगे, वो आपको फिजिकल टिकट देगा, आप उसे कैश देंगे, आपको वो नंबर भी देगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस तरह का कोई इवेंट तो है ही नहीं, आप फिजिकल भी मिलकर आए, आपके पास फिजिकल कार्ड भी है, इवेंट का टिकट भी है, लेकिन जब आप दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे तब तक आपके साथ हो चुका होता है फ्रॉड। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस फ्रॉड के बारे में समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107 दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे कप्तान की जिनका नाम 1971 की तारीखी कामयाबियों के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात कर रहे हैं अजीत वाडेकर की, इंडिया का वो कप्तान जिन्होंने 1971 में तारीख बदल दी। अजीत वाडेकर 1 अप्रैल 1941 को मुंबई में पैदा हुए। वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए इंडिया के लिए अहम पारी खेलते रहे। उन्होंने 1966 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने करियर में 37 टेस्ट मैचेस में 2113 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड और भी इम्प्रेसिव था, 237 मैचेस में 15,380 रन और 36 सेंचुरीज। लेकिन दोस्तों, अजीत वाडेकर की सबसे बड़ी पहचान उनकी कप्तानी बनी। 1971 उनके करियर का सबसे यादगार साल था। इंडिया ने पहली बार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज जीती और दोनों कामयाबियां वाडेकर की कप्तानी में हासिल हुई। सबसे पहले इंडिया ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया 1970-71 में। वेस्ट इंडीज के पास गैरी सोबर्स जैसे लेजेंडरी खिलाड़ी थे, लेकिन वाडेकर की टीम ने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से जीतकर हिस्ट्री बना दी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी और इसी सीरीज में एक नौजवान सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट क्रिकेट का शानदार आगाज किया और 774 रन बनाए। इस कामयाबी के बाद इंडिया इंग्लैंड पहुंचती है और इंग्लैंड उस वक्त क्रिकेट की दुनिया की मजबूत टीमों में से एक थी। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड के मैचेस ड्रॉ हुए। फिर आया द ओवल का फैसलाकुन टेस्ट मैच। यहां दोस्तों, इंग्लैंड ने पहली पारी में 355 रन बनाए जबकि इंडिया ने 284 रन का जवाब दिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी सिर्फ 101 रन पर सिमट गई, जहां लेजेंडरी स्पिनर भगवत चंद्रशेखर ने 6 विकेट्स हासिल किए। इंडिया ने टारगेट चेस करते हुए मैच 4 विकेट से जीत लिया और सीरीज 1-0 से अपने नाम कर दी। यह इंग्लैंड की सरजमीन पर इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी और इसके पीछे वाडेकर की कप्तानी, कैप्टनसी मटेरियल तो थे ही, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज वॉज अ मेजर रीजन। वाडेकर ने इंग्लैंड सीरीज में खुद भी बैट से कंट्रीब्यूशन दिया और 204 रन के साथ इंडिया के लीडिंग रन स्कोरर रहे। वाडेकर के अचीवमेंट सिर्फ 1971 तक महदूद नहीं थे दोस्तों, वो उस इंडियन टीम का भी हिस्सा थे जिसने 1967 और 1968 में न्यूजीलैंड को 3-1 से सीरीज में शिकस्त दी। ये इंडिया की पहली ओवरसीज टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी। वाडेकर ने इस सीरीज में अपनी पहली और करियर की वाहिद टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नजर डालूं तो पता चलता है कि वहां पर भी उनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन था। मुंबई, जिसे उस वक्त बॉम्बे कहा जाता था, उनकी कप्तानी में 1968-1969, 1969-1970, 1971-1972 और 1972-1973 सीजन में रणजी ट्रॉफी जीती। रणजी ट्रॉफी नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप जो कि इंडिया में खेला जाता है, और 1971 की बैक टू बैक ओवरसीज सीरीज विक्ट्रीज ऑफ इंटरनेशनल लेवल पर वाडेकर को इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में एक खास मकाम दिया। बाद में वो इंडियन टीम के मैनेजर भी रहे और नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी। 2011 में उन्हें BCCI का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड

0: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। नाश्ता सिर्फ पहले दिन का खाना नहीं होता, ये घर वालों को एक साथ लाने, मेहमान का इस्तकबाल करने और सुबह के लम्हात को पुरकश बनाने का जरिया भी होता है। कतर में पुराने जमाने का नाश्ता अक्सर सादा मगर ग़िज़ाइयत से भरपूर होता था। घर में मौजूद चीजों जैसे रोटी, अंडे, खजूर, दूध और मक्खन को इस्तेमाल करके ऐसे खाने बनाए जाते थे जो दिन भर काम करने के लिए ताकत देते थे। कतरी घरों में नाश्ता कभी एक ही चीज तक महदूद नहीं रहा, खास तौर पर जब मेहमान हो या वीकेंड का दिन हो तो दस्तरखान पर मुख्तलिफ जायके एक साथ नजर आते हैं। कहीं मीठा, कहीं नमकीन, कहीं गरम ताजा रोटी और साथ में कहवा या चाय। नाश्ते की सबसे मशहूर रिवायती चीजों में से एक पलालीत है। ये बारीक सेवइयों से तैयार की जाती है। इसमें जाफरान, इलायची, गुलाब के पानी की खुशबू शामिल होती है। इसके ऊपर आमतौर पर अंडे की पतली तह या ऑमलेट रखा जाता है। मीठी सेवइयां और नमकीन अंडे का ये इम्तिजाज कतरी और खलीजी खानों की दिलचस्प खसूसियात को नुमायां करता है। सोचिए एक ही निवाले में हल्की मिठास, जाफरान की खुशबू और अंडे का सादा जायका, ये बलालीद को पहचान देता है। हर घर में इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसकी रूह वो ही रहती है, रिवायत, मोहब्बत और घर का जायका। कतरी नाश्ते में मुख्तलिफ किस्म की रोटियां भी अहम किरदार अदा करती हैं। रकाक बहुत पतली और कुरकुरी रोटी होती है, जबकि चबाब एक किस्म की मीठी, नरम या फिर पैनकेक की तरह तैयार की जाती है। इन्हें अक्सर शहद, खजूर के शरबत, अंडे या फिर पनीर के साथ खाया जाता है। रोटी सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, पुराने घरों में रोटी बनाना एक हुनर और घर की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। तवे की गर्मी, आटे की खुशबू और गर्म रोटी को दस्तरखान पर रखने का मंजर सुबह को यादगार बना देता था। खजूर भी कतरी नाश्ते की एक अहम साथी है। ये मजेदार होने के साथ साथ मेहमान नवाजी की अलामत भी है। दूध के साथ खजूर या कहवे के साथ खजूर सादगी में भी खसूसी गर्म जोशी पेश करती है। अरबी कॉफी, जिसे आम तौर पे कहवा कहा जाता है, नाश्ते के तजुर्बे का एक अहम हिस्सा हो सकती है। इलायची की खुशबू वाली ये कॉफी छोटे फंजान में पेश की जाती है। कतर में खाना और मशरूब अक्सर गुफ्तगू के साथ जुड़े होते हैं। एक फंजान के बाद दूसरा फंजान पेश करना मेहमान के लिए इज्जत और तवज्जो का इजहार समझा जाता है। आज के कतर में जिंदगी बहुत तेज हो गई है, लोग काम या फिर तालीम के लिए जल्दी निकलते हैं, इसलिए उनका नाश्ता मुख्तसर भी हो सकता है। होटलों और कैफे में बलालीद, चबाब, रकाक और कड़क चाय जैसे रिवायती जायके नए अंदाज में मिलते हैं। फिर भी घर का नाश्ता अपनी जगह खास है, क्योंकि इसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि घर वालों का वक्त, अपनाइयत शामिल होती है। नाश्ते की ये रिवायत हमें खूबसूरत सबक देती है। खाने की कीमत सिर्फ उसके जायके से नहीं होती बल्कि इससे भी होती है जो लोगों को करीब लाए। दस्तरखान पर बैठना, एक दूसरे का हाल पूछना, सुबह का वक्त साथ गुजारना रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो जब कभी आप कतर में रिवायती नाश्ता करें, बलालीद का एक निवाला, गर्म रकाक का एक टुकड़ा या कहवे का छोटा सा फंजान सिर्फ खाने के तौर पर ना देखें, इसमें कतर की सुबह, इसकी मेहमान नवाजी और इसकी तारीख की एक छोटी सी झलक मौजूद होती है। आज के कल्चर मोमेंट से हम यही सीख सकते हैं कि नाश्ता सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होता बल्कि ये भी अपने अंदर पूरा का पूरा कल्चर समेटे हुए होता है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महावश, अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
3: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
4: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
5: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
6: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: सिस्टम है, क्योंकि वहाँ से पास होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे टाइटनेस हो जाती है, प्रेशर हो जाता है, तो मरीज़ जो है वो पेशाब खुल के उसे नहीं आता, तो वो बार बार फिर जाना शुरू करता है, रात को उठना शुरू करता है 50 एज के बाद, 60 के बाद, मतलब वो तो वो यही सिम्टम्स इसके होते हैं, सबको नहीं होता, कुछ पेशेंट को जो हो जाते हैं,
1: पर्सन टू पर्सन वेरी
0: जी। तो
1: सर इसमें पूछना ये चाहूँगी कि रिस्क फैक्टर्स थोड़े से हम लिखें अलामत से, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं मेल्स में, और इसके अलावा क्या ये मौरूसी है, हेरिडिटी है, यानी खानदान में होता है, अगर किसी को पहले हो तो हो सकता है।
0: बिल्कुल, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं वो जैसे हमने कहा कि एज है
1: जी,
0: इसके अलावा एज के अलावा इसमें जो है जैसे आपने बताया कि मौरूसी है या नहीं है, तो इसमें डेफिनेटली ये 10% केसेस, 10-15% केसेस जो है वो मौरूसी भी होते हैं,
1: अगर खानदान में हल है
0: जी।
1: तो फिर
0: इसके अलावा मतलब वो लोग जिनमें ओबेसिटी है,
1: अच्छा,
0: हाँ, जो ओबीस लोग हैं, स्मोकिंग भी है, जैसे कॉमनली मोस्ट ऑफ द कैंसर वगैरह में ये होता
1: है, इसमें भी है, इसमें भी एक रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग,
0: स्मोकिंग का भी रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा देखा गया है कि कुछ ऑब्जर्वेशन है कि जो फैटी डाइट वगैरह करते हैं, हाँ,
1: जैसे बहुत जो होती है तली हुई चीजें या कुछ, मतलब फैटी
0: फूड जो है वो देखा गया कि उसमें भी मतलब पेशेंट्स को उनमें
1: चांसेस
0: ज्यादा हैं।
1: ठीक है,
0: तो ये इसकी
1: वो भी फिर जैसे अगर ये है रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर किसी में ज्यादा हैं तो वो जल्दी भी डेवलप हो सकता है, जैसे कि एज
0: यूजुअली मतलब जो जल्दी डेवलप होने का ये है कि जिन पेशेंट में ये रिस्क, हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर वो ओबीस है या मसलन उसमें फैमिली हिस्ट्री है उसके, जैसे वो मौरूसी का आपने बताया, तो जिन जिन लोगों के वालिद या उनके भाइयों में अगर प्रोस्टेट कैंसर हुआ होता है तो उनमें चांसेस प्रोस्टेट कैंसर के ज़्यादा होते हैं। एक तो यह है कि हो सकता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो शेयर कर रहे हैं, दूसरी अगर उनको ओबेसिटी भी है, स्मोकिंग भी है, तो ये लोग जो हैं इनमें हो सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर जल्दी आ जाए, एग्रेसिव टाइप आ जाए।
1: अच्छा।
0: लेकिन जिन लोगों में मतलब आप रूटीनली वो करें तो वो इट इज़ विद द एज, अभी एग्जैक्टली ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि किसको क्यों एग्रेसिव हुआ और दूसरे को जो है, क्योंकि इनके अपने ग्रेड होते हैं।
1: अच्छा,
0: जब हम पैथोलॉजिकली चेंज करते हैं देखते हैं, लेकिन जनरली जिनमें मौरूसी होता है, जिनमें वेल नोन कुछ सिंड्रोम्स हैं, पर्टिकुलरली इसमें
1: ठीक
0: एक जीन है जिसे ब्राका टू जीन कहते हैं,
1: ठीक है,
0: तो ब्राका टू जो है ये वेल नोन है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, और ये जो ट्यूमर होते हैं ये अग्रेसिव भी होते हैं, अग्रेसिव से मुराद है कि ये जल्दी बढ़ते हैं, स्प्रेड होते हैं अगर टाइम पे इनका इलाज ना हो।
1: जनरलसन से डॉक्टर जी बता रहे हैं ये ब्राका टू, ये तो जाहिर मेडिकल टर्म है, मगर ये कि जब टेस्ट कराए जाते हैं तो उसमें मालूम होता है कि क्या है, और ख़ासतौर पर जैसे कि अगर ख़ानदान में पहले है मौरूसी हैं या ऐसी अगर किसी इस टेस्ट में पॉजिटिव है या ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि वो जल्दी ग्रो कर सकता है, जल्दी फैल सकता है खुदा नहास्ता, तो इसलिए ये।
0: इसके अलावा इन्होंने ये भी देखा है कि जो लोग ये अफ्रीकन ओरिजिन है, अफ्रीकन ब्लैक लोग जो हैं, इनमें भी प्रोस्टेट कैंसर रिस्क है कंप्लीट टू वाइट पॉपुलेशन ना।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बाकी जैसे मैंने बताया कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर, तो फ्रॉम एरिया टू एरिया उसके इंसिडेंस ज़्यादा होता है, कुछ एरिया में कम है। जी
1: बिल्कुल, जैसे हम दूसरे भी बात करते हैं मुख्य बीमारियों की या कैंसर्स की, आपके साथ जाहिर है हम जो है उसी पर बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब एनसीसी आर्मी सीनियर कंसल्टेंट हैं, तो हमें जब भी मौका मिलता है तो हमारी कोशिश होती है कि अवेयरनेस जो है वो दी जा सके, आप सब तक पहुंचाई जा सके। जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने बताया रिस्क फैक्टर्स जो हैं, ओबेसिटी है, स्मोकिंग भी उसका एक हिस्सा है, और एनवायरमेंटल जैसे डाइट है, और जी ये हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या कुछ इस तरह।
0: तो जब यूजुअली वो

0: लोग जो एक्सरसाइज कम करते हैं, खाते पीते हैं, हर वक्त बैठे रहते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो, तो डेफिनेटली मतलब इनमें रिस्क कंपेयर टू एक्टिव बंदा हो और उसे वेट कंट्रोल हो, डाइट मतलब जो हमारा जो वेट है या जो वजन है इसका ताल्लुक डेफिनेटली और ये रेड मीट वगैरह से डेफिनेटली है।
1: जी जी लिसनर्स भी जैसे मैंने पहले भी नंबर शेयर किया आपके साथ 4434377, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर हमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कीजिए तो फिर डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 6622107 पर। जी डॉक्टर साहब, इसमें हम थोड़ी सी उसकी अलामत की तरफ आएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं और ये कि इसकी अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो इब्तदाई अलामत हैं प्रोस्टेट कैंसर की वो क्या हो सकती हैं।
0: जी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि पेशेंट यूजुअली जो हमें कुछ पेशेंट जो है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग जिसको हम कहते हैं कि वो आया था किसी चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, तो पीएसए उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो उस पर पता चला कि हाँ ये, फिर वहाँ से फिर इन्वेस्टिगेशन होती। लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट ये है कि उनको लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम जिसको हम कहते हैं कि उसको वो कहता है कि मैं पेशाब के लिए बार बार जाता हूँ और मुझे लगता है कि मसाना कंप्लीट एवेक्यूएट नहीं हुआ, फिर आता हूँ फिर जाता है। लेकिन ये सिम्टम जो है फिर उसको जब वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे हैं इम्पोर्टेंट पर्टिकुलरली 58 से अबाव जो पीएसए है। नॉर्मल पीएसए रेंज जो है वो 1-4 होता है 60-65 ईयर एज तक। इसकी मुख्तलिफ मतलब रेंज कुछ अप टू 10 भी डिपेंड करता है कि जैसे पेशेंट जो है वो 80 ईयर ओल्ड है तो उसका हो सकता है 6-7 भी हो, वो कैन बी कंसिडर नॉर्मल। लेकिन इसके जो बढ़ने की वेलोसिटी है कि एक बंदा चेक कर रहा है अपना से तो वो देखते हैं कि इफ़ इट इज़ एनुअल जो इंक्रीज है 0.7 नैनोग्राम पर ml है ना।
1: अच्छा अच्छा,
0: इसमें जो इसके लेवल्स होते हैं
1: जी पीएसए,
0: जी
1: थोड़ा सा पूछना चाहूँगी वो क्या है
0: पीएसए। ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है।
1: अच्छा ठीक, ये स्पेसिफिक टेस्ट है वो करवाया जाता है।
0: हाँ ये स्पेसिफिक है फॉर द प्रोस्टेट।
1: अच्छा ठीक है,
0: लेकिन इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द प्रोस्टेट कैंसर। ये एंटीजन रिलीज होता है ब्लड में तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं।
1: जी ठीक,
0: जैसे हर एक कैंसर में कुछ ना कुछ मार्कर्स होते हैं वो ब्लड में आपको उससे अंदाज़ा होता है कि हो सकता है कि इस पेशेंट को ये ट्यूमर हो।
1: अच्छा,
0: ज़रूरी नहीं है सब ट्यूमर्स में, लेकिन कुछ ट्यूमर में जैसे प्रोस्टेट कैंसर वन ऑफ देम है, इसमें पीएसए हाई हो सकता है।
1: ठीक है,
0: जब हाई हो तो इट डजंट मीन के उसको प्रोस्टेट कैंसर है, क्योंकि ये कुछ और कंडीशन में भी हाई हो सकता है।
1: ठीक है,
0: जैसे प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट व्हिच कुड बी ड्यू टू एनीथिंग, हो सकता है इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वगैरह से। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर से भी हाई हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर कब जब आप करते हैं तो इवन देयर वाज मतलब ये है कि कहते थे कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट वगैरह वो मेल पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए चेक करते हैं तो वो उसमें भी वो है कि ये कॉन्सेप्ट था कि हो सकता है ये प्रोस्टेट के एग्जामिनेशन की वजह से थोड़ा हाई चला गया है। लेकिन यूजुअली इसके जो वो है लाइफ टाइम है या मतलब जो हाफ टाइम जो होता है क्लियर होता है वो तकरीबन 2-3 दिन में। अगर आप किसी पेशेंट का हाई आता है ड्यू टू व्हाटएवर रीज़न या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हाई है तो उसको ट्रीट करने के बाद वो दोबारा फॉलो करते हैं 2 हफ्ते में और इस तरह देखते हैं
1: दोबारा वही टेस्ट करते
0: हैं, पीएसए करते हैं, नीचे आया है नहीं आया। अगर परसिस्टेंटली हाई है तो यहाँ पे फिर हमें सस्पिशियस हो जाता है कि हो सकता है इसको प्रोस्टेट ट्यूमर हो, तो फिर आगे उसके मुताबिक और इन्वेस्टिगेशन इमेजेस और बायोप्सीज होती हैं।
1: ठीक है
0: जी,
1: उसमें जैसे मुख्तलिफ टेस्ट हैं जैसे एमआरआई है या
0: वेरी

0: इम्पोर्टेंट एमआरआई जो है वो आप कह सकते हैं कि आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड है एमआरआई से, और ख़ासकर एमआरआई में इनमें आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं उसमें इसको एमआरआई डिफ्यूजन जो एमआरआई है मल्टी पैरामीट्रिक, तो उसमें वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोस्टेट का वॉल्यूम कितना है, इसके कौन से लोब में ट्यूमर है और
1: एग्जैक्टली
0: और जी उसके साथ जो ग्लैंड है जैसे सेमिनल वेसिकल है, ब्लैडर नेक है, पीछे रेक्टल वाल होता है, तो ये कहाँ कहाँ इनके वो जड़ें गई हैं जैसे इनफिल्ट्रेशन हुई है, तो ये हमें मतलब कभी कभार इवन बायोप्सी से पहले भी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन बायोप्सी जो है वो वी हैव टू डू बायोप्सी, क्योंकि वो उसके बगैर आप नहीं कंफर्म कर सकते।
1: अच्छा, हमेशा करनी है आपको बायोप्सी जैसे भी कोई भी ग्रोथ
0: बायोप्सी? हाँ,
1: जरूरी है,
0: मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में ज़रूरी है।
1: अच्छा।
0: लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जैसे वो 75-80 ईयर ओल्ड है।
1: अच्छा।
0: उसको स्ट्रोक भी हुआ है, वो बेड बाउंड है या व्हील चेयर पे है
1: जी।
0: और उसके वो बाय चांस इन्वेस्टिगेशन में पीएसए बहुत हाई आ जाता है, स्कैन करते हैं तो पता चल जाता है कि वो ऑलरेडी स्प्रेड भी हो गया है, अक्सर बोन में चला जाता है।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे पेशेंट का पीएसए फॉर एग्जांपल उसका आता है 100 में, 100 से 200 300 1000 तक, मतलब हम पेशेंट देखते हैं,
1: ठीक है,
0: तो इतना हाई हो, बोन डिजीज भी हो, तो उस पेशेंट को मतलब हमने हार्मोनल ट्रीटमेंट के अलावा कोई एक्टिव ट्रीटमेंट देनी भी नहीं होती, ना कीमोथेरेपी, क्योंकि उनकी जनरल कंडीशन ऐसी होती, तो उन पेशेंट में कभी कभार फिर हम इग्नोर कर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: जस्ट उसके क्लिनिकल पैरामीटर, रेडियोलॉजिकल पैरामीटर, उन पे डिपेंड करके। लेकिन जो बंदा ठीक ठाक है उसमें हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कि सर्जरी होनी चाहिए, रेडिएशन, और जो ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उनमें बायोप्सी ज़रूरी है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं बायोप्सी में कि ये प्रोस्टेट कैंसर कौन से ग्रेड का है, इसका स्कोर कितना है, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, और आगे इसमें जो हम टेस्ट करते हैं कि मौरूसी है या नहीं है।
1: अच्छा,
0: कौन से जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, उन जेनेटिक म्यूटेशन के बिना पे आगे इसकी ट्रीटमेंट की जो है वो फर्दर जैसे डिसाइड करते हैं, तो हम इन बायोप्सी के रिपोर्ट पर डिपेंड करते हैं।
1: जी लिस्टर, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसके जो टेस्ट हैं एमआरआई जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि उसकी डायग्नोसिस में, मगर भी बायोप्सी जो है वो मस्ट है, मगर फिर एज रिलेटेड या और कुछ फैक्टर्स की बिना पर जो है वो हम उस बायोप्सी जो है अगर जब नहीं करते तो उसकी ये रीज़न हो सकती हैं। और फिर ये कि इस पर सारी जो ट्रीटमेंट है वो भी डिपेंड करता है। और फिर हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे ये कि क्या ये जो पूरी जैसे कि जैसे अगर डायग्नोज हो जाता है जो कैंसर है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, या जो मुख्तलिफ पेशेंट टू पेशेंट जो है उसकी सिम्टम्स उसके अलामात देखने के बाद फिर जो इलाज है उसका फैसला किया जाता है?
0: जी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
1: थैंक यू।
0: इसमें ये है कि हमें अभी पता चल गया कि पेशेंट के सिम्टम्स थे
1: जी,
0: तो पीएसए किया हाई है, एमआरआई किया सस्पेक्टेड है ट्यूमर है, बायोप्सी कर लेते हैं, बायोप्सी से हमें पता चल गया कि इसका ट्यूमर जो है वो लो रिस्क है या इंटरमीडिएट है या हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क जो पेशेंट होते हैं उनमें फिर हम बॉडी स्कैन करते हैं, पहले सीटी स्कैन और बोन स्कैन करते थे ताकि हमें पता चल जाए कि ये कहाँ स्प्रेड तो नहीं हुआ। एमआरआई से पता चल जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में है या उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, या लिम्फ नोड तक पहुंच गया है या नहीं पहुंचा। और आजकल जो है अल्हम्दुलिल्लाह कतर में जो है न्यूक्लियर मेडिसिन है, पेट पीएसएमए स्कैन उसको कहते हैं, पॉजिट्रॉन जो इमेशन टोमोग्राफी है जिसमें एक्टिविटी पता चलती है किसी भी कैंसर की, जो दूसरे कैंसर है उनमें एफडीजी जो डाई देते हैं या जो कंट्रास्ट देते हैं जो शुगर रिलेटेड कंट्रास्ट होते हैं, तो जो भी हमारे जिस्म में कैंसरस सेल्स होते हैं तो उसमें अपटेक होता है, वो लाइट अप होते हैं
1: और
0: टेस्ट हो जाता है। इसमें जो है इसमें स्पेशल कंट्रास्ट दिया जाता है जिसको पीएसएमए कहते हैं, प्रोटीन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन जो होता है, तो ये जहाँ जहाँ पे भी प्रोस्टेट

0: यंगर पेशेंट होते हैं, हमें पता होता है कि ही विल टॉलरेट द सर्जरी, तो प्रेफर हम करते हैं सर्जरी. कभी कभार कुछ पेशेंट सर्जरी करने के बाद भी उनको रेडिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है.
1: ठीक है, ठीक,
0: अगर वो ट्यूमर के मार्जिन पॉजिटिव हो वगैरह जी,
1: कि वो उसके स्टेज पर
0: डिपेंड करता है कि आप जब रिमूव करते हैं उसके बाद हम पीएसए चेक करते हैं. तो
1: है.
0: अगर पीएसए अनडिटेक्टेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में, अनडिटेक्टेबल का मतलब है कि पीएसए यूजुअली हम जो देखते हैं 0.05 से नीचे हो तो उसको अनडिटेक्टेबल कहते हैं.
1: अच्छा,
0: तो कुछ पेशेंट में फिर रिस्क फैक्टर आ जाते हैं, जैसे मार्जिन पॉजिटिव है या उसके लिम्फ नोड वगैरह ना, और सर्जरी करने के बाद पीएसए अनडिटेक्टेबल है.
1: अच्छा, ठीक.
0: लेकिन
1: ये वो टेस्ट है जो हम
0: जो ब्लड में करते
1: ब्लड में करते हैं,
0: हाँ, जो पहले हाई था, अभी सर्जरी के बाद मतलब अनडिटेक्टेबल हो गया है.
1: ठीक है,
0: तो फिर हम
1: सब एक कॉल है, हम अपने लिसनर्स की तरफ चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम. हेलो
2: जी, अस्सलाम वालेकुम
1: जी. वालेकुम सलाम
2: जी. डॉक्टर साहब, मैं महमूद बोल रहा हूँ.
1: जी जी, क्या कैसे हैं आप, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी
2: डॉक्टर साहब से बात हो सकती है?
1: जी जरूर.
0: जी अस्सलाम वालेकुम जी महमूद साहब.
2: जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है जी. थैंक यू
2: जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है.
1: थैंक यू.
2: और ये आपने अभी फरमाया था कि ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज है, तो मैं उसी कैटेगरी को मैं फॉल करता हूँ.
0: अल्लाह खैर करे
1: जी.
2: मुझे तो थोड़ा सा ये आजकल प्रॉब्लम, आपको मेरी शायद बैकग्राउंड का पता ही है, और यू आर द डॉक्टर जिन्होंने मुझे डांट के कहा था कि जाके हॉस्पिटल में
1: जी क्योंकि वही हमने पूछा कि कब जो है वो जाना चाहिए पेशेंट को, कि कंसल्ट करना जरूरी है. डॉक्टर साहब ने भी बताया भी है. जी
2: जी नहीं, डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी है मुझसे. तो मैं अभी वक्त आए के बगैर आपसे जरा गुजारिश करना चाहूंगा कि मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का जरा प्रॉब्लम हो रहा है
0: जी.
2: तो फिर यह है कि वो उसमें अर्जेंसी भी हो जाती है, मुझे भाग के जाना पड़ता है, और वीक फ्लो है
0: जी
2: कुछ हफ्ते से, 6-7 महीने से. तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, मुझे क्या करना चाहिए सिलसिले में?
0: इसमें ये है कि ये तो हो सकता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट की वजह से कभी कभार इसके लिए जो है वो यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है. वो फ्लो मीटरी वगैरह करते हैं जिसमें वो देखते हैं कि मसला क्या है, कोई ब्लैडर की वजह से है, ब्लैडर के मसल वीक हो गए हैं, या ब्लैडर हाइपर एक्टिव हो गया है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से स्फिंक्टर जो है उसमें कोई मसला आ गया है. लेकिन साथ साथ फिर वो जो है पीएसए टेस्ट करेंगे. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जब ये सिम्टम्स हो, पर्टिकुलरली अबाउ द एज ऑफ 50. तो अगर फॉर एग्जांपल पीएसए हाई हैं तो फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे फर्दर इमेजेस. अपार्ट फ्रॉम वो फ्लोमेट्री वगैरह, वो डायनेमिक जो स्टडीज़ होती हैं, अपना उनका एक चेयर होता है, वो देखते हैं उसमें. एमआरआई पीएसए के बाद, अगर पीएसए गॉड फॉरबिड अगर हाई आ जाता है तो उस सिचुएशन में फिर एमआरआई की ज़रूरत पड़ेगी. एमआरआई से एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि इज़ देयर एनी, मतलब कोई लीजन है. अगर फॉर एग्जांपल पीएसए में कोई एमआरआई में कोई ट्यूमर नज़र नहीं आ रहा तो फिर वो जस्ट ऑब्ज़र्व करते हैं, आफ्टर 2-3 वीक दोबारा पीएसए रिपीट करते हैं. लेकिन अगर एमआरआई में कोई फोकस है तो उसके बाद फिर वो दे विल गो फॉर ट्रस्ट बायोप्सी. तो बायोप्सी पे फिर पता चलेगा कि किस ग्रेड का ट्यूमर है. जैसे मैंने अपने टॉक में शुरू में बताया कि जो स्टडी हुई थी अमेरिका में, उन्होंने देखा कि 80-year-old जो जेंटलमैन है, इनकी जब ऑटोप्सीज हुई थी उनमें 70% में प्रोस्टेट था, लेकिन 1/3 ऑफ दोज पेशेंट को कभी महसूस भी नहीं हुआ होगा कि कोई मसला है. और जिनको पता चल भी जाता है कि मसलन को प्रोस्टेट कैंसर है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे 100% हम डायग्नोस करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के साथ, तो ओनली 30% जो है वो डिज़ीज़ की वजह से उनकी

0: हेल्थ पे असर पड़ता है, वो दे डाई फ्रॉम द प्रोस्टेट कैंसर. लेकिन जो 70% है दे विल लिव विद प्रोस्टेट कैंसर, और इस कंट्रोल भी किया जा सकता है, एंड ही विल लिव विद इट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी, ही मे डाई फ्रॉम समथिंग एल्स, मतलब कार्डियक वगैरह वो भी हो सकता. तो जनरली स्पीकिंग जैसे आपने बताया, इसके लिए बेहतर यही है कि बंदा यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और PSA टेस्ट करें. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप PSA टेस्ट पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उस पे हम फिर डिपेंड करेंगे आगे फर्दर स्कैन करने के लिए इंशाल्लाह.
1: वो उसमें ऐसा है कि मैं कुछ अर्सा पहले, कुछ 6-7 महीने पहले मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, वहीं हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नाजी हैं
0: जी जी,
1: तो उन्होंने सिस्टोस्कोपी की थी और कहा कि मामूली से एनलार्जमेंट है आपके प्रोस्टेट में, ग्लैंड में जो.
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा.
1: तो लेकिन उस वक्त मेरा जो TPSA जो था 3.16 था.
0: ठीक है,
1: 3.16 NGML. तो लेकिन यह कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट 80 years ओल्ड. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, शुड आई गो टू द हॉस्पिटल?
0: अगर 3.16 था तो दिस इज कंसिडर फॉर योर एज नॉर्मल ना. तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर नाजी से अगर आपने ऑलरेडी कंसल्ट किया है, लेकिन उसमें जो यूरोलॉजिस्ट हैं दे टेक केयर ऑफ मतलब यूरिनरी जो सिम्टम्स वगैरह के हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आप वो फ्लोमीट्री वगैरह भी करनी पड़ेगी ताकि वो देख लें. इसमें कभी कभार मसाने के मसल्स वगैरह रिलैक्सेशन और हाइपर एक्टिविटी का मसला भी आ जाता है.
1: जी जी
0: हाँ,
1: तो आप फाइनली ये सजेस्ट करते हैं कि शुड आई गो टू द हॉस्पिटल, उनसे अपॉइंटमेंट ले लूं डॉक्टर साहब से?
0: मेरे ख्याल में हाँ, आपको ये जो सिम्टम, अगर इससे आप काफ़ी वो हैं, आपके लिए मसला पैदा है, तो डेफिनेटली फिर यूरोलॉजी से आप कांटेक्ट करें या फिर मैं हम बात कर लेंगे कि व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट.
1: ओके जी,
2: अपना ख्याल रखिएगा
1: जी,
2: थैंक यू. ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज जी. डॉक्टर साहब बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कब किस वक्त, ये पूछने वाली थी कि हमें क्या जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना जो है किस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है.
0: जी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, ख़ासकर वो पेशेंट या वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि इवन जो इसकी जो स्क्रीनिंग वगैरह था, तो मेजॉरिटी ऑफ द गाइडलाइंस वो कहते हैं कि अबाउ द एज ऑफ 50 स्क्रीनिंग शुरू करते हैं. लेकिन अभी कुछ एडजस्टेड गाइडलाइन है, पर्टिकुलरली जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, किसी को घर में मतलब इसके फादर या ब्रदर इनको प्रोस्टेट, तो वो इवन यंगर अबाउ द एज ऑफ 40 हम रिकमेंड करते हैं PSA स्क्रीनिंग टेस्ट.
2: ठीक,
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
2: जेलिसंस, आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में. हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान जारगुल जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं NCCR HMC में. और जैसे डॉक्टर साहब हमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर थे कि किस तरह से जैसे पेशेंट को कंसल्ट करना किस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो उसकी अलामत पर डिपेंड कर. डॉक्टर साहब, हम थोड़ी अगर हम कतर की भी बात करना चाहें तो क्या वजूहात हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो हैं वो केसेस, नए केसेस जो हैं हर साल डायग्नोज होते हैं, कोई ख़ास वजह है क्या?
0: जनरली मतलब अगर आप ग्लोबली देखें तो ये एक जो है ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये है कि सिंगल कैंसर सेंटर है, कैंसर रजिस्ट्री है, तो एग्जैक्टली ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इंसिडेंस हाई है. लेकिन क्योंकि बाकी मुल्कों में अगर आप ये कंपेयर करें तो अदर GCC कंट्री में भी तकरीबन यही रेशो है. अलबत्ता ये है कि सिंगल सेंटर होने की वजह से सारे केसेस जो हैं
2: यहाँ
0: पे आते हैं, तो एग्जैक्टली हमारे पास डाटा होता है. और बल्कि ये है कि पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है
2: आसपास भी कंट्रीज है वहां से भी पेशेंट जो है यहां आते हैं
0: ट्रीटमेंट के लिए आते हैं जैसे ओमान से बहरीन से कुछ पेशेंट हम सऊदी वगैरह से भी देखते हैं जो इलाका नजदीक है दम्माम वगैरह का ना तो इट दैट इज व्हाई मतलब वो लगता है कि हाई है लेकिन जनरली इट इज मतलब जो वर्ल्ड के जो इंसिडेंस वगैरह हैं उसके तकरीबन कंपेरेबल है
2: जी तो सब एक जो है वो जैसे बायोप्सी की हम बात करें
0: जी
2: हर उसमें ही मैं ये सवाल करती हूँ मगर ये कि आमतौर पर जिसके ख्याल ये किया जाता है या पेशेंट हैं या आमतौर पर पब्लिक में कि जैसे ही बायोप्सी की जाती है तो उससे जो है वो उदाहरण खासतौर अगर कैंसर है तो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता है वह फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तो आपके थ्रू मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये ऐसा ही है ये जो कॉन्सेप्ट है आमतौर पर बायोप्सी का कि जैसे बायोप्सी करते हैं तो उससे जो
0: कैंसर स्प्रेड हो
2: जाता है जी स्प्रेड हो जाता
0: है नहीं ये
2: अब थोड़ा कम हुआ है
0: जी,
2: ये कॉन्सेप्ट
0: मतलब हाँ
2: अच्छा।
0: इसमें ये है कि जिस इसको सीडलिंग कहते हैं यूजुअली जो किडनी कैंसर है उसमें हम प्रेफर नहीं करते बायोप्सी लेने की उसमें राइट अवे उसकी नेफ्रेक्टोमी या पार्शियल नेफ्रेक्टोमी या रेडिकल नेफ्रेक्टोमी होती है लेकिन जो केसेस हैं जहां पे हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं पहले सर्जरी से तो उसमें फिर बायोप्सी की ज़रूरत है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि क्या है किस टाइप का ट्यूमर है इवन प्रोस्टेट कैंसर 99% जो है वो एडिनोकार्सिनोमा होता है
2: अच्छा।
0: जो एक टाइप है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं
2: लेकिन जैसे लैब में ही पता
0: जी जो पैथोलॉजिस्ट है वो लैब में जाके माइक्रोस्कोप के नीचे खलिये देखता है तो जो खलिये हैं उनको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं लेकिन इसमें और भी वेरियंट हो सकते हैं कभी कभार इसमें जो रेयर टाइप है जैसे लिम्फोमा भी हो सकता है मेटास्टैटिक मतलब कहीं और से आया लिम्फोमा ल्यूकीमिया सार्कोमा तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर कहते हैं बड़े अग्रेसिव होता है तो ये ट्यूमर भी हो सकते हैं तो आपको डेफिनेटली बायोप्सी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आजकल जो है आपको पता चलना चाहिए कि सिर्फ ये ना कि कौन से कैंसर सेल्स हैं बल्कि उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है उनकी हार्मोनल स्टेटस क्या है क्योंकि आजकल जो ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करते हैं जिसको हम प्रिसिजन मेडिसिन कहते हैं कि मतलब ट्यूमर डायरेक्टेड थेरेपी पहले मतलब यही था कि सर्जरी कर लो जो खासकर मेटास्टैटिक है कीमोथेरेपी दे दो तो अभी ये ज़रूरी नहीं है कुछ पेशेंट कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत ही नहीं होती उनके लिए उनमें हम ड्राइवर म्यूटेशन देखते हैं उस ड्राइवर म्यूटेशन के मुताबिक प्रोस्टेट में इसी तरह वो हैं हो सकता है कि उसका जो इलाज है वो सिर्फ हार्मोनल इंजेक्शन से ही हो
2: ठीक है
0: और कुछ हार्मोनल टैबलेट्स ही हों या कोई टारगेटेड ट्रीटमेंट है उससे ट्रीटमेंट भी हो सकती है
2: जी रक्सो हमारे लिसनर हैं नाम इन्होंने भी मेंशन नहीं किया सलाम कह रहे हैं आपको
0: वालेकुम सलाम
2: और कह रहे हैं कि वो यूरिन जो है वो पास नहीं कर सकते और जो टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी तो क्या ये इसकी भी एक रीज़न हो सकती है और कह रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू और ये कि वो जो मेडिसिन दे रहे हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की कॉन्कर है कोर और लिसिनोप्रिल है और अटोरवास्टनी मतलब ये अपनी मेडिसिन के नाम उन्होंने लिखे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की और हाई बीपी की जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं
0: अच्छा।
2: तो क्या ये वजह हो सकती है मगर ये कि आपने अपनी एज नहीं लिखी और अगर आप एज लिखते हैं तो वो ज़्यादा जो है
0: मुझे लगता है कि ये पेशेंट शायद इब्राहिम तो नाम नहीं इसका
2: नाम मेंशन नहीं किया हुआ जी आप बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और एज भी बता दीजिए तो डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकें जी
0: तो इनको मतलब शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह
2: वो तो है कोलेस्ट्रॉल तो हाई होगा तो मेडिसिन ले रहे हैं
0: हाँ,
2: तो ब्लड प्रेशर भी होगा
0: हाँ
2: जी
0: तो ये मतलब जो रिस्क है अगर फैमिली हिस्ट्री वगैरह नहीं है तो रिस्क एक नॉर्मल जैसे 1 out of 6 इंडिविजुअल में प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है
2: ठीक है
0: तो शुगर या ब्लड प्रेशर कि होने से ये रिस्क नहीं बढ़ता।
2: अच्छा ठीक,
0: मतलब इसके साथ कोई इसकी वो नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी एंगल से देखें, अगर पेशेंट हेल्दी है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका शुगर कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, ही विल बी डूइंग बेटर कंपेयर टू वो पेशेंट जो मतलब उसका वेट ज़्यादा है या वो स्मोकिंग भी कर रहा है, उसको शुगर भी है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं, तो चांसेस मतलब कंपेरेटिवली बढ़ सकते हैं।
2: ठीक है
0: जी।
2: तो अभी ये इनके जो रीज़न है वो क्या आपने कहेंगे, कंसल्ट करें किसी से, या जैसे यूरिन का मसला हो रहा है?
0: हाँ, यूरिन का मसला हो रहा है, अगर इफ़ ही इज़ अबव
2: 50
0: या मतलब जनरली देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेल पेशेंट के लिए। यूरिन जो सिम्टम्स ये कह रहे हैं ना, अगर यूरिन में ब्लड है
2: जी,
0: तो इसको तो राइट अवे मतलब यूरोलॉजिस्ट से या मतलब किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें वेरी इम्पोर्टेंट है। इस पे, इस टॉपिक पे हम कभी बात कर सकते हैं ब्लैडर ट्यूमर के, क्योंकि मेल पेशेंट में हेमेचूरिया जिसे हम कहते हैं ब्लड इन यूरिन इज वेरी इम्पोर्टेंट।
2: डॉक्टर साहब एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सलाम जी जी, प्रोग्राम हेल्थ गाइड जी, आप कौन बात कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही? वालेकुम
0: सलाम। सलाम,
2: क्या पूछना चाहेंगे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
4: पूछना यह था कि टॉपिक तो हमारा वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सलाह लेना चाह रहे थे कि समथिंग एक महीना से पाँव है ना जो तलवा होता है, उसके ऊपर का ना जब सो के उठते हैं या फिर थोड़ा देर बैठ कर वो बहुत पेन करता है, चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
2: अच्छा,
4: ये क्या?
0: हाँ, अगर आपको शुगर वगैरह है तो पहले तो ये ज़रूर, अच्छा शुगर नहीं है तो फिर आप इस तरह हैं कि कुछ आप अपना वो देखें, ब्लड चेक कराएं कि आपका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, आयरन डिफिशेंसी एनीमिया तो नहीं है, वाइटामिन की कोई वाइटामिन B12 की कमी तो नहीं है, तो वाइटामिन अगर हीमोग्लोबिन से है तो वाइटामिन B12 की टेबलेट लें, तो इंशाल्लाह ये जो वो तलवे में जो वो बर्निंग सेंसेशन है वो ठीक हो जाएगा।
4: जो नस नस है ना, वो ऐसा लगता है नस पे कुछ पट रहा है, सब से पेन हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कुछ मल्टी वाइटामिन लें, अपना ब्लड टेस्ट कराएं और
2: इंशाल्लाह। हाँ,
0: और फिर हेल्थ सेंटर से या किसी से कंसल्ट करके कि वो देख लें, आपका ब्लड टेस्ट करा दें। ठीक
2: ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल, डॉक्टर साहब इसमें बायोप्सी की भी बात की, मगर एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी को, जैसे ये हमारे लिसनर हैं, पूछ रहे हैं कि उनके वालिद को कैंसर था, उन्होंने भी एज नहीं लिखी, तो पूछ रहे हैं कि उन्हें स्क्रीनिंग किस उम्र में शुरू करनी है।
0: तो वालिद को ये कौन सा कैंसर?
2: प्रोस्टेट कैंसर।
0: प्रोस्टेट कैंसर
2: जी, जी।
0: अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रोस्टेट कैंसर किस एज में था
2: जी,
0: क्योंकि अभी जैसे हमने बताया कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट 65-70 उनको हो सकता है, लेकिन वैसे भी इनको कम अज़ कम अगर जिस एज पे इनके वालिद साहब को हुआ है उससे 10-15 साल पहले स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ही 65 तो इसको 50 अबाव करना चाहिए। अगर ही वाज 60 ईयर ऑफ एज तो प्रेफरेबली फिर ये है कि इनको अबाव द 40 एज और 45 एज इनको PSA वगैरह चेक कराना चाहिए, इनको यूरोलॉजिस्ट से मिलके उनको बताना चाहिए कि मेरे वाले साहब को प्रोस्टेट ट्यूमर था, तो इस सिचुएशन में इसको फिर अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। अर्ली डिटेक्ट होने का यही फ़ायदा है स्क्रीनिंग का, कि जितने अर्ली स्टेज में आप डिज़ीज़ को डिटेक्ट करते हैं तो उसकी उतनी आसानी से ट्रीटमेंट हो जाती है, उतनी उसकी प्रोग्नोसिस सही होती है। जितना भी ट्यूमर बढ़ता रहता है, सर्वाइवल 5 ईयर जो सर्वाइवल है, 10 ईयर सर्वाइवल है, रिकरेंस फ्री सर्वाइवल है, डिज़ीज़ फ्री सर्वाइवल, ये सब कुछ इम्प्रूव हो जाते हैं।
2: ठीक डॉक्टर साहब, क्या जो डाइट है, ये एक्सरसाइज है, ये स्मोकिंग है
0: जी,
2: अगर वो अगर आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो उससे क्या प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क है कम हो जाता है?
0: डेफिनेटली, आई मीन हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट कंट्रोल
2: जी,
0: रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वाटर, फोकस ऑन वेजिटेबल, ये कुछ ऑब्जर्वेशन में देखा गया है ऑल्सो कि जो सिट्रस फ्रूट वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो आपके जो स्मोकिंग वगैरह, ये एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग वगैरह, इसको अवॉइड करते हैं आप.
2: अच्छा ठीक. हाँ,
0: और जो निकोटीन वगैरह, निकोटीन पैच और ये चीज़ें जो हैं, अल्कोहल, तो ये अगर ये आप कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली रिस्क इज कम विल बी लोअर कंपेयर टू दोज पेशेंट के जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, वेट को कंट्रोल नहीं करते, ब्लड प्रेशर उससे हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो इस तरह सारे रिस्क बढ़ सकते हैं.
2: ठीक
0: जी.
2: इंस्टेंस ये प्रोग्राम अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो आप जुमे को सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम पेश किया जाता है रिपीट में, तो आप उसे सुन सकते हैं. डॉक्टर साहब, अगर अपने हमारे तमाम जो लिसनर्स हैं, ख़वातीन जो हैं, ख़ास तौर पर जो मेल हज़रात हैं, तो उसमें जो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आपने हमें बहुत सारी जो मालूमात दी हैं, अगर कुछ अहम बातें या दो या तीन अहम बातें कि वो ज़रूर याद रखनी चाहिए, वो आप बता दीजिए या मैसेज आप दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे?
0: जी, पर्टिकुलरली पेशेंट वो लोग जिनके फैमिली हिस्ट्री है, उनमें उनके रिलेटिव्स जैसे इनके फादर हैं या इनके भाई हैं, या कभी कभार बहनों में अगर ब्रेस्ट कैंसर है, पर्टिकुलरली यंग एज में कोई है, 50 से यंगर एज में ब्रेस्ट कैंसर भी है, ओवेरियन ट्यूमर है या पेंक्रियाटिक वगैरह ट्यूमर था, तो उन्होंने उसकी जेनेटिक टेस्टिंग नहीं की, तो उनको चाहिए कि वो उस एज से 10 साल पहले, या मतलब ये बात अपने हेल्थ सेंटर में आके वो रेफ़र करेंगे जेनेटिक काउंसलर में, तो वो पूरा उसकी डिटेल और जो हिस्ट्री बना के वो देखेंगे कि कितना रिस्क है इनको प्रोस्टेट कैंसर होने का, कोई और कैंसर भी हो सकता है, कभी कभार कुछ सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं. एक बात ये, आम पॉपुलेशन के लिए जो हेल्दी सब हैं, इनके लिए ये है कि अगर कोई सिम्टम्स है तो वो PSA वगैरह चेक करा के अपने हेल्थ सेंटर में और यूरोलॉजिस्ट से फॉलो करें.
2: ठीक, बहुत शुक्रिया. और सामिन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर अब्दुलरहमान जारगुल, फौजे शफीक और मेरे साथ रहे असली भंडारा, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज.
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر ثقافت نے عرب مرکز برائے تحقیق و مطالعہ پالیسی میں موسم ندوات کے 5th سیزن کا افتتاح کیا ہے. وزارت محنت نے 5 اور 6 اکتوبر کو تنزانیہ میں دوسرے دوحہ مکالمے کے انعقاد کا اعلان کیا ہے. ریاست قطر اور مشرقی اوروگوائے نے بین الاقوامی ثالثی کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے ہیں. قطر نے صومالیہ کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے انسانی بحرانوں سے نمٹنے اور ریاستی اداروں اور انسانی حقوق کے شعبے میں بین الاقوامی تعاون جاری رکھنے پر زور دیا ہے. عرب لیگ نے مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی آبادکاروں کے داخلے اور فلسطینی نمازیوں پر عائد پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے سلامتی کونسل سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. خلیج تعاون کونسل نے مدینہ منورہ میں بجلی کی تنصیب کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ غزہ مغزہ پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور آبادکاروں کے حملوں کے نتیجے میں کئی فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेनिस की दुनिया की एक ऐसी लेजेंडरी खिलाड़ी की जिन्होंने बहुत कम उम्र में दुनिया की नंबर वन रैंकिंग हासिल की और ग्रैंड स्लैम हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया, मोनिका सेलेस। मोनिका सेलेस का नाम वुमेन्स टेनिस के सबसे आउटस्टैंडिंग खिलाड़ियों में शुमार होता है। सन 1971 2 दिसंबर को नोवी साद, जो उस वक्त यूगोस्लाविया का हिस्सा था, वहां मोनिका सेलेस पैदा होती हैं। और सेलेस ने बहुत ही छोटी उम्र में टेनिस शुरू कर दिया और उनकी एग्रेसिव बेसलाइन गेम ने जल्द ही दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। प्रोफेशनल टेनिस में अपना डेब्यू 1988 में किया और सिर्फ कुछ सालों में मोनिका सेलेस ने वर्ल्ड टेनिस की टॉप खिलाड़ियों में जगह बना ली। 1990 में इटालियन ओपन जीतकर उन्होंने अपना पहला मेजर WTA टाइटल हासिल, WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, जिसके तहत कई टूर के मैचेस होते हैं, जैसे कि मेंस टेनिस में ATP हम कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, वहीं WTA दे लुक आफ्टर द वुमेन्स प्रो टेनिस। तो इसी साल उन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता और वो ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र चैंपियंस में शामिल हो गई। लेकिन सेलेस का असल गोल्डन पीरियड 1991 से 1992 के दरमियान आया। 1991 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन जीते। 1992 में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन के टाइटल्स डिफेंड किए, बाखूबी डिफेंड किए। और इस दौर में उनकी पावरफुल 200 ग्राउंड स्ट्रोक्स और यूनिक 200 स्टाइल ने ओपोनेंट्स के लिए बहुत मुश्किल पैदा की। अगर करियर की बात करूं तो कुल 9 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते हैं और इनमें 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 फ्रेंच ओपन और 2 US ओपन टाइटल शामिल हैं। विंबलडन में वो 1992 में रनर अप रही। उनकी सबसे अगर रिमार्केबल अचीवमेंट की अगर बात करूं तो वो आया था 1990 से 1992 तक, जहां पे उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव फ्रेंच ओपन टाइटल जीते। 1990 का फ्रेंच ओपन टाइटल उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम था, जबकि 1992 में उन्होंने अपनी डोमिनेंस को मजीद मजबूत किया। मोनिका सेलेस मार्च 1991 में पहली बार WTA वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग पर पहुंची। वो उस वक्त सिर्फ 17 साल और 99 दिन की थी। उन्होंने टोटल 178 वीक्स वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग पर गुजारे। 1993 में उनके करियर को एक इंतहाई सदमा पहुंचा, जब जर्मनी के हैमबर्ग शहर में एक टेनिस मैच के दौरान एक स्पेक्टेटर ने उन पर हमला किया और उन्हें पीठ में छुरा मारा। इस वाकये ने मोनिका सेलेस के करियर को गहरा मुतासिर किया और वो तकरीबन 2 साल कॉम्पिटिटिव टेनिस से दूर रहीं। लेकिन उन्होंने कमबैक किया 2 साल के बाद 1995 में, और कमबैक के बाद भी उन्होंने अपनी क्लास का मुजाहिरा किया और 1996 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर अपना नवा और आखिरी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल हासिल किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी सेलेस ने अपनी मुल्क की नुमाइंदगी की। उन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी इंटरनेशनल टेनिस में हिस्सा लिया और फेड कप में अमेरिकन टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ओवरऑल प्रोफेशनल करियर में 53 WTA सिंगल्स टाइटल्स और उनकी करियर प्राइज मनी की बात करूं तो $14 million से ज्यादा रही। दोस्तों मोनिका सेलेस के नाम सिर्फ उनके ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की वजह से याद नहीं किया जाता, बल्कि उनकी पावरफुल पर्सनालिटी, यूनिक प्लेइंग स्टाइल और मुश्किल हालात के बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी की वजह से भी वो स्पोर्ट्स हिस्ट्री का एक अहम नाम है। तो दोस्तों ये थी कहानी मोनिका सेलेस की, एक ऐसी चैंपियन जिन्होंने टीनेज ईयर्स में टेनिस पर हुकूमत की, वर्ल्ड नंबर वन बनी, 9 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते और फिर मुश्किल तरीन हालात का सामना करके कोर्ट पर वापसी की। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प खिलाड़ी की कहानी के साथ हम आज होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107.7 PM, वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। क्या हाल है जी आपके बढ़िया? कुछ तो काम आया होगा, कभी ना कभी किसी एपिसोड में तो लगा होगा यार कबीर क्या काम की चीज बताई। ऐसी आज भी मैं काम की चीजें बताऊंगा आपको, और कुछ ऐसी खामखा चीज भी होती है जिनमें जिनसे आपका टाइम पास हो सकता है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके नाम आप नोट कर सकते हैं, एंड दे आर रियली रियली रियली हेल्पफुल। एक तो मेरे साथ अभी तक जुड़ी हुई है, ये वेबसाइट बड़ी खास है। तो शुरू करते हैं वेबसाइट नंबर वन, जिसका नाम है 50languages.com, 50languages.com जो इसका नाम है, वैसे इसका काम है बस 50 आपको लिखना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है 50। तो आप दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस इससे सीख सकते हैं और इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। अब ऐसा तो नहीं है आपको कभी कोई एंशिएंट भाषा सीखनी तो बात दूसरी है, मगर जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जो इंसान सीखना चाहता है उसमें अरबिक है, उसमें स्पेनिश है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, कोई भी भाषा आपको सीखनी है ग्रामर के साथ साथ उसके सेंटेंस फॉर्मेशंस, एक एक चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी और काफी इजी टू यूज है। इनफैक्ट मैं स्पेनिश के कुछ वर्ड्स यहाँ से सीख रहा हूँ, हालांकि मेरे आसपास कोई बोलने वाला नहीं है स्पेनिश, एवं खामखा खुद से बात करता रहता हूँ, बट काम की चीज बहुत है। तो अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि कोई ये पैसा नहीं मांगता आपसे, फ्री फंड में बहुत सारी चीजें दे देती है वेबसाइट। सो ट्राई दिस वन आउट, 50languages.com, 50 फिर languages.com, ठीक है बड़े आगे बढ़े। ओके अगली वेबसाइट का नाम है doodlefonts.app, यानी कि ऐप doodlefonts.com। अब ये जो है ये काम की भी हो सकती है और ये मजे के लिए भी हो सकती है, पर अब बता देता हूं आपको। चलो doodlefonts.app जो वेबसाइट है इस पे आप खुद के फॉन्ट्स बना सकते हैं। आई नो इट साउंड्स बिजार इन योर हेड राइट नाउ, ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन आप लिटरली बना सकते हैं। हालांकि आप वो क्या कहते हैं, कैसे समझाऊं मैं, हाथ आपका पेंट ब्रश की तरह मूव करेगा तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपकी राइटिंग जनरली मेरे जैसी है तो फिर तो ये वेबसाइट आपके लिए नहीं है। बट स्टिल आपकी राइटिंग खराब हो अच्छी हो जैसे भी हो, आप अपने तरीके से फॉन्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। सोचा था कभी 20 साल पहले ऐसा कुछ आएगा दुनिया में? भाई मैंने फॉन्ट्स से रिलेटेड तो नहीं सोचा था। तो ये वेबसाइट बहुत कमाल की है, इफ यू वांट टू जस्ट एक्सपेरिमेंट विद फॉन्ट्स, यू नो समटाइम्स यू वांट टू शो पीपल के देखो ऐसा फॉन्ट दे गया आएगा कहीं, तो ये आपके काम आ सकती है। डूडल doodlefonts doodlefonts.app, ट्राई दिस वन आउट। ओके बढ़ते हैं अगली ऐप की तरफ या वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है messenger.abito.co, messenger messenger messenger.abito.co। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप लिटरली एक बहुत ही कोजी गेम खेल सकते हैं, एंड इसकी ग्राफिक्स भी बढ़िया है यार। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी कोई ऐसी फ्री वेबसाइट बताता हूँ क्या उसकी ग्राफिक्स बढ़िया होंगे, देन आई जज इट एंड देन आई टेल यू, मैं सही बता रहा हूँ ये इतनी कमाल की चीज है। ये जो होने लगा है ना, ये कोडिंग के थ्रू ये लोग बनाने लगे हैं ऐसे गेम्स जो आप सिंपली बस एक वेबसाइट के क्लिक पे जाके आप खेल सकते हैं, ये बहुत कमाल का है और आने वाले वक्त में आई एम प्रीटी श्योर इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोजी लिटिल गेम आराम से घूमने फिरने वाला, तो ये बहुत बढ़िया है भाई, messenger.abito.co, abito abito। कुछ भी दिक्कत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बढ़ जाए आगे, अब न्यूज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो खबर दरअसल ऐसी है कि रिसेंटली आप देखेंगे कई सारी चीजें महंगी हो रही हैं और मैं इस बारे में बात करते रहता हूं सो दैट यू आर अवेयर ऑफ इट। अभी लैपटॉप से लेकर गैजेट्स होंगे, गेमिंग कंसोल्स हो गए, एवरीथिंग इज गोइंग टू शूट अप और ये चलता रहेगा कुछ वक्त तक। अभी रिसेंट टाइम्स में देखा होगा सोनी ने भी ये कहा है कि जो प्ले स्टेशन कंसोल है उनका उसमें वो फिजिकल डिस्क शामिल ही नहीं करेंगे, बिकॉज वो एनवायरमेंटल वैसा कुछ नहीं है, खर्चा बचाने वाले सीन है क्योंकि दे नो ऑलरेडी बहुत महंगा बिक रहा है उनका, तो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। मगर एक और चीज इसमें आ गई है जो गेमर्स के लिए बुरी खबर हो सकती है। तो नाउ प्लेस्टेशन इज डूइंग समथिंग वेरी वियर्ड, उन्होंने कहा कि आप जो ऑनलाइन गेम खरीदेंगे आपने खेल लिया बहुत बढ़िया, पर अगर आपने कोई प्लेस्टेशन पे गेम खरीद लिया ठीक है और आपने इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रखा है अपने प्लेस्टेशन का और आप कहीं घूमने फिरने चले गए, तो आप जब वापस आएंगे 30 दिन के बाद, ये मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, तो आपका गेम चला जाएगा, आपको लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं सोने वालों से झगड़ लूंगा जाके, बट दिस इज जस्ट अ न्यूज, और तो इसका एक ही तरीका है, रेस्ट मोड में प्ले स्टेशन को रखे. एंड फॉर नाउ दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ. ये थी टेक अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड.
1: आप सुन रहे हैं FM 107. FM 107. दिल से देसी.
2: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर हफ्ते एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते हैं. और आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं वो सिंगल्स के लिए है. क्या है ये स्कैम? ये स्कैम है मैरिज स्कैम. कैसे काम करता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे. दोस्तों, मैरिज स्कैम एक ऐसा धोखा है जहां प्रिडेटरी स्कैमर्स स्पेशलाइज्ड मैट्रिमोनियल वेबसाइट और डेटिंग एप्लीकेशंस का गलत इस्तेमाल करते हैं. ये फ्रॉड करने वाले लोग उन मासूम लोगों को टारगेट करते हैं जो सच में शादी या एक सीरियस लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की तलाश में होते हैं. इस मकसद के लिए वो अपनी हाईली डिटेल्ड और फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं ताकि लोग उन पर यकीन कर सकें. बात शुरू होते ही ये स्कैमर्स बहुत जल्दी गहरी मोहब्बत का इजहार करते हैं और पूरी गुफ्तगू को, पूरी बात को शादी की तरफ हल्के हल्के ले जाते हैं, जिससे विक्टिम के दिल में एक झूठा सुकून और भरोसा यानी कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो जाता है. विक्टिम का ट्रस्ट पूरी तरह जीत लिया जाता है तो स्कैमर अचानक झूठी और बहुत स्ट्रेसफुल इमरजेंसीज खड़ी कर देता है, जैसे कि कोई अचानक लीगल मसला हो गया है, बाहर के मुल्क में उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया है, या उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, या उनका डेबिट कार्ड खो गया है, या फिर उनका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, या किसी करीबी रिश्तेदार की अचानक तबीयत खराब होना. वो विक्टिम को इमोशनली ब्लैकमेल यानी कि गिल्ट ट्रिप करते हैं ताकि वो इन मसाइल को हल करने के लिए एक कोई रकम दे दें, या कोई एक थोड़े पैसे दे दें, या इमरजेंसी फंड्स दे दें. जैसे ही विक्टिम का बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है, स्कैमर्स हर जगह से ब्लॉक करके बिल्कुल गायब हो जाते हैं. कई बार ये आपको कोई ऐसा स्कैनर देते हैं या फिर बैंक का डिटेल देते हैं जहां पर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं. पैसे ट्रांसफर करने के बाद आपको ये कहते हैं कि हम कुछ दिन में पैसे वापस कर देंगे. पहला तरीका है कि ये पैसे लेने के बाद गायब हो जाते हैं. दूसरा तरीका ये है कि ये पैसे लेने के बाद आपसे बात करते हैं और ये बात थोड़ी और लंबी चलती है, ये कुछ पैसे आपको वापस करते हैं. मिसाल के तौर पे अगर 100 रियाल लिया है इन्होंने तो उसमें से ये 20% या 20 रियाल आपको वापस भी करेंगे, तो आपको यकीन हो जाता है कि हाँ ये वापस करने वाला शख्स है. लेकिन बीच में एक बार फिर से इसी तरह की इमरजेंसीज बताई जाती हैं और दोबारा आपसे 100 रियाल लिया जाता है या 150 रियाल लिया जाता है और फिर वो गायब हो जाते हैं. ऐसे में आपका डबल नुकसान होता है और ये अपना डिटेल, अपना वो प्रोफाइल, अपना बैंक नंबर या फिर सारी जो डिटेल्स हैं वो बंद करके गायब हो जाते हैं, अपना फोन नंबर बंद करके गायब हो जाते हैं और आप इनको ट्रैक नहीं कर सकते. लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है. क्या तरीके हैं इन मैरिज स्कैम से बचने का, इस पर अगर हम बात करें तो बातचीत को स्लो रखें और जल्दबाजी कभी ना करें. अगर कोई शख्स मिलते ही बहुत जल्दी शादी की बातें करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करता है, अचानक बहुत ज्यादा मोहब्बत का दावा करता है, तो होशियार हो जाएं, असली रिश्ते बनने में वक्त लगता है. उसके अलावा पैसे भेजने से बिल्कुल इनकार करें. कभी कभार ऐसा होता है कि हम इमोशनली किसी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और जब इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हैं तो उनके रिलेटिव से, उनकी परेशानियों से भी कनेक्ट होने लगते हैं और ऐसे में उनकी मदद करते हैं क्योंकि दिल तो आपका साफ है. लेकिन इस साफ दिल का फायदा स्कैमर्स उठाते हैं. आप उनकी परेशानी को अपना समझते हैं और कुछ पेमेंट कर देते हैं. सबसे बड़ा रूल यही है कि जिस शख्स से आप ऑनलाइन मिलते हैं और कभी फिजिकली मिले ही नहीं तो उसे किसी भी सूरत में पैसे या तोहफे ना भेजें, चाहे उनकी इमरजेंसी कितनी ही सच्ची क्यों ना हो. उसके अलावा बैकग्राउंड चेक हमेशा करें, वेरीफाई करें. उनकी दी गई फोटोज को रिवर्स इमेज सर्च के जरिए चेक करें कि कहीं वो किसी और की चोरी की हुई फोटोज तो नहीं है. इसके अलावा उनके कहे गए दावों को हमेशा फैमिली और दोस्तों के जरिए वेरीफाई करने की कोशिश करें. एक और तरीका है, जो तरीका है आपको सोशल मीडिया पे डीप एनालिसिस करने का. जिस शख्स का प्रोफाइल आप देख रहे हैं किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, उनको सोशल मीडिया पे सर्च करें. कितने लंबे वक्त से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और अगर वो बहुत लंबे वक्त से एक्टिव हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कैमर नहीं होगा. वो कितना जेन्युइन है उससे बात करके पता चलेगा, उनके रिलेटिव के बारे में जानने को पता चलेगा. आप उनसे सामने से मुलाकात करें, उनके घर के बारे में समझें, उनको जानें, उसके अलावा उनके साथ बैठें उठें और उनके घर को भी देखें, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये बंदा स्कैमर है या नहीं है। इस तरीके के स्कैमर्स आजकल सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, आपको होशियार रहने की जरूरत है और इन सॉल्यूशंस पर काम करने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते हैं FM 107, दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: Smart money. Hello and welcome to our segment called Smart Money. Main hoon aapki dost, aapki host Nazia. पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज की इस डिजिटल दुनिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है और ये है AI एंड पर्सनल फाइनेंस। जी हाँ, सबसे पहले ये समझते हैं कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको जल्दी से क्विक रिकैप की तरह आप तक पहुँचाऊँ तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा को एनालाइज करके स्मार्ट डिसीजंस लेने में हमारी और आपकी मदद करती है। यानी कंप्यूटर सिस्टम जो इंसान की तरह सीख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं और आपको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि AI का हमारे पैसों और डेली फाइनेंशियल लाइफ से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, पहले पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग के लिए ना लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाते थे, स्प्रेडशीट्स बनाते थे, नोटबुक्स में अपना खर्चा लिखते थे। आज AI की वजह से ये सब बहुत आसान हो गया है। अगर आप कोई बजटिंग ऐप यूज करते हैं, चांसेस है कि उसमें AI टेक्नोलॉजी शामिल हो। ये एप्स आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालाइज करती है और बताती है कि आपका पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है। मिसाल के तौर पे, अगर आप हर महीने रेस्टोरेंट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं, AI आपको अलर्ट कर सकती है और बजट मेंटेन करने के सजेशंस देती है। AI का एक और बड़ा फायदा है एक्सपेंस ट्रैकिंग का। अक्सर महीने के एंड में हम सोचते हैं कि सैलरी तो ठीक थी लेकिन पैसा गया कहाँ। जी हाँ, AI पावर टूल्स आपके ट्रांजेक्शंस को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट, बिल्स, एंटरटेनमेंट और सेविंग्स। इससे आपको आपकी फाइनेंशियल पिक्चर्स ज्यादा क्लियर नजर आती है। AI सेविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है। कुछ मॉडर्न बैंकिंग एप्स आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को एनालाइज करके सजेस्ट करती हैं कि हर महीने कितनी अमाउंट सेव करना रियलिस्टिक होगा। कुछ एप्स तो ऑटोमेटिकली स्मॉल अमाउंट सेव भी कर देती हैं, जैसे इमरजेंसी फंड बिल्ड करना आसान हो जाता है। दोस्तों, AI इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी अपना रोल अदा कर रही है। आजकल रोबो एडवाइजर्स नाम की सर्विस अवेलेबल है जो कि इन्वेस्टर्स की गोल्स, एज और रिस्क टॉलरेंस को देखकर इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करती है। ये टेक्नोलॉजी बिगनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को समझना,

शुरू करना आसान बना रही है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है। AI एक पावरफुल टूल है, AI फाइनेंशियल एक्सपर्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। हर रिकमेंडेशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजंस, खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स और लोन से मुतालिक बातों को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। AI प्रेडिक्शंस डेटा पर बेस्ड होते हैं और मार्केट कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं। आज AI फ्रॉड डिटेक्शन में भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AI की मदद से सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपके अकाउंट में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नजर आए तो AI सिस्टम्स उसे आसानी से डिटेक्ट करके पहचान के वार्निंग जनरेट कर सकता है। यानी AI सिर्फ पैसे मैनेज करने का नाम नहीं है, बल्कि प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करती है। अगर समझदारी से यूज की जाए तो ये बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत आसान बना सकती है। लेकिन याद रखना, AI आपको गाइड कर सकती है, लेकिन आपके पैसों का फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। स्मार्ट मनी का आज का लेसन ये है कि टेक्नोलॉजी को अपना हेल्पर बनाइए, अपना डिसीशन मेकर नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

के पीछे फुल एक साइकोलॉजी है, फुल एक रवैया, इंसानी रवैया है, इंसानी सोच है, अखलाकी काफ़ी सारे मामलात होते हैं, और यानी एक दूसरी दुनिया है वो, तो वो अपनी शख्सियत, हालात, सलाहियत, ज़रूरत के साथ एक मुकम्मल इंसान की हैसियत से देखा जाए, ठीक है। तो इसी वजह से यानी आगे अगर कोई आपके पास इस तरह आपके सामने आकर बैठ कर कहे कि भाई मुझे मशवरा दीजिए, तो आजकल तो हम मशवरा देने के लिए बहुत आगे आगे रहते हैं। हमारे ही एक सीनियर हैं, उनसे हम यानी काफ़ी वक्त पहले की बात है कि उनसे हमारी गुफ्तगू थी, को बताइए मैं मशवरा देने वाला नहीं हूँ। आगे बढ़कर सिर्फ मशवरा देना और ये मशवरे पर मशवरा देते रहना, कई लोगों में ऐसी आदत पड़ी हुई होती है कि वो आगे बढ़कर सिर्फ आपको मशवरा देना शुरू करते हैं। तो दरअसल देखें, आपकी ज़िंदगी की जो कामयाबियाँ हैं, आप दूसरों पर इसको जो है ना, यानी दूसरों पर ये कामयाबियाँ इसको आप उन पर मत डाल दीजिए, ये फेंक दीजिए, बात इस तरह कहूँ जो मनफी अंदाज में कह रहा हूँ तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि आपने उसकी हालत और तबीयत तो सब कुछ समझनी है। हिकमत सिर्फ जो है ना जवाब देने में नहीं है या फिर मशवरा देने में नहीं है, हिकमत तो ये है कि सही इंसान को सही मौके पर उसके हाल के मुताबिक सही बात कही जाए। तो चलें समय निकराम हमारी गुफ्तगु को हम समेट लेते हैं। आज हमने सवाल पर गुफ्तगु की और ये भी बताया कि भाई देखो, सवाल ये नहीं कि आप चंद अल्फाज जो है ना फेंक दिए आपने किसी दूसरे पर, अब आप वो यानी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी दोबारा आपके बॉल को वापस कर दे। हाँ, जैसे हम फुटबॉल की दो टीमें होती हैं, तो आपने बॉल फेंक दी उसकी तरफ, अब वो आपकी तरफ बॉल फेंकेगा। बात ऐसी नहीं है, बल्कि सवाल अल्फाज का मजमू नहीं, उसके पीछे एक इंसान, उसके हालात, उसकी ज़रूरत खड़ी होती है। तो अगर कोई बच्चा अपने वालिद के पास आता है, चेहरे पर कुछ संजीदगी है, जहन में कोई सवाल काफ़ी देर से गर्दिश कर रहा है, अब वो हिम्मत करके पूछ भी लेता है, तो याद रखिए उस लम्हे वालिद के पास दो रास्ता है, या तो फौरन जवाब देकर बात ख़त्म कर दे, या जवाब से पहले बच्चे को ये एहसास दिलाए कि तुमने जिस बात पर गौर किया है वो गौर करने के काबिल थी, ठीक है। और ये छोटा सा फ़र्क जो है ना, ये बहुत मैटर करता है। कभी ये फ़र्क तय करता है कि बच्चा अगली मरतबा अपनी उलझन लेकर हमारे पास आएगा या किसी और दरवाज़े पर जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत में हमें एक नहायत जो है ना, ये पहलू, दिलनशीन पहलू हम इसे कह सकते हैं, ये दिखाई देता है कि अच्छे सवाल को यानी अच्छे सवाल की कदर की जाती थी। बिल्कुल हाँ, फ़र्ज़ कीजिए बेटा कोई संजीदा सवाल करता है और वालिद जवाब देने से पहले कहता है कि हाँ ये बहुत अहम सवाल है, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। ये बेटी किसी एक बात की तरफ तवज्जो दिलाती है जिसके बारे में आपने शायद तवक्कु नहीं की, तो आप कहते हैं अरे तुमने बड़ी बारीक बात महसूस की, आओ इस पर बात करते हैं। हाँ जी, तो ये दरअसल सवाल करने वाले के लिए एक खामोश दावत है कि सोचते रहो, पूछते रहो, अपने जहन के दरवाजे मत बंद करो। हाँ जी, तो यही दरअसल नबवी रहनुमाई भी इसी की तरफ है। ज़रा एक सफ़र की तरफ हम निकलते हैं, इससे पहले कि बस दो मिनट में हम एक सफ़र करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हैं, तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी सवारी पर आप सल्लम के करीब हो जाते हैं, तो वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, जहन्नम से दूर कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इस सवाल की कदर मुतय्यन कर दी, लक़द सअलतनी अन अज़ीमिन, अरे तुमने मुझसे बहुत बड़ी बात पूछी है। तो देखिए कितना खूबसूरत तरबियती लम्हा है, जवाब अभी आया भी नहीं मगर मुआज़ज़ल्लाहु अन्हु को पहले ये मालूम हो गया कि जिस सवाल ने मेरे दिल को बेचैन किया है वो वाकई अहम सवाल है। और यही वालिदैन, असातिज़ा और हर उस शख्स के लिए गहरा इंसानी सबक मौजूद है जिसके पास लोग अपने सवाल लेकर आते हैं। तो सामने कराम, हम दूसरों को जो हमारे बच्चे हैं, हमारे
ماتحت کے افراد ہیں ان کو وہ اسپیس دیں تاکہ وہ صحیح سے سوال کریں اور ان کے سوال کی عظمت کو بھی ہمیں پہچاننی چاہیے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدردانی کی لقد سألتنی عن عظیم اوئے ہوئے مجھے تو اس جملے سے بہت محبت ہو گیا ہے لقد سألتنی عن عظیم سوال کرنے والے کے اندر موجود شعور کو زندہ کر دے گا یہ جملہ ارے بھئی تم نے تو مجھے بہت عظیم چیز کے بارے میں پوچھا ہے لقد سألتنی عن عظیم فداک ابی و امی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقہ آپ کے لب و لہجے اور آپ کی شخصیت پر ہم سب میں اور میرا ماں باپ سب فدا ہیں یا رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی اتباع ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیان اور نافرمانی کرے گا وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرے گا تو قرآن و سنت یہ دو پہلو ہیں جن کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور سامعین کرام اسی کے ساتھ انہی پیغامات کے ساتھ ہم آج کے اس حلقے سے اجازت چاہتے ہیں تکنیکی معاون محمد حسن السودانی اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اجازت دیجیے مع السلامہ

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

0: अच्छा साथी वो ऊपर उठाता है। सलफ़े सालेहीन की एक और दुआ भी थी, नाऊज़ु बिका मिन जारिस सू, यानी अल्लाह बुरे हमसाये से पनाह मांगते हैं। हमसाया अगर अच्छा हो तो जिंदगी आसान हो जाती है, अगर बुरा हो तो घर भी तंग महसूस होता है। और इसी वजह से हमसाया और पड़ोस की अहमियत के मद्देनजर इस्लाम ने भी पड़ोसी के हुकूक बहुत बुलंद रखे हैं। इसी तरह दुआ का अगला जुमला है, ए अल्लाह ऐसे मुनाफिक से बचा जो सामने खैर दिखाए। कुछ लोग जबान से मोहब्बत दिखाते हैं लेकिन दिल में हसद रखते हैं, वो मुस्कुराते हैं मगर नीयत साफ नहीं होती। तो ऐसे मुनाफिक से भी हम अल्लाह के पनाह तलब करते हैं जो सामने खैर दिखाए और अंदर दुश्मनी और शर छुपाए रखते हैं। ए अल्लाह हमें बसीरत अता फरमा और रुज़ुक़ना बसीरा। बसीरत कहते हैं सही पहचान, दिल की समझ, सच और झूठ में फर्क कर पाना, ये बहुत बड़ी नेमत होती है। कैसी नेमत? इस बसीरत के जरिए हम दुश्मन और दोस्त में फर्क कर सकते हैं। ए अल्लाह हमें सालेहीन की माइयत नसीब फरमा, यानी हमारे इर्द गिर्द नेक लोगों की कसरत फरमा। नेक लोगों की सहबत आप सब जानते हैं कि ये तो दिल जिंदा करती है, ईमान बढ़ाती है, सीधे रास्ते और सिरात मुस्तकीम पर चलने में हमारे लिए आसानी का सबब बनती है। मजीद आगे ये भी कहा गया कि अल्लाह हमें सालेहीन ही में शामिल फरमा, सिर्फ उनकी सुधी नहीं बल्कि हमें इसके साथ साथ सोहबत से मुस्तफीद होते हुए हमें इन सालेहीन ही में शामिल फरमा, क्योंकि सिर्फ अच्छों के साथ रहना तो काफी नहीं, खुद अच्छा वह भी जरूरी है। समय निकराम हमें चाहिए कि हम दोस्त समझ सोच कर दोस्त बनाए। एक बड़ी बात हमारे आज की दुआ में ये भी है कि सोहबत इंसान को दिल दे, इस वजह से हम किसको अपना साहिब बनाएंगे, साथी बनाएंगे, ये कोई मामूली सी बात नहीं बल्कि इस सिलसिले में हमें काफ़ी मोहतात रहना चाहिए। इसी तरह पड़ोस की अहमियत, पड़ोसी जो हमारे बाजू में रहते हैं इनका इख्तियार भी नहायत ज़रूरी है। साथ साथ मुनाफ़िकाना चेहरों से बचे रहना, अल्लाह से बसीरत मांगना, नेक लोगों के करीब रहना, ये सब ऐसे निकात हैं जो हमारे लिए दीन पर चलने को आसान बना देते हैं। अल्लाह सुबहान व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी। Your health matters.
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज का मौजू बहुत ही सिंपल है और वो है पानी। हम सब जानते हैं कि पानी ज़रूरी है लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है और हम अक्सर मुनासिब जो हाइड्रेशन है यानी मुनासिब हमें पानी जितना चाहिए उसे हम भूल जाते हैं। सुबह घर से निकलते हैं, काम शुरू करते हैं, मीटिंग्स हैं, बच्चों के काम हैं, शॉपिंग है और सफ़र, और फिर शाम को याद आता है कि आज हमने पानी बहुत कम पिया। हमारे जिस्म में पानी बहुत से अहम फंक्शंस में हिस्सा लेता है। जब जिस्म में पानी कम हो तो बाज़ अफराद को प्यास महसूस होती है, मुंह खुश्क हो जाता है, थकन, चक्कर या कमजोरी महसूस होती है। यूरिन का रंग भी हाइड्रेशन के बारे में एक बहुत ही जनरल क्लू दे सकता है, अगरचे सिर्फ इसी को हेल्थ असेसमेंट का वाहिद मायार नहीं समझना चाहिए। और गर्मियों में ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है और हमें तवज्जो देनी है अपनी हाइड्रेशन पर, ख़ास तौर पर अगर आप हाइड्रेशन जैसे गर्म मुल्क जैसे हम कतर में हैं, यहाँ जो मौसम है बहुत गर्म होता है और बाहर जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उससे स्वेटिंग ज़्यादा होती है और गर्मी में जिस्म से फ्लू ज़्यादा ज़ाया हो सकता है। इसलिए बाहर जाने से पहले और दिन के दौरान मुनासिब जो फ्लूड्स हैं लेने की आदत डाल लीजिए, यानी पानी जो है वो ज़रूर लीजिए। जूसेस भी आप ले सकते हैं मगर सिर्फ जो आप ख़ुद बनाएं यानी घर में बने हुए। प्यास जिस्म का एक अहम सिग्नल है लेकिन रूटीन में पानी पीना भूलने वालों के लिए रिमाइंडर रखना बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। अपने साथ वाटर बॉटल

रखिए, काम की जगह पर पानी सामने रखिए, घर में भी पानी आसानी से अवेलेबल रखिए, यानी अपने आसपास ही आप पानी जो है वो जरूर रखिए। जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो पानी का मुतबादल नहीं हो सकता।

0: एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और लापर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानी, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और के पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूर हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

0: वॉशिंग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, कूलिंग अप्लायंसेस का कंटिन्यूसली चलते रहना, डोर्स और विंडोज जो होती हैं उनसे ठंडी हवा का बाहर निकल जाना, अननेसेसरी लाइट्स और डिवाइसेस का ऑन रहना। अच्छा, कभी कभी हम एसी को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर रख लेते हैं, मतलब कभी किसी का टेम्परेचर 16 पर होता है, कभी 18 पर होता है, इस पे सेट कर देते हैं और कमरे से निकलकर बाहर बैठ जाते हैं। हम कूलिंग चलती रहती है, हमें बस ये होता है कि हाँ, हमारे दिल को तसल्ली होती है कि हाँ एसी चल रहा है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है बल्कि एनर्जी और रिसोर्सेज पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर ये चीज डालती है। लेकिन कुछ सिंपल हैबिट से हम अपना घर कंफर्टेबल भी बना सकते हैं और एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए को सॉल्यूशन ये है साथियों, कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि समर में इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हम सिंपल टिप्स क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि एसी को मेहरबानी करके स्मार्टली यूज करें। देखिए, एसी टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रखने के बजाय कंफर्टेबल से यूज करें। एसी ने वैसे भी तो कूलिंग करनी है, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें। रेगुलर एसी मेंटेनेंस और फिल्टर्स जो हैं उनकी सफाई किया करें। एसी को अफेक्टिव तरीके से चलाने में ये चीजें मदद करती हैं। आपका अगर फिल्टर एसी का भरा पड़ा होगा कचरे से, तो आप उसका टेम्परेचर कितना भी रख लें, वो प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। दूसरी चीज ये कि डोर्स और विंडोज सही से सील रखें। जब एसी चल रहा होता है तो अपने खिड़की दरवाजों को प्रॉपरली बंद रखें, इससे ठंडी हवा बाहर नहीं जाती और एसी का ज्यादा जो है वो इस्तेमाल भी इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब एसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, तीसरी चीज है नेचुरल लाइट का फायदा उठाएं। देखिए, दिन के वक्त ना जहां मुमकिन हो नेचुरल लाइट का यूज करें। मुझे तो याद नहीं पड़ता भाई, दिन के टाइम मेरे घर में मैं कोई एक बत्ती भी जलाती हूं, क्योंकि माशाल्लाह से दिन की रोशनी इतनी तेज होती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास अच्छी खासी विंडो हैं तो आप उन्हें उनकी बजाय लाइट्स ऑन करें। इट्स वेरी अननेसेसरी, इससे अननेसेसरी लाइट्स ऑन रखने की जरूरत कम हो सकती है। अच्छा, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस चूज करें ना। जब नया अप्लायंस खरीदें तो एनर्जी एफिशिएंट मोड्स को कंसीडर करें। ये लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करने में मदद कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनयूज्ड डिवाइसेस को बंद करें। ये मैं बहुत दफा बोल चुकी हूँ कि आपका टीवी, चार्जर, कंप्यूटर और दूसरे तीसरे जो डिवाइसेस होते हैं ना, जो यूज में नहीं होते, उन्हें स्विच ऑफ कर दें प्रॉपरली। छोटी छोटी एनर्जी सेविंग्स मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क करती हैं साथियों। अच्छा, अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ली जाए ना साथियों, तो अगर एक फैमिली समर में एसी को स्मार्ट टेम्परेचर पर रखे, रूम से निकलते वक्त लाइट्स बंद करें, कर्टन्स का यूज करके आप कह लें कि वो जो धूप होती है ना गरम गरम, उसका अंदर आना कम कर दे और अनयूज्ड अप्लायंसेस स्विच ऑफ करे, तो वो अपनी डेली लाइफ की एनर्जी यूज को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ फैमिलीज समर रूटीन बना लेती हैं कि भाई सुबह से लेकर शाम तक ना वो घर में नेचुरल वेंटिलेशन का फायदा उठाते रहते हैं। दिन के पीक आवर्स में वो कूलिंग को स्मार्टली मैनेज करते हैं। ये छोटी छोटी आदतें ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बचाती हैं बल्कि रिस्पॉन्सिबल लाइफ को भी प्रमोट करती हैं। तो साथियों, आज का इकोसो चैलेंज आपके लिए ये है कि आज से एक वीक के लिए, मतलब अगले आने वाले हफ्ते के लिए, आप अपने घर में एक एनर्जी सेविंग हैबिट ट्राई जरूर करें। चाहे एसी को स्मार्ट यूज करना हो, उसका टेम्परेचर 22-24 पे रखें, अननेसेसरी लाइट्स बंद करना हो या अप्लायंसेस को प्रॉपर्ली स्विच ऑफ करना हो। और हाँ, हमें जरूर बताएं समर में आपके घर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किस की वजह से यूज होती है, एसी, फ्रिज, लाइट्स या कोई और अप्लायंस। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, एनर्जी बचाना सिर्फ बिल कम करना नहीं होता बल्कि फ्यूचर की रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना भी होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। हमें कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम व करम का मामला करना है। वैसे उमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी कुछ ज़्यादती कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुआ को याद रखें कि भाई हम जैसे ही मामला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए यही दुआ करेंगे। रब्बी, ए रब, ए मेरे रब, यानी वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, पाला और नेमतें अता फरमाईं, इरहमहुमा, वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। तो सामने कराम, वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं,

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और जहनी तरक्की के मुताबिक हों। गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं, अगर सही इंतखाब किया जाए। आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। क्या हाल है जी आपके? बढ़िया। कुछ तो काम आया होगा, कभी ना कभी किसी एपिसोड में तो लगा होगा यार कबीर क्या काम की चीज बताइए। ऐसी आज भी मैं काम की चीजें बताऊंगा आपको, और कुछ ऐसी खामखा चीज भी होती है जिनमें जिनसे आपका टाइम पास हो सकता है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके नाम आप नोट कर सकते हैं, एंड दे आर रियली रियली रियली हेल्पफुल। एक तो मेरे साथ अभी तक जुड़ी हुई है ये वेबसाइट, बड़ी खास है। तो शुरू करते हैं। वेबसाइट नंबर वन जिसका नाम है 50languages.com, 50languages.com जो इसका नाम है, वैसे इसका काम है बस 50 आपको लिखना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है 50। तो आप दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस इससे सीख सकते हैं और इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। अब ऐसा तो नहीं है आपको कभी कोई एंशिएंट भाषा सीखनी तो बात दूसरी है, मगर जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जो इंसान सीखना चाहता है उसमें अरबिक है, उसमें स्पेनिश है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, कोई भी भाषा आपको सीखनी है ग्रामर के साथ साथ उसके सेंटेंस फॉर्मेशंस, एक एक चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी और काफ़ी ईजी टू यूज़ है। इनफैक्ट मैं स्पेनिश के कुछ वर्ड्स यहाँ से सीख रहा हूँ, हालांकि मेरे आसपास कोई बोलने वाला नहीं है स्पेनिश, एवं खाम खा खुद से बात करता रहता हूँ, बट काम की चीज़ बहुत है। तो अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि कोई ये पैसा नहीं मांगता आपसे, फ्री फंड में बहुत सारी चीज़ें दे देती है वेबसाइट। सो ट्राई दिस वन आउट, 50languages.com, 50 फिर languages.com, ठीक है बड़े आगे बढ़े। ओके, अगली वेबसाइट का नाम है doodlefonts.app, यानी कि ऐप doodlefonts.com। अब ये जो है ये काम की भी हो सकती है और ये मजे के लिए भी हो सकती है, पर अब बता देता हूं आपको। चलो doodlefonts.app जो वेबसाइट है इस पे आप खुद के फॉन्ट्स बना सकते हैं। आई नो इट साउंड्स बिजार इन योर हेड राइट नाउ, ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन आप लिटरली बना सकते हैं। हालांकि आप वो क्या कहते हैं, कैसे समझाऊं मैं, हाथ आपका पेंट ब्रश ब्रश की तरह मूव करेगा तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपकी राइटिंग जनरली मेरे जैसी है तो फिर तो ये वेबसाइट आपके लिए नहीं है। बट स्टिल आपकी राइटिंग खराब हो अच्छी हो जैसे भी हो, आप अपने तरीके से फॉन्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। सोचा था कभी 20 साल पहले ऐसा कुछ आएगा दुनिया में? भाई मैंने फॉन्ट से रिलेटेड तो नहीं सोचा था। तो ये वेबसाइट बहुत कमाल की है। इफ यू वांट टू जस्ट एक्सपेरिमेंट विद फॉन्ट्स, यू नो समटाइम्स यू वांट टू शो पीपल के देखो ऐसा फॉन्ट दे गया आएगा कहीं, तो ये आपके काम आ सकती है। डूडल doodlefonts doodlefonts.app, ट्राई दिस वन आउट। ओके, बढ़ते हैं अगली ऐप की तरफ या वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है messenger.abito.co, Messenger, messenger, messenger.abito.co। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप लिटरली एक बहुत ही कोजी गेम खेल रहे हैं, एंड इसकी ग्राफिक्स भी बढ़िया है यार। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी कोई ऐसी फ्री वेबसाइट बताता हूँ क्या उसकी ग्राफिक्स बढ़िया होंगे, देन आई जज इट एंड देन आई टेल यू। मैं सही बता रहा हूँ, ये इतनी कमाल की चीज है, ये जो होने लगा है ना ये कोडिंग के थ्रू ये लोग बनाने लगे हैं ऐसे गेम्स जो आप सिंपली बस एक वेबसाइट के क्लिक पे जाके आप खेल सकते हैं, ये बहुत कमाल का है और आने वाले वक्त में आई एम प्रीटी श्योर इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोजी लिटिल गेम आराम से घूमने फिरने वाला, तो ये बहुत बढ़िया है भाई, messenger.abito.co, abito abito। कुछ भी दिक्कत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, बढ़ जाए आगे, अब न्यूज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अपडेट। तो खबर दरअसल ऐसी है कि रिसेंटली आप देखेंगे कई सारी चीजें महंगी हो रही हैं और मैं इस बारे में बात करता रहता हूं सो दैट यू आर अवेयर ऑफ इट। अभी लैपटॉप से लेकर गैजेट्स होंगे, गेमिंग कंसोल्स हो गए, एवरीथिंग इज गोइंग टू शूट अप और ये चल रहेगा कुछ तक। अभी रिसेंट टाइम्स में देखा होगा सोनी ने भी ये कहा है कि जो प्ले स्टेशन कंसोल है उनका उसमें वो फिजिकल डिस्क शामिल ही नहीं करेंगे बिकॉज वो एनवायरमेंटल वैसा कुछ नहीं है, खर्चा बचाने वाले सीन है क्योंकि दे नो ऑलरेडी बहुत महंगा बिक रहा है उनका, तो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। मगर एक और चीज इसमें आ गई है जो गेमर्स के लिए बुरी खबर हो सकती है। तो नाउ प्लेस्टेशन इज डूइंग समथिंग वेरी वियर्ड। उन्होंने कहा कि आप जो ऑनलाइन गेम खरीदेंगे, आपने खेल लिया बहुत बढ़िया, पर अगर आपने कोई प्लेस्टेशन पे गेम खरीद लिया ठीक है और आपने इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रखा है अपने प्लेस्टेशन का और आप कहीं घूमने फिरने चले गए, तो आप जब वापस आएंगे 30 दिन के बाद, ये मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, तो आपका गेम चला जाएगा, आपको लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं सोनी वालों से झगड़ लूंगा जाके, बट दिस इज जस्ट अ न्यूज और तो इसका एक ही तरीका है, रेस्ट मोड में प्ले स्टेशन को रखे। एंड फॉर नाउ दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, ये थी टेक अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107,
6: FM 107,
5: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर हफ्ते एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते हैं। और आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं वो सिंगल्स के लिए है। क्या है ये स्कैम? ये स्कैम है मैरिज स्कैम। कैसे काम करता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, मैरिज स्कैम एक ऐसा धोखा है जहां प्रेडेटरी स्कैमर्स स्पेशलाइज्ड मैट्रिमोनियल वेबसाइट और डेटिंग एप्लीकेशंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रॉड करने वाले लोग उन मासूम लोगों को टारगेट करते हैं जो सच में शादी या एक सीरियस लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की तलाश में होते हैं। इस मकसद के लिए वो अपनी हाईली डिटेल्ड और फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं ताकि लोग उन पर यकीन कर सकें। बात शुरू होते ही ये स्कैमर्स बहुत जल्दी गहरी मोहब्बत का इजहार करते हैं और पूरी गुफ्तगू को, पूरी बात को शादी की तरफ हल्के हल्के ले जाते हैं, जिससे विक्टिम के दिल में एक झूठा सुकून और भरोसा यानी कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो जाता है। जब विक्टिम का ट्रस्ट पूरी तरह जीत लिया जाता है तो स्कैमर अचानक झूठी और बहुत स्ट्रेसफुल इमरजेंसीज खड़ी कर देता है, जैसे कि कोई अचानक लीगल मसला हो गया है, बाहर के मुल्क में उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया है, या उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, या उनका डेबिट कार्ड खो गया है, या फिर उनका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, या किसी करीबी रिश्तेदार की अचानक तबीयत खराब होना। वो विक्टिम को इमोशनली ब्लैकमेल यानी कि गिल्ट ट्रिप करते हैं ताकि वो इन मसाइल को हल करने के लिए एक कोई रकम दे दे, या कोई एक थोड़े पैसे दे दे, या इमरजेंसी फंड्स दे दे। जैसे ही विक्टिम का बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है, स्कैमर्स हर जगह से ब्लॉक करके बिल्कुल गायब हो जाते हैं। कई बार ये आपको कोई ऐसा स्कैनर देते हैं या फिर बैंक का डिटेल देते हैं जहां पर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आपको ये कहते हैं कि हम कुछ दिन में पैसे वापस कर देंगे। पहला तरीका है कि ये पैसे लेने के बाद गायब हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये पैसे लेने के बाद आपसे बात करते हैं और ये बात

0: थोड़ी और लंबी चलती है, ये कुछ पैसे आपको वापस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 100 रियाल लिया है इन्होंने, तो उसमें से ये 20% या 20 रियाल आपको वापस भी करेंगे, तो आपको यकीन हो जाता कि हाँ ये वापस करने वाला शख्स है। लेकिन बीच में एक बार फिर से इसी तरह की इमरजेंसीज बताई जाती हैं और दोबारा आपसे 100 रियाल लिया जाता है या 150 रियाल लिया जाता है और फिर वो गायब हो जाते हैं। ऐसे में आपका डबल नुकसान होता है और ये अपना डिटेल, अपना वो प्रोफाइल, अपना बैंक नंबर या फिर सारी जो डिटेल्स हैं वो बंद करके गायब हो जाते हैं, अपना फोन नंबर बंद करके गायब हो जाते हैं और आप इनको ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, क्या तरीके हैं इन मैरिज स्कैम से बचने का, इस पर अगर हम बात करें तो बातचीत को स्लो रखें और जल्दबाजी कभी ना करें। अगर कोई शख्स मिलते ही बहुत जल्दी शादी की बातें करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करता है, अचानक बहुत ज्यादा मोहब्बत का दावा करता है, तो होशियार हो जाएं, असली रिश्ते बनने में वक्त लगता है। उसके अलावा पैसे भेजने से बिल्कुल इनकार करें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम इमोशनली किसी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और जब इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हैं तो उनके रिलेटिव से, उनकी परेशानियों से भी कनेक्ट होने लगते हैं और ऐसे में उनकी मदद करते हैं, क्योंकि दिल तो आपका साफ है। लेकिन इस साफ दिल का फायदा स्कैमर्स उठाते हैं, आप उनकी परेशानी को अपना समझते हैं और कुछ पेमेंट कर देते हैं। सबसे बड़ा रूल यही है कि जिस शख्स से आप ऑनलाइन मिलते हैं और कभी फिजिकली मिले ही नहीं, तो उसे किसी भी सूरत में पैसे या तोहफे ना भेजें, चाहे उनकी इमरजेंसी कितनी ही सच्ची क्यों ना हो। उसके अलावा बैकग्राउंड चेक हमेशा करें, वेरीफाई करें, उनकी दी गई फोटोज को रिवर्स इमेज सर्च के जरिए चेक करें कि कहीं वो किसी और की चोरी की हुई फोटोज तो नहीं है। इसके अलावा उनके कहे गए दावों को हमेशा फैमिली और दोस्तों के जरिए वेरीफाई करने की कोशिश करें। एक और तरीका है, जो तरीका है आपको सोशल मीडिया पे डीप एनालिसिस करने का। जिस शख्स का प्रोफाइल आप देख रहे हैं किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, उनको सोशल मीडिया पे सर्च करें, कितने लंबे वक्त से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। और अगर वो बहुत लंबे वक्त से एक्टिव हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कैमर नहीं होगा, वो कितना जेन्युइन है उससे बात करके पता चलेगा, उनके रिलेटिव के बारे में जानने को पता चलेगा, आप उनसे सामने से मुलाकात करें, उनके घर के बारे में समझें, उनको जानें, उसके अलावा उनके साथ बैठे उठे और उनके घर को भी देखें, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये बंदा स्कैमर है या नहीं है। इस तरीके के स्कैमर्स आजकल सोसाइटी में बहुत ज्यादा हैं, आपको होशियार रहने की जरूरत है और इन सॉल्यूशंस पर काम करने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते हैं FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेनिस की दुनिया की एक ऐसी लेजेंडरी खिलाड़ी की जिन्होंने बहुत कम उम्र में दुनिया की नंबर वन रैंकिंग हासिल की और ग्रैंड स्लैम हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया, मोनिका सेलेस। मोनिका सेलेस का नाम वुमेन्स टेनिस के सबसे आउटस्टैंडिंग खिलाड़ियों में शुमार होता है। सन 1971 2 दिसंबर को नोवी साद, जो उस वक्त यूगोस्लाविया का हिस्सा था, वहां मोनिका सेलेस पैदा होती हैं। और सेलेस ने बहुत ही छोटी उम्र में टेनिस शुरू कर दिया और उनकी एग्रेसिव बेसलाइन गेम ने जल्द ही दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। प्रोफेशनल टेनिस में अपना डेब्यू 1988 में किया और सिर्फ कुछ सालों में मोनिका सेलेस ने वर्ल्ड टेनिस की टॉप खिलाड़ियों में जगह बना ली। 1990 में इटालियन ओपन जीतकर उन्होंने अपना पहला मेजर WTA टाइटल हासिल किया। WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, जिसके तहत कई टूर के मैचेस होते हैं, जैसे कि मेंस टेनिस में ATP हम कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, वहीं WTA दे लुक आफ्टर द वुमेन्स प्रो टेनिस। तो इसी साल उन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता और वो ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र चैंपियंस में शामिल हो गई। लेकिन सेलेस का असल गोल्डन पीरियड 1991 से 1992 के दरमियान आया। 1991 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन जीते। 1992 में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन के टाइटल्स डिफेंड किए, बाखूबी डिफेंड किए। और इस दौर में उनकी पावरफुल 200 ग्राउंड स्ट्रोक्स और यूनिक 200 स्टाइल ने ओपोनेंट्स के लिए बहुत मुश्किल पैदा की। अगर करियर की बात करूं तो कुल 9 ग्रैंड स्लैम

का फ्रेंच ओपन टाइटल उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम था, जबकि 1992 में उन्होंने अपनी डोमिनेंस को मजीद मजबूत किया। मोनिका सेलेस मार्च 1991 में पहली बार WTA वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग पर पहुंची। वो उस वक्त सिर्फ 17 साल और 99 दिन की थी। उन्होंने टोटल 178 वीक्स वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग पर गुजारे। 1993 में उनके करियर को एक इंतहाई सदमा पहुंचा जब जर्मनी के हैमबर्ग शहर में एक टेनिस मैच के दौरान एक स्पेक्टेटर ने उन पर हमला किया और उन्हें पीठ में छुरा मारा। इस वाकये ने मोनिका सेलेस के करियर को गहरा मुतासिर किया और वो तकरीबन 2 साल कॉम्पिटिटिव टेनिस से दूर रहीं। लेकिन उन्होंने कमबैक किया 2 साल के बाद 1995 में, और कमबैक के बाद भी उन्होंने अपनी क्लास का मुजाहरा किया और 1996 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर अपना नवा और आखिरी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल हासिल किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी सेलेस ने अपनी मुल्क की नुमाइंदगी की। उन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी इंटरनेशनल टेनिस में हिस्सा लिया और फेड कप में अमेरिकन टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ओवरऑल प्रोफेशनल करियर में 53 WTA सिंगल्स टाइटल्स, और उनकी करियर प्राइज मनी की बात करूं तो $14 million से ज्यादा रही। दोस्तों, मोनिका सेलेस के नाम सिर्फ उनके ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की वजह से याद नहीं किया जाता, बल्कि उनकी पावरफुल पर्सनालिटी, यूनिक प्लेइंग स्टाइल और मुश्किल हालात के बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी की वजह से भी वो स्पोर्ट्स हिस्ट्री का एक अहम नाम है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोनिका सेलेस की, एक ऐसी चैंपियन जिन्होंने टीनेज ईयर्स में टेनिस पर हुकूमत की, वर्ल्ड नंबर वन बनी, 9 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते और फिर मुश्किल तरीन हालात का सामना करके कोर्ट पर वापसी की। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प खिलाड़ी की कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। चावल दुनिया के बहुत से मुल्कों में खाए जाते हैं, लेकिन हर जगह उनका जायका और उनसे जुड़ी रिवायत अलग हो सकती है। कतर में चावल अक्सर एक साइड डिश नहीं, बल्कि मेहमान नवाजी, जश्न और घर की खुशियां समेटने वाला मरकजी खाना होता है। कतरी दस्तरखान पर चावल के साथ गोश्त, मछली, खुशबूदार मसाले और कहवे या शरबत की रिवायत मिलकर एक मुकम्मल तजुर्बा बनाते हैं। जब गरम देगची का ढक्कन उठता है तो जाफरान, इलायची, दारचीनी और खलीज के मशहूर खुश्क ब्लैक लाइम यानी लोमी की खुशबू हवा में फैल जाती है। इसी खुशबू को कतर के मशहूर चावल के खानों की पहचान समझा जाता है। सबसे नुमाया नाम मजबूस का है। इसे कतर का कौमी खाना भी कहा जाता है। इसमें चावल में गोश्त, मछली, मुर्गी या मुख्तलिफ मसालों के साथ इसको तैयार किया जाता है। अक्सर प्याज, लहसुन, टमाटर और गरम मसाले भी शामिल होते हैं। गोश्त को पहले आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है ताकि इसका जायका शोरबे में उतर आए। फिर इसी खुशबूदार शोरबे में चावल पकता है और हर दाना मुख्तलिफ जायकों को अपने अंदर समेट लेता है। मजबूस का असल हुसन सिर्फ उसके मसालों में नहीं बल्कि इस बात में भी है कि ये आम तौर पर बांट कर खाया जाता है। बड़ी सी थाली या प्लेटर के दरमियान रखे चावल लोगों को एक दूसरे के साथ बैठने की दावत देते हैं। हर शख्स अपनी जगह से खाना खा लेता है, बातचीत करता है और खानों के साथ रिश्तों की गर्म जोशी महसूस करता है। घरों में मजबूस की एक ही तरकीब नहीं होती। किसी के हाँ गोश्त ज्यादा अहम होता है, किसी को मछली वाला मजबूस पसंद होता है और कोई मसालों की मिकदार को अपने खानदानी जायके के मुताबिक बदल देता है। इसी वजह से एक ही खाने के कई घरेलू सूरतें नजर आती हैं। कतर की समंदरी जिंदगी ने भी चावल के खानों को मुतासिर किया है। पहले के जमाने में समंदर से मिलने वाली मछली और चावल का मेल घरों में आम था। इस किस्म के खाने साहिल की जिंदगी, तिजारत और मौजूदा अशिया को अपनाने की सलाहियत को जाहिर करते हैं। गोश्त वाला मजबूस अक्सर मेहमानी और बड़ी दावत से जुड़ा होता है, जबकि मछली वाला अंदाज समंदरी वर्से की याद लाता है। कतरी चावल के खानों को समझने के लिए एक और

0: था, बेशक वो बार बार अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला था, अवाब था।
1: यानी दला भाई, सीन शुरू होने से पहले ही कुरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है, हैं नमल अब्द, क्या ही बेहतरीन बंदा और अवाब, बार बार अल्लाह सुभान व तआला की तरफ रुजू करने वाला। तो फिर अगला सीन घोड़ों का
0: जी, क्या घोड़ों के बाद जो मैं कह रहा था, घोड़ों के हवाले से जो एक अहम सवाल वो आपने वो सवाल के बाद भी कही, तो ये दरअसल सूरह साद में दाऊद अलैहिस्सलाम, उन पर अल्लाह के इनामात, उनकी अब्दियत और उनकी जिंदगी के पहलू आते हैं। फिर उसी घराने की एक और नियामत सामने आती है, सुलेमान अलैहिस्सलाम, और एक शाम का मंजर है, सूरज ढलने की तरफ है, मैदान में निहायत उम्दा तरबियत याफ्ता और तेज रफ्तार घोड़े पेश किए जा रहे हैं। कुरान उन्हें कहता है अस्साफिनातुल जियाद, यानी उम्दा असील और तेज रफ्तार घोड़े। तो ये यानी घोड़े सिर्फ ऐसे हुसन दिखने के लिए रखे हुए नहीं थे, उस दौर में ऐसे घोड़े कुव्वत तैयारी और इज्तिमाई जिम्मेदारी का एक अहम जरिया भी थे।
1: मतलब तला भाई, अब यहाँ से वो मशहूर इंटरप्रिटेशन शुरू होती है ना, यानी घोड़े इतने ज्यादा थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें देखते देखते वक्त भूल गए।
0: जी जी जी, यही वो तफसीर है जिसके हवाले से शुरू से हम उसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाज मुफस्सिरीन किराम ने अहले किताब से मनकूल एक रिवायत की बुनियाद पर इनायत की तशरीह की है। इस रिवायत के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने घोड़े पेश किए गए और वो उनका मुआयना करते रहे। घोड़ों की कसरत और उनमें इन्हमाक ऐसा हुआ कि नमाज असर का वक्त गुजर गया और सूरज गुरूब हो गया। फिर इस आयत को उस हिस्से यानी इन्नी अहबबतु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी का ये मतलब लिया गया है कि मैंने अपने रब के जिक्र यानी नमाज के मुकाबले में घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दे दी। फिर हत्ता तवारत बिल हिजाब का मफहूम ये बताया गया कि सूरज पर्दे में छुप गया यानी गुरूब हो गया। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रुद्दुहा अलैहि, अरे इन्हें मेरे पास वापस लाओ। और जब घोड़े वापस आए लाए गए तो फतफक मसहम बिसूक वलाना, यानी उस तफसीर के मुताबिक ये बात बताई गई कि उन्होंने उन घोड़ों की पिंडलियों और गर्दनों पर तलवार चलाना शुरू कर दी। यानी इस रिवायत में उसे यानी इस वाक़े को इस कोताही के बाद एक तरह के यानी कफारा के तौर पर, इकदाम के तौर पर बयान किया गया है।
1: भाई लेकिन यहाँ मुझे अब दो सवाल आ रहे हैं तला भाई। पहला ये कि भाई कुरान यहाँ सूरज का लफ्ज तो बोला ही नहीं गया है, हाँ, इसके कुरान के अंदर है ना। और दूसरा ये कि मसाह, मतलब सुनकर आमतौर पर जहन में यही हाथ फेरना या टच करना याद आता है, जैसे हम वजू में करते हैं, कहते हैं ना मसा कर लो।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: फिर इसको काटना कैसे, मतलब समझ
0: जी सर भाई, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया और यही वो मकाम है सर भाई जहाँ दूसरी तफसीर सामने आती है। और हमारे सामने यानी ये तफसीर बिल्कुल हम इसे राजे भी कह सकते हैं, अगरचे मशहूर तफसीर जो है ना वो ये कि वो काट दिए गए थे, लेकिन जो तफसीर आपको इल्मी तौर पर भी आपको वो सही लगेगा हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इस तशरीह में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने असर के बाद या शाम के वक्त वो खूबसूरत और उम्दा घोड़े पेश किए गए। उन्होंने उन्हें देखा और अल्लाह की उस नेमत पर खुश हुए। फिर फरमाया इन्नी अहबबतु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी। यहाँ अन ज़िक्र रब्बी का मफहूम ये नहीं कि अल्लाह के जिक्र के बजाय मुझे उसकी मोहब्बत ज्यादा उसकी तरजीह, बल्कि अपने रब की जिक्र की वजह से, अपने रब की याद के बायस, यानी ये मोहब्बत अल्लाह से गफलत की मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह की अता करदा नेमत से वो मोहब्बत है जो इंसान को मुनअम यानी नेमत देने वाले रब की याद दिलाती। घोड़ा उन्होंने गोया यहाँ घोड़ों ने उन्हें अल्लाह की याद और मजीद याद दिलाई।
1: तो यानी पहली तफसीर में घोड़े अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाली चीज बन रहे थे, और दूसरी तफसीर में जो अभी आपने वादे की, वहीं घोड़े अल्लाह सुभान व तआला की नेमत हैं जिनको देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह को याद कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यही दोनों तफसीरों के दरमियान एक बुनियादी फर्क है। जैसे कि आपने कहा, एक मंजर में घोड़े गफलत का सबब है, दूसरे मंजर में वही घोड़े जिक्र और शुक्र का वसीला है। वैसे यहाँ आपको ये बता दूँ, ये लिंग्विस्टिक्स के हवाले से एक बहुत ही अहम बात है, जो जिनको अरबी जबान में दिलचस्पी है और नहु सरफ जानते हैं वो इस बात को जरूर जानेंगे कि अरबी जबान में जो हर्फ आन है ये बाज़ मौके पर सबब और तालील का मफहूम भी देता है। इसी की मिसाल कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से आती है, वमा कान इस्तिग़फारु इब्राहिम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के लिए इस्तिग़फार एक वादे की वजह से हुआ था, अम्मा वाइदा यानी वादे की वजह से हुआ था जो उन्होंने उसे किया, उसे पूरा किया था या उस

0: ये वादा किया था, तो इस लुगवी इम्कान को यहाँ भी सामने रखा गया है। गोया सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मुझे उन घोड़ों से मोहब्बत है और ये मोहब्बत मेरे रब की याद से जुड़ी हुई है।
1: तो फिर हत्ता सौरत बिल हिजाब में छुपा कौन, सूरज नहीं घोड़े?
0: हाँ जी, इस तफसीर के मुताबिक घोड़े बिल्कुल। ये सूरज का लफ्ज तो यहाँ इन आयात में इसको मेंशन ही नहीं किया गया सूरज। यहाँ जो मुफस्सिर इकराम इस पर डिपेंड कर रहे हैं वो इसको बिलफर्ज महजूफ मान रहे हैं कि यहाँ सूरज का सूरज मुराद लिया गया है। लेकिन आप जरा इस तस्वीर को जहन में रखिए कि मैदान में घोड़े दौड़ रहे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें देख रहे हैं। दौड़ते दौड़ते वो इतनी दूर निकल जाते हैं कि किसी पहाड़ी टीले या किसी दूसरे आड़ के पीछे निगाहों से ओझल हो जाते हैं। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक के वो पर्दे के पीछे छुप गए। देखिए इस तस्वीर को कितने खूबी से यानी बयान किया है।
1: सही,
0: सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रुद्दू आले, अरे दोबारा इन्हें मेरे पास वापस लाओ। यानी वो मंजर ही कुछ अलग है ना सरवर भाई।
1: सही सही, तो अब फ्लो भी इंटरेस्टिंग लग रही है भाई। घोड़े सामने आए, फिर दौड़ते हुए नजरों से ओझल हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उन्हें वापस लाओ। फिर जब वो वापस आए फताफिका मशहन बिसूकी वल आना।
0: जी बिल्कुल सर भाई, आपने आयत इसको मैं दोबारा अगर इस तरह कहूंगा तिलावत करके बता देता हूँ। फताफिका मशहन बिसूकी वल आना, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। कहाँ एक तफसीर है कि वो तलवार से वार कर रहे थे, और ये कहाँ ये तफसीर है कि वहाँ गर्दनों और टांगों पर हाथ फेरने लगे, जैसे
1: मोहब्बत
0: में फेरा जाता है। घोड़ों का मालिक या उनका माहिर उन्हें करीब से देखता है, उनके गर्दन थपथपाता है, टांगे देखता है, उनके सेहत और तैयारी का जायजा लेता है। अब्दुल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से भी ये माना मनकूल है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की टांगों पर इस तरह जो है ना गर्दनों पर हाथ फेर रहे थे, और इमाम तबरी ने भी इस कौल को आयत की तफसीर के ज्यादा करीब करार दिया है।
1: तो भाई तला भाई, तो फिर जो इमेज बचपन से जहन में हो सकती है कि भाई घोड़े लाइन में खड़े हुए हैं और उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, इस तफसीर में वो सीन ही नहीं। यहाँ तो एक रूलर अपने घोड़ों को इंस्पेक्ट कर रहा है, उन्हें देख रहा है और उन पर हाथ फेर रहा है।
0: जी बिल्कुल सरो भाई, जैसा कि आपने ये बातें कहीं, तो इसमें दरअसल यही हम बताना चाह रहे हैं कि यही ज्यादा राज़ तफसीर है, और इसके तीन बुनियादी असबाब हैं। पहला सबब यह है घोड़ों को काटने वाली जो पहली रिवायत है ये किसी मुहकम कुरानी आयत या साबित सुन्नत पर कायम नहीं, बल्कि इसे इसराइली रिवायत में शुमार किया गया है। दूसरा, ये दूसरी तशरी जो हमने घोड़ों के साथ मोहब्बत के अंदाज में जो फेरने की बात मसा की बात आई है, यहाँ मकामी नबूवत से ये बात ज्यादा मुनासिबत रखती है, जो कि नबी हैं वो, तो जानवरों के साथ उनका क्या मामला होगा, ठीक है ना। पहली तशरी कबूल की जाए तो एक ही वाक्य में यह मानना पड़ता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों में ऐसे मशगूल हुए कि नमाज छोड़ दी। अगर उन पर उस वक्त असर की नमाज उसी सूरत में फर्ज थी और फिर उसके बाद घोड़ों की गर्दन और टांगे भी काट दी, तो ये एक के बाद दो कई सारे आप मसाइल नबी के साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि ये उनके मकाम के साथ वो शायन शान बात नहीं बनती। तीसरा सबब यह है कि ये जो दूसरी तशरी की बात कही गई और बाज़ मुफस्सिरीन ने भी इसकी तायीद की है, तो ये उन उसूलों से ज्यादा हम आहंग हैं जिन पर सही तफसीर कायम होती है। और सही तफसीर के वो उसूल क्या हैं? सही मासूर हो, यानी रिवायात सही हो, ये नहीं कि इसराइली रिवायत ये वो सही हो, और अरबी जबान सियाक कलाम और कुरान के मकासद से हम आहंग हो।
1: क्या बात है। तो भाई यहाँ एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, कभी एक स्टोरी इतनी मशहूर हो जाती है कि हम असल आयत को भी उसी स्टोरी से या उसी स्टोरी के चश्मे से पढ़ने लगते हैं, फिर जब दोबारा कुरान के एक्चुअल अल्फाज देखें तो पता चलता है कि भाई आयत ने कुछ डिटेल्स कही नहीं जो हम बचपन से स्टोरी का हिस्सा समझते आए हैं।
0: जी सर,
1: ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं तला भाई कि सुभान अल्लाह, जितनी बार कुरान खोलो कुछ ना कुछ नया ही पता चलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने इसके डीप में उतरते जाएंगे उतना ही आपको नए मजामीन और नए मानी आप इसको हासिल करते जाएंगे, और यही कुरान का फहम और शऊर और ये समझने का हुसन है कि कुरान को कुरान के अल्फाज से समझना ये भी एक कमाल है। रिवायत को रिवायत की जगह रखना और जो बात कुरान ने नहीं कही उसे कुरान के सर पर नहीं रख देना, ठीक है।
1: ये इससे यही समझ में आता है।
0: बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सबसे पहले कुरान है फिर सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी नुक्ते पर इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी तफसीली गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि हत्ता तवारत बिल हिजाब, यानी यहाँ तक कि वो पर्दे में छुप गए। सवाल ये है कि छुपा कौन, तो पहली तफसीर के मुताबिक जैसे कि हमने कहा कि वो सूरज इसके माना लिया गया है, लेकिन इमाम राजी कहते हैं सूरज के जिक्र आयत में कहाँ है।

0: जो चला गया बस वो वापस दे दें। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ उससे बहुत आगे चली गई, जैसे तला भाई ने बताया। वो कह रहे हैं कि वहब ली मुल्कन, यानी अल्लाह से मांग रहे हैं तो फिर अल्लाह की शान के मुताबिक मांग रहे हैं, ये देखते हुए कि मांग किससे रहा हूँ भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सुभान अल्लाह।
1: ये नहीं मांगते हुए अपने आप को ये ना सिर्फ छोटा ना समझे, छोटी चीजें ना मांगे, मांगे
0: सही।
1: अल्लाह सुभान ताला के लिए कोई बात नहीं, वो हर शय को मालिक है और वो आपको कुछ भी दे सकता है। तो इस वजह से कहते हैं कि अल्लाह से जब मांगते हो दिल खोल के मांगो।
0: क्या बात है भाई, बिल्कुल कोई कसर ही नहीं छोड़नी चाहिए ना, क्यों नहीं। और अल्लाह ताला जब भी मोमिन हाथ उठाता है अल्लाह की तरफ तो उसको दुनिया में मिलता है, और भाई जखीरा होता रहता आखिरत के लिए।
1: बिल्कुल,
0: तो मांगते रहिए।
1: तो अल्लाह के जो वस्फ यहाँ लाया गया है सिफत आयत के आखिरी अल्फाज में, देखिए इन्नका अंतल वहाब, तू ही वहाब, अल वहाब यानी बहुत ज्यादा बार बार और बेहिसाब अता फरमाने वाला। ठीक है, तो यहाँ कुरान दुआ का जवाब भी हमें बताता है कि आगे क्या हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जमीन की अजीम सल्तनत मांगी थी तो रब्बुल आलमीन ने उनके लिए क्या किया, हवा को मुसख्खर कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है फसख्खरना लहु रीहा तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैथु असाब, हमने हुकुम के तकर दिया जो उनके हुक्म से नरमी के साथ चलती जहाँ वो चाहते।
0: भाई वाह, बट एक मिनट तला भाई, यानी भाई घोड़े उस टाइम पे तो घोड़े ही होते थे जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, लेकिन अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा ही ट्रांसपोर्ट बन गई। सुभान अल्लाह, और वो भी ऐसी हवा जो उनके हुक्म से चले।
1: देखिए यहाँ दरअसल घोड़े की बात आपने यहाँ लाई है तो ये बहुत ही एक सही एक कंपैरिजन है। तो इससे पहले हमने घोड़े का किस्सा जिक्र किया था, अब अल्लाह सुभान व तआला ने उनको जो हवा मुसखर कर दी वो घोड़ों से कहीं ज्यादा रफ्तार में तेज है।
0: सही,
1: घोड़े की अपनी रफ्तार है, अपनी ताकत है, अपनी हद है, लेकिन यहाँ अता का पैमाना ही बदल गया।
0: वाह,
1: फसखरना लहुर्री, हवा उनके लिए मुसखर कर दी गई। और दूसरे मकाम पर कुरान इसकी रफ्तार की एक झलक दिखाता है, गुदुवुहा शहरुन व रवाहुहा शहरुन, उसका सुबह का सफर एक महीने की मसाफत और शाम का सफर भी एक महीने की मसाफत के बराबर।
0: सुभानअल्लाह,
1: यानी वो फासले जिन्हें आम सफर में तवील मद्दत दरकार होती है अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए समेट दिए। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, कुरान एक और लफ्ज इस्तेमाल करता है रुखाअन, अच्छा नरमी और सहूलत के साथ। तसव्वुर कीजिए आज हम दुनिया के जदीद तरीन जो जहाज हैं एरोप्लेन में बैठे हैं तो फिर ऐलान आता है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, आगे कोई मसला आने वाला है, फिजा खराब हो तो जहाज हिलना शुरू कर देता है, रास्ता तब्दील हो सकता है, लैंडिंग मौखर हो सकती
0: है।
1: लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए
0: ये कोई मसला ही नहीं था।
1: रुखाअन हैथु असाब, यानी नरम नरमी के साथ हवा की रफ्तार है, हवा की भी अपनी रफ्तार है और सफर भी हमवार है। तो ये तवाजुन बड़ा अजीब है सुभान अल्लाह।
0: तो भाई बादशाहत का स्केल अब समझ में आ रहा है सुभान अल्लाह। वही जैसे कि हमने बात शुरू करी कि जब मांगना है तो ऐसा मांगो, अल्लाह ताला देते हैं तो ऐसे ही देते हैं। और यहाँ सिर्फ जमीन या कहना चाहिए किले या पैलेस और आर्मी वाली बादशाहत का ही जिक्र नहीं हो रहा है दोस्तों, नेचर का एक एलिमेंट यानी हवा। भाई वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उनके लिए मसखर है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सोर्स में आगे शैतान का भी जिक्र है।
1: जी जी, यहाँ सल्तनत का दायरा जो है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का, ये सल्तनत और भी वसी हो जाती है फिजा के बाद जमीन। अल्लाह फरमाता है والشياطين كل بناء وغواص, और शयातीन में से हर तरह के मैमार और गोताखोर भी उनके लिए मुसख्खर कर दिए गए। तो एक ग्रोह तामीर कर रहा है बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े ढांचे और मुख्तलिफ तामीराती काम, और दूसरा वगवास समंदर की गहराइयों में उतरने वाला।
0: सुभानअल्लाह, तो यहाँ मैं एक बात और जानना चाहूंगा तला भाई, मतलब शैतीन की बात हो रही है तो इसका मतलब जिन्नात से ही मुराद है?
1: बिल्कुल, शैतीन से मुराद जिन्नात ही है जैसे कि आपने बताया मेंशन किया है। तो यानी यहाँ जिन्नात का जो दायरा बहुत वसी है, इसमें अच्छे जो साले जिन भी हैं और शैतान जिन भी हैं सब तरह के हैं, तो उनके लिए ये सब भी मुसख्खर कर दिए गए थे तो वो उनके लिए काम करते थे,
0: सबको उनके ताबे कर दिया। यानी एक तरफ कंस्ट्रक्शन ऑन लैंड और दूसरी तरफ डाइवर्स अंडर द सी, क्या बात है, गोताखोर जो जाके समंदर में भी काम कर रहे हैं भाई, सुभान अल्लाह। तो अब ये जो बादशाहत है लिटरली हवा से जमीन और जमीन से समंदर तक, मतलब इतनी वसी होती नजर आ रही है सुभान अल्लाह।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और यही हकीकत है कुरान के दूसरे मकामात पर सुलेमान

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे खुद का मुहासबा करने के बारे में। मुहासबे का मतलब है अपनी जिंदगी और अपने अमाल का जायजा लेना। ये एक ऐसी आदत है जो इंसान को बेहतर बनाती है और उसे अपनी गलतियों को सीखने का मौका देती है। अक्सर हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं लेकिन अपनी तरफ तवज्जो नहीं देते, जबकि असल कामयाबी ये है कि इंसान अपनी इस्लाह पर फोकस करे। रोजाना का छोटा सा मुहासबा हमें ये समझाने में मदद देता है कि हमने क्या अच्छा किया और कहां बेहतरी की जरूरत है। यह आदत इंसान को प्रोग्रेसिव बनाती है और उसे स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद देती है। आज का अमल ये है कि दिन के एंड पर 2 मिनट निकाल कर अपने आज के दिन का जायजा लें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, बर्थडे कैसा दिन होता है जो हर किसी के लिए स्पेशल होता है। केक्स, डेकोरेशंस, गिफ्ट्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, भाई बर्थडे की खुशियां बड़ी यादगार होती हैं, बहुत अच्छे लम्हे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक बर्थडे पार्टी के बाद कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है भाई? प्लास्टिक डेकोरेशंस हो गई, डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गई, एक्स्ट्रा खाना हो गया, रैपिंग पेपर्स हो गए, पार्टी आइटम्स जो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं।

0: खुशी मनाने का एक अलग तरीका है. खुशी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा एनवायरमेंट को भी कंसिडर कर लें तो भाई सेलिब्रेशन और भी मीनिंगफुल बन सकता है. तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं इको स्विच में इको फ्रेंडली बर्थडे के बारे में, यानी बर्थडे सेलिब्रेशन जो खुशी भी दें और नेचर का भी ख्याल रखें. पहले तो प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं ना. देखें साथियों, बर्थडे पार्टीज में अक्सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वेस्ट को बढ़ावा देती हैं. जैसे कि कह लिया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स और कटलरीज, ये तो बड़ी मेन चीज है. प्लास्टिक बलून्स और डेकोरेशंस, गिफ्ट रैपिंग्स का एक्स्ट्रा वेस्ट, जरूरत से ज्यादा खाना बना लेना या ऑर्डर कर लेना, डिस्पोजेबल पार्टी आइटम्स जो दोबारा यूज ही नहीं होते. हम अक्सर ये सोचते हैं कि भाई एक दिन की पार्टी तो है, क्या ही कोई फर्क पड़ेगा. लेकिन जब हम हर रोज दुनिया भर में हजारों सेलिब्रेशंस होते हुए देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये कोई छोटी सी मामूली सी बात रह जाती है? या आपको ये लगता है कि भाई ये अगर हजारों लोग एक ही दिन में बर्थडे मना रहे हैं तो वेस्ट क्रिएट कर सकती है. अच्छा, अच्छी बात ये है कि बर्थडे को इको फ्रेंडली बनाने के लिए खुशी और फन को कम करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी स्मार्ट सी प्लानिंग चाहिए होती है. देखें, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन इसका ये है. अगर मैं आपको बताऊं कि इको फ्रेंडली बर्थडे के लिए आप कौन से सिंपल आइडियाज अपना सकते हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देती हूं. रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करें. हर साल नए प्लास्टिक डेकोरेशंस खरीदने के बजाय रीयूजेबल बैनर्स, फैब्रिक डेकोरेशंस या लाइट्स यूज की जा सकती हैं. इन्हें दोबारा डिफरेंट ओकेजंस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अच्छा, दूसरी चीज ये डिजिटल इन्विटेशंस चूज करें ना. पेपर इन्विटेशन कार्ड की जगह वो पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी, इसकी जगह आप डिजिटल इन्विटेशंस भी इजी भी होते हैं, पेपर वेस्ट होता है और क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर. अच्छा, सिंपल फूड प्लानिंग करें. बर्थडे पार्टी के लिए उतना ही खाना प्रिपेयर करें जितना जरूरत हो. अगर खाना बच जाए तो उसे प्रॉपर्ली स्टोर करें, या सबसे बड़ी बात है कि आप जरूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचाने का इंतजाम करें. आपकी बर्थडे है भाई, सेलिब्रेट करें उसे अच्छे तरीके से, मीनिंगफुल वे से. इको फ्रेंडली गिफ्ट्स दें. गिफ्ट्स के लिए रीयूजेबल बैग्स यूज करें या ऐसे गिफ्ट्स चूज करें जो यूजफुल भी हों और लॉन्ग लास्टिंग भी हों. प्लांट्स हो गई, बुक्स हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए या क्रिएटिव गिफ्ट्स भी यादगार हो सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्पोजेबल आइटम्स को अवॉइड करें. जहां मुमकिन हो घर के रीयूजेबल प्लेट्स, ग्लासेस और कटलरी यूज करें ना, इससे पार्टी का वेस्ट भी काफी कम हो जाता है. अच्छा, अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दी जाए तो साथियों, आजकल बहुत सारी फैमिलीज अपनी बर्थडेज को क्रिएटिव इको फ्रेंडली बना रही हैं. कुछ लोग आउटडोर पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहां डेकोरेशन बड़ी सिंपल और मिनिमम होती है. कुछ फैमिलीज रीयूजेबल बर्थडे बैनर्स संभाल कर रख लेती हैं और हर साल दोबारा उसी को यूज करती हैं. कुछ पेरेंट्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई बर्थडे सिर्फ गिफ्ट देने का नाम नहीं होता बल्कि शेयरिंग और काइंडनेस का भी दिन होता है. मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे अपने बर्थडे पर एक्स्ट्रा गिफ्ट्स की जगह बुक्स डोनेट करते हैं या प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ऐसी सेलिब्रेशन सिर्फ यादगार नहीं होती बल्कि एक पॉजिटिव मैसेज भी देती है. तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि अगले बर्थडे सेलिब्रेशन में एक इको फ्रेंडली चेंज जरूर ट्राई करें. चाहे वो रीयूजेबल डेकोरेशंस हो, खाने का वेस्ट कम हो या डिजिटल इनविटेशंस भेजे जाएं तो. और हाँ, हमें जरूर बताइएगा आपके ख्याल में बर्थडे पार्टी की सबसे जरूरी चीज क्या होती है. केक, डेकोरेशन, गिफ्ट्स या फैमिली और फ्रेंड्स का साथ. मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107. याद रखिए, सबसे खूबसूरत सेलिब्रेशन वो होती है जहाँ खुशी भी हो और नेचर के लिए जिम्मेदारी भी. छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें. और सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107. दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे सफा के साथ, छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। साथियों खुश आमदीद है आप सभी को हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सस्टेन द फ्यूचर। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम बात करेंगे हमारे प्लैनेट, हमारे एनवायरनमेंट और हमारे मुस्तकबिल की। हमारी जिंदगी का हर पहलू कुदरत से जुड़ा है साथियों। साफ हवा, साफ पानी, हरियाली, समंदर, जंगल, जानवर और वो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। लेकिन आज हमारी दुनिया को क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, बायोडायवर्सिटी के नुकसान और कुदरती वसाइल के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल जैसे कई चैलेंजेस का सामना है। साथियों सस्टेन द फ्यूचर का मकसद सिर्फ इन मसाइल के बारे में बात करना नहीं है बल्कि ये समझना भी है कि हम में से हर शख्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या छोटी छोटी आदतें, क्या छोटी छोटी तब्दीलियां ला सकता है जिनसे एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम में हम ग्लोबल एनवायरनमेंट चैलेंजेस के साथ साथ लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज पर भी बात करेंगे। हम जानेंगे कि सस्टेनेबिलिटी असल में है क्या, क्लाइमेट चेंज हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करता है, पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना क्यों हमारी भी जिम्मेदारी है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ साइंटिस्ट्स, गवर्नमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। क्योंकि जो दुनिया हम आज अपने लिए देख रहे हैं वही दुनिया हम कल अपनी जनरेशंस के लिए छोड़ कर जाएंगे। तो आइए एनवायरनमेंट को सिर्फ एक इशू नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ आने वाला वक्त नहीं, फ्यूचर वो है जो हम आज क्रिएट कर रहे हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर ओनली ऑन FM 107।
0: टॉपिक ऑफ द डे।
3: साथियों आज का टॉपिक है कुछ ऐसा जो हम सबकी जिंदगी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा क्या आपके घर में कोई पुराना मोबाइल पड़ा हुआ है, कोई चार्जर जो किसी डिवाइस के साथ मैच नहीं करता, या फिर पुराने ईयरफोन जो होते हैं वो, या फिर कोई ब्रोकन लैपटॉप, या फिर कोई आउटडेटेड टैबलेट, रिमोट कंट्रोल पड़ा हुआ है कोई जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते, या कोई कीबोर्ड या बैटरीज या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो काफी अरसे से किसी अलमारी के किसी कोने में पड़ी हुई है? तो भाई अगर आपका जवाब है हाँ तो मुबारक हो, मुबारक हो, आप भी ई वेस्ट के सफर का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज को बेकार कहकर ड्रॉअर में रख देते हैं या डस्टबिन में फेंक देते हैं तो उसके बाद आखिर होता क्या है साथियों? वो बस गायब हो जाती है ऑटोमेटिकली? नहीं ना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले वेस्ट स्ट्रीम में से एक है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई ई वेस्ट सिर्फ कचरा नहीं होता, इसमें वैल्यूएबल मटेरियल्स भी होते हैं, रिसाइकलेबल कंपोनेंट्स भी होते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हो सकते हैं जो कि अगर गलत तरीके से हैंडल

0: किए जाएं, तो भाई आखिरकार वो एनवायरमेंट और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। जरा सोचिए ना, एक छोटा सा मोबाइल फोन साइज में कितना छोटा होता है कि आप उसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी हुई होती है, जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, सर्किट्स और दूसरे तीसरे मटेरियल्स। और जब हम उस फोन को रिप्लेस कर देते हैं तो उसकी स्टोरी खत्म नहीं होती ना, एक्चुअली उसकी दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है। भाई आज का हमारा एपिसोड इसी के ऊपर है, यानी कि ई वेस्ट असल में है क्या। साथियों, हम इतने इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट क्यों क्रिएट करते हैं, कभी सोचा है? पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को डस्टबिन में फेंकना क्यों प्रॉब्लम बन सकता है, ये सोचा है? क्या ये जो टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इनमें भी कोई वैल्यूएबल चीज होती है, क्या ये कभी सोचा है? और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम अपने घर से ई वेस्ट को रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो भाई तैयार हो जाइए एक ऐसे टॉपिक के लिए जो लिटरली हम सबके घरों में मौजूद है। दिस इज द ट्रुथ अबाउट ई वेस्ट ऑन सस्टेन द फ्यूचर ऑन FM 107 विद सफा।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
0: तो भाई चलिए अब सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि ई वेस्ट आखिर में होता क्या है। देखिए, ई वेस्ट से मुराद होती है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि यूज नहीं हो रहे होते, जिनकी जरूरत नहीं रहती, जो आउटडेटेड हो गए होते हैं या जो रिपेयर के काबिल ही नहीं रहते। इसमें सिर्फ कंप्यूटर्स या मोबाइल्स शामिल नहीं होते साथियों, इस कैटेगरी में कह लें कि टेलीविजन, प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, चार्जर्स, केबल्स, हेडफोन्स, कैमरास, गेमिंग डिवाइसेस, किचन अप्लायंसेस, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, स्मॉल अप्लायंसेस और बहुत सारी बड़ी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल चीजों की हो सकती है। यानी अगर किसी चीज को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी की जरूरत पड़ती है ना, और हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, तो चांसेस हैं कि वो ई वेस्ट का हिस्सा बन सकती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है साथियों, हम अक्सर वेस्ट को देखकर उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं, ठीक है? वो शान टुकड़े वाला नहीं आता, रद्दी लेने वाला हमारे अपने देसी कल्चर में, हमारे होम कंट्रीज में, वो यहाँ पर तो नहीं आते। लेकिन जरा सोचें, प्लास्टिक बॉटल देखी तो क्या महसूस हुआ, ये वेस्ट है। पुराना कबर्ड देखा तो क्या हुआ, ये वेस्ट है। ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखे तो क्या देखा, ये वेस्ट है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को सिर्फ वेस्ट समझना थोड़ा ऐसा है जैसे कि एक पुरानी किताब को देखकर ये कह देना कि भाई इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, रद्दी है, फेंक दो। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफी वैल्यूएबल मटेरियल्स हो सकते हैं साथियों। अच्छा, एक पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक छोटी सी अर्बन माइन समझ सकते हैं आप, ये बता दूं मैं। देखिए, जमीन के नीचे माइन में रिसोर्सेज मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर भी कुछ वैल्यूएबल मटेरियल्स मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग का मतलब सिर्फ कचरा कम करना नहीं होता, ना ना ना ना, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग मटेरियल्स को दोबारा यूजफुल साइकिल में लेना। अच्छा, अब बात करते हैं हम इतना ई वेस्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये है, क्या है कि हम इतना ई वेस्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, आखिर ई वेस्ट इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है और कैसे बढ़ रहा है। देखिए, एक मेजर रीजन है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट डेवलप हो रही है। हर कुछ अरसे बाद नए फीचर्स आ जाते हैं, फास्टर परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं, बेटर कैमरास, इम्प्रूव्ड स्क्रीन्स और नए डिजाइन मार्केट में आ ही जाते हैं। और फिर हम क्या सोचते हैं, भाई पुराना वाला अब तो थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है ना, फैंसी वैंसी नहीं लग रहा मैं इसको साथ में रखकर। और कभी डिवाइस वाकई में खराब हो जाते हैं, लेकिन कभी डिवाइस परफेक्टली काम कर रही होती है, बस नया मॉडल आ गया तो आपको वो चाहिए। यह एक इंटरेस्टिंग साइकिल शुरू होता है साथियों, पता है क्या, नया डिवाइस आया, उसकी वजह से आपने पुराना डिवाइस साइड में रख दिया, यानी कि किसी ड्रॉअर की स्टोरेज में चला गया, चला तो गया आप उसे भूल भी गए, और फिर सालों बाद वो ई वेस्ट बन जाता है। और ऑनेस्टली हम में से कितने लोगों के घर में एक टेक्नोलॉजी म्यूजियम बना हुआ है, मेरे घर में तो बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक दराज खोली जिसके अंदर मेरे पुराने मोबाइल पड़े हुए थे, 4-6 मोबाइल तो वैसे ही निकला है जो कि वर्किंग कंडीशन में थे, लेकिन मैंने ये सोच कर रखा हुआ था कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं भूल गई हूँ इनको, मुझे नया वाला मोबाइल चाहिए। अच्छा, एक ड्रॉवर खोलिए, फिर वहां से पुराना चार्जर मिलता है, 2 केबल्स मिल जाती हैं, 3 अनआइडेंटिफाइड वायर्स मिल जाती हैं, एक फोन जिसका पासवर्ड किसी को याद ही नहीं होता, मेरे पास तो 3 ऐसे

कपड़े में जो कि खुल ही नहीं रहा अब। एक रिमोट भी था साइड में जो कि पता नहीं किस चीज का था, एक भी नहीं मेरे ख्याल से 2-3 रिमोट भी थे। हाँ, और कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसा भी मिलता है जिसके बारे में किसी ना किसी फैमिली मेंबर का ये कहना होता है कि इसको फेंको मत, ये कभी ना कभी काम आएगा, और फिर वो कभी ना कभी कभी नहीं आता। ये एक्युमुलेशन इवेंचुअली ई वेस्ट प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाती है। और मैं आपको बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैंने ये चीजें अपने घर में जमा करना शुरू की तो या तो फिर मैं घर में पूरा पूरा म्यूजियम खोल सकती हूँ या अटैचियों के अटैचियां भर सकती हूँ। अच्छा, एक मजे की बात यह है, पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में कुछ वैल्यूएबल मेटल्स और मिनरल्स रिकवर किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवाइस हमें यूजलेस लग रहा था ना, वो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल यूजलेस नहीं है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग इम्पोर्टेंट होती है साथियों। देखिए, अगर हम एग्जिस्टिंग मटेरियल्स को रिकवर और रीयूज कर सकते हैं ना, तो नए रॉ मटेरियल्स निकालने की जरूरत कुछ हद तक कम हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके घर में ना पुरानी अलमारी हो जिसमें आपको लगता है कि कुछ नहीं है, फिर होता ये कि सफाई होती है, फिर सफाई करते वक्त पता चलता है कि अंदर वो चीज रखी है जिसका आपको महीनों से इंतजार था कि भाई ये चीज मुझे चाहिए। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ई वेस्ट की सफाई ट्रेन्ड रिसाइकलिंग सिस्टम के थ्रू होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर बात करें तो एनवायरमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ उसकी क्वांटिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि ई वेस्ट को हैंडल कैसे किया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ऑर्डिनरी गार्बेज के साथ मिक्स कर दिया जाए ना और इन अप्रोप्रिएट तरीके से प्रोसेस किया जाए तो कुछ कंपोनेंट्स एनवायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे होते हैं जिनमें बैटरीज होती हैं और बैटरी जैसे दूसरे तीसरे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें केयरफुली हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, अगर ई वेस्ट को ओपन बर्निंग, अनसेफ डिसमेंटलिंग या अनकंट्रोल्ड डंपिंग जैसे तरीकों से डिस्पोज किया जाए ना, तो सॉइल, एयर और वाटर सिस्टम्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जरा सोचिए ना, जमीन को एक स्पॉन्ज की तरह लीजिए, अगर आप स्पॉन्ज पर साफ सुथरा पानी डालें तो ये एक अलग सिचुएशन है, लेकिन अगर उस पर आप हार्मफुल सब्सटेंस डालें तो वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं और बाद में दूसरी जगहों पर भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट में ये बहुत अहम चीज है कि आप वेस्ट कहाँ फेंक रहे हैं, किस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं, किस तरीके से उसे डिस्पोज करना चाहिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, ई वेस्ट को हम अक्सर एनवायरमेंटल इशू समझते हैं साथियों, लेकिन ये इकोनॉमिक और सोशल इशू भी है। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर जो मटेरियल्स यूज होते हैं ना, उनमें माइन, प्रोसेस और मैन्युफैक्चर करने के लिए एनर्जी और रिसोर्सेज लगते हैं। अगर एक डिवाइस जल्दी डिस्कार्ड कर दिया जाए और उसके मटेरियल्स रिकवर ना हो तो हम एक तरफ वेस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ नए रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ा रहे होते हैं। यानी कि कहानी सिर्फ ये नहीं है कि पुराना फोन कहाँ गया, ये बिल्कुल भी यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कहानी। असल सवाल ये है कि उस फोन में जो मटेरियल्स थे उनका क्या हुआ। अगर वो रिस्पॉन्सिबली रिकवर हो जाए तो उन्हें फ्यूचर प्रोडक्ट्स में दोबारा यूज करने की पॉसिबिलिटी होती है। ये सर्कुलर थिंकिंग है ना, सीधी सी बात है, यूज करें, उसको मेंटेन करें, उसको रिपेयर करवाएं, उसको रीयूज करें और फिर उसे रिसाइकल कर दें जब उसकी टाइमिंग खत्म हो जाए। तो जितना पॉसिबल हो प्रोडक्ट की लाइफ को लंबा रखें। अच्छा, अब बात करते हैं कि ट्रेंड में क्या है, व्हाट्स ट्रेंडिंग, द राइज ऑफ द सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक आइडिया। देखिए, दुनिया भर में सस्टेनेबिलिटी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंगली पॉपुलर होता जा रहा है। वो क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी। ट्रेडिशनल सिस्टम कुछ इस तरह होता था कि भाई रिसोर्स लो, प्रोडक्ट बनाओ, यूज करो, फेंक दो। लेकिन सर्कुलर अप्रोच कहती है रिसोर्स लो, प्रोडक्ट बनाओ, यूज करो, रिपेयर करो, रीयूज करो, रिकवर करो और फिर मटेरियल्स को दोबारा सिस्टम में ले आओ। यानी प्रोडक्ट की कहानी डस्टबिन पर खत्म नहीं होती, नो। देखिए भाई, आज की टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग सेक्टर्स में फोकस इस बात पर भी है कि प्रोडक्ट्स को ज्यादा ड्यूरेबल, रिपेयरेबल और रिसाइकलेबल कैसे बनाया जा सकता है। और यहाँ कंज्यूमर की चॉइस भी इम्पोर्टेंट होती है। जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो सिर्फ ये ना देखें कि भाई शशके मारता हुआ कैमरा है, कितना अच्छा है, इसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, इसके फीचर्स क्या हैं। एक और सवाल भी होना चाहिए हमारी लिस्ट में, अगर ये प्रोडक्ट कल खराब हो गया तो इसका क्या होगा, क्या रिपेयर पॉसिबल है, क्या पार्ट्स रिप्लेसेबल हो सकते हैं,

0: क्या रिस्पॉन्सिबल रिसाइक्लिंग अवेलेबल है? ये क्वेश्चंस फ्यूचर फ्रेंडली शॉपिंग हैबिट्स का हिस्सा बन सकते हैं साथियों।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: अच्छा, अगर हम ग्रीन फ्लैश के बारे में बात करें ना, तो भाई ई वेस्ट के बारे में एक इम्पोर्टेंट रियलिटी मैं आपको बताती हूँ। एक इम्पोर्टेंट रियलिटी चेक ये है कि हम अक्सर एज्यूम करते हैं कि रिसाइक्लिंग का मतलब है बस रिसाइक्लिंग बिन में डाल दो और फिर कहानी खत्म। अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। हर साइक्लिंग फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को प्रोसेस नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है साथियों, स्पेशली जब बैटरीज या सेंसिटिव कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड हों। इसीलिए अगर आपके पास पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो भाई उसे नॉर्मल हाउसहोल्ड वेस्ट में डालने से पहले चेक करें ना कि आपके एरिया में ऑथराइज्ड ई वेस्ट कलेक्शन या रिसाइक्लिंग ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है। अच्छा, कतर में भी रेजिडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट के अवेलेबल लोकल चैनल्स और कलेक्शन इनिशिएटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है मेरे पास। देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसमेंटल करना हर किसी का DIY प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो मेहरबानी करके स्क्रू ड्राइवर लेकर डिवाइस खोलना ना शुरू कर दें। इस चीज को अवॉइड करें। आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो वो किसी वजह से नहीं है। आपको जो है वो अपने तरीके से इंजीनियर बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर बैटरीज और दूसरे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिन्हें सेफली हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अब आते हैं ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट पर, टेक्नोलॉजी जो वेस्ट को रिसोर्स बनाती है।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: देखिए भाई, अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड भी देख लेते हैं। ई वेस्ट की स्टोरी सिर्फ प्रॉब्लम की स्टोरी नहीं है, ये इनोवेशन की स्टोरी भी है। साथियों, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और रिसाइक्लिंग एक्सपर्ट्स ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं जो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स से वैल्यूएबल मटेरियल्स रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, एडवांस्ड साइक्लिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को केयरफुली प्रोसेस करके मेटल्स और दूसरे यूजफुल मटेरियल्स रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसका पोटेंशियल बहुत इंटरेस्टिंग है साथियों। सोचिए, एक पुराना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक डेड एंड नहीं है बल्कि रिसोर्स बैंक बन सकता है। आज का अनवांटेड डिवाइस कल के किसी नए प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल का सोर्स बन सकता है भाई। अच्छा, इसी आइडिया को अगर सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें ना, तो हम नए रिसोर्सेज सिर्फ जमीन से नहीं अपने एग्जिस्टिंग वेस्ट से भी रिकवर कर सकते हैं। ये अप्रोच माइनिंग प्रेशर को रिड्यूस करती है, रिसोर्सेज को कंजर्व करने और वेस्ट को कम करने में अपना रोल प्ले कर सकती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने प्रॉब्लम क्रिएट करने में रोल तो प्ले किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी ही सॉल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकती है अगर हम उसको थॉटफुल होकर लेकर चलें तो।
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: अच्छा भाई, अब आते हैं कि भाई क्या पुराने डिवाइसेज रिपेयर हो सकते हैं? ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। छोटा सा चैलेंज है साथियों, अगली बार जब आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो ना जो खराब हो जाए, उसे फौरन से, मेरे ख्याल से फौरन ये मत सोच लीजिए कि नया लेना पड़ेगा। पहले जरा आसपास दुकान वकान में घूमो भाई, इधर उधर घूमो मार्केट में और पूछो कि क्या ये रिपेयर हो सकता है। अरे भाई, मुझे याद है मेरा जूसर ब्लेंडर खराब हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, तो मैंने सोचा इसको तो छोड़ो, ये कहाँ ही रिपेयर होगा। नहीं भाई, फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने सजेशन दिया कि नहीं, फलानी फलानी दुकान है रिपेयर वाले के पास, उसके पास जाओ, देखो कि ये रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता। कभी कभी कोई कॉइल होती है या कोई ओवर हीटअप का मसला होता है तो वो एक छोटा मोटा आइटम होता है, वो रिप्लेस कर देते हैं, उसके अंदर सही हो जाता है। वो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक महंगा वाला था, तो मैंने कहा अच्छा चलो, लेजीनेस छोड़ती हूँ, जाती हूँ। मेरा भी दिल नहीं कर रहा था ना, किचन आइटम था ना मेरा फेवरेट वाला, तो मैं गई। मजाक के अलावा जो रिपेयर वाले थे उन्होंने 2 दिन के अंदर मेरा ब्लेंडर मुझे सही करके दे दिया ना, आई वाज सो हैप्पी। ऐसे ही मेरा पिछले दिनों एक जो है वो माइक्रोवेव मेरा ऑफ हो गया और वो फिर नहीं चला। मैंने कहा इसके साथ मसला क्या है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो देखो भाई, ये तो माइक्रोवेव है, 4-5 साल हो गए इसे चलते हुए, नया ले लेती हूँ, नया मॉडल आया होगा। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा ये तो ई वेस्ट बन जाएगा, पता नहीं इसके अंदर कोई छोटी मोटी चीज क्या पता खराब हो, दिखाई देती हूँ। जब इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का पता चल ही गया है रिपेयर वाले का, तो ये भी दिखा कर आ जाती हूँ। तो भाई

0: जब मैं उसके पास गई तो दो दिन में उसने मुझे वो जो है ना मेरा माइक्रोवेव भी सही करके दे दिया. तो अब तो वो मेरी फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक दुकान बन गई है. मेरा जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक खराब होता है मैं फौरन उस दुकान पे पहुंच जाती हूँ. अब तो दुकान वाला भी मुझे जानता है क्योंकि मैंने सस्टेनेबिलिटी को चूज किया है. अच्छा, कभी कभी जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि प्रॉब्लम सिर्फ बैटरी की होती है, जैसे कि मेरे माइक्रोवेव का प्रॉब्लम था कि उसका सिर्फ फ्यूज का इशू था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या इशू है. तो भाई कभी कभी बैटरी की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी केबल रिप्लेस करनी होती है, कभी सॉफ्टवेयर इशू होता है, कभी एक छोटा सा कंपोनेंट रिप्लेस हो सकता है. जैसे कि मेरे जूसर ब्लेंडर का मसला था, उसके अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट था, उसने कहा बाजी ये तो ओवर हीट हो गया था, इसके अंदर थोड़ी सी फलानी फलानी चीज थी वो सही कर दी हमने. देखिए, अगर रिपेयर सेफ और इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल हो ना तो डिवाइस को कुछ और साल चलाया जा सकता है. और खास तौर पे किचन अप्लायंसेस जो होते हैं ना वो थोड़े से जेब पे भी भारी होते हैं, तो आपको ये होता है कि भाई अल्लाह करे ये सही हो जाए, मैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे ले जाता हूँ रिपेयर हो जाए. तो भाई मुझे तो रिपेयरिंग वाली चीज बड़ी अच्छी लगती है जो रिपेयर हो जाए. और यहाँ एक सिंपल कैलकुलेशन है साथियों, अगर आप किसी डिवाइस को एक साल एक्स्ट्रा यूज कर लेना तो आपने उसे एक साल के लिए रिप्लेसमेंट की जरूरत से डिले करने से बचा लिया है. यानी कि एक छोटा सा डिसीजन जो कि है रिपेयर इंस्टेड ऑफ रिप्लेस, रिसोर्स यूज और वेस्ट दोनों पर अफेक्ट डाल सकता है और आपकी जेब पर भी हल्का पड़ता है, सच बता रही हूँ. अच्छा चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ और ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है. देखिए, पहली चीज तो ये कि ई वेस्ट दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट स्ट्रीम्स में से एक है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में वैल्यूएबल मटेरियल्स रिकवर किए जा सकते हैं, यानी पुराना इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ गार्बेज नहीं होता. कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का साइज छोटा होता है लेकिन उसका एनवायरमेंटल इम्प्लीमेंट काफी बड़ा होता है. भाई देखिए, हम में से बहुत से लोग पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई शायद फ्यूचर में 2050 में ही हमारे काम आएगा, लेकिन वो फ्यूचर मुझे नहीं लगता कभी आता है क्योंकि हम उसे ऐसे किनारों में कोनों में फंसा कर छुपा कर रख देते हैं कि हमें खुद को भी भूल जाता है. बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई मिस्ट्री मेज है. अच्छा, आपके घर में जो मिस्ट्री ड्रॉअर है ना जिसमें आपने मेरी तरह सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा मोटा रखा हुआ है, उसमें चांसेस हैं कि कम से कम एक आइटम ई वेस्ट बनने का इंतजार कर रहा है. तो भाई आज आपने घर जाकर करना ये कि उस ड्रॉअर को चेक करना है. जैसे पिछले दिनों मैंने किया था तो भाई पूरा पहाड़ निकला है मेरे पास से. लेकिन प्लीज किसी पुराने चार्जर को देखकर ये डिसाइड ना करें कि वो डेफिनेटली मेरी करंट डिवाइस का चार्जर है. ये अपने दिल को बहलाने के लिए हम कहते रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो काम आएगा, ये तो काम ये मेरे इस मोबाइल में लग जाएगा, ये मेरी इस डिवाइस में लग जाएगा, ये मेरे इस हेडफोन के काम आ जाएगा. हम सब ये मिस्टेक करते हैं साथियों. चले भाई अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इको चेक की, यानी कि अपने घर का ई वेस्ट ऑडिट करें. तो भाई अब एक सिंपल ई वेस्ट ऑडिट आप ना घर के किसी एक रूम से स्टार्ट करें, जैसे बेडरूम हो गया या स्टडी या किचन या गैराज हो गया. गैराज में तो बहुत कुछ निकलता है भाई. या स्टोरेज कबर्ड हो गई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को वहां पे आइडेंटिफाई करें. पता है क्या करें, तीन कैटेगरीज बनाएं, यूज कर रहे हैं कि यानी कि जो डिवाइसेस अभी प्रॉपर्ली यूज हो रहे हैं उसकी कैटेगरी बनाई, फिर रिपेयर एंड रीयूज की, जो चीजें वर्किंग कंडीशन में नहीं है लेकिन रिपेयर रीयूज या डोनेट की जा सकती हैं, दूसरी कैटेगरी हो गई. और तीसरी रिसाइकल, जो आइटम ना यूज हो सकते हैं ना सेफली रीयूज किए जा सकते हैं और प्रॉपर रिसाइकलिंग की जरूरत है उन्हें. इस प्रोसेस का एक और इम्पोर्टेंट रूल है साथियों, ट्रैश से पहले ऑप्शंस चेक करें. हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डायरेक्टली डस्टबिन में मेहरबानी करके ना फेंक दें, उसे रिपेयर रीयूज या डोनेट या ऑथराइज रिसाइकलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है तो उसमें आप उसे यूज करें. अच्छा बात करते हैं अब आगे चलकर डिजिटल डीक्लटरिंग की. आज हम फिजिकल ई वेस्ट की बात कर रहे हैं साथियों, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग हैबिट है डिजिटल डीक्लटरिंग. देखिए पुराने डिवाइसेज में ना हम अक्सर औकात फोटोज, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं. अगर आप किसी ओल्ड डिवाइस को रिसाइकल या सेल या डोनेट या हैंड ओवर करने वाले हैं ना तो सबसे पहले अपना पर्सनल डाटा प्रॉपरली उसके अंदर से रिमूव करें. देखिए इंपॉर्टेंट फाइल्स का एक बैकअप रखें, अकाउंट से साइन आउट करें, डिवाइस को प्रॉपरली रीसेट करें और अगर आपके पास उसमें कोई मेमोरी कार्ड या रिमूवेबल स्टोरेज है तो उसे भी चेक करें. ये सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ डिजिटल सेफ्टी का भी इशू है साथियों, क्योंकि पुराने फोन किसी के लिए ओल्ड फोन हो सकता है लेकिन उसमें आपकी पर्सनल फोटोज कॉन्टेक्ट और इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। और अब यहाँ बारी आ जाती है कॉल टू एक्शन की। साथियों अब आप भी इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए आपके घर में सबसे अजीब और गरीब पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या पड़ा हुआ है? एक कोई या तो फिर कोई पुराना फोन होगा या ऐसा कोई चार्जर जिसका ओनर भी नहीं जानता कि ये मेरा चार्जर है, पुराना रिमोट या कोई ब्रोकन हेडफोन जिसकी जान निकल चुकी है लेकिन वो पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है, या फिर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आप पिछले साल से रखे हुए हैं कि भाई इसको कभी ना कभी तो यूज करूंगा। हमें ये बताएं मैसेज करके कि आपके पास ऐसा क्या है। हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, चाहे तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं जो कि है FM 107 कतर। आप अपनी ई-वेस्ट स्टोरीज और इको फ्रेंडली हैबिट्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं साथियों। तो भाई आज की सस्टेनेबिलिटी टिप ऑफ द डे मैं आपको देती चलती हूँ।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: आज का सिंपल सस्टेनेबिलिटी टिप ये है कि रिपेयर बिफोर यू रिप्लेस। बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने अपने माइक्रोवेव और अपने जूसर ब्लेंडर के साथ किया था। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो फौरन उसे रिप्लेस करने का ना सोचें। देखो मुझे पता है यहाँ पर हम सब कमाने आए हैं और एक एक रियाल कीमती होता है, तो मैं ये ऑलरेडी बता दूं कि रिप्लेस से बेटर ऑप्शन जो जेब पे भी हल्का पड़ता है वो है उसे रिपेयर करवाना। तो भाई पहले चेक करें क्या रिपेयर हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो क्या रीयूज या डोनेट हो सकता है, अगर नहीं तो भाई क्या इसे ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकलिंग के थ्रू डिस्पोज किया जा सकता है, और बैटरीज को नॉर्मल वेस्ट के साथ मिक्स करने से पहले लोकल डिस्पोजेबल गाइडेंस जरूर चेक करें। एक रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल डिसीजन छोटा लग सकता है लेकिन जब लाखों लोग इसी तरह डिसीजन ले लेते हैं ना तो बाबा उसका इम्पैक्ट बड़ा बड़ा होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स छोटे होते हैं अक्सर औकात, इसलिए एनवायरनमेंट पर इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, हम ये सोचते हैं, ये एक मिथ है। और हाँ अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जो कि सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हो या कोई एक्सपीरियंस हो, कोई सवाल हो या कोई इंटरेस्टिंग ई वेस्ट स्टोरी है तो हमें जरूर मैसेज करें 666-22-107 पर, या चाहे तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल है FM 107 कतर। मैं मिलूंगी आपसे एक और इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल टॉपिक के साथ। तो भाई तब तक के लिए बस ये याद रखें कि टेक्नोलॉजी को यूज करें वेस्ट को नहीं, और अपने फ्यूचर को सिर्फ इमेजिन ना करें सस्टेनेबल फ्यूचर भी बनाएं। और मुझे यानी सफा सफदर को और हमारे साउंड डिजाइनर शहबाज को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: सस्टेन द फ्यूचर। आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, इंसान के अखलाक की असल पहचान कहाँ होती है? स्टेज पर, दफ्तर में, दोस्तों के दरमियान, या वहाँ जहाँ इंसान को किसी दिखावे की जरूरत नहीं रहती, अपने घर में? बात तो सही है, क्योंकि बाहर बहुत नरम लहजे में बात करना आसान है, अजनबी की गलती बर्दाश्त करना भी आसान हो सकता है, लेकिन जिस इंसान के साथ आप हर रोज रहते हैं, जिसकी आदत, कमजोरियाँ और मिजाज आपके सामने हैं, उसके साथ मुसलसल अच्छा बर्ताव करना असल अखलाकी इम्तिहान है। और इस घरेलू ज़िंदगी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहायत अहम वसीयत फरमाई, इस्तौसु बिन्निसा, औरतों के साथ भलाई की वसीयत कबूल करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़वातीन के साथ भलाई की वसीयत कबूल करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली का सबसे ज्यादा टेढ़ापन उसके ऊपरी

0: हिस्से में होता है। अगर तुम उसे बिल्कुल सीधा करने लगोगे तो उसे तोड़ दोगे, और अगर उसे छोड़ दोगे तो उसमें खम बाकी रहेगा। लिहाजा औरतों के साथ भलाई की वसीयत कबूल करो। इमाम तुर्बिश्ती रहिमहुल्लाह इस मफहूम को यूं वाज़ेह करते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ, मेरी इस वसीयत को कबूल करो। गौर कीजिए, हदीस का आगाज भी इसी वसीयत से होता है, इस्तौसू बिन्निसा, और इख्तिताम भी फस्तौसू बिन्निसा। गोया पूरे इरशाद का मरकजी पैगाम वाज़ेह है कि औरतों के साथ हुस्न सुलूक इख्तियार करो। अब इस हदीस में पसली की मिसाल को औरत की तहकीर या उसकी कदर घटाने के माने में नहीं लेना चाहिए। हदीस का मकसद तो इब्तिदा और इंतहा दोनों जगह वाज़ेह कर दिया गया, यानी उनके साथ भलाई का मामला करो। इंसानी ताल्लुकात में हर शख्स को अपने मिजाज के मुताबिक ढालने की जिद न की जाए। शौहर और बीवी दो अलग इंसान हैं, उनकी शख्सियत मुख्तलिफ हो सकती है, सोचने का अंदाज मुख्तलिफ, एहसासात के इजहार का तरीका मुख्तलिफ, किसी मामले पर रद्द अमल मुख्तलिफ। अब इस दिवाजी जिंदगी का मतलब ये नहीं कि एक इंसान दूसरे की मुकम्मल नकल बन जाए। रिश्ता इख्तलाफ के बावजूद मोहब्बत, एहतराम और हिकमत के साथ चलने का नाम है। बाज़ घरों में एक मसला ये होता है कि एक फरीक दूसरे को मुसलसल दुरुस्त करने में लगा रहता है। ऐसे क्यों बोलती हो, ऐसे क्यों सोचते हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें मेरी तरह समझना चाहिए। हर इख्तलाफ को मसला बना लिया जाता है, हर छोटे फर्क को गलती समझ लिया जाता है, और फिर इंसान रिश्ता निभाने के बजाय दूसरे इंसान को अपनी मर्जी के सांचे में ढालने लगता है। यह हदीस हमें मुतनब्बे करती है कि हर चीज़ को ज़ोर से सीधा करने की कोशिश नुकसान पैदा कर सकती है। यहाँ एक बहुत अहम तवाज़ुन है, और घर वालों के हिस्से में थकन, चिड़चिड़ापन और सख्त लहजा। ज़रा सोचिए, जो लोग हमारे सबसे करीब हैं, क्या वो हमारे बेहतरीन अखलाक के ज़्यादा हकदार नहीं? घर वो जगह नहीं जहाँ इंसान अखलाक का लिबास उतार दे, बल्कि घर वो जगह है जहाँ अखलाक की हकीकत सामने आ जाती है। सामनेकराम, आज की रूह परवर सुन्नत हमें ये बताती है कि हर फर्क को ताकत से ख़त्म करने की कोशिश न कीजिए, हर इख्तलाफ को जंग न बनाइए, हर खामी को रिश्ते की पूरी हकीकत न समझ लीजिए। रिश्ते उस वक्त खूबसूरत नहीं होते जब दो इंसान बिल्कुल एक जैसे हो जाएं। रिश्ते तो उस वक्त खूबसूरत होते हैं जब दो मुख्तलिफ इंसान एक दूसरे के साथ रहमत, एहतराम और हिकमत से रहना सीख लें। अल्लाह ताला हमारे घरों को मोहब्बत, सुकून और रहमत का गहवारा बनाए। हमें औरतों के हकूक़ अदा करने, उनके साथ नरमी, एहतराम और हुस्न माशरत इख्तियार करने, और इख्तलाफ के वक्त हिकमत व इंसाफ से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107, दिल से देसी।
3: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है, और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं, लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखिला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेनिस की दुनिया की एक ऐसी लेजेंडरी खिलाड़ी की जिन्होंने बहुत कम उम्र में दुनिया की नंबर वन रैंकिंग हासिल की और ग्रैंड स्लैम हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया। मोनिका सेलेस का नाम वुमेन टेनिस के सबसे आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी होता है। सन 1971 2 दिसंबर को नोवी साद, उस वक्त यूगोस्लाविया का हिस्सा था, वहां मोनिका सेलेस होती हैं और सेलेस ने बहुत ही छोटी उम्र में टेनिस शुरू कर दिया और उनकी एग्रेसिव बेसलाइन गेम ने जीत दुनिया की तबली। प्रोफेशनल टेनिस में अपना डेब्यू 1988 में किया और सिर्फ कुछ सालों में मोनिका सेलेस ने वर्ल्ड टेनिस की टॉप खिलाड़ियों में जगह बना ली। 1990 में इटालियन ओपन जीतकर उन्होंने अपना पहला मेजर WTA टाइटल हासिल किया। WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, जिसके तहत कई टूर के मैचेस होते हैं, जैसे कि मेंस टेनिस में ATP हम कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, वहीं WTA दे लुक आफ्टर द वुमेन्स प्रो टेनिस। तो इसी साल उन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता और वो ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र चैंपियंस में शामिल हो गई। लेकिन सेलेस ओल्ड पीरियड 1991 से 1992 के दरमियान, 1991 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन और US ओपन जीते। 1992 में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन के टाइटल्स डिफेंड किए, बाखूबी डिफेंड किए, और की पावरफुल 200 ग्राउंड स्ट्रोक्स और यूनिक 200 स्टाइल ने ओपोनेंट्स के लिए बहुत मुश्किल पैदा की। अगर करियर की बात करें तो कुल 9 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते हैं और इनमें 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 फ्रेंच ओपन और 2 US ओपन टाइटल शामिल हैं। विंबलडन में वो 1992 में रनर अप रही। उनकी सबसे अगर रिमार्केबल अचीवमेंट की अगर बात करूँ तो वो आया था 1992 तक, जहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव फ्रेंच ओपन टाइटल, 1990 का उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम था, जबकि 1992 में उन्होंने अपनी डोमिनेंस को मजीद मजबूत किया। मोनिका सेलेस मार्च 1991 में पहली बार WTA वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग पर पहुंची। वो उस वक्त सिर्फ 17 साल और 99 दिन की थी। उन्होंने टोटल 178 वीक्स वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग पर गुजारे। 1993 में उनके करियर को एक इंतहाई सदमा पहुंचा जब जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में एक टेनिस मैच के दौरान एक स्पेक्टेटर ने उन पर हमला किया और उन्हें पीठ में छुरा मारा। इस वाकये ने मोनिका सेलेस के करियर को गहरा मुतासिर किया और वो तकरीबन 2 साल कॉम्पिटिटिव टेनिस से दूर रही। लेकिन उन्होंने कमबैक किया 2 साल के बाद 1995 में, और कमबैक के बाद भी उन्होंने अपनी क्लास का मुजाहरा किया और 1996 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर अपना नवा और आखिरी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल हासिल किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी सेलेस ने अपनी मुल्क की नुमाइंदगी की। उन्होंने 1996

का एक अहम नाम है। तो दोस्तों ये थी कहानी मोनिका सेलेस की, एक ऐसी चैंपियन जिन्होंने टीनेज इयर्स में टेनिस पर हुकूमत की, वर्ल्ड नंबर वन बनी, 9 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते और फिर मुश्किल तरीन हालात का सामना करके कोर्ट पर वापसी की। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प खिलाड़ी की कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। क्या हाल है जी आपके? बढ़िया। कुछ तो काम आया होगा, कभी ना कभी किसी एपिसोड में तो लगा होगा यार कबीर क्या काम की चीज बताइए। ऐसी आज भी मैं काम की चीजें बताऊंगा आपको, और कुछ ऐसी खामखा चीज भी होती है जिनसे आपका टाइम पास हो सकता है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके नाम आप नोट कर सकते हैं, एंड दे आर रियली रियली रियली हेल्पफुल। एक तो मेरे साथ अभी तक जुड़ी हुई है, ये वेबसाइट बड़ी खास है। तो शुरू करते हैं। वेबसाइट नंबर वन जिसका नाम है 50languages.com, 50languages.com जो इसका नाम है, वैसे इसका काम है बस 50 आपको लिखना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है 50। तो आप दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस इससे सीख सकते हैं और इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। अब ऐसा तो नहीं है आपको कभी कोई एंशिएंट भाषा सीखनी तो बात दूसरी है, मगर जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जो इंसान सीखना चाहता है उसमें अरबिक है, उसमें स्पेनिश है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, कोई भी भाषा आपको सीखनी है ग्रामर के साथ साथ उसके सेंटेंस फॉर्मेशंस, एक एक चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी और काफी इजी टू यूज है। इनफैक्ट मैं स्पेनिश के कुछ वर्ड्स यहाँ से सीख रहा हूँ, हालांकि मेरे आसपास कोई बोलने वाला नहीं है स्पेनिश, एवं खामखा खुद से बात करता रहता हूँ, बट काम की चीज बहुत है। तो अगर आप लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि कोई ये पैसा नहीं मांगता आपसे, फ्री फंड में बहुत सारी चीजें दे देती है वेबसाइट। सो ट्राई दिस वन आउट, 50languages.com, 50 फिर languages.com, ठीक है बड़े आगे बढ़े। ओके, अगली वेबसाइट का नाम है doodlefonts.app, यानी कि ऐप doodlefonts.com। अब ये जो है ये काम की भी हो सकती है और ये मजे के लिए भी हो सकती है, पर अब बता देता हूं आपको। चलो doodlefonts.app जो वेबसाइट है इस पे आप खुद के फॉन्ट्स बना सकते हैं। आई नो इट साउंड्स बिजार इन योर हेड राइट नाउ, ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन आप लिटरली बना सकते हैं। हालांकि आप वो क्या कहते हैं, कैसे समझाऊं मैं, हाथ आपका पेंट ब्रश की तरह मूव करेगा तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपकी राइटिंग जनरली मेरे जैसी है तो फिर तो ये वेबसाइट आपके लिए नहीं है। बट स्टिल आपकी राइटिंग खराब हो अच्छी हो जैसे भी हो, आप अपने तरीके से फॉन्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। सोचा था कभी 20 साल पहले ऐसा कुछ आएगा दुनिया में? भाई मैंने फॉन्ट्स रिलेटेड तो नहीं सोचा था। तो ये वेबसाइट बहुत कमाल की है। इफ यू वांट टू जस्ट एक्सपेरिमेंट विद फॉन्ट्स, यू नो समटाइम्स यू वांट टू शो पीपल के देखो ऐसा फॉन्ट दे गया आएगा कहीं, तो ये आपके काम आ सकती है। डूडल doodlefonts doodlefonts.app, ट्राई दिस वन आउट। ओके, बढ़ते हैं अगली ऐप की तरफ या वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है messenger.abito.co, messenger messenger messenger.abito.co। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप लिटरली एक बहुत ही कोजी गेम खेल सकते हैं, एंड इसकी ग्राफिक्स भी बढ़िया है यार। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी कोई ऐसी फ्री वेबसाइट बताता हूँ क्या उसकी ग्राफिक्स बढ़िया होंगे, देन आई जज इट एंड देन आई टेल यू। मैं सही बता रहा हूँ, ये इतनी कमाल की चीज है, ये जो होने लगा है ना ये कोडिंग के थ्रू ये लोग बनाने लगे हैं ऐसे गेम्स जो आप सिंपली बस एक वेबसाइट के क्लिक पे जाके आप खेल सकते हैं, ये बहुत कमाल का है और आने वाले वक्त में आई एम प्रीटी श्योर इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोजी लिटिल गेम आराम से घूमने फिरने वाला तो ये बहुत बढ़िया है भाई। messenger.abito.co, abito abito। कुछ भी दिक्कत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब न्यूज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो खबर दरअसल ऐसी है कि रिसेंटली आप देखेंगे कई सारी चीजें महंगी हो रही

0: नहीं है। और मैं इस बारे में बात करता रहता हूँ सो दैट यू आर अवेयर ऑफ इट। अभी लैपटॉप से लेकर गैजेट्स होंगे, गेमिंग कंसोल्स हो गए, एवरीथिंग इज गोइंग टू शूट अप और ये चलता रहेगा कुछ वक्त तक। अभी रिसेंट टाइम्स में देखा होगा सोनी ने भी ये कहा है कि जो प्ले स्टेशन कंसोल है उनका उसमें वो फिजिकल डिस्क शामिल ही नहीं करेंगे बिकॉज वो एनवायरमेंटल वैसा कुछ नहीं है, खर्चा बचाने वाले सीन है क्योंकि दे नो ऑलरेडी बहुत महंगा बिक रहा है उनका, तो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। मगर एक और चीज इसमें आ गई है जो गेमर्स के लिए बुरी खबर हो सकती है। तो नाउ प्लेस्टेशन इज डूइंग समथिंग वेरी वियर्ड। उन्होंने कहा कि आप जो ऑनलाइन गेम खरीदेंगे, आपने खेल लिया बहुत बढ़िया, पर अगर आपने कोई प्लेस्टेशन पे गेम खरीद लिया ठीक है और आपने इंटरनेट कनेक्शन डिसकनेक्ट कर रखा है अपने प्लेस्टेशन का और आप कहीं घूमने फिरने चले गए, तो आप जब वापस आएंगे 30 दिन के बाद, ये मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, तो आपका गेम चला जाएगा, आपको लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं सोनी वालों से झगड़ लूंगा जाके, दिस इज जस्ट अ न्यूज और तो इसका एक ही तरीका है, रेस्ट मोड में प्ले स्टेशन को रखे। एंड फॉर नाउ दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, ये थी टेक अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: 107 पर पैगाम।
1: परेशानी में मजाक और खुशी में ताना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। इंसान को अल्लाह ताला से मुआफी और सेहत का सवाल करते रहना चाहिए, क्योंकि ईमान की नेमत के बाद तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा तंदुरुस्त, खुशखुरम और सलामत रखे।
0: पैगाम ऑन FM 107।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर हफ्ते एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते हैं। और आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं वो सिंगल्स के लिए है। क्या है ये स्कैम? ये स्कैम है मैरिज स्कैम। कैसे काम करता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, मैरिज स्कैम एक ऐसा धोखा है जहां प्रेडेटरी स्कैमर्स स्पेशलाइज्ड मैट्रिमोनियल वेबसाइट और डेटिंग एप्लीकेशंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रॉड करने वाले लोग उन मासूम लोगों को टारगेट करते हैं जो सच में शादी या एक सीरियस लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की तलाश में होते हैं। इस मकसद के लिए वो अपनी हाईली डिटेल्ड और फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं ताकि लोग उन पर यकीन कर सकें। बात शुरू होते ही ये स्कैमर्स बहुत जल्दी गहरी मोहब्बत का इजहार करते हैं और पूरी गुफ्तगू को, पूरी बात को शादी की तरफ हल्के हल्के ले जाते हैं, जिससे विक्टिम के दिल में एक झूठा सुकून और भरोसा यानी कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो जाता है। जब विक्टिम का ट्रस्ट पूरी तरह जीत लिया जाता है तो स्कैमर अचानक झूठी और बहुत स्ट्रेसफुल इमरजेंसीज खड़ी कर देता है, जैसे कि कोई अचानक लीगल मसला हो गया है, बाहर के मुल्क में उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया है, या उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, या उनका डेबिट कार्ड खो गया है, या फिर उनका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, या किसी करीबी रिश्तेदार की अचानक तबीयत खराब होना। वो विक्टिम को इमोशनली ब्लैकमेल यानी कि गिल्ट ट्रिप करते हैं ताकि वो इन मसाइल को हल करने के लिए एक कोई रकम दे दे, या कोई एक थोड़े पैसे दे दे, या इमरजेंसी फंड्स दे दे। जैसे ही विक्टिम का बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है, स्कैमर्स हर जगह से ब्लॉक करके बिल्कुल गायब हो जाते हैं। कई बार ये आपको कोई ऐसा स्कैनर देते हैं या फिर बैंक का डिटेल देते हैं जहां पर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आपको ये कहते हैं कि हम कुछ दिन में पैसे वापस कर देंगे। पहला तरीका है कि ये पैसे लेने के बाद गायब हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये पैसे लेने के बाद आपसे बात करते हैं और ये बात थोड़ी और लंबी चलती है, ये कुछ पैसे आपको वापस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 100 रियाल लिया है इन्होंने तो उसमें से ये 20% या 20 रियाल आपको वापस भी करेंगे, तो आपको यकीन हो जाता है कि हाँ, ये वापस करने वाला शख्स है। लेकिन बीच में एक बार फिर से इसी तरह की इमरजेंसीज बताई जाती हैं और दोबारा आपसे 100 रियाल लिया जाता है या 150 रियाल लिया जाता है और फिर वो गायब हो जाते हैं। ऐसे में आपका डबल नुकसान होता है और ये अपना डिटेल, अपना वो प्रोफाइल, अपना बैंक नंबर या फिर सारी जो डिटेल्स हैं वो बंद करके गायब हो जाते हैं, अपना फोन नंबर बंद करके गायब हो जाते हैं और आप इनको ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। क्या तरीके हैं इन मैरिज स्कैम से बचने का, इस पर अगर हम बात करें तो बातचीत को स्लो रखें और जल्दबाजी कभी ना करें। अगर कोई शख्स मिलते ही बहुत जल्दी शादी की बातें करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करता है, अचानक बहुत ज्यादा मोहब्बत का दावा करता है, तो होशियार हो जाएं, असली रिश्ते बनने में वक्त लगता है। उसके अलावा पैसे भेजने से बिल्कुल इनकार करें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम इमोशनली किसी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और जब इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हैं तो उनके रिलेटिव से, उनकी परेशानियों से भी कनेक्ट होने लगते हैं और ऐसे में उनकी मदद करते हैं, क्योंकि दिल तो आपका साफ है। लेकिन इस साफ दिल का फायदा स्कैमर्स उठाते हैं। आप उनकी परेशानी को अपना समझते हैं और कुछ पेमेंट कर देते हैं। सबसे बड़ा रूल यही है कि जिस शख्स से आप ऑनलाइन मिलते हैं और कभी फिजिकली मिले ही नहीं, तो उसे किसी भी सूरत में पैसे या तोहफे ना भेजें, चाहे उनकी इमरजेंसी कितनी ही सच्ची क्यों ना हो। उसके अलावा बैकग्राउंड चेक हमेशा करें, वेरीफाई करें। उनकी दी गई फोटोज को रिवर्स इमेज सर्च के जरिए चेक करें कि कहीं वो किसी और की चोरी की हुई फोटोज तो नहीं है। इसके अलावा उनके कहे गए दावों को हमेशा फैमिली और दोस्तों के जरिए वेरीफाई करने की कोशिश करें। एक और तरीका है, जो तरीका है आपको सोशल मीडिया पे डीप एनालिसिस करने का। जिस शख्स का प्रोफाइल आप देख रहे हैं किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, उनको सोशल मीडिया पे सर्च करें, कितने लंबे वक्त से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और अगर वो बहुत लंबे वक्त से एक्टिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कैमर नहीं होगा। वो कितना जेन्युइन है उससे बात करके पता चलेगा, उनके रिलेटिव के बारे में जानने को पता चलेगा, आप उनसे सामने से मुलाकात करें, उनके घर के बारे में समझें, उनको जानें, उसके अलावा उनके साथ बैठें उठें और उनके घर को भी देखें, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये बंदा स्कैमर है या नहीं है। इस तरीके के स्कैमर्स आजकल सोसाइटी में बहुत ज्यादा हैं। आपको होशियार रहने की जरूरत है और इन सॉल्यूशंस पर काम करने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते हैं FM 107, दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट,
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
5: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज की इस डिजिटल दुनिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और ये है AI एंड पर्सनल फाइनेंस। जी हाँ, सबसे पहले ये समझते हैं कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको जल्दी से क्विक रिकैप की तरह आप तक पहुंचाऊं, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा को एनालाइज करके स्मार्ट डिसीजंस लेने में हमारी और आपकी मदद करती है। यानी कंप्यूटर सिस्टम जो इंसान की तरह सीख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं और आपको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि AI का हमारे पैसों और डेली फाइनेंशियल लाइफ से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, पहले पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग के लिए ना लोग फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते थे, स्प्रेडशीट्स बनाते थे, नोटबुक्स में अपना खर्चा लिखते थे। आज AI की वजह से ये सब बहुत आसान हो गया है। अगर आप कोई बजटिंग ऐप यूज करते हैं, चांसेस है कि उसमें AI टेक्नोलॉजी शामिल हो। ये एप्स आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालाइज करती है और बताती है कि आपका पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है। मिसाल के तौर पे, अगर आप हर महीने रेस्टोरेंट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं, AI आपको अलर्ट कर सकती है और बजट मेंटेन करने के सजेशंस देती है। AI का एक और बड़ा फायदा है एक्सपेंस ट्रैकिंग का। अक्सर महीने के एंड में हम सोचते हैं कि सैलरी तो ठीक थी, लेकिन पैसा गया कहाँ? जी हाँ, AI पावर टूल्स आपके ट्रांजेक्शन को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, बिल्स, एंटरटेनमेंट और सेविंग्स। इससे आपको आपकी फाइनेंशियल पिक्चर ज्यादा क्लियर नजर आती है। AI सेविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है। कुछ मॉडर्न बैंकिंग एप्स आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को एनालाइज करके सजेस्ट करती हैं कि हर महीने कितनी अमाउंट सेव करना रियलिस्टिक होगा। कुछ एप्स तो ऑटोमेटिकली स्मॉल अमाउंट सेव करती हैं, जैसे इमरजेंसी फंड बिल्ड करना आसान हो जाता है। दोस्तों, AI इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी अपना रोल अदा कर रही है। आजकल रोबो एडवाइजर्स नाम की सर्विस अवेलेबल है, जो कि इन्वेस्टर्स के गोल्स, एज और रिस्क टॉलरेंस को देखकर इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करती है। ये टेक्नोलॉजी बिगनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को समझना और शुरू करना आसान बना रही है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात रखने वाली है, AI एक पावरफुल टूल है। AI फाइनेंशियल एक्सपर्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। हर रिकमेंडेशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजंस, खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स और लोन से मुतालिक बातों को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। AI प्रेडिक्शंस डेटा पर बेस्ड होते हैं और मार्केट कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं। आज AI फ्रॉड डिटेक्शन में भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AI की मदद से सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपके अकाउंट में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नजर आए, तो AI सिस्टम्स उसे आसानी से डिटेक्ट करके पहचान के वार्निंग जनरेट कर सकता है। यानी AI सिर्फ पैसे मैनेज करने का नाम नहीं है, बल्कि प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करती है। अगर समझदारी से यूज की जाए तो ये बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत आसान बना सकती है। लेकिन याद रखना, AI आपको गाइड कर सकती है, लेकिन आपके पैसों का फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। स्मार्ट मनी का आज का लेसन ये है कि टेक्नोलॉजी को अपना हेल्पर बनाइए, अपना डिसीशन मेकर नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे यानी

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107, दिल से देसी।
3: सुनिए कतर 2026 RJ फजील के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है कतर 2026। तो कतर 2026 में क्या होता है अब तक तो आपको पता चल गया होगा, चाहे वो कतर के मेजर अनाउंसमेंट को लेकर किसी अशगाल के बारे में बात हो, इवेंट के बारे में बात हो, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, मतलब कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो सबसे बेस्ट शो जो हो सकता है आपके लिए वो है कतर 2026। तो चलिए शुरू करते हैं कि कतर में इस हफ्ते क्या कुछ स्पेशल है, कैसे कैसे इवेंट्स हैं, कौन से इवेंट्स अपने अख्ताम को पहुंच चुके हैं और कौन से इवेंट्स शुरू होने वाले हैं। मेजर अनाउंसमेंट में आज सबसे पहले हम अशगाल के बारे में बात करेंगे, फिर आने वाले इवेंट के बारे में और वीकेंड को लेकर क्या माहौल है, एंड देन कॉन्सर्ट कैसा होने वाला है, क्या कोई फूड फेस्टिवल आ रहा है, कुछ स्पेशल मॉल एक्टिवेशन है, फैमिली इवेंट्स, एग्जीबिशन, सब कुछ बात हम करेंगे और फिर स्पोर्ट्स और सीजनल एक्सपीरियंस आप क्या ले सकते हैं, एंड देन कतर के 2030 से रिलेटेड कुछ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी की अपडेट्स और बहुत सी ऐसी चीजें जो बड़ी जरूरी हैं रिलेटेड टू कतर 2030 का विजन। तो सबसे पहले जो मेजर अनाउंसमेंट है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाला है वो है कतर का पब्लिक वर्क अथॉरिटी का प्रोजेक्ट विच इज अशगाल। और अशगाल ने कहा है कि उन्होंने देश के नए और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जिसमें मल्टी बिलियन कतरी रियाल खर्च किए जा रहे हैं। इस मेगा इनिशिएटिव का मेन मकसद पूरे कतर देश में तीन बड़े बदलाव लाना है। पहला बदलाव यह है कि पूरे देश में स्मार्ट सिटी अपग्रेड्स किए जाएंगे ताकि डिजिटल और मॉडर्न फैसिलिटीज बढ़ सके। दूसरा काम यह होगा कि जीरो एमिशन म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल्स किया जाएगा, यानी ऐसा पब्लिक सिस्टम और ट्रांसपोर्ट तैयार होगा जिससे पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो हो जाए और एनवायरमेंट सेफ रहे। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है लोकलाइज्ड रिसाइकलिंग प्लांट्स का सेटअप। जगह जगह रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि कचरे को सही तरीके से मैनेज किया जा सके और एक सस्टेनेबल कम्युनिटी आर्किटेक्चर तैयार हो सके जो आने वाली जनरेशन के लिए फायदेमंद होगी। वेल, ये प्रोजेक्ट 1 अक्टूबर 2026 को ऑफिशियली अप्रूव किया जाएगा। इस पूरे प्लान का टारगेट और कंप्लीशन ड्यूरेशन जो है वो 2029 तक है, तो इसमें अभी टाइम है, लेकिन अप्रूवल मिलना सबसे मैंडेटरी जो कि मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इस अक्टूबर में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इवेंट। सबसे जबरदस्त जो इवेंट होने वाला है वो है इंटरनेशनल आइसक्रीम शो। कतर के स्पेशलाइज्ड

कन्वेंशन पवेलियंस में एक बहुत ही बड़ा और मशहूर इवेंट होने वाला है जिसका नाम है द इंटरनेशनल आइसक्रीम शो। ये पूरी तरह से एक फैमिली फोकस्ड गैदरिंग है जहां पर बच्चे और बड़े सभी एंजॉय कर सकते हैं। इस शो का मेन मोटिव दुनिया भर के टॉप क्लास डेजर्ट आर्टिशंस जो है वो मौजूद होंगे, लोकल क्रीमरी इनोवेटर्स जो है वो भी मौजूद होंगे, उनको भी जगह दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ बहुत सारे स्वीट टूथ एंथुजियास्ट जो है वो भी आ सकते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा मीठे को पसंद करते हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इस इवेंट में आने वाले लोगों को लगातार कई दिनों तक इमर्सिव डेयरी टेस्टिंग का मजा मिलेगा जहां नए नए फ्लेवर्स भी ट्राई करने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहां इंटरैक्टिव फ्रोजन कल्नरी मास्टर क्लास भी होती है, तो आपके लिए सब कुछ और फैमिली गैदरिंग्स को अगर देखा जाए तो सारी चीजें यहां अवेलेबल होंगे। बड़े शेफ लाइव आइसक्रीम और फ्रोजन आइटम्स बनाने की एडवांस्ड टेक्निक्स भी सिखाएंगे आपको यहां पर, तो बहुत कुछ होने वाला है आने वाले महीने में। उसके अलावा पिछले हफ्ते भी आपको एक जबरदस्त इवेंट के बारे में बताया था, कतर के मशहूर फवारत काइट बीच रिजॉर्ट में एक बड़ा इवेंट जो है वो होने वाला है। ये रिजॉर्ट अपने सबसे ज्यादा पॉपुलर और कोस्टल यानी कि फवारत ब्रेक सीजनल एक्सपीरियंस को स्पॉटलाइट करने जा रहा है। ये बीच फ्रंट डेस्टिनेशन लोगों के लिए परफेक्ट और एक्सेप्शनल वीकेंड स्केप जो है वो बनने वाला है। यहाँ आने वाले अटेंडीज यानी कि मेहमानों के लिए प्रीमियम एक्टिविटीज का एक मिक्स ब्लेंड देखने को मिलेगा और एंजॉय करने को मिलेगा। इस इवेंट के मेन अट्रैक्शन में विंडी काइट सर्फिंग डिस्प्लेज होंगे, प्रिस्टीन शोर्स यानी कि साफ सुथरे और खूबसूरत समंदर के किनारे आपको देखने को मिलेंगे, और स्पेशलाइज्ड ओशन फ्रंट डाइनिंग ऑप्शन भी आपके लिए मौजूद होगा, यानी कि समंदर के सामने खास खाने के साथ बैठे होंगे, रेस्टोरेंट का मजा आ रहा होगा और यू नो व्यूज तो होंगे होंगे और कैंडल लाइट डिनर हो जाए तो क्या ही बात है। अगर आपको एक बेहतरीन और रिलैक्सिंग वीकेंड चाहिए, बीच वीकेंड चाहिए, तो यार ये जगह इस कह सकते हैं महीने में सबसे परफेक्ट होने वाली है, और ये है फवारत काइट बीच। तो ये पूरा इवेंट उसके लिए डिजाइन किया गया है ना कि पूरे फैमिली आकर बैठे, मजे ले, काइट सर्फिंग देखे, तेज हवा भी चल रही होगी, तो ये सब डिजाइन किया गया अपने हिसाब से। भाई साहब आपको जाना जरूर चाहिए ये खूबसूरत से इवेंट में। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कॉन्सर्ट के बारे में, है ना, और अल हज्म गैलेरिया में क्या आ रहा है, मॉल एक्टिवेशन क्या है आपके लिए इस महीने यानी कि आने वाले महीने में। एफ एम 107 पे बने रहिए हमारे साथ और आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कॉन्सर्ट के बारे में तो 2 अक्टूबर 2026 ये डेट तो आपको लिख लेनी चाहिए। कतर के मशहूर कटारा ओपेरा हाउस एक बहुत ही शानदार और मैजेस्टिक म्यूजिकल इवेंट होस्ट करने जा रहा है। इस कॉन्सर्ट में ट्रेडिशनल अरेबिक अकूस्टिक डायनामिक्स और क्लासिकल ऑर्केस्ट्रल सिम्फनीज का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश किया जाएगा आपके लिए। ये पूरा परफॉर्मेंस रीजनल यानी कि इलाके के बड़े संगीतकार जो मास्टर्स हैं वो आएंगे, उनके साथ मिलकर तैयार किया जाएगा माहौल और म्यूजिक तैयार किया जाएगा। ये लोकल ऑडियंस और विजिटर्स के लिए वीकेंड पर एक बेहतरीन कल्चरल एक्सपीरियंस होगा। इस कॉन्सर्ट की सबसे खास बात कटारा ओपेरा हाउस की प्रिस्टीन आर्किटेक्चरल साउंड क्वालिटी है, जहां बिना किसी एको के या डिस्टॉर्शन के म्यूजिक का हर एक सुर आपको बिल्कुल साफ सुनाई देगा। तो डेट और टाइम लिख लीजिए, ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर 2026 की शाम को होगा, और टाइमिंग अभी जो है आपको ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको विजिट कतर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें फूड फेस्टिवल के बारे में तो ये जो अल हज्म गैलेरिया है यहाँ पर कुछ खास खाने वालों के लिए है। कतर के सबसे प्रोमिनेंट और पोश एरिया अल हज्म गैलेरिया में एक अपस्केल ओपन एयर कल्नरी मार्केट प्लेस लग रहा है जिसका नाम मीना डब्ल्यू फेना है। ये फूड फेस्टिवल बहुत बड़ी भीड़ यानी कि जबरदस्त क्राउड को अट्रैक्ट करता है हर साल। यहाँ आने वाले फूड लवर्स खुले आसमान के नीचे जो माहौल का मजा लेंगे वो तो गजब ही होने वाला है, तो आप जरूर पहुंचिए इस जगह पे। उसके अलावा आउटडोर प्रोमेनेड्स पर पैदल घूमते हुए अलग अलग तरह के खाने को एंजॉय करते हुए जो मजा है वो आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा। इस मेले में कह लीजिए ये मेले जैसा फील आएगा जैसे अपने वहां पर होता है ना, वहां पर बस क्या है कि थोड़ा धूल वूल उड़ती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मेले वाला एंजॉय पूरा मेले वाला होगा। और तो इसको मेला नहीं कह सकते यार, ये तो आपको कहना पड़ेगा मॉल में एक्टिवेशंस है भाई साहब, वहां जा रहे हैं। तो इस जगह पे जब आप जाएंगे तो आपको लोकल डेजर्ट मिलेगा खाने को, गवर्नमेंट फ्यूजन डिशेस भी हैं। फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इस शानदार फूड एक्सपीरियंस को कंफर्टेबली मजे लेकर खा सकते हैं क्योंकि मौसम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा होगा, और शाम का मौसम कोई भी मतलब किसी भी तरह से बहुत परेशानी से भरा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यार हवा चलेगी, हल्की ठंडी

ये भाई इंतजार कर रहे हैं यार इस मौसम का, तो न जाने कब से इंतजार कर रहे हैं कतर वाले। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि दोहा फेस्टिवल सिटी ई स्पोर्ट, ये क्या चीज है? ये एक मॉल एक्टिवेशन है। दोहा फेस्टिवल सिटी के अंदर एक बहुत ही मशहूर वर्चुअल बैटल ग्राउंड अरीना है जिसका नाम है वर्चुअल सिटी, और इसे पहले वाले हफ्ते में भी हमने इस पर बात करी है। ये अरीना अपने सबसे बड़े और इंटेंसिव ई स्पोर्ट टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनालेज को स्टेज करने जा रहा है। अब इस इवेंट के दौरान हजारों की भीड़ इकट्ठा होने वाली है और उम्मीद तो ये भी है कि मजा जो है वो डबल ट्रिपल होने वाला है, क्योंकि कुछ तो सरप्राइजिंग यहाँ पर होगा। उसके अलावा इस जगह पे टेक सेवी शॉपर्स जो है वो होने वाले हैं, जो गैजेट्स और टेक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव गेमिंग क्राउड्स शामिल होंगे यहाँ पर, और सभी लोग इस मॉल कॉम्प्लेक्स में जमा होकर हाई स्टेक मल्टीप्लेयर शोडाउंस को लाइव अपने आंखों के सामने देखेंगे। इस टूर्नामेंट का मेन मोटिव लोकल गेमिंग कम्युनिटी में डोमिनेंस और लोकल ब्रैगिंग राइट्स, यानी कि शहर का सबसे बेहतरीन गेमर बनने का जो रुतबा है लोगों में, वो हासिल करना है। अगर आपको गेमिंग का शौक है तो ये वीकेंड आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। 29 और 30 सितंबर ये डेट आपके लिए बिल्कुल लिख लेना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है। उसके अलावा कतर 2026 में हम फैमिली के बारे में भी बात करते हैं, और 29 सितंबर यानी कि 29th ऑफ सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक एक फैमिली एक्सपीरियंस आप जूरी एक्सपीरियंस थिएटर जिसका नाम है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फैमिली इवेंट्स के बारे में बात करें जिसका नाम जूरी एक्सपीरियंस थिएटर है, तो फैमिलीज और क्राउड्स के लिए यू वेन्यू पर एक बहुत ही यूनिक और इमर्सिव अट्रैक्शन चल रहा है जिसका नाम है जूरी एक्सपीरियंस इंटरैक्टिव थिएटर। ये एक आम बोरिंग ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक कोलैबोरेटिव ग्रुप एक्सपीरियंस है जो घर यानी कि जो बड़े लोग हैं और टीनेज फैमिली मेंबर्स हैं दोनों को एक साथ चैलेंज करता है। इस इंटरैक्टिव गेम या थिएटर में पूरी फैमिली को एक जूरी पैनल की तरह बैठना होता है जहां उन्हें कॉम्प्लेक्स एविडेंस को ध्यान से देखना और परखना पड़ता है। इसके बाद सभी लोग आपस में डिबेट करते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं और आखिर में एक लाइव कोर्टरूम वर्डिक्ट सुनाते हैं। ये फैमिलीज के लिए एक बेहतरीन बॉन्डिंग इवेंट है जहां दिमाग का इस्तेमाल और फन एक साथ होगा। तो असल में आपके बच्चों के बीच, आपकी फैमिली मेंबर्स के बीच है ना कितना अच्छा बॉन्ड है, ये इस खास इवेंट से आपको पता चल जाएगा। तो 29 से लेकर 5 अक्टूबर तक यू वेन्यू में आप जा सकते हैं और ये है फैमिली इवेंट जूरी एक्सपीरियंस थिएटर 29 से 5 अक्टूबर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एग्जीबिशन के बारे में। कतर में एक बड़ा ही जबरदस्त एग्जीबिशन जो है या बहुत ज्यादा इंतजार किया जाने वाला एग्जीबिशन है वो है बिग 5 कंस्ट्रक्ट कतर एग्जीबिशन। इसकी डिटेल में अगर आए तो ये एग्जीबिशन ऑफिशियली दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होने जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी और मेजर कंस्ट्रक्शन ट्रेड एग्जीबिशन है। ये इवेंट इंडस्ट्री के टॉप स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, मॉडर्न आर्किटेक्ट्स और इंटरनेशनल टेक सप्लायर्स को एक ही छत के नीचे लेकर आता है। इसका मेन मकसद नेक्स्ट जनरेशन बिल्डिंग सॉल्यूशन को शोकेस करना है। अगर आप रियल एस्टेट डिजाइन या इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं तो नए टूल्स और हैवी टेक देखने के लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। 6 अक्टूबर ये एग्जीबिशन ऑफिशियली शुरू होगा और इसके लिए आपको ज्यादा जानकारी अगर चाहिए तो विजिट कतर की वेबसाइट पर जा सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अब स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए भी कुछ बात कर लेते हैं। 3 अक्टूबर को एक जबरदस्त मैच होने वाला है और फुटबॉल के शौकीन के लिए जो बड़ी खबर है वो है 3 अक्टूबर को होने वाला कतर स्टार्स लीग का फिक्स्चर। यहाँ सारे डोमेस्टिक सॉकर प्लेयर्स जो हैं वो मौजूद होंगे, सॉकर लीग मैचेस खेलेंगे और जबरदस्त कांटे की टक्कर होने वाली है। मैचेस के लिए सुहेम बिन हमद स्टेडियम जैसे बड़े और मॉडर्न एथलेटिक वेन्यूज को चुना गया है। कतर की पैशनेट लोकल स्पोर्ट्स क्राउड इन वेन्यूज को पूरा पैक करने वाली है ताकि वो अपनी फेवरेट लोकल टीम्स को फुल जोश के साथ सपोर्ट कर सके। तो स्पोर्ट्स के जितने भी दीवाने हैं वो तैयार हो जाए क्योंकि कतर स्टार्स लीग लेकर आ रहा है जबरदस्त कांटे की टक्कर वाला मैच, और इसका तो इंतजार स्पोर्ट्स के फुटबॉल के जो दीवाने वो लगातार करते रहते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कतर के 2030 विजन को लेकर। कतर नेशनल विजन 2030 को लेकर, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को लेकर अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने बताया है कि कतर ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। देश की 73% से ज्यादा पब्लिक ट्रांजिट बसेस को अब पूरे इलेक्ट्रिक ऑपरेशन पर सक्सेसफुली कन्वर्ट या ट्रांजिशन कर दिया गया है। इसके साथ ही अल अफजा रिसाइकलिंग जोन में नए

0: ऑटोमेटेड ऑपरेशन अपडेट्स शुरू किए गए हैं। ये हाईटेक सिस्टम हजारों टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और गैजेट्स को प्रोसेस करते हैं और उन्हें यूज करके म्युनिसिपल ग्रिड एनर्जी में बदल दिया जाता है। इससे कचरा भी साफ हो रहा है और शहर को नई एनर्जी भी मिल रही है। इसी के साथ स्मार्ट सिटी की भी अपडेट्स है। कतर का सबसे मॉडर्न एरिया यानी कि मुशहर डाउनटाउन दोहा अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत ही एडवांस्ड AI पावर्ड म्युनिसिपल मैनेजमेंट एरे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया है। तेजी से इंस्टॉल भी किया जा रहा है और स्केल अप भी किया जा रहा है। इसमें एडवांस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपग्रेड्स का यूज किया जा रहा है जो तीन बड़े काम करेगा। पहला, ये कंटीन्यूअस स्मार्ट लाइटिंग यानी कि ऑटोमेटिक और जरूरत के हिसाब से जलने वाली जो लाइट्स है उसको चलाएगा। दूसरा, ये ऑटोमेटेड क्लाइमेट कूलिंग नेटवर्क्स ऑटोमेटिक एसी और टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, उनको मैनेज करेगा। तीसरा, इसमें जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वेस्ट सॉर्टिंग पाइपलाइंस यानी कि कचरा अलग करने वाली ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पाइप्स काम करेंगी। ये सारी चीजें मिलकर इस पूरे टेक ड्रिवन रेसिडेंशियल एन्क्लेव के अर्बन एनर्जी कंजप्शन को बहुत ज्यादा कम कर देगी। यानी कि जो वहां पर लोग रहते हैं और अभी तक अगर 10 किलोवाट इस्तेमाल हो रहा है एनर्जी, तो वो बहुत घटके कम हो जाएगी क्योंकि यहां पर AI पावर्ड म्युनिसिपल मैनेजमेंट एरे का सिस्टम लगा दिया गया है। इसके साथ ही एडुकेशन इनिशिएटिव भी लिया गया है। कतर फाउंडेशन ने 4 अक्टूबर को एडुकेशन सिटी के बड़े यूनिवर्सिटी कैंपसेस में स्पेशल रिसर्च वर्कशॉप शुरू करने का फैसला किया है। इसका मेन मकसद लोकल स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल टेक लीडर से कनेक्ट करना है ताकि वो सब मिलकर एथिकल AI फ्रेमवर्क बना सके। साथ ही अगर ट्रांसपोर्ट चेंजेस पर बात करें तो दोस्तों, कतर रेल 1 अक्टूबर 2026 से सभी एक्टिव दोहा मेट्रो लाइंस पर प्रेडिक्टिव डिजिटल ट्रांजिट रूट अपडेट शुरू कर रहा है। ये स्मार्ट ट्रांजिट सिस्टम एडवांस्ड एल्गोरिथम्स का यूज करेगा ताकि मेट्रो स्टेशंस पर पैसेंजर को ज्यादा वेट करना ही ना पड़े। जब भी सिटी में बड़े इवेंट्स या एग्जीबिशन होंगे, ये सिस्टम भारी भीड़ को बिना किसी दिक्कत के हैंडल कर लेगा और इसका फायदा ये होगा कि सफर आसान हो जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले से ज्यादा फास्ट और स्मूथ चलेगा। तो दोस्तों, ये था कतर 2026, जहां पर आपको कतर की तमाम डिटेल्स मिली। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कतर के तमाम इवेंट्स के बारे में और एग्जीबिशन से लेकर कॉन्सर्ट के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: कतर 2026 RJ फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
3: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान। हम तलाशें कुरान के मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से।

0: सिर्फ FM 107 पर।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
4: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंड बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ये सर्विस वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और बता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
5: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो आजकल बच्चों, नौजवानों, बड़ों और तकरीबन हर उम्र के अफराद में आम होता जाता रहा है, और वो है आंखों की थकन। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल फ़ोन, काम के लिए कंप्यूटर और सोशल मीडिया, वीडियोस, मैसेजेस और रात को दोबारा मोबाइल स्क्रीन जो है वो हमारे सामने होती है। हमारी आंखें दिन का बड़ा हिस्सा जो है स्क्रीन्स को देखते हुए गुजार रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्क्रीन इस्तेमाल करने वाला शख्स आंखों का मरीज बन जाएगा, लेकिन लंबे अरसे तक बगैर वक्फे के स्क्रीन देखने से आई स्ट्रेन यानी आंखों की थकन हो सकती है। उसकी कुछ अलामत हैं जो कि जाहिर होती हैं कि आंखों में जलन है, खुश्की है, पानी आ रहा है, बहुत भारीपन है, धुंधला नजर आना शुरू हो गया है, सर में दर्द महसूस हो रहा है, आंखों के इर्द गिर्द डिस्कम्फर्ट है और फोकस करने में मुश्किल पेश आ रही है। इस तरह की शिकायत हो सकती हैं। एक अहम वजह ये भी है कि हम स्क्रीन को मुसलसल देख रहे होते हैं और आम हालात के मुकाबले में कम अपनी जो पलकें हैं वो झपक सकते हैं। इससे आंखों की जो सतह है वो हमें ड्राई महसूस हो सकती है। अब सवाल ये है कि इस मसले से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा रूल है, वो हमें ज़रूर याद रखना है, और वो रूल है 20-20-20 का। यानी तकरीबन हर 20 मिनट के बाद तकरीबन 20 सेकंड के लिए और फिर तकरीबन जो 20 जो फिट है दूर किसी चीज़ को आप देखिए। इसका मकसद आंखों को मुसलसल एक ही फासले पर फोकस करने से वक्फा देना है। और दूसरी बात यह है कि स्क्रीन की पोजीशन बहुत करीब भी ना हो और इतनी ऊंची भी ना हो कि आपको मुसलसल गर्दन ऊपर उठाना पड़े। कंप्यूटर स्क्रीन बैठने की पोजीशन है वो आरामदेह होनी चाहिए। मोबाइल फोन को आंखों के बहुत करीब रखकर लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने से भी हमें गुरेज करना है। रोशनी का भी खास ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल अंधेरे कमरे में बहुत रोशन जो स्क्रीन है देखने के बजाय कमरे में आप मुनासिब रोशनी रखिए। और एक आम गलती ये है कि बहुत से अफराद मुसलसल स्क्रीन को देखते हैं।

0: सोचते हैं कि सिर्फ ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने से मसला हल हो जाएगा। असल बात सिर्फ ब्राइटनेस नहीं बल्कि लाइटिंग, डिस्टेंस, स्क्रीन टाइम और जो ओवरऑल आई हैबिट्स हैं वो हैं। बच्चों के मामले में वालिदैन का किरदार बहुत अहम है। बच्चे खेल या वीडियोस में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उन्हें वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता, इसलिए स्क्रीन इस्तेमाल करने के दौरान ब्रेक्स और आउटडोर एक्टिविटी को रूटीन का हिस्सा बनाना बहुत ही बेहतर है। आंखों के लिए सिर्फ स्क्रीन से ब्रेक लेना ही काफ़ी नहीं, मुनासिब नींद, बैलेंस्ड डाइट और ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अहम है। और एक बहुत अहम बात, हर आंख की शिकायत को सिर्फ स्क्रीन की वजह से ना दुरुस्त नहीं है। अगर नज़र मुसलसल धुंधली रहती है, आंख में दर्द है, नज़र अचानक कम हो जाए या रोशनी की चमक या बहुत ज़्यादा जो नए फ्लोटर्स हैं नज़र आएँ, तो फिर आप आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। ख़ास तौर पर अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ है या कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो आंखों को मुतासिर कर सकती है, तो रेगुलर चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा अपना आज का हम रूटीन देखें कि जैसे ही हम सुबह उठे या सुबह तक कितने घंटे जो है वो स्क्रीन हम देख चुके हैं, क्या दरमियान में कोई ब्रेक्स लिए, क्या आप मोबाइल को चेहरे के बहुत करीब रखकर इस्तेमाल करते हैं, क्या आप सोने से पहले काफ़ी देर तक फ़ोन देखते रहते हैं, तो फिर यह है कि आज से एक छोटी सी तब्दीली हम कर लेते हैं। हर कुछ देर के बाद स्क्रीन से आप अपनी नज़रें हटा लीजिए, पलकें जो हैं मामूल के मुताबिक छपकाइए, मुनासिब फासले से स्क्रीन देखिए, अपने बच्चों को भी ब्रेक्स की आदत डालिए और आंखों में मुसलसल या गैर मामूली अलामत हों तो खुद से ट्रीटमेंट करने के बजाय आप आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। याद रखिए हमारी आंखें हमारी ज़िंदगी के रंग हमें दिखाती हैं, उनका ख्याल रखने के लिए हमें हमेशा कोई बड़ी तब्दीली की ज़रूरत नहीं होती, बाज़ों का छोटी छोटी अच्छी आदत बहुत मददगार साबित होती हैं। आज की मैसेज ये है कि स्क्रीन इस्तेमाल कीजिए लेकिन अपनी आंखों पर स्क्रीन को हावी ना होने दीजिए, अपनी आंखों को वक्फा दीजिए, मुनासिब रोशनी में काम कीजिए और जो वार्निंग साइंस हैं उन्हें इग्नोर ना कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक अपनी आंखों का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि योर हेल्थ मैटर्स।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل

0: बंदा अगर खड़े होकर पेशाब करे
1: जी,
0: या मान लीजिए लोअर कमर में भी, नीचे वाले बैठ के कमर में भी अगर बंदा खड़े होकर पेशाब करे
1: जी,
0: क्या ये गुनाह के गुनाह में शामिल नहीं है? क्योंकि उनके पास बैठ के पेशाब करने का और भी जरिया है
1: जी।
0: तो जारी बात, तो ये क्या गुनाह नहीं होगा खड़े होकर पेशाब करना? जैसे कराहत समझा जाता है, ये गुनाह है। तो अगर उसके पास जराये है बैठ के पेशाब करने का
1: जी,
0: ठीक है, जो बाहर जो खड़े होकर पेशाब करने का जो पहला तरीका है वो तो छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो दो तरह का कमर है, खड़े हुए या बैठ के पेशाब करने की, यानी और लो कमर में बैठ के पेशाब करने का जरिया है, तो उसमें अगर वो बैठ के पेशाब नहीं किया
1: जी,
0: तो वो खड़े होकर पेशाब किया,
1: खड़े होकर पेशाब करने की वजह क्या है?
0: जो हाई कमर है उसमें गंदा पड़ा हुआ होता है, यानी अमल पानी पड़ा हुआ होता है उसमें
1: जी,
0: ठीक है, तो उसको साफ करके बैठने का कोई जा नहीं होता है उसके पास।
1: अच्छा, यानी टिश्यू पेपर वगैरह नहीं होते?
0: कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है
1: जी।
0: तो और दूसरी चीज, जो लोअर कमर है यानी नीचे बैठ के जो कमर है, उसमें वो पैंट उतार के भी बैठ के पेशाब कर सकता है
1: जी।
0: यानी बहरहाल अगर वो ये लॉजिक दिखाए
1: कि
0: मैं खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकता पैंट की वजह से या कमर में दर्द की वजह से, किसी और बहाने से अगर वो खड़े होकर पेशाब नहीं किया, अपने आदत से मजबूर होकर उसने, यानी बैठ के पेशाब नहीं किया, अपने आदत से मजबूर होकर खड़े होकर पेशाब किया
1: जी,
0: तो ये गुनाह में शामिल नहीं? यानी गुनाह कहाँ तक होगा? एक सवाल ये है,
1: ठीक है,
0: ये सवाल। दूसरा सवाल ये है, जैसे तबलीगी जमात
1: जी,
0: अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का ये कुर्बानी पूरी दुनिया में अभी मकबूल है
1: जी,
0: तो उनके ये मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा है सालों से, यानी पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है
1: जी।
0: तो अभी दरमियान में कोई एक शख्स वाहिद शख्स मखसूस, मैं शख्स का नाम नहीं लूंगा
1: जी,
0: जिन्होंने कुछ फितना वारियत कुछ बातें उन्होंने फैलाया, और हमारा जो इदारा अजीम मादर अलमी दारुल उलूम देवबंद ने उसके ऊपर बहुत सारी बातें भी की है, और ये कुछ उनके कुछ सोच और कुछ बातें जो गलत ठहराया गया
1: जी,
0: और उनको अहले सुन्नत वल जमात से खारिज कर दिया, यानी इस तरह की बातें हुई है कुछ साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है
1: जी।
0: तो अभी मामला ये है, क्या उनके मुत्तबईन उनके फॉलोअर्स जो है वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो जाएंगे? अगर वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गया तो उनके फॉलोअर्स का ईमान और आमाल जो कर रहे हैं क्या वो दाए हो जाएंगे, या उस पे उसका क्या होगा? यानी वो गुनाहगार होंगे या कुफर में होंगे, या उनके आमाल कबूल नहीं होंगे, उनके आमाल ही नहीं होंगे
1: जी।
0: समझ आ रही मेरी बात?
1: जी जी।
0: यानी उनके फॉलोअर्स जो है, अगर वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गया तो उनके आमाल का क्या होगा, या उनके फॉलोअर्स जो अब तक उनको फॉलो करके आ रहे हैं, ठीक है, उनके आमाल का क्या होगा, या कोई बंदा अगर नहीं उसे उनको फॉलो करना चाहे तो उसका क्या हुक्म होगा
1: जी।
0: जी,
1: और कोई सवाल है आपका?
0: तीसरा सवाल ये है, नमाज में,
1: ये आपका आखिरी सवाल है, ठीक है
0: जी,
1: तीसरा
0: जी, नमाज में अगर कभी कॉल आ गया
1: जी,
0: जैसे कॉल आया तो उसमें फोन रिसीव करना है, या किसी कोई जैसे डिलीवरी बॉयस वाले जो मोबाइल ओपन करके नमाज में नमाज पढ़ते हैं
1: जी,
0: तो उसको कोई ऑर्डर आ गया या उबर वाले कुछ आ गया, तो उसमें उसको एक्सेप्ट करने का, यानी मोबाइल निकाल के उसको एक्सेप्ट करने का हुक्म क्या है? यानी कॉल आया तो
1: कॉल रिसीव करने का क्या हुक्म है नमाज के दौरान?
0: जी, रिसीव करने बात कहते हैं, मैं नमाज में हूँ काट दिया, यानी ऐसा कोई अमल नमाज में जो नमाज के गैर में शामिल है
1: जी,
0: जी ये अमल क्या होगा, क्या इसका क्या हुक्म है?
1: ठीक है, इंशाल्लाह आप प्रोग्राम तो पूरा सुनते हैं जी?
0: जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह,
1: ठीक है, इंशाल्लाह आखिर में इन तमाम जो आपने तीन चीजें पेश की है ना, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दो सवाल की इजाज़त है एक कॉल पर, मैंने आपसे तीन सवाल लिए हैं।
0: चलिए ठीक है, शुक्रिया,
1: बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फीकुम। सामीन, गुफ्तगु हमारी चल रही थी कनाअत पर और इस्तिग़ना पर, इसी दौरान कॉल हम रिसीव कर रहे हैं, और प्रोग्राम की पहली कॉल हमने ली है और उसमें तीन सवालात आए हैं। अगर आप भी अपने सवालात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो रब्ता कीजिए 443-443-77, और इस ज़रूर हम आपके आपका सवाल लेंगे, इंशाल्लाह आपकी कॉल रिसीव करेंगे। तो सामीन, बात कर रहे थे इस्तिग़ना की कि

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: बन चुके थे। लाहौर आते ही उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। आवाम उन्हें देखकर नारे लगाने लगी। ऐसा लगता था एक शायर नहीं, एक इनकलाबी लीडर उनके सामने है। रिहाई के बाद फैज साहब की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। उनके घर वालों ने सोचा कि शायद अब वो सियासत और इनकलाब से दूर रहेंगे, मगर फैज की फितरत ही कुछ और थी।
1: उनका सबसे बड़ा सहारा उनकी बीवी एलिस बेस थी। एलिस अंग्रेज थी, लेकिन उन्होंने फैज का साथ आखिर तक निभाया। वो सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं उठाती थी, बल्कि फैज के ख्यालात और उनकी शायरी का हिस्सा भी बन गई थी। एलिस ने एक मरतबा कहा, फैज के साथ जिंदगी मुश्किल जरूर है, मगर उसमें एक अजीब खूबसूरती भी है। उनका दर्द, उनका जज्बा, उनका इश्क, सब कुछ दिल को छू जाता है। फैज साहब की शायरी अब सिर्फ किताबों तक महदूद ना रही, अब वो अवाम की जबान बन गई थी। उनकी नज़में चौराहों, मजदूरों की महफिलों और तलाबा के जुलूसों में पढ़ी जाने लगी। उनका कलाम था, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जहां अब तक तेरी है। ये नज़्म मजदूरों और तलाबा का तराना बन गई। अवाम के दिलों में एक नया जज्बा जाग गया। फैज साहब की शोहरत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रही, उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दावत मिलती रही। कहीं उनकी शायरी तर्जुमा होती रही, कहीं उन्हें इनकलाबी शायर के तौर पे समझा जाता रहा। 1959 के बाद जब हुकूमत का दबाव बढ़ गया, तो फैज साहब ने मुल्क से बाहर भी वक्त गुजारा। वो लंदन, बेरूत और मॉस्को तक गए। उन्हें दुनिया के शायरों और अदीबों ने खुले दिल से कबूल किया। 1962 में उन्हें लेनिन पीस प्राइज से नवाजा गया। ये उनके लिए बहुत बड़ी पहचान थी। फैज ने उस वक्त कहा, ये इनाम मेरी शख्सी मेहनत का नहीं, बल्कि उन आवाज़ों का है जो इंसाफ के लिए उठती हैं। लेकिन मुल्क के अंदर उनकी मुसीबत कभी कम ना हुई। कभी सेंसर की कैंची, कभी पुलिस की निगरानी, कभी हुकूमत के इल्ज़ाम, मगर फैज मुस्कुराहट के साथ सब झेलते रहे। उनका कलाम और उनका लहजा हमेशा नरम था, चाहे बात सख्त से सख्त ही क्यों ना हो। वो कहते थे, शायर का काम नफरत फैलाना नहीं, बल्कि मोहब्बत और इंसाफ का पैगाम देना है।
2: 1970 के दौर में जब दुनिया में सियासी तहरीकें बढ़ रही थीं, फैज बेरूत चले गए। वहाँ उन्होंने लोटस नाम का अदबी जर्नल शुरू किया। इससे उनका रिश्ता पूरी अरब दुनिया से बन गया। बेरूत में उनकी मुलाकात फ़लस्तीनी शायर महमूद दरवेश से भी हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आए। दोनों के कलाम में एक दर्द था, अपनी ज़मीन से दूरी का दर्द, अपनी आवाम के दुख का दर्द। फैज की शायरी अब फ़लस्तीन और बेरूत के दर्द को भी आवाज़ देने लगी। उनके अल्फाज थे, दिल से कह दो कि हम अभी जिंदा हैं और हमारी सांसों में अभी भी उम्मीद है। 1982 में फैज साहब वापस पाकिस्तान आए। अब वो बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उनका जज्बा अभी भी जवान था। उनके आखिरी दिन ज्यादा सेहतमंद ना रहे। दिल का दर्द अक्सर सताता, मगर कलम कभी रुका नहीं। 20 नवंबर 1984 को लाहौर में फैज अहमद फैज इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल की खबर सुनकर लोगों की आंखें भर आईं। उनका जनाजा एक आवामी समंदर बन गया। मजदूर, तलबा, अदीब और आम लोग सभी उनकी आखिरी यात्रा में शामिल हुए। आज भी फैज का कलाम सिर्फ शायरी नहीं, बल्कि एक नारा है, इंसाफ, मोहब्बत और इंसानियत का।
3: इंसाफ, मोहब्बत और इंसानियत का।
4: आप सुन रहे हैं महफिले शायरी सिर्फ FM 107 पर। 107 पर।

0: अब हिम्मत हम तीनों को दिखानी है क्योंकि बैतबाजी का वक्त आ गया। देखते हैं कि क्या क्या मामला सेट होता है। तो आज जो है ना आज शुरू कौन करने वाला?
1: मुझे भी देखा जा रहा है।
0: पिछली बार मैंने शुरू किया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है।
2: चलो आज महवेश शुरू करेंगे।
0: ठीक है, डन। तो आपसे शुरू करते हैं।
1: तो फैज़ अहमद फैज़ का बहुत ही तारीखी, बहुत ही जबरदस्त शेर जो कि बहुत से गानों में भी हमें सुनाई दिया। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा।
2: हाय हाय,
1: क्या बात,
0: क्या बात है,
2: क्या बात, क्या बात। तो आप पर अलिफ आया होगा शायद।
0: अलिफ आ गया क्या?
1: सिवा।
0: चलो, कल तक ऐसा होता कि नून, ये और आज अलिफ।
1: अलिफ।
0: अब क्योंकि अलिफ आया है और ये बात जो है ये शुरू से आखिर तक बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रहती है, सिफर भी यही है और आखिर भी यही है, तो वैसा कुछ मामला है, इसमें सब समेट दिया जाएगा।
1: ठीक है।
0: तो अर्ज किया है
2: इरशाद,
0: और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, कहानी खत्म हो गई।
1: ये अलिस के लिए होगा, है ना?
0: यस यस यस, ये सारी कहानी
2: ही तमाम है जिंदगी।
0: तो ये जो पूरी कहानी को दो लाइनों में समेट दिया है, उसके बाद अलिफ आपके हिस्से में आ गया।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलिफ से, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना ना थे।
1: या अल्लाह,
0: ये तो
1: ये उधार लेने के बाद होता है।
0: हाँ।
2: याद ही नहीं आ रहा है।
1: याद ही नहीं, मतलब कौन आए तो यूं, आए तो यूं उधार लेने।
2: कभी कभी ऐसा होता है ना, अपनी पैसा होता है, मांगने में इतनी बेइज्जती लगती है, ऐसा लगता है कि कैसे मांगे। फरमाती है,
0: आपने जहाँ फिट किया है ये बहुत लोगों के काम आने वाला है।
1: मैंने तो। बिल्कुल
2: सही, बिल्कुल। तो ये से अब महवेश सुनाएंगे।
1: सही, ये और फैज अहमद। अच्छा जी, तो फिर ये से जो है इरशाद,
0: इरशाद, इरशाद, इरशाद, इरशाद।
1: ये आरजू भी बड़ी चीज है मगर हमदम, ये आरजू भी बड़ी चीज है मगर हमदम, विसाले यार फकत आरजू की बात नहीं।
0: सिर्फ आरजू की बात नहीं, ठीक है। क्या आ गया मेरे हिस्से में लिए?
1: कोशिश भी करना पड़ेगी,
0: कोशिश भी करनी पड़ेगी, बैठे बैठे सब नहीं हो जाएगा।
1: बिल्कुल, तो आप कोशिश करें। आप कबीर,
2: तो कबीर आप पर नून आया है, कुछ नया।
0: नून इज माई फेवरेट, मुझे लगता है कि बहुत दिनों से नून मेरा,
1: नून हो गए हो तुम काफी।
0: चलिए फिर, अर्ज किया है, ये भी ये बहुत गहरा है, तो देखिएगा। इरशाद हो जाए, इरशाद,
1: इरशाद, इरशाद।
0: नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयसर तो आरजू ही सही।
1: या अल्लाह, आरजू पे फिर ये तमाम हो गए।
0: आरजू,
1: आरजू सही,
0: तो आरजू
1: ही सही,
2: ये मेरे हिस्से आ गया
1: जी।
2: चले तो इरशाद,
0: इरशाद, इरशाद।
2: ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं।
1: आहा,
0: वो तो नहीं लग रहा,
1: बिल्कुल चेंज
0: चेंज है।
2: तो अभी नून आया था कबीर पे,
1: अब नून दोनों पे आ गया
2: जी, बिल्कुल।
0: अरे ये गलत बात है, इस बार आपने जो है छीन लिया मुझसे,
1: छीन लिया। नून इतना प्यारा,
0: नून इतना प्यारा,
1: अच्छा बताइए। हमारी है ना एक आता था सीरियल, अलिफ नून नाम था उसका, तो वो उसमें जो अलिफ थे वो कमाल अहमद रिजवी थे, जो कि बहुत ही लंबे पत्ते दुबले से थे, और नून जो थे ना वो मोटे से नन्ना, उनका नाम हुआ करता था अलिफ नून। बड़ा बहुत ही मजे का सीरियल है, तो आप लोग दगे हाथों वो भी देख लीजिएगा। तो मैंने तो आपको वो नून बोला था, लेकिन अब मुझ पे नून आ गया।
0: नहीं, पहले मैं कुछ सालों पहले अलिफ हुआ करता था, आजकल
1: आजकल नून चल रहे। सही जी, तो फिर नून, नून जो है मेरे पास है, तो चलिए जी। नून से ना मतलब फैज अहमद फैज का एक थोड़ा सा मुख्तलिफ सा शेर है।
0: जी जी जी।
1: ना गुल खिले हैं ना उनसे मिले, ना मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है।
2: अरे क्या बात है,
0: क्या बात है,
2: ये मेरे पसंदीदा अशार हैं कुछ।
0: नहीं, अगला जो है
2: जी इरशाद,
0: मुझे लग रहा है मैं खुद ही चुराने वाला हूँ और कहीं ना कहीं स्टेटस पर डाल लूँगा।
1: सही,
0: ठीक है। तो शुक्रिया। तो अर्ज किया है, हम शेख ना लीडर ना मुसाहिब ना सहाफी, हम शेख ना लीडर ना मुसाहिब ना सहाफी, जो खुद नहीं करते वो हिदायत ना करेंगे।
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
1: क्या बात है, क्या बात, बड़ी गहरी चोट मारी है।
0: देखिए मतलब
1: है ना,
2: क्या सही बात है ना, पूरा लड़काओं के सामने वाले।
1: हाँ एग्जैक्टली, मतलब हम जो हम ना शेख ना लीडर ना मुसाहिब ना सहाफी, जो खुद ना करेंगे, क्या बात,
2: हिदायत भी ना करेंगे।

0: क्या बात,
1: मुझे लग रहा है इस बार का सबसे पसंदीदा शेर,
0: पसंदीदा शेर हो गया, मतलब बड़ी गहरी बात है इसमें,
1: गहरी बात है,
0: गहरी बात।
1: तो के
2: तो अब ये पे मैं इसको मुकम्मल करती हूँ,
0: आज का हमारा बैतबाजी का राउंड मुकम्मल हो जाएगा यहाँ पे
2: जी।
0: तो ये
2: इख्तितामी शेर
0: साथ,
2: यूं सजा चांद की झलका तेरे अंदाज का रंग, यूं सजा चांद की झलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फजा महकी के बदला मेरे हमराज का रंग।
0: होई होई होई,
1: सब बदल गया, बदल के रखते, जज्बात बदल दिए,
0: जज्बात बदल दिए। चलिए जी, तो फिर फैज अहमद फैज हो गए यहाँ पे तमाम, और हमने इनका, इनके बारे में भी, इनकी लाइव स्टोरी के बारे में भी आपको बताया, साथ ही साथ इनके अशार भी आपको कुछ सुनाए। और फैज अहमद फैज का इतना बड़ा नाम है आजकल, इनकी मतलब आज भी देखो तो इनकी आवाज जो है ना, वो आवाज है जो गूंज रही होती है मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आ।
1: हम भी आज भी तलाशते रहे ऐसे लोग जो अपने ख्याल से आपके ख्याल बदल सके,
0: बदल सके,
1: ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो असली इन्फ्लुएंसर तो उस जमाने में
0: एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलने वाली थी, तूने मेरे दिल की लाइन ली है, मेरे मुंह पे थी ये लाइन तूने पहले बोलती है,
1: तो खा गया मैं।
0: हाँ बिल्कुल, आप खा गए। तो बिल्कुल ऐसे ही कि असल जो है वो इन्फ्लुएंस करना भी इसी तरीके से चाहिए। चले रही, तो फिर इसी के साथ हमें लेनी है आप लोगों से इजाजत, और लेकिन हम जाते जाते आपको याद कराते चलें कि आपने हमें मैसेज जरूर करना है।
2: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107, दोबारा से बताती हूँ 666-22-107। तो हमें मैसेजेस करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा शेर हमें पढ़ के सुनाएं या भेजें तो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे।
1: और इसी के साथ साथ जो आपने स्टोरीज बनाना शुरू करी हैं, बड़ा अच्छा तरीका है, और अच्छी बात है कि उसको थोड़ा प्रमोशन मिल गया था। तो इमोशन के साथ प्रमोशन बहुत जरूरी है, जब आप सफर में रहें और सुनते हुए जा रहे हैं ये खास शो जो आपके लिए बनाया गया है, तो एक स्टोरी तो बनती है। जरूर टैग कीजिएगा हमें FM 107 दादर, इस नाम हमारे जगह मौजूद है,
0: हमारा हौसला बढ़ जाता है,
1: हौसला बढ़ जाता है। देखो प्लीज, नया नया शो है, नए हमें, मतलब एक तरीके से
2: हमें जरा सराहा जाए तो हम अगला सीजन भी लेके आ सकते हैं। हाँ। कुछ नए तरीके से
1: लालच
0: नहीं नहीं, इसको कहते हैं रिश्वत,
1: रिश्वत। इसी के साथ हम जीरो आपसे ज्यादा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज,
0: अल्लाह हाफिज।
3: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूव प्लेटफॉर्म पर।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप 10 में, कौन सा गाना हुआ इस हफ्ते लीग से बाहर। सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: हेलो हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और इस हफ्ते का टॉप 10 काउंटडाउन आपके लिए लेकर हाजिर हो चुकी हूं। तो क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? हाँ, आई एम वेरी सर्टेन कि आपके ये डेज बहुत ही कमाल के जा रहे होंगे। इनफैक्ट मौसम में भी तब्दीलियां आ रही हैं, तो सच में वो कहते हैं ना, मौसम बड़ा औसम हो रहा है। सो टच वुड, हम चाहते हैं कि ये मौसम औसम होते जाए और इस मौसम को और खूबसूरत बनाने के लिए भाई मूड भी सही हो जाए। इम्पॉर्टेंट है कमाल कमाल के गाने सुनना, और आज टॉप 10 का मकसद ही यही है कि आपके सामने वो हिट गाने हम प्रेजेंट करें जो कि ग्लोबल चार्ट्स पर धूम मचा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुनेंगे इस हफ्ते की न्यू एंट्रीज।

0: हाँ, तो कैसी लगी आपको ये न्यू एंट्रीज? पूरी पूरी हम सुनने वाले हमारे टॉप 10 की प्लेलिस्ट पर, लेकिन अभी नंबर 10 की बारी है। तो नंबर 10 से पहले मैं कहूंगी, अगर कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग जो आपके जहन में है, यू वांट कि एफएम 107 की टॉप 10 की लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए, तो पता है ना रूल क्या है? बहुत सिंपल, 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने सजेशंस भेजो, या फिर एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर सकते हो और अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हो, है कि नहीं? पर अभी बढ़ते हैं गाना नंबर 10 की तरफ, विच इज डोंट बी शाय मूवी का रे बाबरी। हाँ जनाब, ये पिछले हफ्ते की न्यू एंट्री था और इस गाने को कंपोज किया, अरेंज किया, प्रोड्यूस किया राम संपत ने, गाया सोना महापात्रा ने, और क्या कहते हैं, और लिरिक्स जो है वो है सावेरी वर्मा के। देखो आलिया भट्ट एकदम क्यूट सी, वो नया अवतार उनका बड़ी प्यारी सी लग रही है, स्पेशली जब उनकी फर्स्ट टाइम मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बिल्कुल वही वाली वाइब दे रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैच्योर लग रही है। बट आई शुड से कि हमने आलिया भट्ट को बहुत ही इंटेंस रोल्स में देखा है, एकदम से लाइटर नोट भी देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद शी जस्ट वांट टू बी इन अ लाइट मूड। हाँ, बट जो भी कहे, रे बावरी काफी ट्रेंड हो रहा है और सारे यंगस्टर्स को बड़ा पसंद आ रहा है, सो लेट्स एंजॉय दिस गाना नंबर 10 एज रे बावरी आपकी राहों में आ रहा है, और इसके बाद अपनी प्लेलिस्ट यानी कि अपने टॉप 10 के चार्ट्स पर आगे बढ़ेंगे। तब तक क्या करना है, वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय गाना नंबर 10, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी।
1: FM 107 Top 10, number 10.

10 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. तो कैसा लगा गाना नंबर 10? रे बाब रे, बिल्कुल कॉलेज वाली वाइब्स के साथ. हाँ, लेकिन अभी उस वाइब को हम इंजॉय करने वाले हफ्ते की मेंशन है. एंड आई शुड से ऑल द मिलेनियल्स लविंग इट, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग जहां पर इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया का एकदम ग्रेट धमाकेदार कॉम्बिनेशन होता था. इस गाने को सुनकर हम फिर से वही फील

यूनिक पेयरिंग, ये भी बड़ी क्यूट सी लग रही है। और ये जैसे ही गाना सारे म्यूजिकल प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हुआ, ओ हो हो, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज हर जगह पर दिखाई देने लग गए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इमरान एंड हिमेश साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट हो ही जाता है। इनफैक्ट इस गाने के वीडियो को, इस गाने के ऑडियो को मैंने खुद न जाने कितने बार सुना।

0: द सॉन्ग इज रियली ब्यूटिफुल प्योर मेलोडी. और वो कहते हैं ना कि जब प्यार एकदम शुरुआती तौर पर होता है तो बड़ा अडोरेबल सा होता है, बड़ा रिस्पेक्टफुल सा होता है, और वो कहते हैं ना हर चीज उसकी बड़ी मीठी और क्यूट सी लगती है. एग्जैक्टली वही वाइब इस पर्टिकुलर गाने में है. तो चलिए अब हम इंजॉय करते हैं गाना नंबर 9 एंड देन गाना नंबर 8, और उसके बाद अपनी गड्डी आगे बढ़ाएंगे और FM 107 के टॉप 10 की लिस्ट में पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आगे और क्या क्या खास है हमारे लिए. तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 9.

आप सुन रहे हैं FM 107 टॉप 10। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। तो कैसे लगे अभी तक ये हिट हिट गाने? आई एम श्योर यू रियली लव्ड इट, और स्पेशली गाना नंबर 9। ओहो, अफसाना बनाया आपने, मतलब दिल को छू गया सीरियसली। बट एनीवे, अब आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि टॉप 10 की लिस्ट में एक से बढ़कर एक हिट गाने हैं। हम बढ़ते हैं गाना नंबर 7 की तरफ, विच इज अ ब्रांड न्यू एंट्री एंड द सॉन्ग नेम इज रंगी।

0: Yes, इसे गाया है हसन रहीम ने, इसको प्रोड्यूस किया है उमेर ने, लिखा है हसन रहीम ने खुद, कंपोज किया है उमेर ने. और ये गाना सच में वो जो 90s वाला एरा नहीं होता था जहाँ प्यार छत से दूसरी छत से हो जाता और उसके बाद ये प्यार परवान चढ़ने से पहले ही ओहो निकाह हो जाता था, किसका? लड़की का. एग्जैक्टली वही वाली फीलिंग है. रंगीन जब शुरू होता है तो इसकी बीट बड़ी कमाल की है एकदम, फिर बीच में मेलोडी आती है, फिर वो कहते हैं ना कि वो मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ती है और उसके बाद बड़ी खूबसूरती के साथ दिल टूटता है. हाय हाय, वीडियो भी बहुत प्यारा है, ऑडियो भी बहुत प्यारा है. सो यस, गाना नंबर 7 इज रंगी, जो कि आपकी राहों में आने वाला है. एंड देन कम्स रंगियारा फ्रॉम द मूवी हैवान, जो कि पिछले हफ्ते की न्यू एंट्री था और इस हफ्ते धूम मचा रहा है. प्रीतम का म्यूजिक है, यतिंद्र मिश्रा के लिरिक्स हैं और आवाज है शान सुखविंदर सिंह एंड रोमी की. भाई देखो, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिसके लिए दिल से आवाज निकलती है कि नजर ना लगे. पहली चीज, ये गाने का ऑडियो अपने आप में नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे रहा है. दूसरी चीज, सैफ अली खान को देखना, मतलब हम उनको 90s के एरा से देखते आ रहे हैं. ये बंदा मतलब हाउ ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, हर एक वक्त जब भी ये ऑन स्क्रीन आते हैं एकदम अलग मैजिक क्रिएट करते हैं. तो चलिए अब हम एंजॉय करते हैं गाना नंबर 7 एंड देन 6. उसके बाद नंबर 5 और 4 की बारी आएगी कुछ ही देर में. तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है FM 107 पर दिल से देसी.
1: FM 107 Top 10 Number 7.

हाँ जी, रंगियारा एंजॉय किया आपने नंबर 6 पर. ओहो, वेलकम वंस अगेन. एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी फरमीता. टॉप 10 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. और सच में जब ग्लोबल चार्ट्स पर ये गाने प्ले होते हैं तो हमारा दिल भी बिल्कुल झूम जाता है. नंबर 6 का रंगियारा मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग देता है जैसे कि हम कॉर्निश पे दाव पे जा रहे हैं एंड देन बैकग्राउंड में ये गाना प्ले हो जाए. आय हाय हाय, क्या बात होगी. वैसे मौसम बहुत नजदीक है ऐसा वाला जब हम फुल इस रंगियारा गाने को भी इंजॉय कर सकते हैं. लेकिन हम

कॉर्निश की धाव पर एंजॉय करेंगे, है कि नहीं? चलिए इसी बात पर अब आगे बढ़ते हैं गाना नंबर 5 एंड 4 की तरफ. सो गाना नंबर 5 इज फ्रॉम द मूवी द विवान. ओहो भाई, ये गाना बिल्कुल ही कमाल धमाल का है. मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा को आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने ग्रूव करते हुए यू नो परफॉर्मेंस देते हुए देखा है, और तमन्ना भाटिया उनके साथ, वाओ कॉम्बिनेशन इज रियली यूनिक. गाना है ठुमक ठुमक, जिसे गाया है देव नेगी अनकासा ने, और इस गाने को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने, लिखा है शबीर अहमद एंड तनिष्क बागची ने. वैसे इस गाने को कोरियोग्राफ किया है बॉस्को मार्टिस ने, एंड अंकुश ने एडिशनल प्रोग्रामिंग में काम किया है. ये वीडियो बड़ा अडोरेबल सा है, बड़ा प्यारा सा है. मतलब पहली चीज, जिस वीडियो में तमन्ना भाटिया होती है तो दिल तो वैसे ही आ जाता है, और उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखे हुए इज अ चॉकलेट बॉय एंड ही हैज डन अ ग्रेट परफॉर्मेंस. तो चलिए गाना नंबर 5 हम एंजॉय करेंगे ठुमक ठुमक. उसके बाद आएगा गाना नंबर 4, जिसे सिर्फ 20 मिनट में तैयार किया गया था. हाँ जी, वो गाना है जो पिछले हफ्ते की न्यू एंट्री था और अब इस हफ्ते नंबर 4 की पोजीशन पर आ चुका है. क्या बात है, पिछले हफ्ते नंबर 8, मतलब सीधा 4 सीढ़ियां ऊपर.

0: इस गाने को गाया है अफ्यूजिक जोहा वसीम ने, इसे प्रोड्यूस किया है अली सोमरो ने, और गाना सुनकर दिल क्या खुश होता है. मतलब 20 मिनट में तैयार हुआ ये गाना ना कि सिर्फ ऑडियो से बल्कि अपने वीडियो से भी धूम मचा रहा है. यस, सो गाना नंबर 4 इज दिल, जो कि हर दिल को छू रहा है और कई दिलों पर दस्तक दे रहा है. सो लेट्स एंजॉय गाना नंबर 5 एंड गाना नंबर 4 जो कि आपकी राहों में आ रहा है. एंड यू, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, मैं कहूंगी गाने एंजॉय करो और देखो कि इनमें से कोई गाना है जो आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि अमिता हमारे पास भी एक ट्रेंडिंग सॉन्ग है और हम चाहते हैं कि वो गाना आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा होना चाहिए, तो फिर झिझके नहीं, जल्दी से हमें मैसेज करें 6622107 6622107 पर अपने नाम के साथ. एंड यू नेवर नो कि अगले हफ्ते जब टॉप 10 की लिस्ट हो आपके हिट गाने भी उसमें शामिल हो जाए, है कि नहीं. तो जल्दी जल्दी मैसेज करो और फिलहाल हम एंजॉय करते हैं गाना नंबर 5 एंड 4 कमिंग अप ऑन योर वे. स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी.
1: FM 107

वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और आज की जो हमारी प्लेलिस्ट है टॉप 10 की, बड़ी कमाल की है, क्योंकि एक से बढ़कर एक न्यू एंट्रीज भी है और हमारे जो गाने पिछले हफ्ते थे उन्होंने भी काफ़ी अपनी पोजीशंस चेंज की है और लोगों के दिलों में अलग अलग तरह से धूम मचा रहे हैं। वाला भी हम आते हैं गाना नंबर 3 की तरफ, जो कि बड़ा ही सटल रोमांटिक मेलोडी है, दैट इज

0: जिसे गाया है जुबिन नौटियाल एंड स्वर्णा तिवारी ने. कंपोज किया है, प्रोड्यूस किया है तनिष्क बागची ने और लिखा है मनोज मुंतशिर ने. फ्रॉम द मूवी विवान, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना का ग्रेट रोमांटिक कॉम्बिनेशन है. ये अपने आप में ही एक हिट गाना है. मतलब इस गाने को सुनो तो ऐसा लगता है कि हाय हाय हाय हम क्या एक रोमांटिक बैले सुन रहे हैं. एग्जैक्टली वैसी ही वाली फीलिंग है इस गाने को सुनकर. सो समझो ना, इस गाना नंबर 3 आपकी राहों में आएगा, जो कि पिछले हफ्ते गाना नंबर 7 की पोजीशन पर था. कैन यू इमेजिन कि कैसे ये लोगों के दिलों को जीत रहा है और गाना नंबर 3 की पोजीशन पर आ गया है. सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक फुल वॉल्यूम पर. और उसके बाद आएगा वो गाना जिसने हर किसी के दिल में तबाही मचा दी है. गाना नंबर 2 टॉक्सिक फिल्म का तबाही. यस, तबाही जो कि लास्ट वीक नंबर 3 की पोजीशन पे था और इसने माशुका सॉन्ग को धीरे से खिसका दिया है जो कि लास्ट वीक नंबर 2 की पोजीशन पे था. बट एनीवे, किसी ना किसी गाने को गुड बाय कह के तो जाना होता है, लेकिन तबाही अपनी जगह बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है. जाहिर सी बात है कि उसकी वाइब ही कुछ ऐसी है. इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस है जहां पर 600 से 700 करोड़ का बजट सिर्फ इस एंटायर सेट के परफॉर्मेंस के लिए किया गया था. इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक जिसके म्यूजिकल अरेंजमेंट्स कमाल के हैं और इसे विशाल मिश्रा ने गाया है और बिल्कुल पूरी तरह से अरेंज किया है. एंड आई सो लव द फीलिंग ऑफ प्राग. चले तो फिर इस ब्यूटिफुल से सॉन्ग को एंजॉय करेंगे एज गाना नंबर 2. तो पहले सुनेंगे गाना नंबर 3 दैट इज समझो ना, फिर गाना नंबर 2 इट इज तबाही और उसके बाद गाना नंबर 1 कौन सा होगा. एनी गैसेस? कम ऑन, थिंक, क्योंकि जब आप सही सोचोगे तभी हम बता पाएंगे कि गाना नंबर 1 कौन सा है इस हफ्ते जो ग्लोबल चार्ट्स पर बिल्कुल धूम मचा रहा है और अपनी दस्तक से हर किसी के दिल को छू रहा है. तो शेयर कीजिए 666-22-107 पर कि गाना नंबर 1 इस हफ्ते का कौन सा हो सकता है. और अभी लेट्स एंजॉय गाना नंबर 3 एंड 2 कमिंग अप ऑन योर वे. स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 3.

0: वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और इस वक्त बारी है टॉप 10 के गाना नंबर 1 की. तो क्या आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं? धक धक धक धक धक धक तेज हो रही है. एग्जैक्टली. जितने भी म्यूजिक लवर्स हैं मेरी तरह वही ये फील कर रहे होंगे, है कि नहीं, कि गाना नंबर 1 इस हफ्ते कौन सा हो सकता है. चलो मैं हिंट देती हूँ. ये गाना वो है जो हर किसी के दिल के छोटे से आवारापन को एक अपनापन देता है. कम ऑन, गेस करे कौन सा गाना है ये. सोच लिया? Yes, आपने बिल्कुल सही सोचा. और इस हफ्ते भी टॉप 10 का गाना नंबर 1 इज पिछले 3 हफ्तों से ये अपनी जगह से हिला नहीं है. मतलब ये गाना जिसे कंपोज किया है अमाल मलिक ने, अरिजीत सिंह ने, रश्मि राग ने, और अरिजीत सिंह की ऐसे कहते ना कि जैसे वापसी हुई इस गाने के साथ वापस से, जहां पर उन्होंने कह दिया था कि बस अब मैं म्यूजिक की दुनिया से संन्यास लेने वाला हूँ. बट देन ही प्रूव्ड अगेन कि मैं ही वो आवाज हूँ जो आपके कानों से पहुंच कर आपके दिलों में दस्तक दे रही है. एंड आवारापन, ये आवारापन, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. मतलब आवारापन जब फिल्म आई थी तब उसका कोई भी गाना आप मिस नहीं कर सकते थे. एंड सेम गोज विद आवारापन 2 कि ये आवारापन यू जस्ट कैन नॉट मिस इट. तो ये गाना अपनी हिस्ट्री बना रहा है. लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इज गाना नंबर 1. और इसी के साथ अब आप अपनी ए फॉर अमिता को दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त है मेरे जाने का. आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते टॉप 10 की गलियों में. तब तक क्या करना है? आपको एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है. सोशल मीडिया पे अपनी आरजे अमिता को भी ढूंढ सकते हैं या फिर 666-22-107 इस नंबर के जरिए अपने व्यूज, अपने सजेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं. अभी इंजॉय करें गाना नंबर 1 बिल्कुल रिलैक्स होकर और मुझे दे दीजिए इजाजत. तो मैं चलूं, जाने से पहले ये कह के जाऊंगी हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.
1: एफएम 107 टॉप 10 नंबर 1.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
2: दोहा वाले कबीर के साथ।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर और आज कैफे 107 पे मेरे बहुत ही अजीज, मैंने दोस्त भाई सब बोलता हूं क्योंकि एक कनेक्शन बड़ा खास है हमारा। ना सिर्फ वैसा ही गेमिंग का रिश्ता है, हम लोग बाहर ही मिले और ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जो आपको एकदम अजनबी से लगता है, अरे भाई ये तो बचपन का दोस्त है मेरा। तो नदीम भाई फिर से स्वागत है भाई, हर रोज स्वागत ही स्वागत है। कैसे नदीम भाई?
4: अल्हम्दुलिल्लाह कबीर भाई, आप कैसे?
3: मैं एकदम बढ़िया नदीम भाई। नदीम भाई पिछली बार जब हमने बात करी थी, आई रिमेम्बर, बाहर आप आए थे, हमने कुछ कॉल करी थी,
4: हम बैठे थे दफना में।
3: हाँ वहाँ बैठ के हमने देर रात मस्ती करी थी
4: बहुत लेट तक भी
3: तो नदीम भाई
4: याद है वहां से निकलते टाइम मेरी गाड़ी बंद हो गई थी।
3: हाँ अरे ये तो ट्रेजेडी आपने याद दिला दी। नदीम भाई बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं डेली, मेरे साथ ही कॉल पे आप होते हैं माशाल्लाह। ये आपकी पर्सनैलिटी सच में इतनी चिल है जितनी आपकी आवाज में रिफ्लेक्ट होती है, या फिर एक ये डिसीविंग नेचर है आपका, क्या कहेंगे?
4: नहीं नहीं मैं बहुत चिल हूँ, मैं घर में भी ऐसे ही रहता हूँ और बाहर भी ऐसे ही रहता हूँ और काम में भी बहुत ज्यादा चिल हूँ, इसीलिए काम मेरा बहुत चलता है।
3: मैं इसी पे आने वाला हूँ, मैंने इतना चिल बिजनेस रन करने वाला आदमी देखा नहीं है भाई। ये क्या टिप क्या है, ये कैसे कर रहे हो, आपको टेंशन क्यों नहीं होती इस बात की कि यार अभी थोड़ा मामला ठंडा है? लोग मैंने
4: कबीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपना पहले से ऐसा है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो होता है ना कि मतलब बहुत जमा करना पैसा पैसा पैसा करना है, वैसा कुछ सिस्टम है नहीं।
3: अच्छा
4: मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही कमाता हूँ कि मेरा घर चल जाए
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
4: मैं लिमिटेड काम करता हूँ, लिमिटेड लोगों के साथ करता हूँ, जहाँ पे मैं कहीं कुछ मेरे साथ कुछ गलत ना हो, जो भरोसे वाले लोग हैं अपने, इवन अपने जो काम करने वाले हैं उनको भी भरोसा है कि भाई नदीम भाई के साथ काम करेंगे तो पैसा कहीं नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है।
3: अल्हम्दुलिल्लाह भाई
4: तो मेरे पे किसी का मतलब किसी का ऐसा है नहीं कि कोई को मेरे को देना बाकी है या किसी से कुछ है, मतलब लेना है मार्केट से थोड़ा बहुत, लेकिन देने का अल्हम्दुलिल्लाह अपना कुछ बाकी नहीं।
3: ये बहुत सही है, तो मतलब ये चिल है,
4: बहुत लिमिटेड है मतलब।
3: हाँ तो बस ये है कि कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई लालच है कि मैं इतना कर लूं उतना कर लूं।
4: नहीं हाँ ये गाड़ी चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, अपना गुजारा अपने पास गाड़ी है, अपना काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तवक्कल है कि मतलब हर महीना अपने को टेंशन थोड़ी रहती है कि रेंट भरना ये भरना है, लेकिन हो जाता है
3: अल्हम्दुलिल्लाह,
4: चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह,
3: अल्लाह ताला ऐसे काम में बरकत। भाई मैं आपसे इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा हूँ, मुझे ऐसा लगता है इतनी मेहनत करी है तो इस पॉइंट पे आके आदमी क्यों जबरदस्ती और मेहनत करे, मतलब मैंने थोड़ा चिल दिया है तो थोड़ा चिल हो जाता है।
4: ऐसा होता भी है कि मतलब मेहनत बंदा करता भी है ना, अभी जैसे मैं आपको बताऊँ अगर मैं जॉब कर रहा होता कहीं मतलब 9 to 5, 9 to 6, वही है कि अभी मार्केट में इतना आपको पता है इतना रिसेशन वगैरह चल रहा है कि सैलरी से अब उस हिसाब से नहीं रही जो
3: पहले थी,
4: पहले होती थी। तो अभी ये हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह उतना अगर महीना भर मैं घर में बैठा हूँ 15 दिन घर में बैठा हूँ 15 दिन काम कर रहा हूँ तो सैलरी जितना अल्हम्दुलिल्लाह
3: मेहनत तो बहुत जरूरी है, इंसान को मेहनत करनी भी चाहिए, मगर समवेयर एक पॉइंट आता है जिंदगी में जहाँ पर लगता है कि अभी यार थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। वो पता नहीं दुनिया ने उसे इतना वो बना रखा है ना कि एक टैबू है कि तुम्हें तो लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए, अरे थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। इस वक्त
4: जरूरी ये चीज की जरूरी है कि अभी देखिए बच्चे अपने, दो बच्चे माशाल्लाह, दो बेटे, अब दोनों की स्कूल अलग है, एक मॉर्निंग में एक आफ्टरनून में, अब जॉब कर लूंगा तो फिर स्कूल ड्रॉप एंड पिकअप और ये सब, अब अगर मैं जॉब करने जाऊंगा और मैं खुद बिजी रहूंगा तो फिर उनकी बस की फीस ये वो सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो वही हो जाता है, यहाँ से करो या वहाँ से करो, वही हो
3: जाएगी
4: चीज़ें। प्रोफेशन वैसे भी मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैं हिसाब लगा के चलता हूँ
3: अरे ये आपने इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाया, ये मैं समझ गया हूँ इस बात का भाई। देखिए हिसाब किताब में तो अपन माहिर है, बाकी दुनिया अपने को इसमें तो गोली नहीं मिला सकती, तो ये अच्छी बात है। नदीप भाई क्योंकि आपने ये बताया आपका बैकग्राउंड आप लोगों को समझ में आ गया है, बट ऑल्सो यू आर अ गेमर जिस वजह से हम कनेक्ट कर पाते हैं, तो ये कितने आवर्स की रहती है गेमिंग आपके घर पे? क्योंकि ऑफकोर्स बच्चे भी हैं, भाभी भी हैं, हमारी बहन भी है, तो कैसे?
4: जब मैं घर पे बैठा हूँ ना मेरी गेमिंग चल रही, मेरे दोस्त लोग अगर अवेलेबल है मेरी गेमिंग से कोई टाइमिंग नहीं है, अगर दोस्त लोग अवेलेबल है दोस्त लोग बैठे है, अपना एक सर्वर है मतलब एक एप्लीकेशन, अगर देख रहा है कोई बैठा है तो मैं बैठ जाता हूँ। अगर मेरे पास काम है तो बेसिकली काम फर्स्ट, अगर काम नहीं है मैं घर में बैठा हूँ तो मैं हमेशा पीसी पे होता हूँ।
3: अच्छा ऐसा है, तो मतलब
4: मेरा खाना तक मेरे को कंप्यूटर टेबल पे आता।
3: अरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, क्योंकि एक होता ना कि भाभी भी तो चिल्लाती हुई, तो ये क्या है, क्या कैसे मैनेज किया आपने उनको?
4: नहीं एक्चुअली मेरा पहले से ही नेचर ऐसा है कि मतलब मैं मतलब शादी के पहले से मेरा थोड़ा है गेमिंग वेमिंग का और ये सब।
3: वो कन्विंस कैसे किया आपने, कन्विंस करना पड़ा या फिर उन्होंने ढाल लिया अपने आप?
4: वो मेरे साथ खेलती थी ना वो, शादी के बाद तो हम साथ में मोबाइल गेमिंग किए हुए बहुत टाइम।
3: अरे नाइस यार, ये
4: को पता है तो
3: ये तो ड्रीम है लोगों का मेरे भाई कि ऐसी पार्टनर हो के मतलब साथ में खेल सके।
4: हाँ मेरे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इशू नहीं है, तो बस वो घर में मतलब है बच्चे भी है तो बच्चों के पीछे भी कभी लगी रहती है, हालांकि मेरा बेटा भी मेरे साथ खेलता है अभी तो।
3: अच्छा खेलता है तो ये अच्छी बात है यार, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक तो साथ में बैठ के टीवी पे कुछ देख लेना या साथ में बैठ के गेम खेलना बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि आई थिंक बच्चे
4: अपना ऐसा है ना कबीर भाई के अपन बच्चों से ज्यादा नॉर्मली कर नहीं पाते, मैं पहले से ऐसा ही हूँ, मैं ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन बहुत कम करता हूँ, तो अब वाया गेमिंग मैं उससे बात कर लेता हूँ, गेम से रिलेटेड बातें हो जाती है तो वो एक अलग वो उसका मतलब दिल खुला रहेगा।
3: एक तरीके का एक एंकर है बात करने के लिए, व्हिच इज ओके भाई, अच्छी बात है। तो दोनों जो आपके शहजादे हैं दोनों इंट्रोवर्ट हैं या दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग अलग है, क्या सीन क्या है?
4: मेरा बड़ा वाला जो है वो थोड़ा शर्मिला है।
3: अच्छा ओके।
4: लेकिन छोटा वाला माशाल्लाह जिससे मिलता है उससे घुल मिल जाता है, बातें करता है, उसको आप घूमने लेके चले वो बाहर जाने के लिए रेडी हो जाएगा।
3: ये तो वो थोड़ा अलग ही हिसाब किताब है वही नहीं
4: बहुत ज्यादा,
3: बट ये जो मैनेज कर रहे हैं आप, मैं उस दिन भी हैरान हुआ था जब पहली मरतब मुझे पता लगा था कि इवनिंग शिफ्ट है एक की और एक की मॉर्निंग शिफ्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाता होगा कि दोनों के अलग अलग शिफ्ट दोनों बच्चों को?
4: हाँ मसला सबसे बड़ा है कि स्कूल दोनों की अलग है,
3: राइट,
4: तो अब बड़े वाले को कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी छोटे वाले में स्कूल में ही डाले, तो अभी ऐसा होता है कि सुबह में उसको छोड़ने जाता हूँ बड़े वाले को, फिर आफ्टरनून में जब छोटे वाले को छोड़ने जाता हूँ तो उसको ड्रॉप करके बड़े को पिकअप करके लेके आता हूँ,
3: तो भाई यार,
4: और फिर इवनिंग में उसको दूसरे को ले जाता
3: हूँ। और दोनों के अलग अलग स्कूल भी हैं, शिफ्ट अलग नहीं सिर्फ स्कूल भी
4: अलग है
3: भाई।
4: एक्चुअली वो मसला ये है कि कहीं एडमिशन आपको पता है अच्छा मॉर्निंग सेशन बहुत, हालांकि मैंने छोटे वाले को एक साल लेट डाला है इसी चक्कर में, तो उसको डायरेक्ट KG 2 में डाला है, KG 1 वो पढ़ा ही नहीं है।
3: नो आई गेट ये बहुत मुश्किल काम है भाई, मैं टोटली रिलेट कर सकता हूँ, बट जैसे आप क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग करते हैं सब कुछ कर रहे हैं आपने ये बता दिया मुझे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कोई ऐसा कुछ है आपका शौक जो मन में कहीं पे दबा हुआ है कि मैं कभी ये परस्यू करना चाहता हूँ, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू
4: डू? नहीं मतलब है तो एक ऐसा है कि मेरे को मतलब मैं स्ट्रीमर्स वगैरह के साथ बहुत हूँ, मतलब फ्रेंड्स भी है तो बहुत सारे मैंने देखे अच्छे अच्छे स्ट्रीमर है जो गेमिंग रूम बनाते प्राइवेट अपना, तो अपना अभी कभी इतना रहा नहीं है कि अपन एक अलग से रूम मतलब बेडरूम हो और अलग से, आपको पता है अपन सिटी में रहे हुए इंडिया में भी तो वहाँ पे इतना एक्सपेंसिव है सबके, अलग से कोई रूम नहीं बन सकता, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह कभी अल्लाह देगा तो एक फ्यूचर में अलग से गेमिंग रूम बनाएंगे
3: इंशाल्लाह
4: बच्चों के लिए अपने लिए।
3: वेरी नाइस वेरी नाइस, ये सबका एक साथ सोचा आपने, सबका साथ सबका विकास वाला सही है। तो ये जब आप छुट्टी छुट्टी में जाते हो
4: करता भी हूँ कि मेरा बच्चा कभी फ्यूचर में अगर स्ट्रीम करना चाहे तो उसको भले मतलब करियर ना चुने बट एटलीस्ट उसको अगर पास टाइम के लिए जैसे भी उसका बिल करे।
3: Why not? भाई हक से तो, पर आप क्यों नहीं कर रहे स्ट्रीमिंग? मेरा सवाल ये, because you can also do something भाई, इतना टाइम दे रहे हैं।
4: अच्छा नहीं खेलता हूं ना कभी।
3: अरे मैं सही बताऊं, अच्छा खेलने वाले से स्ट्रीमिंग नहीं करते भाई, मैं सही बता रहा हूं आपको, अब इतने सारे चैनल्स हैं ना और
4: एक्चुअली स्ट्रीमिंग कर सकते हैं ऐसा नहीं, मेरे काफी दोस्त लोग भी मेरे को बोलते हैं आप भी स्ट्रीम किया करो, बट उसके लिए फिर है ना एक फिक्स टाइम वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि उसका एल्गोरिथम ऐसा होता है कि रेगुलर होना पड़ता है और फिक्स टाइम देना पड़ता है, वो मैं दे नहीं पाता. मैं कभी सुबह अवेलेबल हूँ, कभी शाम में हूँ, अपने काम के हिसाब से रहते हैं, फिर दोस्त लोग कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, आधे लोग जॉब करते हैं, तो
2: ओके
4: वो सब चीजों की वजह से होनी. और मैं सोलो खेलता नहीं हूँ, बहुत कम खेलता भी हूँ तो पीएस पे, अदरवाइज पीसी पे तो सारे मल्टीप्लेयर.
2: हाँ वो तो मैंने देखा है, वो उसी लिहाज से मैं सोचा, बिकॉज अल्टीमेटली आप भी कर ही सकते हैं ऐसा. अच्छा तो अब आप छुट्टी पे जाते हैं नदीम भाई, तो मिस करते होंगे गेमिंग को, या यहाँ पे भी छुट्टी पे जाने की भी जुगाड़ करते हैं?
4: मोबाइल पे.
2: अरे भाई अलग ही चल रहा भाई का सीन. तो अभी हम उस एरा में आ चुके हैं जहाँ पर मैं लोगों से ही कहता हूँ कि अंडरस्टैंड कि चलो हर चीज़ एक्सेस में की जाए तो गलत है, इंक्लूडिंग गेमिंग सेल्फ, मगर ये नकार देना कि गेमिंग बिल्कुल ही ख़राब चीज़ है, दैट इज़ रॉन्ग इन अ वे. और लोग जो है मोबाइल गेमिंग को और पीसी गेमिंग को आपस में मिला के बात करते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू. तो इस पर क्या ओपिनियन है आपका?
4: देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि ठीक है लिमिटेड रखना चाहिए, बट वो एक एज के हिसाब से होता है. मतलब अभी अगर मेरा बेटा है मैं उसको अनलिमिटेड नहीं करने
2: दूंगा.
4: अब मैंने तो गेमिंग स्टार जो की है वो मतलब 20 के बाद में, मतलब पढ़ाई पूरी करके सब पूरा करके काम वगैरह करने के बाद, फिर जब अपने से ले पाए हैं कुछ तब अपना स्टार्ट हुआ है. तो वो हमने वो पीरियड में तो कुछ नहीं किया है, जो एज में अभी हमारे बच्चे है या 20s वगैरह में तक आने तक तो कुछ भी नहीं, मोबाइल भी नहीं मिला था हमें तो.
2: हाँ तो अपना तो एरा ऐसा था ना कि हमने हमारी एज में एक्चुअली में गेमिंग की लिमिट डिस्कस भी नहीं होती थी.
4: हाँ नहीं होती थी, ये तो वो प्री कोविड जो हुआ ना, मतलब उसके बाद से ये जब सारा कुछ बहुत ज्यादा ई स्पोर्ट्स एंड ऑल ये सब आया है. अदरवाइज पहले तो इतने ऐसे हैवी गेम्स थे भी नहीं कि लोग इतना खेले,
2: इतना इन्वेस्ट हो सके, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाया करते थे, राइट.
4: और जो प्ले स्टेशन वगैरह वो टाइम पे थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कभी खेल ही नहीं पाए.
2: जेब पे भारी था.
4: लिमिटेड रखना जरूरी है, नहीं करना इट्स रॉन्ग. बच्चों को भी हर किसी का,
2: हम ये कहते हैं ना कि मैन ऑफ कल्चर बनाना पड़ता है ना बच्चों को, स्पेशली ये हो जाता है कि आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर देंगे कि ये गलत है ये गलत है ये गलत है. अल्टीमेटली होगा ये कि जब बाहर की दुनिया से एक्सपोज होगा कोई ना कोई, बच्चे जब एक्सपोज होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन होता है कि मैं इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट करता हूँ. तो हर ऐसी चीज़ जैसे गेमिंग है, कम से कम ये इंट्रोड्यूस तो किया जा सकता है कि बाद में शौक ना लगे. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट.
4: और ये बात है ना, देखे कबीर भाई, अपन अभी हम जो है एक टाइम पे हम भी कुछ नहीं करते थे, लेकिन आपकी जब उम्र होती है आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो वो इंसान खुद ब खुद वो अगर बहुत ज्यादा गेमिंग कर रहा है तो खुद कम हो जाएगी, उसको एहसास हो जाएगा कि यार मेरे को कुछ करना भी है, क्योंकि खाना तो खाना ही है एट दी एंड, घर तो संभालना ही है. तो वो खुद ब खुद बंदे में आ जाती है वो चीजें.
2: हाँ वो करते करते आ जाती है. मैं ये बात सच है, सेल्फ अवेयरनेस जो आजकल हमसे ज्यादा बच्चों में भाई, तो उनको भी समझ में आ जाती है,
4: आ ही जाती है,
2: ज्यादा ही हो रहा है अभी. करेक्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डू यू वॉच सीरीज मूवीज कुछ नदीम भाई, साइड मिशन?
4: आई एम अ ग्रेट ग्रेट एनीमे फैन.
2: अरे क्या बात है, कौन सा एनीमे देख रहे हैं?
4: तो मैं वन पीस मेरा चल ही रहा है.
2: क्या था?
4: देन ब्लैक क्लोवर है.
2: अच्छा.
4: मैंने बहुत सारे छोटे छोटे एनिमे भी देखे, अटैक ऑन टाइटंस भी देखा है.
2: ब्लीच वगैरह से मैंने शुरुआत करी थी एंड अभी मैं उस पे अटक गया, फिर मैंने अभी सेकिरो वगैरह देखा, सेकिरो भी देखा.
4: डेथ नोट.
2: हां डेथ नोट. हां ये शुरुआत की है स्टार्ट करने के लिए.
4: ओजी एनिमेस.
2: ओके तो मेरे सदस्य सजेशन है भाई, क्यों आप खेलेंगे नहीं सेकिरो मुझे पता है, तो सेकिरो का एनिमे जरूर देख लीजिएगा. आई नो यू विल नॉट प्ले इट.
4: बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे खेलता तो हूँ मैं. अभी रिसेंटली मैंने गॉड ऑफ सुसीमा वगैरह भी खेली है.
2: वेरी नाइस. पर आप सिंगल प्लेयर नहीं खेलते ना, मजा नहीं आता.
4: अब एक्चुअली इतने लोग हो गए हैं ना कि वो उसी में इतना बिजी हो जा रहा हूँ कि अकेले खेलने का मौका ही नहीं.
2: अच्छा ये स्ट्रीमिंग लाइन में क्योंकि

0: अब ऑनलाइन खेलते इतने सारे लोग मिलते हैं आपसे, तो खास दोस्त भी बने होंगे, कहाँ कहाँ से बने? आर यू लाइक सराउंडेड बाय पीपल हु यू नो?
1: मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम इंडिया बट अदर स्टेट.
0: अच्छा, अदर स्टेट से तो दोस्ती हुई है लोगों से? आप
1: दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, मुंबई के अपने भी है, स्टेट के, कोई यूपी से है, सब अलग अलग जगह बहुत सारे लोग हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स.
0: अच्छा, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स. अरे ये तो
1: ऑन यूनिवर्सिटीज एंड ऑल.
0: तो दोस्ती वोस्ती हुई आपकी इन लोगों से सबसे?
1: हाँ हाँ, सबसे.
0: वेरी नाइस यार, ये भी.
1: एंड इट्स लाइक के वो लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं और हमेशा, मतलब अगर जैसे 8 लोग हैं, 5 लोग का गेम है, तो दे विल ऑलवेज इंक्लूड मी इन दैट 5 पीपल.
0: अपने साथ. ये सही है, ये वाली जो कम्युनिटी फॉर्म होती है ना, ये बहुत पेचीदा है. इसमें एंटर करना भी मुश्किल है और लोगों को समझा पाना भी मुश्किल है. ये दोस्ती बड़ी कमाल की है.
1: 22 से लेके 38 तक बहुत सारे मिक्स है जिसके लोग हैं.
0: अच्छा, सारा एज ग्रुप है, मोस्टली सारे ही कवर हो गया. तो इन लोगों से मिले हैं आप किसी से भी रियल लाइफ में अभी तक मुलाकात नहीं?
1: हाँ, कुछ कुछ से. लास्ट टाइम इंडिया गया था तो 2 लोगों से मिला था, बाकी अदर स्टेट्स वाले तो थोड़ा मुश्किल है. कभी जाएंगे तो मिलेंगे शॉर्टली, बाकी वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं सब बैठते तो.
0: अच्छा, हो जाती है वीडियो कॉल. चलो ये सही यार, क्योंकि आज के डीएनए में कम से कम मिलना तो खैर अभी मुश्किल है सब.
1: मतलब वो लोग है भी ऐसे कि मतलब कुछ कुछ लोग थोड़ा आईटी वगैरह में भी है, एआई वगैरह में भी है. तो वो क्या है, जब मेरा बेटा भी साथी खेलता है पूरे ग्रुप में, वो लोग भी है. तो वो उसको भी बताते रहते हैं पीसी की चीजें और ये सब, तो उसको वो नॉलेज भी गेन हो रही है अलग से.
0: क्या बात है, माँ बाप का और बच्चों का दोस्त बनना, ये सबसे प्राइम एग्जांपल आपने दिया. ये तो बहुत बढ़िया भाई. ये सारी जो बातें जरा अभी होल्ड करके रखिएगा, बिकॉज वी नीड टू टेक अ ब्रेक.
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी. इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर.
3: दोहा वाले कबीर के साथ.
0: अच्छा, कमिंग बैक टू योर प्रोफेशन मेरे भाई, जो कि आपने एआई का जिक्र किया है, फाइनेंस ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको लेके कहा जाता है कि एआई इज गेटिंग क्लोजर टू रिप्लेस अ लॉट ऑफ पीपल. अग्री करते हैं आप, डिसएग्री करते हैं इस बात से?
1: देखिए, आसान बनाएगा,
0: आसान बनाएगा,
1: लेकिन डेटा एंट्री, फाइलिंग, क्योंकि मैनुअल तो आपको चाहिए ही चाहिए फाइनेंस में, यू हैव टू कीप द डॉक्यूमेंट.
0: ओके,
1: तो एआई कैन नॉट रिप्लेस दैट.
0: अच्छा,
1: कैन अगर करना है तो वो पेपर तो रखना पड़ेगा था किसी को.
0: अच्छा, मतलब कंप्यूटिंग पावर में आसानी हो जाएगी, बट यू स्टिल नीड समबडी टू मैनेज
1: इट. मैन पावर विल ऑलवेज बी देयर.
0: हां, ओके. क्योंकि अक्सर, क्योंकि हम जब इस फील्ड के नहीं है तो मुझे पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि यार स्प्रेडशीट्स होती होंगी, उस पर कंप्यूटेशन होता होगा, उससे ज्यादा क्या उसके आगे का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उतनी नॉलेज नहीं.
1: एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है, फाइलिंग करनी पड़ती है, आपने परचेज किए हैं साल के, सेल्स किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं, सैलरीज WPS में जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके. अगर ERP सिस्टम है आपका, पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, तो यू हैव टू स्कैन दोस डॉक्यूमेंट्स एंड कीपिंग.
0: नाइस भाई,
1: सिस्टम.
0: आप तो हर चीज को नंबर्स में देखते होंगे यार, इतने नंबरों के बीच रह के. बाप रे बाप, मैं सोच के समझ पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में अपना प्रोफेशन रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, तो आपको भी होता होगा. नंबर्स पे देखते हैं आप लोग हर चीज को?
1: मोस्ट ऑफ द टाइम पहले बहुत होता था, जब मैं इंडिया से नया नया आया था तब तो मैं हर चीज वो करता था, कैलकुलेशन और ये कि भाई ये सब रह रहे के फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है. और ऐसा हो जाता है कि मैंने अभी तक, आज तक मेरे ब्रदर भी ऐसे हैं, मेरा भी यही हाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि जितना भी आप खर्चा करो या दो किसी को, आपको डबल करके ही मिलता है.
0: हाँ, ओके. क्या कोटेशन दी आपने, पता है ये आज से 50 साल बाद यूज की जाने वाली कोटेशन है ये. बाप रे बाप,
1: मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया भी है. हाँ, जब हमारे पास नहीं था तब भी यही सिखाया गया है, तब भी यही सिखाया गया है कि भाई किसी को दो, मतलब अगर हेल्प के तौर पे दे रहे हो तो भूल जाओ उसको, एहसान मत.
0: हाँ, करेक्ट करेक्ट. वो सारा नियत का खेल है, आपकी कितनी साफ नियत है उस पर डिपेंड करता है. क्योंकि आप किसी मदद करने निकले हैं, यू कैन एक्चुअली लीव इट देयर कि भाई मैंने मदद कर दी.

0: बात खत्म, खत्म
1: देते रहो। मतलब यही सिखाया गया है कि अगर भाई कंजूसी करने में, मैंने अक्सर देखा है अगर आप कंजूसी करोगे ना, घर में बीमारियां ये वो, यू हैव टू स्पेंड मनी। उसके लिए कभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये नहीं आया कि मतलब कभी कोई रोकता नहीं है कि भाई देना है, ठीक है दे दो। बच्चों को भी यही सिखा, मतलब अगर किसी को देना है, मतलब आप ऐसे कभी जा रहे हो तो कुछ सदका देना या कुछ देना, गिव इट इन चिल्ड्रंस हैंड के भाई दे दो।
0: हाँ,
1: they will know the power of giving.
0: वो जो गैबी मदद कहते हैं ना, जिसे जो आपको आपको पता नहीं है वो मदद किस सिचुएशन में आ जाएगी, बिकॉज हम
1: आ जाएगी।
0: पर वो आ जाती है जब आपको जरूरत सबसे ज्यादा होती है, वहाँ पे कुछ ऐसा काम हो जाएगा, बोलेंगे भाई ये नामुमकिन सा काम हो गया और समझ नहीं आया कैसे हुआ, तो इस वजह से होता है।
1: हाँ। डेढ़ से दो साल हो गया है
0: जी,
1: एवरी मंथ I earn, I spend, at the month end में I am zero. Next month का rent कहाँ से आएगा? घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? No idea.
0: सब मतलब renew अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई।
1: Every month कुछ ना कुछ आता है और खर्चा चल रहा है। स्कूल की फीस आ जाएगी, कहाँ से होगी नहीं पता, लेट हो जाता है बट हो जाता।
0: मैं समझ रहा हूँ ये इस मेंटेलिटी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। एंड इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल भी है, क्योंकि मैं अक्सर अपने इर्द गिर्द लोगों को कहता हुआ सुनता हूँ कि भाई दोनों को, मियाँ बीवी को कमाना बड़ा जरूरी है इफ यू आर लिविंग इन कतर। हाउ मच डू यू अग्री टू दिस, क्या कहना है आपका?
1: It depends on your lifestyle, Kabir bhai. Everyone will say it, but it totally depends on your lifestyle. तो अब कुछ लोग, मैं Facebook वगैरह चलाता हूँ तो मेरे को पता है, मैं कुछ लोग को देखता हूँ, कोई मैसेज कोई अपने पोस्ट में ग्रुप में लिख रहा है कि यार मेरे को 15,000 मिल रहा है, तीन लोगों की फैमिली है। नीचे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, दे आर सेइंग कि 15,000 में आपको स्कूल का खर्चा, रेंट और ये सब निकाल के यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन कतर। मैंने लोग देखे तो 3,000 में भी सर्वाइव कर।
0: हाँ, राइट राइट, मैंने खुद देखे, आई नो वो सारी बात। तो शौक
1: टोटली डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल के 15,000 में अगर नहीं चल रहा है तो यार हम तो 5,000 में चला दे।
0: हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई एग्री भाई, ये मैंने भी नोटिस किया है लोगों को ये कहते हुए, और जो पोस्ट आप पढ़े वो मैंने भी पढ़े। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि आपका शौक पानी कैसा है, कि आपकी आप लो मेंटेनेंस हैं, हाई मेंटेनेंस है, कुछ लोग बहुत कम में, एंड मैं एक कम्युनिटी अलग से आप यू लग रही, देयर आर मेनी कम्युनिटीज जो कतर में है जिनका आप एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे और ओवर एंड अबव जाते हैं। हमारे इंडिया में भी कितने हैं कि लोग अगर उनको फोन चाहिए वो चाहे 3.5 लाख का क्यों ना हो, दिल गो फॉर EMI।
1: माशाल्लाह, हमें दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे लिसनर्स ही बता देते हैं।
0: वो तो दिखाई है आपने, माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं, सब हो रहा है हमारे, मेडिक्योर पेडिक्योर ही हो रहा है भाई। तो
1: 2,500 उससे खर्च कर रहे हैं, तो भाई हम 5,000 में घर भी चला रहे हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह। हां एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वही एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और इतने सारे लोग अलग अलग तबके के यहाँ पे मिलते हैं, आप खुद सुनते रहते हैं, आप किन से ज्यादा रिलेट कर पाए? आई मीन यहाँ पे आने के बाद अपार्ट फ्रॉम इंडियंस, और कौन सी कम्युनिटी से आपका कनेक्शन बना है, कुछ स्पेसिफिक है ऐसा कुछ या नहीं?
1: अपने नेपाली भाई है, और मैं बताऊंगा कि मतलब कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब अरबी बहुत अच्छे है, कतरी कल्चर वाले जो कतरी जो है कुछ कुछ बहुत बहुत अच्छे है। मैं अपने स्पॉन्सर की ही बात करूं, जो मेरे खुद के स्पॉन्सर है, वो मेरे को कभी कॉल करके मतलब कुछ बोलते नहीं, उनको वो बोलते आई नो कि द सिचुएशन इज नॉट गुड विथ यू एंड ही नेवर आस्क मी फॉर एनीथिंग।
0: Okay.
1: उन्होंने अपना मेरे को सिग्नेचर करना है, ये करना है, वो करना है, he never asked me anything in return.
0: Nice. माशाल्लाह, माशाल्लाह. अल्लाह ताला उन्हें भी दे भाई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात
1: मैं
0: है।
1: तो दुआ करता हूँ हमेशा, मतलब यही होता है ना कि आप अगर किसी का बुरा नहीं चाहते तो आपके साथ भी अच्छे ही लोग मिलते हैं हमेशा।
0: करेक्ट, बुरे मिल भी जाते हैं तो फिर कुछ कर नहीं पाते। नहीं बट नाइस है, ये एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ के लोकल से मैंने भी नोटिस किया है कि अब मैं सारी गल्फ कंट्री से कंपेयर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कुछ अलग ही किस्म का है, एक प्राइड है लेकिन राइट अमाउंट है
1: ना, और एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टफुल।
0: या
1: वेरी रिस्पेक्टफुल।
0: या एंड होम स्कूलिंग के बारे में मैं एक शख्स से बात कर रहा था, मेरे भाई वो खुद प्रोफेसर रहे हैं, एंड ही काइंड ऑफ सेड समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बोला होम स्कूलिंग इज द फ्यूचर इन मेनी कंट्रीज, और वो उसके खिलाफ नहीं। आप क्या कहते हैं इस पे?
1: मैंने सुना

0: ऐड के बारे में कि होम स्कूलिंग बहुत जगह पे नॉर्मल हो रही है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, और आई थिंक या इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन कि बच्चे अगर घर पे ही पढ़ सकते हैं तो मतलब ठीक है. आई सी स्कूल एज अ बिजनेस.
1: ओके, पर वही है कि लोग कहते हैं कि सोशल सोशल डेवलपमेंट का क्या होगा बच्चे का, दैट इज द मेजर क्वेश्चन जो इस बीच में आता है. सब तो ठीक है लेकिन इसका क्या.
0: देखिए मेरे हिसाब से अगर अगर एक बच्चा है तो सोशल लाइफ जो है अभी मतलब कि मैं यहाँ की तो बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे
1: वो तो
0: समर नो वन कैन गो आउट, बट अपनी कंट्रीज में अगर वो चीज है तो सोशल लाइफ तो है बच्चों की. इवन इफ दे आर होम स्कूलिंग दे हैव अ सोशल लाइफ, दे हैव नेबर्स, दे हैव फ्रेंड्स, दे गो आउटसाइड एंड प्ले,
1: मोहल्लेदारी में सब हो जाता है.
0: हाँ हो जाता है वहाँ वो साइड पे. यहाँ पे थोड़ा मैं बोलूंगा कि हाँ है इश्यू बिकॉज मैं इतने साल से यहाँ रहता हूँ, आई रेयरली नो माई नेबर्स.
1: क्यों भाई बात कर लो ना, क्या दिक्कत है.
0: वो मतलब मोस्टली सबके दरवाजे बंद रहते हैं ना, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, सब काम कर रहे हैं, तो मतलब मिलते हैं, सलाम दुआ हो जाती है, बट इतनी सोशल लाइफ है नहीं जितनी अपनी कंट्री में.
1: ओके ओके, हाँ ये भी सही है. ओके, और आपने नदी में नोटिस किया होगा एक पैटर्न जो हमेशा मैं अपने टेक अपडेट्स में भी कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी भी महंगी होती जा रही है. एंड यू माइट हैव सीन द पैटर्न, क्योंकि
0: बहुत ज्यादा
1: मतलब ऐसा हो गया कि एआई की कंप्यूटिंग की वजह से मेमोरी खरीदने की रिक्वायरमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज पे बोझ आ गया है. तो अब क्या क्या कहाँ देख रहे हैं फ्यूचर अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के नजरिए से.
0: लेकिन मैं आपको एक अभी आज की ही बात बताता हूँ. मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसने 2 years ago he bought a laptop for 60,000. The same specification if he wants today it's 160,000.
1: हाँ, see वही चीज़.
0: इतना बड़ा गैप आ गया है.
1: हाँ हाँ वही वही तो आपको लगता
0: है. और future is technology. हाँ. नहीं होगा. Future is technology तो वो बढ़ता ही जाएगा. क्योंकि जितना advanced चीजें बनेगी उसमें उतना ज़्यादा पैसा लगेगा.
1: Right. और स्पेशली जब चीजें एआई से जुड़ी हुई आ रही हैं, ये जनरल पब्लिक के लिए भी है, तो उसकी कंप्यूटिंग होती है, उसकी मेमोरी होती है, उससे बड़ी बड़ी कंपनी को खरीदना पड़ता है, तो वो प्रेशर सब पे बन रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है नदीम भाई,
0: दूसरी चीज है आप ये भी देखे ना सर के आप पहले जो चीजें आती थी वो हर चीज बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी है. इट्स बिकमिंग कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट. तो बड़ी चीजों को एक छोटी चीज में डाल रहे हैं वो लोग. तो पैसा तो रिसर्च जा रही है, पैसा जा रहा है, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं.
1: पर आप ये भी देख रहे हैं कि एक पैटर्न अभी देखने को मिला है. I was reading an article, उसमें था कि चीजें अभी एक बैकवर्ड पैटर्न में भी आई हैं. लोग कह रहे हैं ये छोड़ो यार, ये वाला तरीका ही सही था. एंड थोड़ा सा टेक के मामले में पीपल आर ट्राइंग टू यूज समथिंग सिंपलर, जहां पे सिंपलर हो सकता है मामला. लाइक ऐसे जंप ऑन नहीं कर रहे कि चलो अभी और नया और नया और नया.
0: मैं खुद नहीं कर रहा हूं,
1: है ना.
0: मैं अभी भी आईफोन 15 प्रो में करता हूं.
1: क्योंकि एक किस्म का एक इल्यूजन भी है कि अगर चीज अभी लेटेस्ट आई है तो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है मार्केट में. दैट इज अ इल्यूजन.
0: और मेरी मेंटालिटी ऐसी ही थी सिंस आईफोन 11 प्रो मैक्स, 11 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स तब लिया है. After 15 Pro Max, I stopped. Because जितने साल मैंने फोन यूज कर लिया, I feel same.
1: हाँ वही. मतलब इतना कोई भारी फर्क
0: नहीं. Performance improve, ये improve. हम लोग को general public को नहीं पता चल रहा है.
1: हाँ नहीं पता.
0: वो बहुत ज़्यादा जो deep घुसा हुआ होगा उसको फर्क पड़ते हैं वो applications वगैरह इसको से. हम लोग फोन कर रहे हैं, हम social media चला रहे हैं. It's all the same.
1: तो नदीम भाई आखिर में मैं एक चीज बोलूंगा, अगर कोई फाइनेंस वाला मान लीजिए अभी आपको सुन रहा है, अभी जहाज से उतर के बेचारा पहली मरतबा कतर में आया है फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, क्या कहेंगे आप उसे, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को कोई सलाह आपकी तरफ से.
0: मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि अगर हमारी कंट्री से आ रहे एशियन से तो कतर का फाइनेंस बहुत सिंपल और बहुत ईजी है.
1: ओके,
0: देयर इज नो लाइक मतलब जो आपको आता है उसके अंदर कभी सीखना बंद नहीं करना. इफ यू आर गेटिंग समथिंग न्यू, सम न्यू अपॉर्चुनिटी, जस्ट ग्रैब इट, व्हाटएवर यू कैन डू जस्ट ट्राई योर बेस्ट.
1: वेल सेड भाई, वेल सेड.
0: मेरा ऐसा था कि मैं था अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, बट व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब आई वेंट इनटू कंस्ट्रक्शन. आई एम जस्ट अ बीकॉम. मैंने और कोई कोर्स वोर्स कुछ नहीं किया है.
1: But you managed to find a way out, ना ये भी है.
0: तो मैंने सिर्फ नौकरी कर करके ठीक है, रेफरेंस मायने रखते हैं, not bad.
1: वो बन जाते हैं.
0: But reference के बाद you have to prove yourself.
1: हाँ वो तो

0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और नदीम भाई से कुछ पूछना चाहे कोई भी तो 666-221-07 नंबर है। दिस इज कबीर एंड नदीम भाई साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिए, आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मासलामा।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराज 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराज ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराज 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: Anytime, anywhere.
6: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शूफ प्लेटफॉर्म पर

वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज की इस डिजिटल दुनिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और ये है AI एंड पर्सनल फाइनेंस. जी हाँ, सबसे पहले ये समझते हैं कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको जल्दी से क्विक रिकैप तक पहुंचाऊं, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा को एनालाइज करके स्मार्ट डिसीजंस लेने में हमारी और आपकी मदद करती है. यानी कंप्यूटर सिस्टम जो इंसान की तरह सीख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं और आपको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं. अब सवाल ये है कि AI का हमारे पैसों और डेली फाइनेंशियल लाइफ से क्या ताल्लुक है. दोस्तों, पहले पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग के लिए ना लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाते थे, स्प्रेडशीट्स बनाते थे, नोटबुक्स में अपना खर्चा लिखते थे. आज AI की वजह से ये सब बहुत आसान हो गया है. अगर आप कोई बजटिंग ऐप यूज करते हैं, चांसेस है कि उसमें AI टेक्नोलॉजी शामिल हो. ये एप्स आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालाइज करती है और बताती है कि आपका पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है. मिसाल के तौर पे, अगर आप हर महीने रेस्टोरेंट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं, AI आपको अलर्ट कर सकती है और बजट मेंटेन करने की सजेशंस देती है. AI का एक और बड़ा फायदा है एक्सपेंस ट्रैकिंग का. अक्सर महीने के एंड में हम सोचते हैं कि सैलरी तो ठीक थी, लेकिन पैसा गया कहाँ. जी हाँ, AI पावर टूल्स आपके ट्रांजेक्शंस को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट, बिल्स, एंटरटेनमेंट और सेविंग्स. इससे आपको आपकी फाइनेंशियल पिक्चर्स ज्यादा क्लियर नजर आती है. AI सेविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है. कुछ मॉडर्न बैंकिंग एप्स आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को एनालाइज करके सजेस्ट करती हैं कि हर महीने कितनी अमाउंट सेव करना रियलिस्टिक होगा. कुछ एप्स तो ऑटोमेटिकली स्मॉल अमाउंट सेव भी कर देती हैं, जैसे इमरजेंसी फंड बिल्ड करना आसान हो जाता है. दोस्तों, AI इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी अपना रोल अदा कर रही है. आजकल रोबो एडवाइजर्स नाम की सर्विस अवेलेबल है, जो कि इन्वेस्टर्स के गोल्स, एज और रिस्क टॉलरेंस को देखकर इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करती है. ये टेक्नोलॉजी बिगनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को समझना और शुरू करना आसान बना रही है. लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, AI एक पावरफुल टूल है. AI फाइनेंशियल एक्सपर्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है. हर रिकमेंडेशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए. फाइनेंशियल डिसीजंस, खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स और लोन से मुतालिक बातों को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए. AI प्रेडिक्शंस डेटा पर बेस्ड होते हैं और मार्केट कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं. आज AI फ्रॉड डिटेक्शन में भी बहुत अहम रोल प्ले करती है. बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AI की मदद से सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं. अगर आपके अकाउंट में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नजर आए, तो AI सिस्टम्स उसे आसानी से डिटेक्ट करके पहचान के वार्निंग

आपकी मदद करती है। अगर समझदारी से यूज की जाए तो ये बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत आसान बना सकती है। लेकिन याद रखना, AI आपको गाइड कर सकती है, लेकिन आपके पैसों का फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। स्मार्ट मनी का आज का लेसन ये है कि टेक्नोलॉजी को अपना हेल्पर बनाइए, अपना डिसीजन मेकर नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम तो रुको इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। क्या हाल है जी आपके बढ़िया? कुछ तो काम आया होगा, कभी ना कभी किसी एपिसोड में तो लगा होगा यार कबीर क्या काम की चीज बताइए। ऐसी आज भी मैं काम की चीजें बताऊंगा आपको, और कुछ ऐसी खामखा

0: चीज भी होती है जिनमें जिनसे आपका टाइम पास हो सकता है. तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके नाम आप नोट कर सकते हैं एंड दे आर रियली रियली रियली हेल्पफुल. एक तो मेरे साथ अभी तक जुड़ी हुई है ये वेबसाइट, बड़ी खास है. तो शुरू करते हैं वेबसाइट नंबर वन जिसका नाम है 50languages.com 50languages.com जो इसका नाम है वैसे इसका काम है, बस 50 आपको लिखना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है 50. तो आप दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस इससे सीख सकते हैं और इसमें अपडेट्स आती रहती हैं. अब ऐसा तो नहीं है आपको कभी कोई एंशिएंट भाषा सीखनी तो बात दूसरी है, मगर जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जो इंसान सीखना चाहता है उसमें अरबिक है, उसमें स्पेनिश है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, कोई भी भाषा आपको सीखनी है ग्रामर के साथ साथ उसके सेंटेंस फॉर्मेशंस एक एक चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी और काफी इजी टू यूज है. इनफैक्ट मैं स्पेनिश के कुछ वर्ड्स यहाँ से सीख रहा हूँ, हालांकि मेरे आसपास कोई बोलने वाला नहीं है स्पेनिश, एमी खामखा खुद से बात करता रहता हूँ, बट काम की चीज बहुत है. तो अगर आप लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि कोई ये पैसा नहीं मांगता आपसे, फ्री फंड में बहुत सारी चीजें दे देती है वेबसाइट. सो ट्राई दिस वन आउट 50languages.com 50languages.com ठीक है बड़े आगे बढ़े. ओके अगली वेबसाइट का नाम है doodlefonts.app यानी कि ऐप doodlefonts.com. अब ये जो है ये काम की भी हो सकती है और ये मजे के लिए भी हो सकती है, पर अब बता देता हूं आपको. चलो doodlefonts.app जो वेबसाइट है इस पे आप खुद के फॉन्ट्स बना सकते हैं. आई नो इट साउंड्स बिजार इन योर हेड राइट नाउ, ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन आप लिटरली बना सकते हैं. हालांकि आप वो क्या कहते हैं, कैसे समझाऊं मैं, हाथ आपका पेंट ब्रश की तरह मूव करेगा तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपकी राइटिंग जनरली मेरे जैसी है तो फिर तो ये वेबसाइट आपके लिए नहीं है. बट स्टिल आपकी राइटिंग खराब हो अच्छी जैसी भी हो आप अपने तरीके से फॉन्ट्स डिजाइन कर सकते हैं. सोचा था कभी 20 साल पहले ऐसा कुछ आएगा दुनिया में, भाई मैंने फॉन्ट्स से रिलेटेड तो नहीं सोचा था. तो ये वेबसाइट बहुत कमाल की है. इफ यू वांट टू जस्ट एक्सपेरिमेंट विद फॉन्ट्स, यू नो समटाइम्स यू वांट टू शो पीपल के देखो ऐसा फॉन्ट देखा आएगा कहीं, तो ये आपके काम आ सकती है. डूडल doodlefonts doodlefonts.app ट्राई दिस वन आउट. ओके बढ़ते हैं अगली ऐप की तरफ या वेबसाइट. वेबसाइट का नाम है messenger.abito.co messenger messenger messenger.abito.co. इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप लिटरली एक बहुत ही कोजी गेम खेल सकते हैं एंड इसकी ग्राफिक्स भी बढ़िया है. यार मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी कोई ऐसी फ्री वेबसाइट बताता हूँ क्या उसकी ग्राफिक्स बढ़िया होंगे, देन आई जज इट एंड देन आई टेल यू. मैं सही बता रहा हूँ ये इतनी कमाल की चीज है. ये जो होने लगा है ना ये कोडिंग के थ्रू ये लोग बनाने लगे हैं ऐसे गेम्स जो आप सिंपली बस एक वेबसाइट के क्लिक पे जाके आप खेल सकते हैं, ये बहुत कमाल का है और आने वाले वक्त में आई एम प्रीटी श्योर इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा. मगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोजी लिटिल गेम आराम से घूमने फिरने वाला तो ये बहुत बढ़िया है भाई. messenger.abito.co abito abito. कुछ भी दिक्कत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है बढ़ जाए आगे. अब न्यूज की तरफ बड़ी खबर है. तो खबर दरअसल ऐसी है कि रिसेंटली आप देखेंगे कई सारी चीजें महंगी हो रही हैं और मैं इस बारे में बात करते रहता हूँ सो दैट यू आर अवेयर. अभी लैपटॉप से लेकर गैजेट्स होंगे, गेमिंग कंसोल्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू शूट अप और चलता रहेगा कुछ वक्त तक. अभी रिसेंट टाइम्स में देखा होगा सोनी ने भी ये कहा है कि जो प्ले स्टेशन कंसोल है उनका उसमें वो फिजिकल डिस्क शामिल ही नहीं करेंगे बिकॉज वो एनवायरमेंटल वैसा कुछ नहीं है, खर्चा बचाने वाले सीन है क्योंकि दे नो ऑलरेडी बहुत महंगा बिक रहा है उनका, तो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं. मगर एक और चीज इसमें आ गई है जो गेमर्स के लिए बुरी खबर हो सकती है. तो नाउ प्लेस्टेशन इज डूइंग समथिंग वेरी वियर्ड. उन्होंने कहा कि आप जो ऑनलाइन गेम खरीदेंगे आपने खेल लिया बहुत बढ़िया, पर अगर आपने कुछ प्लेस्टेशन पे गेम खरीदे लिया ठीक है और आपने इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रखा है अपने प्लेस्टेशन का और आप कहीं घूमने फिरने चले गए, तो आप जब वापस आएंगे 30 दिन के बाद ये मैक्सिमम टाइम फ्रेम है तो आपका गेम चला जाएगा, आपको लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा. भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं सोनी वालों से झगड़ लूंगा जाके. दिस इज जस्ट अ न्यूज और तो इसका एक ही तरीका है रेस्ट मोड में प्ले स्टेशन को रखे. एंड फॉर नाउ दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ. ये थी टेक अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड.
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से दी.

0: दोस्तों रमजान का मुबारक महीना रहमत और बरकत का महीना है। इफ्तार का वक्त करीब आता है तो अक्सर लोग जल्दी में गाड़ी तेज चलाने लगते हैं, मगर याद रखें इफ्तार से पहले हद से ज्यादा रफ्तार ट्रैफिक हादसात की अहम वजूहात में से एक है। सिर्फ कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में मत डालिए। तेज रफ्तार में एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हैं, गाड़ी पर कंट्रोल कम होता है और एक छोटी सी गलती बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। इसलिए हमेशा इफ्तार से पहले रफ्तार आहिस्ता रखें, सेफ डिस्टेंस बरकरार रखें, सिग्नल और लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करें, मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें और अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो कहीं साइड पर प्रॉपर पार्किंग में गाड़ी लगाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इफ्तार के वक्त आपको घर पहुंचना है, मगर महफूज पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। होशियार रहें, एहतियात करें, अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाएं, रफ्तार कम रखें, सिग्नल फॉलो करें, सेफ डिस्टेंस बरकरार रखें, सिर्फ कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में मत डालिए। वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारे लिए अहम है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, इंसान के अखलाक की असल पहचान कहाँ होती है? स्टेज पर, दफ्तर में, दोस्तों के दरमियान, या वहाँ जहाँ इंसान को किसी दिखावे की जरूरत नहीं रहती, अपने घर में? बात तो सही है, क्योंकि बाहर बहुत नरम लहजे में बात करना आसान है, अजनबी की गलती बर्दाश्त करना भी आसान हो सकता है, लेकिन जिस इंसान के साथ आप हर रोज रहते हैं, जिसकी आदत, कमजोरियाँ और मिजाज आपके सामने हैं, उसके साथ मुसलसल अच्छा बर्ताव करना असल अखलाकी इम्तिहान है। और इस घरेलू जिंदगी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निहायत अहम वसीयत फरमाई, इस्तौसु बिन्निसा, औरतों के साथ भलाई की वसीयत कबूल करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वातीन के साथ भलाई की वसीयत कबूल करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली का सबसे ज्यादा टेढ़ापन उसके ऊपरी हिस्से में होता है। अगर तुम उसे बिल्कुल सीधा करने लगोगे तो उसे तोड़ दोगे, और अगर उसे छोड़ दोगे तो उसमें खम बाकी रहेगा। लिहाजा औरतों के साथ भलाई की वसीयत कबूल करो। इमाम तुर्बिश्ती रहमतुल्लाह इस मफहूम को यूं वाज़े करते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ, मेरी इस वसीयत को कबूल करो। गौर कीजिए, हदीस का आगाज भी इसी वसीयत से होता है, इस्तौसु बिन्निसा, और इख्तिताम भी फस्तौसु बिन्निसा। मरकजी पैगाम वाज़े है कि औरतों के साथ हुस्न सुलूक इख्तियार करो। अब इस हदीस में पसली की मिसाल को औरत की तहकीर या उसकी कदर घटाने के माने में नहीं लेना चाहिए। हदीस का मकसद तो इब्तिदा और इंतहा दोनों जगह वाज़े कर दिया गया, यानी उनके साथ भलाई का मामला करो। इंसानी ताल्लुकात में हर शख्स को अपने मिजाज के मुताबिक ढालने की जिद न की जाए। शौहर और बीवी दो अलग इंसान हैं, उनकी शख्सियत मुख्तलिफ हो सकती है, सोचने का अंदाज मुख्तलिफ, एहसासात के इजहार का तरीका मुख्तलिफ, किसी मामले पर रद्द अमल मुख्तलिफ। अब इस दुवाजी जिंदगी का मतलब ये नहीं कि एक इंसान दूसरे की मुकम्मल नकल है। रिश्ता इख्तिलाफ के बावजूद मोहब्बत, एहतराम और हिकमत के साथ चलने का नाम है। बाज़ घरों में एक मसला ये होता है कि एक फरीक दूसरे को मुसलसल दुरुस्त करने में लगा रहता है। ऐसे क्यों बोल, ऐसे क्यों सोचते हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें मेरी तरह समझना चाहिए। हर इख्तिलाफ को मसला बना लिया जाता है, हर छोटे फर्क को गलती समझ लिया जाता है, और फिर इंसान रिश्ता निभाने के बजाय दूसरे इंसान को अपनी मर्जी के सांचे में ढालने लगता है। यह हदीस हमें मुतनब्बे करती है कि हर चीज़ को जोर से सीधा कोशिश नुकसान पैदा कर सकती है। यहाँ एक बहुत अहम तवाजुन है, और घर वालों के हिस्से में थकन, चिड़चिड़ापन और सख्त लहजा। ज़रा सोचिए, जो लोग हमारे सबसे करीब हैं, क्या बेहतरीन अखलाक के ज़्यादा हकदार नहीं? گھر وہ جگہ نہیں جہاں انسان اخلاق کا لباس اتار دے بلکہ گھر وہ جگہ ہے جہاں اخلاق کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ سامعین کرام، آج کی روح پرور سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر فرق کو طاقت سے ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے، ہر اختلاف کو جنگ نہ بنائیے، ہر خامی کو رشتے کی پوری حقیقت نہ سمجھ لیجیے۔ رشتے اس وقت خوبصورت نہیں ہوتے جب دو انسان بالکل ایک جیسے ہو جائیں، رشتے تو اس وقت خوبصورت ہوتے ہیں جب دو مختلف انسان ایک دوسرے کے ساتھ رحمت، احترام اور حکمت سے رہنا سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور

107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर हफ्ते एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते हैं। और आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं वो सिंगल्स के लिए है। क्या है ये स्कैम? ये स्कैम है मैरिज स्कैम। कैसे काम करता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, मैरिज स्कैम एक ऐसा धोखा है जहां प्रेडेटरी स्कैमर स्पेशलाइज्ड मैट्रिमोनियल वेबसाइट और डेटिंग एप्लीकेशंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रॉड करने वाले लोग उन मासूम लोगों को टारगेट करते हैं जो सच में शादी या एक सीरियस लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की तलाश में होते हैं। इस मकसद के लिए वो अपनी हाईली डिटेल्ड और फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं ताकि लोग उन पर यकीन कर सकें। बात शुरू होते ही ये स्कैमर्स बहुत जल्दी गहरी मोहब्बत का इजहार करते हैं और पूरी गुफ्तगू को, पूरी बात को शादी की तरफ हल्के हल्के ले जाते हैं, जिससे विक्टिम के दिल में एक झूठा सुकून और भरोसा यानी कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो जाता है। जब विक्टिम का ट्रस्ट पूरी तरह जीत लिया जाता है तो स्कैमर अचानक झूठी और बहुत स्ट्रेसफुल इमरजेंसीज खड़ी कर देता है, जैसे कि कोई अचानक लीगल मसला हो गया है, बाहर के मुल्क में उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया है, या उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, या उनका डेबिट कार्ड खो गया है, या फिर उनका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, या किसी करीबी रिश्तेदार की अचानक तबीयत खराब होना। वो विक्टिम को इमोशनली ब्लैकमेल यानी कि गिल्ट ट्रिप करते हैं ताकि वो इन मसाइल को हल करने के लिए एक कोई रकम दे दे, या कोई एक थोड़े पैसे दे दे, या इमरजेंसी फंड्स दे दे। जैसे ही विक्टिम का बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है, स्कैमर्स हर जगह से ब्लॉक करके बिल्कुल गायब हो जाते हैं। कई बार ये आपको कोई ऐसा स्कैनर देते हैं या फिर बैंक का डिटेल देते हैं जहां पर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आपको ये कहते हैं कि हम कुछ दिन में पैसे वापस कर देंगे। पहला तरीका है कि ये पैसे लेने के बाद गायब हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये पैसे लेने के बाद आपसे बात करते हैं और ये बात थोड़ी और लंबी चलती है, ये कुछ पैसे आपको वापस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 100 रियाल लिया है इन्होंने तो उसमें से ये 20% या 20 रियाल आपको वापस भी करेंगे, तो आपको यकीन हो जाता है कि हाँ, ये वापस करने वाला शख्स है। लेकिन बीच में एक बार फिर से इसी तरह की इमरजेंसीज बताई जाती हैं और दोबारा आपसे 100 रियाल लिया जाता है या 150 रियाल लिया जाता है और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे में आपका डबल नुकसान होता है और ये अपना डिटेल, अपना प्रोफाइल, अपना बैंक नंबर या फिर सारी जो डिटेल्स हैं वो बंद करके गायब हो जाते हैं, अपना फोन नंबर बंद करके गायब हो जाते हैं और आप इनको ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। क्या तरीके हैं इन मैरिज स्कैम से बचने का, इस पर अगर हम बात करें तो बातचीत को स्लो रखें और जल्दबाजी कभी ना करें। अगर कोई शख्स मिलते ही बहुत जल्दी शादी की बातें करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करता है, अचानक बहुत ज्यादा मोहब्बत का दावा करता है तो होशियार हो जाएं, रिश्ते बनने में वक्त लगता है। उसके अलावा पैसे भेजने से बिल्कुल इनकार करें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम इमोशनली किसी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और जब इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हैं तो उनके रिलेटिव से, उनकी परेशानियों से भी कनेक्ट होने लगते हैं और ऐसे में उनकी मदद करते हैं क्योंकि दिल तो आपका साफ है। लेकिन इस साफ दिल का फायदा स्कैमर्स उठाते हैं। आप उनकी परेशानी को अपना समझते हैं और कुछ पेमेंट कर देते हैं। सबसे बड़ा रूल यही है कि जिस शख्स से आप ऑनलाइन मिलते हैं और कभी फिजिकली मिले ही नहीं तो उसे किसी भी सूरत में पैसे या तोहफे ना भेजें, चाहे उनकी इमरजेंसी कितनी ही सच्ची क्यों ना हो। उसके अलावा बैकग्राउंड चेक हमेशा करें, वेरीफाई करें। उनकी दी गई फोटोज को रिवर्स इमेज सर्च के जरिए चेक करें कि कहीं वो किसी और की चोरी की हुई फोटोज तो नहीं है। इसके अलावा उनके कहे गए दावों को हमेशा फैमिली और दोस्तों के जरिए वेरीफाई करने की कोशिश करें। एक और तरीका है, जो तरीका है आपको सोशल मीडिया पे डीप एनालिसिस करने का। जिस शख्स का प्रोफाइल आप देख रहे हैं किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, उनको सोशल मीडिया पे सर्च करें, कितने लंबे वक्त से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। और अगर वो बहुत लंबे वक्त से एक्टिव हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कैमर नहीं होगा, वो कितना जेन्युइन है उससे बात करके पता चलेगा, उनके रिलेटिव के बारे में जानने को पता चलेगा। आप उनसे सामने से मुलाकात करें, उनके घर के बारे में समझें, उनको जानें, उसके अलावा उनके साथ बैठे उठे और उनके घर को भी देखें, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये बंदा स्कैमर है या नहीं है। इस तरीके के स्कैमर्स आजकल सोसाइटी में बहुत ज्यादा हैं। आपको होशियार रहने की जरूरत है और इन सॉल्यूशंस पर काम करने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते हैं FM 107, दिल से देसी स्कैम अलर्ट।

0: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन, आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट। पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं एफएम 107 पर नेक्स्ट जेन। भाई देखिए, इस वक्त जो गाड़ियों में है ना, घरों में है या अपने ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, सफा का तहे दिल से सलाम कबूल करें। भाई सफा अकेली नहीं, सफा के साथ एक और शख्सियत भी मौजूद है यहाँ पर, जिनका नाम है अमिता। भाई देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे शहर से जो हर पल अपनी राह बदल रहा है। दोहा की हवाओं में आजकल एक अलग सा ही जोश और खरोश पाया जाता है, एक ऐसी एनर्जी पाई जाती है जो तरक्की की नई दास्तानें लिख रही है। भाई
2: एग्जैक्टली सफा, वेल हमारे सारे लिसनर्स को हम सलाम करना चाहेंगे। मैं हूँ अमिता और नेक्स्ट जेन में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और सफा ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे दोहा का जो स्काईलाइन है ना, अगर देखो तो लगता है कि किसी ना साईफाई मूवी का हिस्सा है, लेकिन हमारी मिट्टी की महक आज भी ना वही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा दिलचस्प है सफा। जब हम सुख लव्स सुनते हैं तो ये एक ऐसा वर्ड है जो हम सबके ना बचपन से जुड़ा है, जो जहन में ना सबसे वो पहला ख्याल क्या आता है जब हम सोचते हैं कि हम सुख के बारे में सोचते हैं। आई थिंक हैप्पीनेस सबसे पहले दिमाग में आता है। और सुख वाकिफ की वो गलियां, वहां के भीने भीने बखूर की खुशबू, ओहो, मिट्टी की दीवारें और सुख के वो चमकते हुए वाइब्रेंट फैब्रिक्स।
1: और भाई बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो मुझे भी आपने जिस तरह से इलस्ट्रेट किया ना, मैंने तो उसको विजुलाइज भी कर लिया।
2: राइट
1: अच्छा ये सब ना एक एहसास है, एक कल्चर है भाई। यहाँ पर ना वो सारी पुरानी यादें जहाँ पर हम घूमते फिरते रहते हैं, दोस्तों के साथ बैठकर चाय कावा पीते हैं, लेकिन दोस्तों वक्त का पहिया घूम चुका है। आज 2026 में हमारा सूख सिर्फ मिट्टी और पत्थर का नहीं रहा, हर सूख अब फिजिटल हो चुका है।
2: यस, और फिजिटल ये वर्ड सुनकर ना थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हमारी नई हकीकत है। फिजिकल और डिजिटल का एक ऐसा मर्जिंग है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, सो इट इज फिजिटल। सो सफा, क्या आपने कभी सोचा था कि आप किसी स्टोर के पास से गुजरेंगी और स्टोर की विंडोज आपको पहचान लेंगी?
1: नहीं भाई, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। वैसे कह तो आप सही रही हैं, यही तो मैजिक है भाई, इन जगहों का ये तो मैजिक होता है। आज हम इस एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे शॉपिंग की वो सदियों पुरानी रिवायतें और मॉडर्न डिजिटल यूनिवर्सल आपस में ये दोनों मिल गए। अब हम बात करेंगे उन हाई टेक स्टोर्स की जहां आपको क्यू में खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इमेजिन कीजिए ना, आप स्टोर के अंदर कदम रखते हैं और वहां के सेंसर्स आपका साइज, आपका स्टाइल, आपका जो स्टाइल का प्रेफरेंस है, यहां तक कि भाई ये आपके फेवरेट कलर को भी जानते हैं और वो भी आपके बोलने से पहले।
2: Yes, और वो आईने, oh my dear, सफा ये ना स्मार्ट मिरर्स हैं। और हमारे सारे सुनने वालों को हम बताना चाहेंगे कि इमेजिन कीजिए एक ऐसा शीशा जो सिर्फ आपका

0: चेहरा नहीं देखता, ठीक है, बल्कि आपको सेकंड्स में तैयार कर देता है। बिना कपड़े चेंज किए आप देख सकते हैं कि रेड ड्रेस आप पर कैसी लगेगी और वो ब्लू सूट आपकी पर्सनालिटी को कैसा सूट करेगा। ये टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो प्योर मैजिक है
1: भाई। ये मैजिक इसीलिए भी है क्योंकि हम जो है वो नेक्स्ट जेन है, ठीक है। एक सीधी सी बात है, हम नेक्स्ट जेन है भाई, तो हमें इतना तो मिलना चाहिए। देखिए, हम डिजिटल टूल्स को अपनी लेगेसी के साथ जोड़ रहे हैं
0: जी।
1: हमने अपनी रूट्स को भुलाया नहीं है, ऐसा नहीं। अक्सर लोग ये कहते हैं भाई, एक कॉम्प्लेक्स बात कर देते हैं कि नहीं ये तो सब कुछ भूल बैठे। नहीं नहीं नहीं, हमने जो है अपनी रूट्स को भुलाया नहीं, बल्कि उनको टेक के पर दे दिए। और हाँ, आज का न्यू सूक एक ऐसी जगह है जहाँ हेरिटेज और हाइपर डिजिटल टेक्नोलॉजी हाथ पकड़ कर चल रहे हैं एक साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये एपिसोड उन सब के लिए है जो फैशन के ना दीवाने हैं, जिन्हें फैशन से बेहद बेहद मोहब्बत है, जो हमारे यहाँ के बड़े ही फेमस मॉल्स हैं, जैसे कि प्लेस वेंडोम की अगर हम बात करें तो उसकी गलियों में जो लेटेस्ट ड्रॉप्स ढूंढते हैं ना, मतलब बस एपिसोड उन्हीं के लिए है। और ये एपिसोड उन यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो रिटेल की इस दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो वो कहते हैं ना कि जो बिजनेसेस को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं।
1: भाई, आज की गुफ्तगू में हम सिर्फ शॉपिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बदलते हुए इंसानी रिश्तों की, बिजनेस के नए तरीकों की और कतर के उस विजन की जो हमें दुनिया से अलग बनाती है।
0: सो आई एम टोटली रेडी सफा, और मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स भी ना क्यूरियस होते जा रहे हैं कि शॉपिंग का ये नया अवतार देखने के लिए दिल थाम कर बैठ तो गए, लेकिन ये है क्या?
1: तो चलिए साथियों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना जहाज में बैठते हुए अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए। हम निकल रहे हैं कैसे सफर पर जहाँ पुराना सूक नए डिजिटल अवतार में हमारा इंतजार कर रहा है। सो लेट्स गो, नो लॉन्गर वेटिंग फॉर एनीथिंग। अमिता, शैल वी?
0: यस यस सफा, तो चलिए इस फ्यूचरिस्टिक शॉपिंग एक्सपीरियंस के चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला हमारा स्पेशल सेगमेंट, दैट इज व्हाट्स ट्रेंडिंग। तो आप कहीं ना जाएं, बने रहे एफएम 107 पर दिल से देसी। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 107, मैं हूं अमिता, हमारे साथ है सफा और हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट जेन। सो सफा, मुझे आप ना एक राज की बात शेयर करनी है। हाँ, तो कल मैं ना शॉपिंग पर गई थी,
1: ठीक,
0: और मेरा तजुर्बा इतना अजीब और गरीब था कि मुझे लगा शायद मैं किसी टाइम ट्रेवल मशीन में बैठ गई
1: है?
0: अरे मैं बता रही हूँ आपको कि मैं 2 घंटे तक मॉल्स में रही,
1: सही है,
0: शॉपिंग की, कपड़े पसंद किए, पेमेंट्स भी कर दी, लेकिन
1: सही?
0: जब मैं बाहर आई तो मेरे हाथ में ना एक भी बैग नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल पेपर बैग।
1: Literally, Amita, were you shopping in your dreams or something? कहीं आप सिर्फ विंडो शॉपिंग कर तो नहीं निकल आई और उसकी विंडो शॉपिंग की भी कीमत लग गई है अब? या फिर आप सामान कहीं उधर ही मॉल में भूल आई हैं? Are you sure? मैं तो अक्सर ये करती हूँ, बेचारे काउंटर वाले आवाज दे देकर बुला रहे होते हैं, बाजी अपना सामान ले जाएं।
0: ये नहीं सफा, यही तो ट्विस्ट है कि मैं जब वहां से निकली ना तो मेरे हाथ खाली थे, लेकिन जब तक मैं अपने घर पहुंची मेरा वार्डरोब नए कपड़ों से फुल हो चुका था। और ये मैजिक है या कोई नई टेक्नोलॉजी, ये हमारे लिसनर्स अब गेस करेंगे।
1: देखो भाई अमिता, आप जो है ना किसी मैजिक का नहीं, बल्कि आप कह रहे हैं कि आप 2026 में रह रहे हैं, तो 2026 के सबसे बड़े हाइब्रिड डिजिटल ट्रेंड का शिकार हो गई हैं आप। तो लिसनर्स ध्यान से सुनिए, क्योंकि शॉपिंग का तरीका अब हमेशा के लिए बदल चुका है।
0: राइट,
1: देखिए 2026 में रिटेल सिर्फ सामान बचा नहीं रहा, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस सेंटर बन चुका है। आजकल कतर में हर तरफ जीरो इन्वेंटरी स्टोर का बहुत ज्यादा चढ़ाव हो रहा है, मतलब ट्रेंड आ रहा है, और इसकी मकबूलियत यानी ये पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
0: यस, जीरो इन्वेंटरी, इसका मतलब है कि स्टोर में सामान है ही नहीं, तो फिर लोग वहाँ जाते क्यों है सफा?
1: देखो अमिता, इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत हैरत अंगेज है।
0: हाँ,
1: पुराने जमाने में मॉल्स, वेयर हाउसेज जैसे जो चीजें होती थी ना, हर साइज के आपको 50 पीसेस चाहिए होते थे, रैक पर आपको जो ना एक इन्वेंटरी चाहिए होती थी। लेकिन आज ना दोहा की अलग अलग मुख्तलिफ गैलरीज जो हैं, या आप कह लेंगे जो मॉल्स हैं, तो नए ट्रेंड्स लीड कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, और जब मैं कल वहाँ गई थी, स्पेशली जैसे हमारे कटारा साइड या मुंतजा की गलियों के साइड में जो बहुत ही लग्जूरियस मॉल्स हैं, हम जिनका जिक्र आपसे कर रहे हैं, वो स्टोर का माहौल ना किसी आर्ट गैलरी जैसा होता है। अगर आप कहीं गए होंगे

0: जगहों पर गए होंगे तो आई एम श्योर कि आप देख पाए होंगे, वहाँ रैक्स पर हजारों कपड़े ठूसे नहीं रहते, सिर्फ कुछ शोकेस पीसेस होते हैं. आपको लगता है किसी बड़े ही लग्जूरियस बुटीक में आ गए. तो ये जो शोकेस पीसेस होते हैं ये बहुत खूबसूरती से डिस्प्ले किए गए होते हैं और आपको देख के लगता है कि मतलब हम शॉपिंग करें या क्या करें.
1: Exactly, मुझे ये चीज समझ में आ रही है. इसे ना क्यूरेटेड रिटेल कहते हैं. मैंने जगह पढ़ता है कि इसे क्यूरेटेड रिटेल कहा जाता है. आप स्टोर्स में जाते हैं, फैब्रिक को टच करते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसका फील लेते हैं और फिर शुरू होता है डिजिटल मैजिक.
0: राइट.
1: आप वहाँ की स्क्रीन्स या अपने फोन को इस्तेमाल करते हुए ना अपना डिजिटल वर्जन ट्राई करते हैं और जब आप बाय बटन दबाते हैं ना तो वो ऑर्डर सीधा वेयर हाउस से पता है और पहुंचता है.
0: Yes. और सबसे बेस्ट पार्ट पता है हमारे लिसनर्स क्या है, वो सामान आपको उठा कर घूमना नहीं पड़ता जो कि अभी सफाने का सीधा आप तक पहुंचता है. तो अक्सर हमारे दोहा के मॉल्स में जब भी हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे ना बैग्स कैरी करने पड़ते
1: हैं, हाथ दूर जाते हैं,
0: दूर दूर तक चल के शॉपिंग ही करनी होती है. लेकिन इस पर्टिकुलर मॉडल में जब तक आप शॉपिंग खत्म करके अपनी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं ना, चाहे आप फिर लुसेल में हो, वेस्ट बे में पहुंचना हो, आपका डिलीवरी एजेंट आपके दरवाजे पर होता है एंड इट्स लाइक अ मैजिक डिलीवरी.
1: अच्छा, लेकिन अमिता इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा होता है ना वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. इसे हम कहते हैं हाइपर पर्सनलाइजेशन. अच्छा लिसनर्स, क्या आपको आपने ये कभी नोटिस किया है कि जैसे आप जब किसी स्टोर में जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे उस स्टोर को पता है कि क्या आप क्या करने आए, यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं.
0: यस यस. और कल मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं एक स्नीकर्स के सेक्शन में खड़ी थी और मैं बस एक पेयर सस्टेनेबल स्नीकर्स को देख रही थी. मैंने उन्हें टच भी नहीं किया था.
1: ओ, वही तो, स्टोर के सेंसर और एआई कैमरास करते हैं आपकी नजर को ट्रैक.
0: यस.
1: ठीक है, अगर आपने 3 मिनट तक किसी भी एक आइटम को घूर कर देखा ना या आप उसके पास रुक कर उसकी डिटेल्स पढ़ने बैठे हैं तो होता ही है तो स्टोर की डिजिटल डिस्प्ले आपको पहचान लेगी.
0: right.
1: वहाँ फौरन एक नेक्स्ट जेन पर्सनलाइज डिस्काउंट फ्लैश हो जाएगा जो सिर्फ आपके लिए होगा.
0: मतलब स्टोर मुझसे बात कर रहा है. इट्स लाइक द वॉल्स हैव आईज एंड अ हार्ट.
1: एग्जैक्टली. देखो हार्ट का तो मुझे पता नहीं लेकिन आईज जरूर है भाई उसके पास. लेकिन इसी के साथ साथ ना दिमाग भी बहुत जरूरी होता है. ये टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई गई है ताकि कस्टमर्स को वही दिखाया जाए जो उसकी पसंद हो.
0: right.
1: और वो एक होता है ना, हमारा किस चीज पे नजरें और दिल दोनों रुक जाते हैं.
0: right.
1: तो वो उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है. भाई इस चीज से ना शॉपिंग बहुत ज्यादा फास्ट और इफेक्टिव हो जाती है.
0: हाँ.
1: आपको हजारों चीजों से बचत हो जाती है आपकी और आपको ना उनको छूना नहीं पड़ता, आपको उनको देखना नहीं पड़ता. एआई आपके लिए चॉइसेस फिल्टर कर देता है.
0: सो सफा, मैंने एक और चीज नोटिस की है इन मॉल्स में कि वहाँ कुछ ना छोटे छोटे ग्लास कैबिन्स बने थे जहाँ लोग लाइव कैमरा के सामने ना कपड़े दिखा रहे थे. तो वो क्या है?
1: देखो भाई, वो जो चीज है उसको कहा जाता है सोशल शॉपिंग पॉड्स.
0: ओके.
1: ठीक है, 2026 में इन्फ्लुएंसर कल्चर और रिटेल एक हो गए.
0: हाँ.
1: आजकल मॉल्स में ऐसे पॉड्स होते हैं जहाँ इन्फ्लुएंसर्स बैठकर हजारों लोगों के साथ लाइव शॉप विद मी सेशंस करते हैं.
0: एग्जैक्टली. मतलब वो वहाँ फिजिकली खड़े हैं, कपड़े ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनके फॉलोअर्स अपने घर बैठे बैठे वही चीज ऑर्डर कर रहे हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और ये चीजें अक्सर औकात हमारी लाइव फीड्स पर भी आती है जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं. फोन की स्क्रीन और स्टोर फ्रंट के बीच जो एक फासला था ना अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. इससे ना रिटेल एक सोशल इवेंट बन गया है. जैसे लोग पहले जमाने में जाते ना कॉन्सर्ट्स अटेंड करते थे और मेस्मराइज होते थे, वैसे ही अब ये एक इवेंट बन गया है. लोग अब सिर्फ सामान खरीदते नहीं जाते बल्कि कंटेंट क्रिएट करने और एक्सपीरियंस का हिस्सा भी बन जाते हैं.
0: राइट.
1: ये न्यू सूक की एक बहुत बड़ी पहचान है.
0: वाह, और ये तो वाकई में शॉपिंग का एक नया वर्ल्ड या नया डायमेंशन है. और मैं सोच रही हूँ कि हमारे बुजुर्ग अगर ये देखें तो कितने हैरान होंगे ना.
1: अच्छा, ये होता है हमारे जो माशाल्लाह से जो थोड़ा सा जनरेशन गैप है वो जब देखते हैं ना तो बड़े हैरान होते हैं.
0: राइट.
1: लेकिन वो प्राउड भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्राउड भी होंगे क्योंकि कतर ने ना हमेशा ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन को एक बेहतरीन बैलेंस दिया है.
0: राइट.
1: हम कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसी का एक हिस्सा है. MOCI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट कतर जैसे जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने रिटेल

0: टेक को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वो आजकल, उसके ऊपर बहुत काम चल रहा है।
1: सही बात कह रही हो सफा। और हमारे मॉल्स ना अब सिर्फ शॉपिंग डेस्टिनेशंस नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के हब्स बन चुके हैं। और एक तरफ सूख वाकिफ की मिट्टी की दीवारें हैं, तो दूसरी तरफ प्लेस वेंडोम जैसे बड़े मॉल की फ्यूचरिस्टिक लग्जरी है। दोनों ही जगह शॉपिंग का अपना एक लुत्फ है, एक प्लेजर है, सही कह रही है।
0: अच्छा भाई लिसनर्स, देखें मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको लंबा चौड़ा लेक्चर देना नहीं है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगली बार जब आप शॉपिंग पर जाएं ना और हाथ में बैग्स ना हो तो घबराइए मेरी तरह ये मत सोचिएगा हाय हाय ये चीज कहाँ चली गई वो चीज कहाँ चली गई।
1: या
0: आप पीछे नहीं बल्कि वक्त आपसे आगे चल रहा है, ये याद रखिएगा।
1: सच में मुझे लगा कि अभी सवा बोलने वाली, देखो चाहे कुछ हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्या बात है। वेल इस ट्रेंडिंग टॉपिक ने तो शॉपिंग का नजरिया ही बदल दिया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बनाता कौन है? कौन है वो लोग जो इन स्मार्ट मिरर्स और एआई सिस्टम के पीछे हैं?
0: भाई बाकी सारे कौन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जवाब दिया जा सकता है। देखिए इसके लिए हमें चलना होगा हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम मिलेंगे उन इन्वेंटर से, यानी कि उनके बारे में जानेंगे जो इस डिजिटल दुनिया को हकीकत बना रहे हैं।
1: हाँ तो फिर हम कहेंगे आप कहीं ना जाएं, बने रहे एफएम 107 पर अपनी सफा और अमिता के साथ। नेक्स्ट जेन पर शॉपिंग और टेक्नोलॉजी की ये सैर अभी जारी है। स्टे ट्यून्ड, दिल से देसी।
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन। आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही।
1: वेलकम वंस अगेन, मैं हूं अमिता आपके साथ और हमारी सफा, हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं द शो नेक्स्ट जेन। और अब बारी है कि भाई हम बात करें स्टार्टअप स्टोरीज की। सो ट्रेंड्स तो एक तरफ है, ठीक है जनाब, उन ट्रेंड्स को हकीकत में बदलने के लिए बहुत, वो कहते हैं ना, मशक्कत करनी होती है, हार्ड वर्क की जरूरत होती है और विजन की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो इस डिजिटल रेवोल्यूशन की नींव रख रहे हैं। सो हमारी आज की स्टार्टअप स्टोरी है एक लोकल टेक कलेक्टिव वी स्टाइल कतर के बारे में।
0: देखो अमिता भाई, मुझे ना स्टार्टअप स्टोरीज जो ना वो हमेशा से इंस्पायर करती हैं,
1: right.
0: बहुत ज्यादा। वी स्टाइल की टीम ने एक ऐसी चीज पर फोकस किया जिसे हम हर रोज इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो हमारी शॉपिंग का सबसे स्ट्रेसफुल हिस्सा होता है, बताओ क्या?
1: एग्जैक्टली अब मेरे ख्याल से लिसनर्स भी हमारे गेस्ट कर चुके होंगे कि रिटेल की दुनिया का सबसे बड़ा दर्द पेन, और वो पेन पॉइंट है, हमारे लिसनर्स अब सोच रहे होंगे कि जब आप मॉल में जाते हैं, सोचे जरा, एक खूबसूरत सी ड्रेस आपको पसंद आती है और आप फिर शुरू होती है वो जद्दोजहद।
0: सही कहा, पता है कौन सी वाली जद्दोजहद जो हर किसी को बुरी लगती है? फिटिंग रूम की वो लंबी चौड़ी क्यूज, का खौफ करो मुझे इतनी बुरी लगती ना, उनके समय शॉपिंग जाती नहीं। वहाँ की ना, वहाँ की अजीब सी येलो सी लाइट्स होती हैं, हमें किसी, आप कह लेंगे ऐसा लग रहा होता है हम किसी और ही मखलूक जैसे लग रहे होते हैं। और बार बार ना कपड़े उतारो पहनो उतारो, और कुछ इतने आप एग्जॉस्ट हो जाते हो कि फिर आपको एक टाइम बाद समझ भी नहीं आ रहा होता कि क्या अच्छा लग रहा है आपके ऊपर और क्या बुरा लग रहा है।
1: एग्जैक्टली, मुझे तो भूख लगने लगती है सफा उस टाइम पे। मैंने कई बार सिर्फ इसलिए शॉपिंग, जैसे आपने कहा कि मैं नहीं जाती, मैंने खुद छोड़ दी, मतलब सामान लिया वहीं छोड़कर आ गई कि भाई ये 10 चीजें मुझे नहीं चाहिए, हो गया। सो वही वी स्टाइल कतर के फाउंडर्स ने ना इसी जो फ्रस्ट्रेशन होती है जो बायर्स की, उनको देखा और उन्होंने सोचा क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस फिटिंग रूम को ही गायब कर दें।
0: इसी सोच साथ उन्होंने कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि QSTP में अपना डेरा जमाया। देखो भाई साथियों, QSTP में हमारे मुल्क का, आप कह लें कि वो जगह है जो हब है, जहाँ नए ख्यालात को परवाज दी जाती है, या यूं कह लें कि उड़ने के लिए पर दिए जाते हैं। भाई यहाँ जो यंग इनोवेटर्स होते हैं उनका दिन रात वो काम करते हैं यहाँ पर, और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है यहाँ पर जो वाकई में आप कह लें कि कमाल होती है, इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप। और उन्होंने बनाया है एक स्मार्ट मिरर, लेकिन ये कोई आम मिरर नहीं है जो सिर्फ आपका चेहरा दिखाएगा, ये मिरर लाइडार टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। और सफ़ा हमारे लिसनर्स को हम बताना चाहेंगे कि थोड़ा और आसान शब्दों में मैं आपसे कहूँगी कि आप समझाएं कि ये लाइडार

0: आखिर है क्या?
1: अच्छा भाई जरूर मैं आपको बताती हूँ. देखिए समझने वाली बात यह है कि लाइडर है क्या. ठीक है ओके. लाइडर वही टेक्नोलॉजी है जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में रास्ता ढूंढने के लिए नेविगेशन के लिए यूज होती है. ये लाइट बीम्स का इस्तेमाल करते हैं और डिस्टेंस नापने के लिए होते हैं.
0: यस मतलब ये कैमरे की तरफ सिर्फ फोटो नहीं लेते है ना.
1: नहीं भाई ये कैमरे की तरफ तस्वीर नहीं लेते. ये जो है यही तो इसकी खूबसूरती है. प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है इसके अंदर. ये मिरर मिली सेकेंड्स में आपकी बॉडी पर हजारों इनविजिबल लाइट्स पॉइंट्स भेजता है और एक एक्यूरेट 3D स्कैन बनाता है आपका. ठीक है इसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी के हर कर्व और मेजरमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है बिना किसी इनवेसिव कैमरा के.
0: एग्जैक्टली और ये बड़ा ब्रिलियंट सा है सफा. मतलब मुझे अगर कपड़े पहनने की यू नो बार बार ट्राई करने की जरूरत ना पड़े, मिरर पहचान लेगा कि मेरे शोल्डर्स की विड्थ कितनी है, मेरी हाइट क्या है, फिर वो डिजिटल कपड़े मेरे 3D अवतार पर फिट करके हमको दिखा देगा कि ये साइज सही आ रहा है नहीं आ रहा है.
1: बिल्कुल एग्जैक्टली. वाह छोटी छोटी बातें करने लगी हूँ अमिता. सही अच्छा और ये ना इतना एक्यूरेट होता है
0: right.
1: कि आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो फलानी जीन्स आपने पहनी है ना इसकी वेस्ट थोड़ी सी टाइट हो गई है कि नहीं, या जो विजुअल ट्रायल का फ्यूचर है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा. देखिए इन्होंने कतर की ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट्स का भी ख्याल रखा है, जैसे कि अबाया और सोप की जो फिटिंग होती है ना उसके लिए भी एल्गोरिथम्स बनाए गए हैं भाई.
0: वाओ लेकिन सफा हर कामयाबी के पीछे जैसे हम जानते हैं कि एक बड़ी सी दास्तान एक स्टोरी होती है. वी स्टाइल के फाउंडर की शुरुआत कोई बड़े ऑफिस से नहीं हुई थी. उन्होंने अपना पहला प्रोटोटाइप एजुकेशन सिटी के एक 48-hour हैकाथॉन में बनाया था.
1: अच्छा मैंने ये भी सुना है इनके बारे में, जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी और सुना भी
0: राइट right.
1: मैंने ये सुना है कि भाई इनके पास ना मतलब 2 अदद लैपटॉप से और ये सारी कॉफी थी जो कि इंसान को चाहिए होती है
0: राइट
1: जागने के लिए
0: राइट.
1: उनका सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या था? उनका सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं था बल्कि लोगों का ट्रस्ट जीतना था
0: राइट.
1: अब जाहिर बात है मेरे और तुम्हारे सामने कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो हम तो पहले 10 सवाल करते हैं और फिर उसके बाद बिलीव करते हैं
0: राइट
1: नॉर्मल इंसान की तरह. देखो ट्रेडिशनल रिटेलर्स को लगता था कि भाई लोग ना डिजिटल रिफ्लेक्शन पर भरोसा नहीं करेंगे
0: राइट.
1: लोगों का मसला है कि लोगों को कपड़ा छू कर देखना अच्छा लगता है और समझ में आता है कि भाई जैसे मैं हूँ, मैं भी एक ट्रेडिशनल शॉपर हूँ, मुझे होता है कि भाई कपड़े का मटेरियल पता नहीं कैसा होगा, मैं पहले उसको छू कर देखूं फिर मैं अपनी शॉपिंग करूंगी. ये भी एक कॉन्सेप्ट था.
0: सही बात कह रही हो. और रिटेलर्स को ना कन्विंस करना कि डिजिटल इज द न्यू फिजिकल एक बहुत बड़ी जंग है. मतलब सिर्फ कस्टमर्स की नहीं लेकिन रिटेलर्स को शॉप जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. ठीक है ये जो हमारे स्टार्टअप वाले फाउंडर्स थे इन्होंने कहा कि भाई नहीं हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, आप लोगों को वो विजन दिखाना है. उन्होंने कतर नेशनल विजन 2030 को ना गाइड बनाया और दिखाया कि कैसे स्मार्ट रिटेल हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है
1: जो कि हमें अक्सर औकात नजर आती है और हम कहते हैं कि पता नहीं ये किस चीज के लिए
0: राइट
1: तो उससे ये होता है कि मिरर उसे RFID रीडर के जरिए स्कैन कर सकता है. इससे सिस्टम को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है जैसे कि उसका डिजाइन क्या है, साइज, कलर, अवेलेबल स्टॉक और फिर काम आसान हो जाता है.
0: क्या बात है. मतलब मिरर को पहले ही पता चल जाता है कि मैं क्या ट्राई करने वाली हूँ. हाँ लेकिन डिजिटल कपड़ा रिफ्लेक्शन पर इतना रियल कैसे लगता है?
1: देखो यहाँ आती है रियल टाइम 3D रेंडरिंग. ठीक है क्या चीज? रियल टाइम 3D
0: रेंडरिंग.
1: देखो ये मिरर का सॉफ्टवेयर आपकी बॉडी मूवमेंट को करता है और डिजिटल गार्मेंट को उस मूवमेंट के साथ एडजस्ट करता है. होता क्या है, आप मूव करें, टर्न करें या पोज करें, वर्चुअल क्लॉथिंग भी उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करेगी ना.
0: क्या बात है. और लाइटिंग का एक सवाल हो जाता है कि लाइटिंग का क्या? तो मैंने देखा था कि एक बटन प्रेस करके ही पूरा सीन, वो कहते हैं ना, उसका मूड बदल जाता है.
1: Exactly.
0: कमाल है.
1: एग्जैक्टली इसे कॉन्टेक्स्चुअल AR कहा जाता है. ठीक है डिफरेंट लाइटिंग एनवायरमेंट्स स्टिमुलेट किए जा सकते हैं इस चीज के अंदर ताकि कस्टमर्स देख सकें कि आउटफिट जो है ना वो उनका ब्राइट ऑफिस लाइट में कैसा लग रहा होगा, इवनिंग सेटिंग या वेडिंग एनवायरमेंट में कैसा नजर आ सकता है. सब कुछ आप उसके मुताबिक एडजस्ट करके देख सकते हैं.
0: मतलब ये तो बहुत ही यूजफुल सी चीज हो गई हमारे सबके लिए कि कभी कभी ट्रायल रूम की लाइटिंग में ड्रेस एक रंग की लगती है और बाहर निकलकर बिल्कुल डिफरेंट.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और ये मेरे साथ हो चुका है. डोंट आस्क मी प्लीज. ये मेरे साथ हो चुका है. स्मार्ट टेक्नोलॉजी का पर्पस सिर्फ वाव फैक्टर नहीं होता, बल्कि कस्टमर को, जो कंज्यूमर होता है, उसको बेटर डिसीजन लेने में भी हेल्प करना होता है ना।
0: हाँ, लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज इन्वेंट्री लगी सफा कि जब मैंने मीडियम साइज सिलेक्ट किया, ठीक है, और वो अनअवेलेबल था, तो सिस्टम ने दूसरा अवेलेबल ऑप्शन सजेस्ट किया।
1: अरे भाई, ये बड़ी बड़ी मजे की चीज है। और हाँ, यहाँ है जिसे हम कहते हैं बैक एंड कनेक्टिविटी। स्मार्ट मिरर स्टोर के इन्वेंट्री डेटाबेस से कनेक्टेड हो सकती है, इसीलिए कंज्यूमर को बार बार सेल्स असिस्टेंट के पास जाकर, भाई स्टॉक चेक कर लो, ये कर लो, अच्छा ये है, साइज है, अवेलेबल है, नहीं है, ऐसी चीजें नहीं करनी पड़ती। अगर एक साइज या कलर अवेलेबल ना हो तो सिस्टम आपको फौरन से दूसरे ऑप्शंस शो कर सकता है। कुछ सिस्टम्स में आप कह लें कि जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, वहीं से ऑर्डर या पेमेंट प्रोसेस भी कर सकता है कि उसको काउंटर की लंबी लंबी लाइन में नहीं जाना। भाई एक होता ना, मेरे जैसा बंदा हो, कहीं नहीं मैं दूसरी लाइन में जाकर नहीं खड़ा होऊंगा, मैं ऑलरेडी एक लाइन में खड़ा हो गया, तो बस वहीं पे सब कुछ एक क्लिक अवे।
0: राइट, मतलब फिजिकल स्टोर में ना हर प्रोडक्ट रखने की जरूरत भी कम हो सकती है और हर चीज सेटल्ड हो सकती है।
1: एग्जैक्टली, रिटेल स्पेस को स्मार्टर तरीके से यूज किया जा सकता है, कम फिजिकल सैंपल्स के साथ भी कस्टमर्स को ज्यादा से डिजिटली दिखाई जा सकती है।
0: लेकिन सफा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो आता है कि प्राइवेसी का क्या, क्या स्मार्ट मिरर मेरी इमेज या बॉडी स्कैन सेव करता है?
1: देखो, ये टेक्नोलॉजी यूज करने वाले जो कस्टमर का है ना, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा कंसर्न है।
0: Right.
1: और ये होना भी चाहिए।
0: राइट।
1: देखो भाई, स्मार्ट मिरर की प्राइवेसी प्रैक्टिसेस सिस्टम और रिटेलर पर डिपेंड कर सकती हैं। कुछ सिस्टम्स एज कंप्यूटिंग यूज करते हैं, जहां प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही होती है और डाटा को अननेसेसरीली क्लाउड पर भेजने की जरूरत नहीं होती। मतलब ये कि उसी वक्त असेस हुआ और उसी वक्त ये जा वो जा।
0: राइट।
1: इसीलिए कस्टमर्स को या जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको हमेशा प्राइवेसी पॉलिसी चेक करनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो कैमराज या इमेज बॉडी डाटा किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं।
0: राइट।
1: इसलिए चलिए अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं स्किल अप में। लेकिन वो नेक्स्ट सेगमेंट है, तो नेक्स्ट सेगमेंट से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अमित और सफा के साथ, सुनते रहिए एफएम 107 पर। शो का नाम है नेक्स्ट जेन।
0: वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप नेक्स्ट जेन पर। मैं हूं अमिता और सफा आपके साथ। तो सफा, टेक्नोलॉजी तो हमको अभी तक समझ में आ गई कि स्मार्ट मिरर्स देख लिए, लेकिन आखिर रिटेल का मकसद तो सेल ही है ना। और 2026 में नेगोशिएशन का तरीका भी बदल गया है।
1: हाँ भाई, देखो पहले तो था ना, वो आप दुकान वाले के सामने बैठे हुए हो, बाजी इतना आप कहोगे नहीं उतना, आप चाय भी साथ साथ पी रहे हो, लंबी चौड़ी प्राइसेस की नेगोशिएशन चल रही है। लेकिन आज के डिजिटल बाजार में ना सिर्फ अच्छी बातचीत काफी नहीं है।
0: राइट।
1: देखो, आज के सेल्स पर्सन को डाटा और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग दोनों चाहिए, और इसीलिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि होनी चाहिए।
0: राइट।
1: पहली स्किल है वैल्यू बेस्ड सेलिंग। देखो, आज का कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सॉल्यूशन खरीदता है, और ये सच हकीकत बात है। मिसाल के तौर पर, अगर आप स्मार्ट मिरर सेल कर रहे हैं और सिर्फ ये बताएं कि भाई इसका डिस्प्ले हाई डेफिनेशन है, तो कस्टमर शायद इम्प्रेस ना हो। क्या हम कहेंगे भाई हाई डेफिनेशन वाली चीज तो हमें कहीं भी मिल जाती है।
0: राइट।
1: लेकिन अगर आप ये बताएं कि ये फिटिंग रूम एक्सपीरियंस इम्प्रूव कर सकता है, प्रोडक्ट डिस्कवरी को इजियर बना सकता है और स्टाफ का टाइम सेव कर सकता है, तो कस्टमर को प्रोडक्ट की रियल वैल्यू समझ में आती है।
0: मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं, इम्पैक्ट सेल करें।
1: एग्जैक्टली, कस्टमर के पेन पॉइंट को समझें और उसका सॉल्यूशन ऑफर करें ना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो ना भाई।
0: और दूसरी स्केल की बात करें तो वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आज का बायर स्टोर में आने से पहले ही ऑनलाइन प्राइसेस, रिव्यूज और अल्टरनेटिव्स चेक कर लेता है।
1: अरे भाई, बड़े होशियार हो गए कंज्यूमर्स, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए इन्फॉर्मेशन हाइड करना या अनरियलिस्टिक प्राइस डिमांड करना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं होता। डाटा शेयर करें, प्राइस जस्टिफाई करें और कस्टमर को क्लियर इन्फॉर्मेशन दें। देखिए, ट्रस्ट एक डिस्काउंट से ज़्यादा वैल्यूबल मैं कहूँगी चीज़ होता है। बिजनेस में रेपुटेशन ही आपकी असली कैपिटल होती है। कतर की शॉपिंग एक्सपीरियंसेस को एक नई डायरेक्शन दे रही है।
0: लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, बाजार की वो असली रूह, कम्युनिटी ट्रस्ट और इंसानी कनेक्शन हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी।
1: बिल्कुल, फ्यूचर सिर्फ मशीन्स का नहीं है, जो कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई हर चीज मशीन पे चलेगी।
0: राइट।
1: ऐसा नहीं है, स्मार्ट ह्यूमंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के पार्टनरशिप के साथ नया फ्यूचर बनेगा।
0: और अगले हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं एक और फैसिनेटिंग टॉपिक, 3D प्रिंटिंग और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, और एक ऐसी दुनिया जहाँ कुछ चीजें सिर्फ खरीदी नहीं जाएंगी बल्कि

0: की टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई भी जा सकेंगी।
1: तो भाई तब तक के लिए अपने आइडियाज को परवाज दें, स्टे स्मार्ट, स्टे स्टाइलिश एंड कीप मोटिवेटिंग।
0: एब्सोल्युटली, और इसी के साथ हम कहेंगे कि अपनी आरजे अमिता और सफा को दीजिएगा इजाजत। आप हमसे सकते हैं हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 के, और आप 666-22-107 इस नंबर के जरिए अपने व्यूज, अपने सजेशन भी हम तक पहुंचा सकते हैं।
1: तो वही नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है,
5: नजर यूं झुकाना मेरे लिए है बस, मेरे लिए है।
0: कभी नए सपने दिखाता है, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो,
5: तो बदला मौसम जरा सा,
0: या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: रिक्वेस्ट शो, सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: वो कौन सी बातें हैं जो एक शख्स को अजीम बनाती हैं? वो कौन से काम हैं जो एक शख्स को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं? जानना चाहोगे?
3: जानना चाहो।
2: अपने मैदान अमल में कारनामे दिखाने वाले और अपने हौसलों से समुद्र का सीना चीरने वाले ऐसी ही अजीम शख्सियतों और जाबाजों की दास्तान लेकर आए हैं हम, इनकी जिंदगी और कारनामों पर रोशनी डालने। सुनिए स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: आज के दौर में संघर्ष करना कोई नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि उन्हें घर बैठे ही पैसा, रुतबा, इज्जत, गाड़ी, मकान सब मिल जाए। पर ऐसा कहाँ होता है हुँ? सक्सेस एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसको मिल जाती है, उसकी जिंदगी रातों रात सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। और कुछ ऐसी ही कहानी है श्रीकांत बोला की। तो यस जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आपके लिए लेकर आई हूँ अनटोल्ड स्टोरीज। और आज हम बात करने वाले हैं अनटोल्ड स्टोरीज में श्रीकांत बोला के बारे में।
5: I feel God can give us only starting circumstances, but we make our own destiny. The future is in our hands and we have enough opportunities to craft in whatever way we wish. If you envision or if you want your kids to be in a future where there are equal opportunities or a sustainable living, you might as well craft that future.
4: तो सोचिए कि जब किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूरे घर का जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, वो खुशियों से गूंज उठता है, खुशियों का जैसे तांता सा लग जाता है। पर अचानक से अगर घर वालों को पता चले कि उनके घर जो बच्चा जन्म लिया है वो देख नहीं सकता, तो क्या होगा? पूरी खुशियों पर पानी फिर जाता है। ठीक वैसा ही कुछ हुआ श्रीकांत बोला के साथ। जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो उस दिन उनके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और जैसे ही उनके पिता को पता चला कि वो नेत्रहीन है, देख नहीं सकते, तो उसके आसपास के लोगों ने ये सुझाव दे डाला कि बच्चे को मार डालो, इसे बड़ा मत होने दो वरना बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पर श्रीकांत बोला कि माता पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि किस्मत ने कुछ और ही प्लान्स श्रीकांत बोला के लिए बना रखे थे। बोला ने जब अपनी स्कूलिंग खत्म की तो बिजनेस मैनेजमेंट साइंस की पढ़ाई की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT US में जाकर। और ये सबसे पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट थे जिन्हें 100% फाइनेंशियल एड के साथ एडमिट किया गया था। आगे बढ़कर ये CEO बने बोलांट इंडस्ट्रीज के, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैन्युफैक्चर करती थी इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल कंज्यूमर पैकेजिंग के सॉल्यूशंस। और लेट बिजनेस टाइकून रतन टाटा भी इस बिजनेस के स्टेक होल्डर थे। बोला की इंस्पिरेशनल जर्नी को एक बायोपिक का रूप दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इस नाम से इस फिल्म को बनाया श्रीकांत, जिसमें फेमस एक्टर राजकुमार राव ने भी काम किया। वैसे ये फिल्म बड़ी कमाल की है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए बोला जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो अपनी एक इंस्पिरेशनल लाइन सबसे शेयर करते हैं और वो ये है,
5: When the world looks up to me and says, Shrikant, you can't do this, I tell them, why can't?
4: तो yes, आज ऐसे ही कमाल की शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं, श्रीकांत बोला। कैसे इनकी जिंदगी आगे बढ़ी, कौन सा वो मोमेंट था जो टर्निंग पॉइंट रहा

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता अनटोल्ड स्टोरीज में आज हम बात कर रहे हैं बड़े ही स्पेशल कैरेक्टर श्रीकांत बोला के बारे में तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इनका जन्म हुआ सीतारामपुरम एक छोटा सा गांव है आंध्र प्रदेश में वहां जुलाई 1991 में अब इन्होंने उस किसान की फैमिली में जन्म लिया था जिनकी सालाना इनकम बमुश्किल 20,000 रुपए थी लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो लोग ऐसे खुशियां मना रहे थे जैसे कि मिलियन डॉलर की लॉटरी लग गई हो बोलते हैं कि ये बिल्कुल सोने की चिड़िया की तरह दिख रहे थे

इन्हें दूध से जब नहलाया गया और नहलाकर जब इन्हें सामने लाया गया तो लालटेन में इनके फादर ने इनको देखा तो एक छोटे से चेहरे में जो छोटी छोटी आंखें थी वो बंद थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो आंखें नहीं खुली और ये देखकर श्रीकांत के जो माता पिता थे वो पूरी तरह से टूट गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पहली औलाद देख नहीं सकती। ये जानने के बाद उनके आस पड़ोस वालों ने, उनके रिलेटिव्स ने, सब ने कहा इस बच्चे की आंखें बंद है, इसे हमेशा के लिए सुला दो, वरना अगर ये बड़ा होगा तो आप सभी के लिए ये बड़ी मुश्किल का कारण बनेगा। एक मिनट के लिए श्रीकांत बोला के जो माता पिता थे उनके जहन में ये बात आई कि इस बच्चे को हमेशा के लिए सुला दे। कोशिश भी की लेकिन नाकामयाब रहे। उनके दिल ने इस बात को पूरी तरह से नहीं माना और फिर उसे जैसे तैसे वो बड़ा करने लगे, प्यार मोहब्बत से कोशिश करने लगे कि वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। और जब श्रीकांत छोटे से बच्चे थे तो उनको एक काम दे दिया गया कि देखो जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनकी आवाज सुनकर उनको घर के पास आने से रोकना, ठीक है, आप उनको किसी तरह भी घर से दूर रखना। ऐसे में एक इंटरव्यू में श्रीकांत बोला कहते हैं कि जब मैं छोटा था और मुझे ये काम मिला तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो किसी ना किसी लक्ष्य या किसी ना किसी पर्पस के लिए हुआ है, और ये मेरा पर्पस था कि मैं अपने घर को प्रोटेक्टेड रख रहा था स्ट्रीट डॉग से। वाह क्या बात है। वैसे जब श्रीकांत छोटे थे तो काफी स्ट्रगल उन्हें फेस करना पड़ा, काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन उन्हें मिलता गया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम किसी ब्लाइंड स्टूडेंट को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता था।

0: अब ये lack of support के चक्कर में उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं पीछे छूट रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते लोगों ने उन्हें कहा कि तुम क्यों नहीं आर्ट्स लेके पढ़ लेते, जहाँ पर लिटरेचर, सोशल साइंसेस, मतलब लैंग्वेजेस होंगी और पढ़ाई में दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे में श्रीकांत बोला, पूरी तरह से चकरा गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि अरे मेरा दिल है अच्छी पढ़ाई करने का, तो क्यों मुझे रोका जा रहा है।
1: So I decided to join science stream in the intermediate level after passing out my 10th grade with over 90%. But to my surprise, I was told people with visual challenges cannot take up science. I faced discrimination and it was devastating for me to see that I can't take up sciences. So I told myself, why should I follow everybody and take up arts and be a linguist or a professor or a literate?
0: श्रीकांत बोला कि एक टीचर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही। उन्होंने श्रीकांत की हमेशा हेल्प की, हमेशा उसका सपोर्ट किया। और जब देखा कि श्रीकांत को सीनियर इयर्स में स्टेट बोर्ड में साइंस लेके पढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो फिर सीधा कोर्ट केस कर दिया।
1: And that's how I followed my heart and said, look, I'm going to fight with the government until I achieve it. Rather, I'm not going to take up economics or do something. And of course, I got permission after 6 months after a huge legal battle. And that not only allowed me to succeed with a district rank, but also helped the younger generations to find their platform to fulfill their aspirations and their goals as well.
0: कोर्ट में गए तो काफी सारे सवाल श्रीकांत से पूछे गए, लेकिन श्रीकांत फुल ऑन कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने अपने जवाबों को बहुत अच्छे से पेश किया और एक ही चीज कही कि अगर वो देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम उनसे उनके पढ़ने की जो काबिलियत है वो छीन लेगा, उनकी इच्छाओं को खत्म कर देगा। वैसे ये सबसे पहली टसल थी और इस टसल में जीत हासिल तो हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पढ़ाई तो इन्होंने कर ली और 98% एग्जाम्स में मिल भी गए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इंडिया का प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग कॉलेज IITs इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि श्रीकांत ने कई सारे IIT पढ़ाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट की कि किसी तरह उन्हें पढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया।
1: I faced so much hardship in my life that it has become an addiction for me. But I also think if your response to challenges is to say bring it on, and I'm sure the whole world will conspire to help you succeed.
0: उसके बाद बोला ने जितनी भी US की यूनिवर्सिटीज थी वहाँ पर अप्लाई किया और लकीली उन्हें 5 ऑफर्स मिल गए, जिसमें से उन्होंने MIT कैम्ब्रिज को चूज किया जो कि मैसाचुसेट्स में थी। और इस MIT में जब उन्होंने दाखिला लिया तो वहां पर इंडिया को क्रिकेट और चेस के नेशनल लेवल्स में रिप्रेजेंट किया। कैन यू इमेजिन, ये करने के बाद उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जहां पर लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया था, आज वहीं पर ये खड़े होकर बंद आंखों से लेकिन खुले दिमाग से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। है ना कमाल की बात।
1: As an outstanding student, getting all top ranks and you know played chess and cricket for India.
0: वैसे MIT में पढ़ाई में ये अव्वल थे, exceptional इनका performance था और इसके चलते इनके सारे teachers बहुत खुश थे। यूं माना जा रहा था कि ये लड़का जो है श्रीकांत बोला अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि academically भी ये काफी strong हो गए थे। आंखें नहीं थी लेकिन नजर बहुत दूर की थी। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव का लड़का कोई सोच सकता था कि दुनिया भर में एक एग्जाम्पल स्थापित करेगा और सारे स्पेशली चैलेंज लोगों को एक इंस्पिरेशन देगा। वेल, ये है हमारे श्रीकांत बोला। वैसे इन्होंने बोलांट इंडस्ट्रीज की कैसे शुरुआत की और इनकी लेगेसी में क्या क्या खास है, बस जानेंगे कुछ ही देर में। तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता अनटोल्ड स्टोरीज में आप सभी का बहुत-बहुत इस्तकबाल है और आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी ही कमाल की शख्सियत श्रीकांत बोला के बारे में So, श्रीकांत बोला के बारे में अब तक हमने जाना कि कैसे उनका बचपन बीता कैसे आगे बढ़े कौन कौन से चैलेंजेस हुए और ये है कि सारे चैलेंजेस को सारे स्ट्रगल्स को फेस करते हुए बढ़ते हुए अब एक नामी शख्स बनते जा रहे थे अब नामी शख्स तो बन गए लेकिन अब नाम कमाने के लिए कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग इन्हें लुकअप करें और वही हुआ 2012 हैदराबाद ये वापस आए जब वापस आए तो इनके जहन में आके कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग इन्हें याद रखें एंड एट द सेम टाइम जो लोग स्पेशली चैलेंज्ड हैं उनके लिए नए रास्ते खुले तो इन्हें एक आइडिया आया कि चलो बोलांट इंडस्ट्रीज खोलते हैं
2: 10% ऑफ इंडियाज डिसेबल्ड पॉपुलेशन टुडे सफर्स मोस्ट ऑफ देम सफर्स ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ education and mainstream facilities and this has been known for decades but nobody ever thought of solving it but this is why we wanted to bring this 10% of India's population who are so called disabled people who are so called useless and put out of the economy and out of the society into the society and integrate them into the mainstreaming
1: बोलांट इंडस्ट्रीज क्या थी ये इको फ्रेंडली रीसाइक्लिंग कंपनी थी इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है जो कि ऑफर करती

0: की है पैकेजिंग सॉल्यूशंस को और वो सारे एम्प्लॉयज जो इस कंपनी में है वो स्पेशली एबल्ड है. कैन यू इमेजिन, मतलब इस कंपनी का सीईओ जिसने दुनिया भर को इंस्पायर किया, उसके बाद एक एग्जाम्पल स्थापित किया कि जनाब दुनिया में जो भी स्पेशली चैलेंज्ड है वो भी किसी ना किसी काम का जरूर है. वैसे लेट प्रेसिडेंट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने काफी काम किया.
1: One visually challenged boy studying 9th class got up. His name is Srikant. He answered me, I am Srikant. I will become visually challenged first president of India. I was happy to see his vision and ambition. This young boy, small in the cry, hence I congratulated him to realize the vision and told him work for realizing the vision.
0: और 2017 में फेमस मैगजीन फोर्ब्स में भी ये फीचर किए गए. इनकी रिमार्केबल जर्नी का एक सबसे अहम हिस्सा एक फिल्म के रूप में भी दिखाया गया. जी हाँ, जहाँ पर राजकुमार राव इस फिल्म के लीड रोल एज अ श्रीकांत प्ले कर रहे थे.
2: आई हैव नो वर्ड्स टू से बट आई कंग्रेचुलेट द एंटायर कास्ट क्रू वन एंड ऑल हु हैज वर्कड ऑन दिस फिल्म, एस्पेशली ब्रदर राज. It is a great work put in by the team, especially to show this kind of a story in the most funny and yet inspiring way is a big challenge. And Tushar and team has done a phenomenal job.
0: Rajkumar Rao ne apne interview mein ye bhi share kiya ki jab unki mulaqat Srikant se hui to unhe laga ki kya kamal ki shaksiyat hai, matlab kabhi bhi haar manne ko taiyar hi nahi hai. चाहे जिंदगी में कैसी भी सिचुएशंस आ जाएं, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितना भी लोग उन्हें ताने मारें, लेकिन श्रीकांत तस से मस ना हो. और यही वजह थी जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम तक पहुंचे.
3: दिस फिल्म इज नॉट अबाउट श्रीकांत बीइंग विजुअली इंपेयर्ड. दैट्स समथिंग दैट इज देयर. इट्स अ स्टोरी, वी आर सीइंग एन एस्पिरेशनल स्टोरी. वो विजुअली इंपेयर्ड है, ये एक फैक्ट है. बट वी नॉट गोइंग टू फोकस ऑन हिम बीइंग विजुअली इंपेयर्ड, बिकॉज व्हेन आई मेट श्रीकांत we were very normal, like, you know, we were like talking, discussing. He's very witty, he's very funny. I asked him so many questions, some of them were very personal as well, but he was very open to the idea. Unhone mujhe puri zindagi apne khol ke rakh di samne. Then as an actor, ye meri job hai ki main kitna usse lu aur unko kitna observe karu, kitna apni zindagi mein utaru.
0: Well, Bolant industries ke malik to ban gaye the, lekin ab Srikant ki zindagi mein sirf industry ko chalana hi kafi nahi tha. Unhone ye bhi thaan li thi कि वो सोसाइटी को चेंज करके रहेंगे. कैसे? इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा मिशन, गोल ये है कि जो लोग स्पेशली चैलेंज्ड हैं उन्हें वो जॉब दें, उन्हें ये बताएं कि तुम अगर एक तरफ से काम नहीं कर सकते तो दूसरे ऑप्शंस तुम्हारे लिए खुले हैं. यहाँ तक कि ये मेक श्योर करते हैं कि सिर्फ स्पेशली चैलेंज्ड लोगों के लिए ही काम ना करें, बट एट द सेम टाइम जिंदगी के अलग अलग एरियाज जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस पर भी ये काफी जोर देते हैं. इनफैक्ट सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर ये हमेशा आगे रहते हैं. और जब सोसाइटी के एटीट्यूड्स की बात करें तो वो कहते हैं कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए.
2: I want to be in a future where equal opportunities are given to everyone across this globe, irrespective of the outcome and the certainty. Because the outcome can be decided in the second step, but the opportunities must exist and must be given so that we have enough chances to prove.
0: ये काफी inspirational leader भी हैं, जो लोगों को कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारा कोई सपना है ना, तो टेंशन मत लो, उस सपने को पूरे करने के लिए बस आगे बढ़ जाओ. ये मत सोचो कि वो सपना पूरा होगा कि नहीं, बस कोशिश में लग जाओ और जब ये कोशिश करोगे तो वो सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा.
2: You know what, we are on day one of our growth and we have a long road to go and I'm sure we have miles to walk before we sleep.
0: यहाँ तक कि ये काफी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स में भी हिस्सा लेते हैं और स्पेशली चैलेंज्ड लोगों के लिए तो हमेशा ही आगे रहते हैं. तो देखो, श्रीकांत बोला, लाइफ को लेकर, सोसाइटी कर, लोगों को लेकर हमेशा अग्रसर रहते हैं और पॉजिटिविटी फैलाते रहते हैं. सो हैट्स ऑफ टू श्रीकांत बोला, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर किसी की आंखें बंद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं सकता. वो देख भी सकता है और औरों को राह भी दिखा सकता है. सो यस, आज की हमारी अनटोल्ड स्टोरी श्रीकांत बोला के ऊपर थी एंड आई एम श्योर कि आपको जरूर पसंद आई होगी और शो कैसा लगा ये आप हमसे जरूर शेयर करें 6622107 पर 6622107 और चाहे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है हमारा शो के बाद आप वहां हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं FM 107 पर और आपकी ए फॉर अमिता भी वहीं मिल जाएगी ठीक है तभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में सो टेक केयर और बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: Oh my God, this is original.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

0: हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। गेम चेंजर
1: सीजन 2। ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अमीन, आज की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है जब उन्होंने अल्लाह ताला से नेक और साले औलाद की दरख्वास्त की। कुरान करीम में उनकी दुआ इस तरह आई है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली, ए मेरे रब, अता फरमा, बख्श दे। यानी औलाद अल्लाह की अता है, इंसान की मेहनत और कोशिश के बावजूद ये महज उसका फजल है। मिनस सालिहीन, नेक लोगों में से, यानी ऐसी औलाद अता फरमा जो ईमान, इताअत और तक्वा में साले हो, महज दुनियावी नेमत ना हो बल्कि दीन की रोशनी बने। समीन, इस दुआ के कई अहम पहलू हैं, उनमें से एक ये है कि औलाद अल्लाह की नेमत है, औलाद की नेकी असल मकसद है। मजीद, औलाद के लिए दुआ अंबिया की सुन्नत है और गोया के इस दुआ का खुलासा ये बना कि नस्ल की इस्लाह उम्मत की इस्लाह है। औलाद की असल कामयाबी दुनियावी जाह माल में नहीं बल्कि नेकी और सालहियत में है। आइए हम सब आजिजी से ये दुआ पढ़ें, رب هب لي من الصالحين. Your health matters.
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शिकायत की जो जिंदगी में तकरीबन हर शख्स को कभी ना कभी होती है और वो है जिस्म में दर्द, सर दर्द, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का या दूसरे जॉइंट्स का दर्द। दर्द की बहुत सी इकसाम है और उनकी वजूहत भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। कभी दर्द ज़्यादा काम करने, एक्सरसाइज करने, गलत जो पोस्चर है जिस तरह हम बैठते हैं, या फिर थकन के बाद होता है और आराम के साथ वो बेहतर होता चला जाता है। लेकिन कभी दर्द हमारे जिस्म की तरफ से एक वार्निंग भी हो सकता है, इसलिए हर दर्द से घबराना नहीं चाहिए, हर दर्द को मुसलसल इग्नोर करना भी मुनासिब नहीं है। मसलन, अगर आप कई घंटे कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, गर्दन झुका कर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या एक ही पोजीशन में काम करते रहते हैं तो गर्दन, कंधों और कमर में मसल स्ट्रेन हो सकता है। ऐसी सूरत में पोस्चर बेहतर करना, ब्रेक लेना, जल्द स्ट्रेचिंग करना और मुनासिब फिजिकल एक्टिविटी मददगार साबित हो सकती है। एक बहुत ही आम मसला है कि हम काम में कितने मसरूफ होते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता और कई घंटे हम अपनी पोजीशन से नहीं हिलते। इसलिए एक आसान सा उसूल अपना लीजिए, मुसलसल बैठने के बजाय दरमियान में आप उठिए, चंद कदम लें और पोजीशन तब्दील करें और जिस्म को हरकत दें। लेकिन अगर दर्द बार बार हो रहा है या ज्यादा होता जा रहा है तो सिर्फ पेन किलर लेकर उसे दबाते रहना मुनासिब नहीं है और उन्हें जरूरत से ज्यादा लेना या तवील अरसे तक खुद से इस्तेमाल करने पे मेडिसिन या पेन किलर्स जो हैं वो नुकसानदेह साबित होते हैं। खास तौर पर अगर किसी शख्स को स्टमक, लीवर, किडनी या कोई दूसरे हार्ट जो इश्यूज हों या वो फिर दूसरी कोई और मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों तो जो दर्द के लिए लेने वाली मेडिसिन हैं वो लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। अब सवाल ये है कि किन हालात में दर्द को जो वार्निंग साइन हमें समझना है। अगर दर्द अचानक बहुत शदीद हो, चोट के बाद शदीद दर्द हो, जिस्म के किसी हिस्से में अचानक कमजोरी या फिर सुन होना शुरू हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी हो या सीने में दर्द के साथ कोई नई शिकायत हो, शदीद जो हेडेक है उसके साथ कुछ और अलामतें हों या दर्द के साथ

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। चावल दुनिया के बहुत से मुल्कों में खाए जाते हैं, लेकिन हर जगह उनका जायका और उनसे जुड़ी रिवायत अलग हो सकती है। कतर में चावल अक्सर एक साइड डिश नहीं, बल्कि मेहमान नवाजी, जश्न और घर की खुशियां समेटने वाला मरकजी खाना होता है। कतरी दस्तरखान पर चावल के साथ गोश्त, मछली, खुशबूदार मसाले और कहवे या शरबत की रिवायत मिलकर एक मुकम्मल तजुर्बा बनाते हैं। जब गरम देगची का ढक्कन उठता है तो जाफरान, इलायची, दारचीनी और खलीज के मशहूर खुश्क ब्लैक लाइम यानी लोमी की खुशबू हवा में फैल जाती है। इसी खुशबू को कतर के मशहूर चावल के खानों की पहचान समझा जाता है। सबसे नुमाया नाम मजबूस का है। इसे कतर का कौमी खाना भी कहा जाता है। इसमें चावल में गोश्त, मछली, मुर्गी या मुख्तलिफ मसालों के साथ इसको तैयार किया जाता है। अक्सर प्याज, लहसुन, टमाटर और गरम मसाले भी शामिल होते हैं। गोश्त को पहले आहिस्ता आहिस्ता पकाया है कि सजक शोरबे में उतर आए। फिर इसी खुशबूदार शोरबे में चावल पकता है और हर दाना मुख्तलिफ जायकों को अपने अंदर समेट लेता है। मजबूस का असल हुसन सिर्फ उसके मसालों में नहीं, बल्कि इस बात में भी है कि ये आम तौर पर बांट कर खाया जाता है। बड़ी सी थाली या प्लेटर के दरमियान रखे चावल लोगों को एक दूसरे के साथ बैठने की दावत देते हैं। हर शख्स अपनी जगह से खाना खा लेता है, बातचीत करता है और खानों के साथ रिश्तों की गर्म जोशी महसूस करता है। घरों में मजबूस की एक ही तरकीब नहीं होती। किसी के हाँ गोश्त ज्यादा अहम होता है, किसी को मछली वाला मजबूस पसंद होता है और कोई मसालों की मिकदार को अपने खानदानी जायके के मुताबिक बदल देता है। इसी वजह से एक ही खाने के कई घरेलू सूरतें नजर आती हैं। कतर की समंदरी जिंदगी ने भी चावल के खानों को मुतासिर किया है। पहले के जमाने समंदर मिलने वाली मछली और चावल का मेल घरों में आम था। इस किस्म के खाने साहिल की जिंदगी, तिजारत और मौजूदा अशिया को अपनाने की सलाहियत को जाहिर करते हैं। गोश्त वाला मजबूस अक्सर मेहमानी और बड़ी दावत से जुड़ा होता है, जबकि मछली वाला अंदाज समंदरी वर्षे की याद दिलाता है। कतरी चावल के खानों को समझने के लिए एक और अहम बात जरूरी है। इसमें दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के असरात भी शामिल है। अरब दुनिया का पुरानी तजारती राबता हिंदुस्तान, फारस और दूसरे इलाकों से था। मसालों की ये आमदरफ वक्त के साथ मकामी पकवान का हिस्सा बन गई, लेकिन कतर ने इन अंदाज को अपने जायके, अपने माहौल और अपनी रिवायत के मुताबिक ढाल लिया। ऐसे खाने हमें याद दिलाते हैं कि जरात, समंदर, तिजारत और खानदानी जिंदगी सब मिलकर एक कौम का जायका भी बनाते हैं और उसकी पहचान भी। चावल का एक बर्तन हमें सिर्फ खाना नहीं देता, बल्कि गुजरे हुए लोगों की मेहनत और तजुर्बा

0: बाद की कहानी भी सुनाता है। आज के दौर में रिवायती मजबूज होटलों, रेस्टोरेंट, सकाफती मेलों और घरों के दस्तरखान पर हर जगह मिलता है। नए तजुर्बे करने वाले बावर्ची इसके पेश करने के अंदाज में तब्दीलियां ला सकते हैं, लेकिन बुनियादी जज्बा वही रहता है, मेहमान के लिए फराखी, घर वालों के लिए अपनायत और एक साथ मिलकर बैठने के खाने की खुशी। अगर आप कतर में कतरी चावल का खाना तैयार करें तो याद रखिए कि हर चीज का तवाजुन अहम है। खुशबूदार चावल, नरम गोश्त, लोमी की हल्की खटास, मसालों की गर्माहट मिलकर एक ऐसा जायका बनाती है जो देर तक याद रहता है। मूरी और मसालों की खुशबू, भुने हुए प्याज और ताजा धनिया की सजावट खानों को और भी दिलकश बना सकती है। तो आज के कल्चर मोमेंट का खुलासा ये है कि कतरी चावल का खाना सिर्फ एक तरकीब नहीं, ये मेहमान नवाजी, खानदानी मुलाकात, तिजारती रवाबित और समंदरी वर्षे की एक जिंदा कहानी है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेनिस की, दुनिया की एक ऐसी लेजेंडरी खिलाड़ी की जिन्होंने बहुत कम उम्र में दुनिया की नंबर वन रैंकिंग हासिल की और ग्रैंड स्लैम हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया, मोनिका सेलेस। मोनिका सेलेस का नाम वुमेन्स टेनिस के सबसे आउटस्टैंडिंग खिलाड़ियों में शुमार होता है। सन 1971 2 दिसंबर को नोवी साद, जो उस वक्त यूगोस्लाविया का हिस्सा था, वहां मोनिका सेलेस पैदा होती हैं और सेलेस ने बहुत ही छोटी उम्र में टेनिस शुरू कर दिया और उनकी एग्रेसिव बेसलाइन गेम ने जल्द ही दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। प्रोफेशनल टेनिस में अपना डेब्यू 1988 में किया और सिर्फ कुछ सालों में मोनिका सेलेस ने वर्ल्ड टेनिस की टॉप खिलाड़ियों में जगह बना ली। 1990 में इटालियन ओपन जीतकर उन्होंने अपना पहला मेजर WTA टाइटल हासिल किया। WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, जिसके तहत कई टूर के मैचेस होते हैं, जैसे कि मेंस टेनिस में ATP हम कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, वहीं WTA दे लुक आफ्टर द वुमेन्स प्रो टेनिस। तो इसी साल उन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता और वो ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र चैंपियंस में शामिल हो गई। लेकिन सेलेस का असल गोल्डन पीरियड 1991 से 1992 के दरमियान आया। 1991 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन जीते। 1992 में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन के टाइटल्स डिफेंड किए, बाखूबी डिफेंड किए। और इस दौर में उनकी पावरफुल 200 ग्राउंड स्ट्रोक्स और यूनिक 200 स्टाइल ने ओपोनेंट्स के लिए बहुत मुश्किल पैदा की। अगर करियर की बात करूं तो कुल 9 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते हैं और इनमें 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 फ्रेंच ओपन और 2 US ओपन टाइटल शामिल हैं। विंबलडन में वो 1992 में रनर अप रही। उनकी सबसे अगर रिमार्केबल अचीवमेंट की अगर बात करूं तो वो आया था 1990 से 1992 तक, जहां पे उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव फ्रेंच ओपन टाइटल जीते। 1990 का फ्रेंच ओपन टाइटल उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम था, जबकि 1992 में उन्होंने अपनी डोमिनेंस को मजीद मजबूत किया। मोनिका सेलेस मार्च 1991 में पहली बार WTA वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग पर पहुंची। वो उस वक्त सिर्फ 17 साल और 99 दिन की थी। उन्होंने टोटल 178 वीक्स वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग पर गुजारे। 1993 में उनके करियर को एक इंतहाई सदमा पहुंचा जब जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में एक टेनिस मैच के दौरान एक स्पेक्टेटर ने उन पर हमला किया और उन्हें पीठ में छुरा मारा। इस वाकये ने मोनिका सेलेस के करियर को गहरा मुतासिर किया और वो तकरीबन 2 साल कॉम्पिटिटिव टेनिस से दूर रही। लेकिन उन्होंने कमबैक किया 2 साल के बाद 1995 में, और कमबैक के बाद भी उन्होंने अपनी क्लास का मुजाहरा किया और 1996 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर अपना नवा और आखिरी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल हासिल किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी सेलेस ने अपनी मुल्क की नुमाइंदगी की। उन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी इंटरनेशनल टेनिस में हिस्सा लिया और फेड कप में अमेरिकन टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ओवरऑल प्रोफेशनल करियर में 53 WTA सिंगल्स टाइटल्स और उनकी करियर प्राइज मनी की बात करूं तो $14 मिलियन से ज्यादा रही। दोस्तों मोनिका सेलेस के नाम सिर्फ उनके ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की वजह से याद नहीं किया जाता, बल्कि उनकी पावरफुल पर्सनालिटी, यूनिक प्लेइंग स्टाइल और मुश्किल हालात के बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी की वजह से भी।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज की इस डिजिटल दुनिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और ये है AI एंड पर्सनल फाइनेंस. जी हाँ, सबसे पहले ये समझते हैं

हमारी और आपकी मदद करती है यानी कंप्यूटर सिस्टम जो इंसान की तरह सीख सकते हैं इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं और आपको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं अब सवाल ये है कि एआई का हमारे पैसों और डेली फाइनेंशियल लाइफ से क्या ताल्लुक है दोस्तों पहले पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग के लिए ना लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाते थे स्प्रेडशीट्स बनाते थे नोटबुक्स में अपना खर्चा लिखते थे आज एआई की वजह से ये सब बहुत आसान हो गया है अगर आप कोई बजटिंग ऐप यूज करते हैं चांसेस है कि उसमें एआई टेक्नोलॉजी शामिल हो ये ऐप्स आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालाइज करती है और बताती है कि आपका पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है मिसाल के तौर पे अगर आप हर महीने रेस्टोरेंट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं एआई आपको अलर्ट कर सकती है और बजट मेंटेन करने के सजेशंस देती है एआई का एक और बड़ा फायदा है एक्सपेंस ट्रैकिंग का अक्सर महीने के एंड में हम सोचते हैं कि सैलरी तो ठीक थी लेकिन पैसा गया कहाँ जी हाँ एआई पावर टूल्स आपके ट्रांजेक्शंस को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जैसे ग्रॉसरी ट्रांसपोर्ट बिल्स एंटरटेनमेंट और सेविंग्स इससे आपको आपकी फाइनेंशियल पिक्चर ज्यादा क्लियर नजर आती है एआई सेविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है कुछ मॉडर्न बैंकिंग एप्स आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को एनालाइज करके सजेस्ट करती हैं कि हर महीने कितनी अमाउंट सेव करना रियलिस्टिक होगा कुछ एप्स तो ऑटोमेटिकली स्मॉल अमाउंट सेव भी कर देती हैं, जैसे इमरजेंसी फंड बिल्ड करना आसान हो जाता है दोस्तों एआई इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी अपना रोल अदा कर रही है आजकल रोबो एडवाइजर्स नाम की सर्विस अवेलेबल है जो कि इन्वेस्टर्स के गोल्स और टॉलरेंस को देखकर इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करती है ये टेक्नोलॉजी बिगनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को समझना और शुरू करना आसान बना रही है लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है एआई एक पावरफुल टूल है एआई फाइनेंशियल एक्सपर्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है हर रिकमेंडेशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए फाइनेंशियल डिसीजंस खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स और लोन से मुतालिक बातों को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए एआई प्रेडिक्शंस डेटा पर बेस्ड होते हैं और मार्केट कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं आज एआई फ्रॉड डिटेक्शन में भी बहुत अहम रोल प्ले करती है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एआई की मदद से सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं अगर आपके अकाउंट में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नजर आए तो एआई सिस्टम्स उसे आसानी से डिटेक्ट करके पहचान के वार्निंग जनरेट कर सकता है यानी एआई सिर्फ पैसे मैनेज करने का नाम नहीं है बल्कि प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करती है अगर समझदारी से यूज की जाए तो ये बजटिंग सेविंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत आसान बना सकती है लेकिन याद रखना एआई आपको गाइड कर सकती है लेकिन आपके पैसों का फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए स्मार्ट मनी का आज का लेसन ये है कि टेक्नोलॉजी को अपना हेल्पर बनाइए अपना डिसीजन मेकर नहीं चलिए आज के लिए बस इतना ही मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम तो रुपये इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.
1: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक. मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

कि इनको खबर भी ना होगी। मैं इनकी रस्सी दराज कर रहा हूं, मेरी चाल बड़ी जबरदस्त है। क्या तुम इनसे कोई अजर तलब कर रहे हो कि ये उस चट्टी के बोझ तले दबे जा रहे हो? क्या इनके पास गैब का इल्म है जिसे ये लिख रहे हो? अच्छा, अपने रब का फैसला सादिर होने तक सब्र करो और मछली वाले यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह न हो जाओ। जब उसने पुकारा था और वो गम से भरा हुआ था, अगर उसके रब की मेहरबानी उसके शामिल हाल न हो जाती तो वो मजमूम होकर चटियल मैदान में फेंक दिया जाता। आखिरकार उसके रब ने उसे बरगुजीदा फरमा लिया और उसे सालह बंदों में शामिल कर दिया। जब ये काफिर लोग कलाम नसीहत यानी ये कुरान सुनते हैं तो तुम्हें ऐसी नजरों से देखते हैं कि गोया तुम्हारे कदम उखाड़ देंगे और कहते हैं कि ये जरूर दीवाना है, हालांकि ये तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है।

आया। हुक्म होगा, पकड़ो इसे और इसकी गर्दन में तौक डाल दो, फिर इसे जहन्नम में झोंक दो, फिर इसको 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो। ये न अल्लाह बुजुर्गों बरतर पर ईमान लाता था और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देता था, लिहाजा आज न यहाँ इसका कोई यारे गम खार है और न जख्मों की धोवन के सिवा इसके लिए कोई खाना, जिसे खताकारों के सिवा कोई नहीं खाता। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ उन चीज भी जो तुम देखते हो और उनकी भी जिन्हें तुम नहीं देखते। ये एक रसूल करीम का कौल है, किसी शायर का कौल नहीं है। तुम लोग कम ही ईमान लाते हो, और न ये किसी काहिन का कौल है, तुम लोग कम ही गौर करते हो। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है, और अगर इस नबी ने खुद घड़कर कोई बात हमारी तरफ मंसूब की होती तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते और इसकी रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोकने वाला न होता। दर हकीकत ये परहेजगार लोगों के लिए एक नसीहत है, और हम जानते हैं कि तुम में से कुछ लोग झुटलाने वाले हैं। ऐसे काफिरों के लिए यकीनन ये मूजिबे हसरत है और ये बिल्कुल यकीनी हक है। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब्बे अज़ीम के नाम की तस्बीह करो।

इंसान थुड़दिला पैदा किया गया है। जब उस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, और जब उसे खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो लोग इस ऐब से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करने वाले हैं, जिनके मालों में साइल और महरूम का एक मुकर्रर हक है, जो रोजे जजा को बरहक मानते हैं, जो अपने रब के आजाब से डरते हैं, क्योंकि उनके रब का आजाब ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई बेखौफ हो, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं बजुज अपनी बीवियों या अपनी ममलूका औरतों के, जिनसे महफूज न रखने में उन पर कोई मलामत नहीं। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें वही हद से तजावुज करने वाले हैं, जो अपनी अमानतों की हिफाजत और अपने अहद का पास करते हैं, जो अपनी गवाहियों में रासबाजी पर कायम रहते हैं और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, ये लोग इज्जत के साथ जन्नत के बागों में रहेंगे। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि ये मुनकरीन दाएं और बाएं से ग्रोह दर ग्रोह तुम्हारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं? क्या इनमें से हर एक ये लालच रखता है कि वो नेमत भरी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? हरगिज नहीं। हमने जिस चीज से इनको पैदा किया है उसे ये खुद जानते हैं। बस नहीं, मैं कसम